ओम शांति। हमारी सर्वश्रेष्ठ स्थिति स्वराज्य अधिकारी है और सबसे पावरफुल स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की है। बाबा ने हमें जन्म देते ही हमारी जन्मदिन की गिफ्ट हमें प्रदान की थी, सर्वशक्तियां। ऐसी सुंदर गिफ्ट संसार में तो और कोई दे भी नहीं सकता, किसी के पास भी नहीं है। हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि हमारे पास परमात्म शक्तियां हैं, सर्व शक्तियां हैं। उसने हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी सर्व शक्तियां हमें प्रदान कर दी हैं। सोचे जरा, जब शंकराचार्य ने संन्यास लिया, छोटी आयु थी, वो अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखकर अपनी आठों सिद्धियां उन्हें प्रदान कर दी और उन आठ सिद्धियों के बल पर शंकराचार्य जी संसार में बड़े बड़े काम करने में सफल हुए, मात्र 32 साल की आयु तक। कितनी बड़ी चीज है। एक मनुष्य गुरु ने अपने शिष्य के सिर पे हाथ रखकर सब सिद्धियां दे दी और वो बड़े बड़े काम कर गए। सोचो, हमारे सिर पर किसने हाथ रखा है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बाद कोई नहीं है। उसने हमारे सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरी सारी शक्तियां आज से तुम्हारी। हम इस नशे में आ जाएं, हम इस स्मृति में आ जाएं कि स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपनी समस्त शक्तियां हमें प्रदान कर दी हैं। वो हमारे पास हैं, हमारे बुलावे पर वो हाजिर हो जाती हैं। पर हमें याद रखना है, शक्तियां किसके बुलावे पर हाजिर होंगे, जो स्वमान की सीट पर सेट होंगे। बिना सीट के कोई किसी का ऑर्डर नहीं मानता। आज कोई प्राइम मिनिस्टर है तो सब मानते हैं, कल उतर गया तो कोई नहीं मानता। हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर सदा स्थित रहें। तो ये दो अभ्यास बहुत अच्छे हैं। जो मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं वही स्वराज अधिकारी भी बन जाते हैं, और स्वराज अधिकारी तो सर्वोच्च स्थिति है जिसमें हम मन पर, बुद्धि पर, कर्मेंद्रियों पर, अपने संस्कारों पर राज करने लगते हैं, जिसमें हम इस देह रूपी प्रकृति के पूरी तरह मालिक बन जाते हैं। देह से न्यारा होना हमारे लिए एक आनंद का विषय बन जाता है, सेकंड का काम हो जाता है, जो पास विद ओनर होने वालों की पहली पहचान है। तो हम सभी स्वराज अधिकारी बनेंगे और मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठकर, अर्थात इस नशे में स्थित होकर, मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तियों की मालिक भी हूँ। फील करें, मैं मालिक हूँ। ये मालिकपन की फीलिंग, इसको बहुत गहराई से रियलाइज कर लें। मालिक, अधिकारी, तो स्वयं के भी मालिक, शक्तियों के भी मालिक। मान लो निर्णय शक्ति नहीं है तो आह्वान कर सकते हैं, बस संकल्प करें, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है, हे मेरी बुद्धि परफेक्टली काम करो, अपने निर्णय शक्ति को इमर्ज रखो। मेरे पास सहन शक्ति की कमी है, सहन शक्ति का आह्वान करें, हे सहन शक्ति तुम तो मेरी शक्ति हो, सदा मेरे साथ रहो। और संकल्प कर लें, मैं तो सहन शक्ति से भरपूर सहनशीलता की देवी देवता हूँ। तो ये सभी चीजें काम करने लगेंगी। आज सारा दिन हम स्वयं को ये स्वमान देंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वराज अधिकारी हूँ, मन का मालिक हूँ, विशेष रूप से मालिक हूँ। हे मेरे मन, तुम्हें वही करना है जो मैं चाहूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ये गुड फीलिंग बढ़ाते चलें, तो सारा दिन ये दो स्वमान अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान,
स्वराज्य अधिकारी और स्वयं को भ्रकुटी सिंहासन पर बैठा हुआ देखेंगे। मास्टर ज्ञान सूर्य शक्तियों के मालिक, जिससे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मुझ आत्मा से, मैं आत्मा बहुत तेजस्वी, और मुझसे चारों शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। इस गुड फीलिंग में सारा दिन रहेंगे, बार बार इसका अभ्यास करेंगे और स्वयं को शक्तियों से संपन्न और अपने मालिक बनाएंगे। ओम शांति।

0: क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। एक नींबू ले और उसे बीच में से काट ले, उसे दबाकर उसका रस एक गिलास में निकाल ले, उसमें अपनी जरूरत के अनुसार चीनी और चुटकी भर नमक डालें। काला नमक हो तो और भी अच्छा रहेगा। गिलास में ठंडा पानी भर लें और चम्मच से अच्छी तरह मिला लें। शिकंजी तैयार है। यह बड़ी आसानी से तैयार की जा सकती है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा बनाई गई शिकंजी का स्वाद एक जैसा नहीं होगा। नींबू, चीनी, नमक और पानी के अलावा कोई एक अदृश्य चीज भी होती है जो शिकंजी को बनाते समय प्रयोग की जाती है, और वह अदृश्य चीज ही स्वाद में फर्क पैदा कर देती है। हम जो कुछ भी बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसमें एक अदृश्य घटक डालते हैं, और यह अदृश्य घटक ही बेहतर और बेहतरीन के बीच अंतर पैदा कर देता है। जो भी काम किया गया, वह प्रेम और प्रसन्नता के साथ किया गया या उदासीनता, भाव शून्यता, अनिच्छा व अरुचि के साथ किया गया, कोई भी काम हो, उसे करने में हृदय का, भावना का पुट होना ही वह अदृश्य चीज है। जो काम किया गया, उसमें हृदय का, भावना का पुट क्या 101% रहा है? यही है निर्णायक प्रश्न। आप भोजन बनाते हो, भोजन प्रेम और प्रसन्नता से बनाया करो या फिर मत बनाओ, स्वाद के फर्क से यह महसूस हो जाता है। परोसे गए भोजन में या तो जीवंतता होती है या वह बेजान सा लगता है, और यह फर्क इस पर आधारित होता है कि उसे बनाने में हृदय का, भावना का कितना प्रयोग किया गया है। एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन हमारे मन के विचारों का भी अन्न पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भोजन बनाते समय हमारी भावनाएं, हमारे विचार बहुत ही शुद्ध होने चाहिए, तभी उसका प्रभाव हम भोजन में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसका स्वाद भी ले सकते हैं।
2: मैं धुंध धुएं के पार कहीं मृदवंतहीन सी आशा हूं, जो सबसे सुंदर काव्य रचे। मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं, मैं ऐसी अनुपम भाषा हूं।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

पूजा स्थल और ईश्वर की वेदिका के लिए बचाकर रख दिए जाने के लिए हूँ। जो कुछ भी हम करें निष्ठा और समर्पण के साथ ही करें, जो कुछ भी हम करें उसमें हृदय का भावना का योगदान 101% हो तो वह निष्ठा व समर्पण हो जाता है। धर्म के अर्पण में आप वह देते हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन निष्ठा व समर्पण में तो आप खुद को ही अर्पित कर देते हैं। समर्पण की पवित्रता के साथ किया गया कोई भी काम पूजा बन जाता है। एकाग्रता, खुशी और प्रेम निष्ठा व समर्पण के सह उत्पादक हैं। सिर्फ निष्ठा व समर्पण से ही यथार्थता, कौशल एवं प्रभा मंडल की प्राप्ति होती है। थकान और निष्ठा विपरीत ढंग से बराबर होते हैं। जब हम अपना हर काम निष्ठा के साथ करने लगते हैं, केवल तभी हम प्रकृति का यह अघोषित विधान जान पाते हैं कि मनुष्य थकने के लिहाज से नहीं बनाया गया है। आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो थकना नहीं जानता, तो समझ लें कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके लिए हर कार्य निष्ठा की, उपासना की अभिव्यक्ति है और उसका प्रत्येक कार्य पूजा है। काम करें तो पूरी निष्ठा से करें या फिर न करें, बीच की कोई स्थिति नहीं होती। प्रार्थना में आप अपनी आवाज सुनते हैं, ध्यान में आप खुद से परे की आवाज सुनते हैं। प्रार्थना परमात्मा के साथ संवाद है, ध्यान परमात्मा के साथ।

हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा, हम बदल कर रहेंगे वक्त की धारा। ओम शांति। डिवाइन मैशअप म्यूजिकल सीरीज के सुहाने सफर में मैं आपकी होस्ट आत्मिका अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हम अपने जीवन की उस कड़ी से जुड़ेंगे जिसमें परमात्मा शिव की संतान होने के नाते हम सभी का भाग्य और सभी के कर्तव्यों को उजागर किया जाएगा। हम सभी आत्माएं परमात्मा की अनादि संतान हैं। इसी सत्य को हमारे बीच प्रकाशित करने आ रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर रविंद्र उपाध्याय जी।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुईया बोल रहा हूँ मुंबई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में आशा मैं सबना हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरा संपर्क हुआ तब से मना जिंदगी को एक नया दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इना सा मार्गदर्शन मिलो है और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगाकर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। फिर नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

इस तरह सोचना छोड़ दें, हम तो यह काम इसी तरह करते आए हैं, इसलिए इसे इसी तरीके से किया जाना चाहिए। परंपराओं के कारण पंगु न बने। बर्फ पर कुछ भी नहीं उगता। यदि हम अपने मन मस्तिष्क को बर्फ की तरह जम जाने देंगे तो उसमें नए विचारों के अंकुर कभी नहीं फूटेंगे। पुरानेपन की ओर लौटना और उसके बारे में सोचना बंद कर दें और नएपन की ओर चलना, नए के बारे में सोचना शुरू करें। किसी भी मानवीय प्रयास में परम पूर्णता पाना असंभव है। वह चाहे कोई सैटेलाइट बनाना हो या बच्चों को पालना हो, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। जो लोग सफल रहे हैं वे यह बात जानते हैं, तभी तो वे यह प्रश्न करते ही नहीं, क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कर सकते हैं। इसीलिए वे यह प्रश्न करते हैं, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। व्यक्ति जहाँ पहुँचना चाहता है उसी के अनुरूप हो जाता है। आप जो कुछ भी करें उसमें सुधार की गुंजाइश के बारे में, उसे और बेहतर करने के बारे में जरूर सोचें। आप जो कुछ भी करें उसके उच्चतम स्तर के बारे में सोचें। यह विश्वास करें कि यह वैसा हो सकता है, क्योंकि आपका यह विश्वास आपके मन को इसके लिए सही रास्ते की तलाश में लगा देता है। कोई न कोई रास्ता जरूर होता है और कोई बेहतर रास्ता भी होता है। जब आप यह मान बैठते हैं कि अमुक काम असंभव है, तब आपका मन मस्तिष्क ऐसी दलीलें ढूंढने में लग जाता है कि यह असंभव क्यों है। लेकिन जब आप यह विश्वास कर लेते हैं कि अमुक काम किया जा सकता है, तब आपका मन मस्तिष्क उसे पूरा करने के रास्ते तलाशने में आपकी सहायता करने लगता है और वह रास्ता तलाश भी लेता है, बशर्ते आप उसे ऐसा

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं का गला इसीलिए घोंट देते हैं क्योंकि उनकी नजर इसी बात पर टिकी रहती है कि वे उस काम को क्यों नहीं कर सकते, जबकि हमारी नजर जिस पर टिकी रहनी चाहिए वह है कि हम उसे क्यों व कैसे करें। जीवन के हर कार्य में हमारे कामकाज से लेकर घर और सामुदायिक विकास तक सफलता का सूत्र यही है, आप जो भी करें उसे बेहतर से बेहतर करें, अपने परिणाम की गुणवत्ता निखारें और आप जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करें, अपने काम की मात्रा को बढ़ाएं। परिणाम को निखारना और मात्रा को बढ़ाना यही प्रगति है। अपने आप को लगातार यह याद दिलाते रहें कि आप खुद को जैसा समझ रहे हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। इसलिए जो भी काम आप जिस तरह करते आ रहे हैं उसे उससे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही खुद को लगातार यह भी याद दिलाते रहें कि आप उतना नहीं कर रहे हैं जितना कि आप कर सकते हैं, ताकि जितना भी आप करते आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकें। जो आप करते आए हैं उससे बेहतर बनाना आपकी योग्यता बन जाती है। जितना आप करते आए हैं उससे अधिक करना आपकी क्षमता बन जाती है। अपनी योग्यता निखारें और क्षमता बढ़ाएं, यही प्रगति है। तो आप सभी हमारे श्रोतागण अपने जीवन में इसी तरह प्रगति करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किसी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य है, मगर क्या स्वास्थ्य इतना ही है? आज अगर हम स्वास्थ्य का ना होना भी बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य समझते हैं, तो भी आज हम देखते हैं कि कई लोग दवाइयों को खाते हुए अपने आप को स्वस्थ समझकर चलते हैं। कई लोगों को आदतन गोलियां खाने की या किसी न किसी प्रकार की दवाइयों का सेवन करने की आदत हो जाती है। लोग कहते भी हैं कि भाई, दवाइयों के साथ तो ठीक चली रही है गाड़ी, तो फिर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा भी कई लोग मानने लगते हैं। जब हम स्वास्थ्य के बारे में सही जागरूकता नहीं रखते तो ऐसा होता है कि हम अपनी अपने स्वास्थ्य की मान्यताओं को ही सत्य मानने लगते हैं। इसलिए ये जानना भी आवश्यक है कि सही अर्थों में हम स्वास्थ्य को कैसे समझें और अपने परिवार, अपने स्वजनों को स्वस्थ बनाने में हम क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। आइए, आज सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चिंतन करते हैं। आज हमारे मार्गदर्शन के लिए स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर राहुल मोदी जी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: सर्वप्रथम तो मैं इसी प्रश्न से शुरू करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि भाई, जब तक किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई व्याधि ना हो, कोई पेन नहीं हो बॉडी में, तो लोग समझते हैं कि ऐसे किसी प्रकार का पेन ना होना या बीमार ना होना ही स्वास्थ्य है, ऐसा कई लोग समझ लेते हैं। और कई कई बार तो लोग उससे भी एक कदम आगे चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई, मैं अगर ये दवाई लेता रहता हूँ, हर दिन मैं ये गोली खाता रहता हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक रहती है, तो मैं स्वस्थ ही हूँ, मुझे कोई ज्यादा समस्या नहीं है। इसको भी स्वास्थ्य का एक मॉडिफाइड डेफिनेशन समझ कर लोग चलने लगते हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे
1: श्री भैया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई है, उसमें फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की बात की है, एंड नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये बात करता है कि सिर्फ शरीर का दर्द नहीं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहने चाहिए। आज इस भाग दौड़ की दुनिया में जब हम अखबार अभी देखेंगे खोलकर, जब बच्चों का 10वीं या 12वीं का रिजल्ट निकलता है, उनका परीक्षा फल आता है, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि ये बच्चा 99.99% पाया, और कुछ बच्चे तो इतना अच्छा नंबर पा रहे हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। पर आप ये भी तो देखिए कि बहुत बच्चे मेहनत के बाद भी अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं, तो वो तो मानसिक रूप से परेशान हो ही जा रहे हैं, साथ साथ उनके माता पिता भी उस बच्चे के नंबर न होने से भी परेशान हो जा रहे हैं। तो आप इस पूरी व्यवस्था को स्वस्थ व्यवस्था नहीं कह सकते। आप अगर किसी भी व्यक्ति के बढ़ने से कुछ उसके जीवन में अच्छा हो रहा है और आप अगर उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप उसको स्वस्थ व्यवस्था नहीं मानेंगे। आप ये सोच रहे हैं, आपका दिमाग कुछ ज्यादा सोचता रहता है कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्या मेरे खाने में कुछ गलत मिला हुआ है, अरे लोग क्या कहेंगे, क्या ये जो मैंने कपड़ा पहना है ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। अगर आप बार बार बार बार इसी चीज के लिए परेशान होते रहेंगे, तो आपको ठीक से स्वस्थ व्यक्ति नहीं माना जाएगा। सिर्फ शरीर में कोई दर्द ना होना, कोई व्याधि ना होना, कोई परेशानी ना होना, जैसे हम लोग अभी डायबिटीज की बात की, आप पेशेंट को, मरीज को मालूम ही नहीं चलता है कि डायबिटीज है, उसको पता चला कंधा बस जाम है, कंधा जाम है, अरे कुछ तरह दर्द हो गया होगा, अरे जिम में खींच गया होगा, अरे हाथ खींच लिए होंगे, ये सारा हम बस बोलते रहेंगे और पता चलता है कि अरे भाई, ये तो डायबिटीज निकल गई। महिलाएं कितनी आती हैं कि उनको मासिक धर्म की समस्या हो रही है, महिलाएं आ रही हैं जिनको बाल झड़ रहे हैं, थकान बहुत लग रही है, उनको पसीने में दुर्गंध होने लगी, फिर अरे ये तो बहुत दिन से चला, हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तब मालूम चले रहे आपको तो थायराइड की समस्या शुरू हो गई, हार्मोनल समस्या शुरू हो गई। तो मैं सब बहुत एक खतरनाक एग्जांपल कैंसर है, आदमी को मालूम ही नहीं चला जब वो सेकेंड फेज थर्ड फेज में चला गया, तब पता चला रे भाई तो मुझे कैंसर हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है आपके शरीर में कहीं पे, और आप सोच रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, पर आपको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप तीनों तरह से स्वस्थ रहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके रोज कोई दवा या गोली अपने दिमाग से, अपनी कॉमन सेंस से, अपने सेंस से मत खाइए। जब तक किसी डॉक्टर ने आपको ना लिखी हो, जब तक आपको ये समस्या हो, कुछ गड़बड़ आपके अंदर निकले, कुछ ठीक चीज ना हो, तो आपको वो दवा खानी चाहिए। पर जो लोग ये सोचते हैं कि रोज मैं ये गोली खा लूं तो मैं ठीक महसूस करूंगा, रोज मैं ये, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ, इतने मरीज आते हैं, आप उनसे कहिए कि आप ये दवा खाते हैं, हाँ सुबह उठ के गैस की गोली खा लेते हैं, क्यों, हमको गैस बहुत बनती है। अच्छा, आप भोजन में कोई अपने वो किए, नहीं नहीं भोजन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, हम बस ये गैस की गोली सुबह खा लेते हैं, फिर हमें जो मन में आता है हम खाते रहते हैं। अरे अपना भोजन सुधार लीजिए, आप अगर अपना भोजन सुधार लेंगे तो शायद आपको वो गोली की जरूरत न पड़े। तो इसीलिए मैं सबको ये बोलूंगा कि प्लीज अपने आप को सुधार लीजिए, अपने भोजन को सुधार लीजिए, और जहां तक हो सके अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके दवाई का प्रयोग मत करिए। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयों का, होम्योपैथी का, एलोपैथी का, इवन नेचुरोपैथी का अगर जरूरत ना हो तो कृपा करके उनका प्रयोग मत करिए।
0: ये बात समझ में आती है कि आज हम दवाइयों के साथ अपने जीवन को ठीक चला रहे हैं, और इसे हम स्वास्थ्य का परिचायक समझकर अगर चलते हैं तो वास्तविकता में ये हमारी भूल है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बात समझ में आती है। अब दवाइयों के साथ जो चीजें हम कर रहे हैं, दवाइयां हर दिन खाने वाली जो चीजें एक रेगुलर चीज बन गई है, वो आम बीमारियों के रूप में भी हम देखने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर हम डायबिटीज और बीपी, इनके लिए लोगों को गोली लेते हुए देखते हैं। डायबिटीज के लिए मरीज डायबिटीज की गोलियां ले रहे होते हैं, और कोई को अगर बीपी की समस्या है तो वो बीपी की गोलियां लेते रहते हैं। पिछले एपिसोड में हम ये बात कर रहे थे कि बीपी क्या है और इसे कैसे समझने की जरूरत है और क्या इसमें होता है शरीर में, ये चीज हम समझ रहे हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हम आम लोगों को, जैसे कोई घर आए मेहमान को पूछते हैं, वैसे ही हम पूछ लेते हैं कि अच्छा आपको डायबिटीज या बीपी तो नहीं है, और कहते हैं कि हाँ उनको बीपी है या डायबिटीज है, तो भी हम बोलते हैं हाँ अच्छा ये भी ठीक है, मतलब एक एक्सेप्टेबल नॉर्म के रूप में इस बीमारी को देखने लगे हैं। तो प्रश्न उठता है कि डायबिटीज के बारे में तो धीरे धीरे धीरे धीरे हम समझते आए हैं, मगर बीपी की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? पहले तो हम इतना नहीं सुनते थे कि भाई बीपी भी कोई चीज है, बट आजकल ये एक कॉमन नोशन बन गया है, हर कोई मतलब बीपी की दवाई के बारे में बात करता है, बीपी शब्द का इस्तेमाल करता है, तो ये बढ़ क्यों रहा है, इसका इसकी वजह क्या है?
1: जैसा भैया हम लोग ने आज शुरुआती बात में किया कि जैसे

0: पे गुस्सा करते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, आपकी आवाज तेज हो जाती है, आपका गला सूखने लगता है, आप पूरे शरीर में आपके कंपन होने लगता है। तो इसका सीधा साधा ये मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। ये एक फिजियोलॉजिकल चीज है कि मतलब आप किसी पे गुस्सा हुए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अगर आपकी प्रवृत्ति यही है कि आप बार बार हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होने लगेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ ही मिलेगा। तो सबसे जो बड़ी चीज ये है कि आप मानसिक रूप से बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत परेशान रह रहे हैं, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बार बार परेशान हो जा रहे हैं। आपके ऑफिस में अगर कुछ हो रहा है, आपके परिवार में कुछ हो रहा है, आपके व्यापार में कुछ हो रहा है, आप उसके लिए बार बार चिंता करेंगे तो उससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, और अगर आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज जो बहुत कॉमनली मिल रही है वो है लैक ऑफ स्लीप, मतलब आदमी कम सो रहा, और उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा मोबाइल फोन है। हम लोग ने पिछले एपिसोड में बात किया है, कृपा करके अपने मोबाइल फोन को अपने बिस्तर से दूर रखिए। अगर वो आपके हाथ में रहेगा तो आपको वो सोने नहीं देगा, और अगर आपको वो सोने नहीं देगा तो आप फिर अगले दिन सवेरे ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जी भैया, आप लोग ने ये भी देखा है कि जो ब्रह्म कुमारी का लिटरेचर है वो बहुत पॉजिटिव लिटरेचर माना जाता है, वो बड़ा अच्छा लिटरेचर माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि आप अगर उसको अध्ययन करेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। तो हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ किताब पढ़ लें, हम क्यों नहीं उस मोबाइल को छोड़कर कुछ अच्छी चीज का अध्ययन कर पाए। ये तो हम और आप दोनों जानते हैं कि अगर बच्चे को सुलाना तो कोर्स की किताब दे दीजिए वो तुरंत सो जाएगा। तो हम अगर अच्छे विचार पढ़कर अगर हम सोएंगे तो हमारी नींद ठीक रहेगी, हमको मानसिक रूप से आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, और हम अपने जो दिमाग है और हमारा जो शरीर है उस दोनों का तनाव कम कर पाएंगे। तो मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज जरा ठीक से सोइए, पूरा 6 से 7 घंटा सोइए। मोबाइल के बाद जो दूसरा कारण ये देखा जा रहा है जो नींद लोगों की कम होती है वो है ट्रैवल टू वर्क, मतलब आप अपने घर से अपने काम करने की जगह पे कितना दूर जाते हैं। मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं ये देखता हूँ लोग वहां पे 1.5 घंटा 2 घंटा एक तरफ, मतलब दिन में 24 में से नॉर्मल है 2.5 से 3 घंटा वो अपना सिर्फ अपने काम की जगह पे जाने में और काम की जगह से अपने घर जाने में समय बिता दे रहे हैं। तो सोचिए 24 में से 3 घंटा तो लोगों का अपने सफर में ही बीत गया। तो आपके पास जो नींद का समय, जो 8 घंटे की नींद आपको चाहिए वो कैसे मिली। तो ये चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर हो सके तो अपना ट्रैवल टाइम कम करने की कोशिश करिए, और सोते समय प्लीज मोबाइल को जो प्रयोग है उसको कम करिए तो आपकी नींद ठीक हो जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, जो आप अभी बात कह रहे हैं वो पता चलता है कि वो कितनी प्रासंगिक है। एक तो हम आज अपने ही ख्याल रखने के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम या तो अपने काम से रिलेटेड चीजें जो है उसको ही ज्यादा प्रामुख्यता देखते हैं, और ये भूल जाते हैं कि अगर हम सेल्फ केयर नहीं करते, अपने ख्याल रखने के बारे में हम ध्यान नहीं देते तो हमारे अपने स्वास्थ्य को हम दरकिनार करते हुए इसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ता है और इसके फाइनेंशियल कॉस्ट भी हैं, ये बात समझ में आती है। पर जैसे आपने कहा कि एक सकारात्मक लिटरेचर जो है, ऐसी पॉजिटिव चीजें जो ब्रह्म कुमारी इस परिवार में लोगों को मार्गदर्शन के रूप में मिलती है वो उन्हें सशक्त बनाने के लिए है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन ला सके। बहुत बार लोग ये कहते हैं हम करना तो चाहते हैं मगर होता नहीं है, मगर उसका उदाहरण यहाँ ब्रह्म कुमारी इस परिवार में हम देखते हैं कि लाखों लोग आज यहाँ सिखाए जाने वाले इन सरल विधियों को सीख कर अपने जीवन को सशक्त जीवन बनाते हैं, जीवन में छोटी छोटी तब्दीलियां करते हैं, पूरी आदतों से बच जाते हैं, अपने क्लॉक को बॉडी

0: क्लॉक को रीसेट करने के लिए सोने और जागने के समय को निर्धारित करते हैं। वो जैसे अक्सर राजयोग ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें यही बताया जाता है कि आप स्वयं के राजा बनते हैं, आप अपने इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने काबू में स्वयं को, अपने मन को, आप जो करना चाहते हैं वो सशक्त होकर कर सकते हैं, बात पता चलती है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से डॉक्टर साहब मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि बहुत बार हम बीपी के बारे में सुनते हैं, तो पहले तो ये चीज समझने की जरूरत भी है कि हम इसमें मन का क्या रोल है, हमारे शरीर का क्या रोल है और हमारे डाइट, खान पान इत्यादि का क्या रोल है बीपी की बीमारी को हम आमंत्रित करते हैं या इससे ग्रसित होते हैं।
1: भैया आपने अभी बड़ा अच्छा बताया, और जो अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करने आते हैं, मैं जो भी सुन रहा है मैं चाहूंगा प्लीज एक बार माउंट आबू वाले सेंटर पे जरूर जाइए। जब वो सवेरे 4 बजे आपको उठाएंगे मेडिटेशन के लिए, और उठाएगा कोई नहीं, ये बात गलत है, आप अपने आप उठ जाएंगे, आप अपने आप, आपके अंदर से आवाज आएगी, यार इतने दूर आए हैं चलो चल के देखें क्या होता है। और मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा, जहां पहला दिन थोड़ा सा परेशान करेगा, दूसरे तीसरे दिन तो बाप रे आपको इतना आनंद आने लगेगा कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अपने जो मन है मानसिक रूप से शांत होते चले जाएंगे। आप खुद देखिए, ब्लड प्रेशर के इलाज में जो चीज सबसे पहले कही जाती है कि प्लीज थोड़ा मेडिटेशन करिए, ये बड़ा ही ब्रॉड टर्म है मेडिटेशन, मगर आप किसी भी विधि से, किसी भी गुरु के सिखाए हुए तरीके से अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको मानसिक रूप से शांति मिलेगी। अगर आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे तो आप बहुत कुछ पॉजिटिवली डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, और आप बीपी से बच सकते हैं। अभी मैं एलोपैथी की पढ़ा हूं, तो अगर आप किताबों को पढ़िए और अगर आप क्लिनिक्स में भी जाइए डॉक्टर के यहाँ, तो पहले वो तुरंत बोलते थे कि अरे ये गोली खा लो और ठीक हो जाएगा। अब वो देखिए आपको अपने प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल, मतलब कुछ एक्सरसाइज करिए, सेकंड यूज ऑफ योगा आसन एंड प्राणायाम, कि आप कुछ आसन करिए मतलब फिजिकल एक्टिविटी करिए, प्राणायाम करिए मतलब ब्रीदिंग पे अपने कंट्रोल करिए, यूज ऑफ मेडिटेशन, प्लीज यूज मेडिटेशन मतलब आप मेडिटेशन करिए, और उसके बाद नीचे लास्ट में लिखा जाता है कि अवॉइड सॉल्ट इनटेक। पहले जैसे हमेशा बोला जाता था ब्लड प्रेशर है तो आप 4 चीजें अपने भोजन में से निकाल दीजिए, जो है चूरन, चटनी, अचार और पापड़, कि अगर आप ये चीज जिसमें भयंकर सॉल्ट है, और खासकर आबू राजस्थान में है तो वहां तो बड़ा अच्छा नमक का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत अच्छा नमक और बहुत अच्छा घी का प्रयोग किया जाता है, और वो पचा भी लेते हैं उसको। तो अब डॉक्टर्स भी ये मानने लगे हैं कि आपको अपने जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी जीवन शैली है, उसको ठीक करना चाहिए। और इसमें भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप आलसी प्रवृत्ति के हैं, मतलब आप दिन भर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप ही मतलब कुर्सी पे बैठे ही बैठे काम कर रहे हैं, आप हिल डुल नहीं रहे हैं, आप कोई भी फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने को थोड़ा सा एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। कहा जाता है प्ले एनी स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए, आप वो नहीं कर सकते तो बेसिक वॉकिंग करिए, आप टहलिए, और ये भी कहा जाता है प्लीज घर के बाहर जाके टहलिए, अपने घर में ट्रेडमिल ले आए उस पर टहल रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर कोशिश करिए कि आप बाहर जाके भी अगर टहल पाए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो मन है वो वातावरण को देखेगा, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, आप कुछ लोगों को देखेंगे, आप अगल बगल आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल रहनी चाहिए। और ये हुआ मेंटल बात की मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम का प्रयोग करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, अपना आलस्य जीवन जो है उसको छोड़िए, और तीसरा जो कहा जाता है मतलब माइंड ठीक हो गया मेडिटेशन से, बॉडी ठीक हो गई ठीक ठाक खाने से, एक्सरसाइज, बॉडी ठीक हो गया, और फिर बोला जाता है कि डाइट को कंट्रोल करिए, मतलब अपने भोजन को कंट्रोल करिए। और सबसे पहली बात जो बोली जाती है लो सॉल्ट डाइट, मतलब आप प्लीज ऐसा मतलब भोजन करें जिसमें नमक की मात्रा कम हो। और जो आज के परिवेश में मैं जो बोलना चाहूंगा कि प्लीज फ्रोजन एंड फ्राइड, मतलब जो भी भोजन फ्रीज किया गया हो और उसका प्रयोग हम फिर से तल के या गर्म करके या माइक्रोवेव करके या ओवन में डाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि आप एक बात समझिए, किसी चीज को भी प्रिजर्व करने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी चीज को जिसको तला बहुत ज्यादा गया है, जिसपे नमक बहुत ज्यादा डाला गया हो, इन सारी चीज को अपने भोजन से हटा दीजिए और अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा घूमिए टहलिए और थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, ये सब आपको बहुत फायदा देगा।
0: बहुत ही सुंदर बात आप ये समझा रहे हैं कि एक और हम बीपी के बारे में बेहतर समझ तो हासिल कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ हम इसके निदान के लिए या इससे बचाव के लिए भी हमें क्या करने की जरूरत है, ये भी चीज हमें समझ में आ रही है। दोस्तों, ये ना समझें कि बीपी उम्र के साथ आने वाली बीमारी है और इससे हम नहीं बच सकते, ऐसा नहीं है। अगर हम आज से ही अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं, कुछ न कुछ पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो अपने स्वास्थ्य की ओर एक कदम बेहतर बढ़ा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा तला हुआ या नमकीन चीजें खाना, और खासकर आज क्योंकि हम बहुत सारी चीजें घर में नहीं बनाते हैं और आसानी से ये चीजें बाहर से हम खरीद के खा लेते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए घातक हो सकती हैं, हमें बीमारियों के कगार पर लाकर खड़ा कर सकती हैं। इसलिए अपने आप के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और कुछ सकारात्मक कदम उठाएं, जैसे कि आप थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा अपने भोजन के प्रति ध्यान देना शुरू करेंगे तो बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। आज समय को देखते हुए इस एपिसोड में यहाँ रुकते हैं दोस्तों, मगर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने आज हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें मार्गदर्शन दिया है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य की इस कड़ी में हमने बीपी, जो एक ऐसी बीमारी है जिसे ब्लड प्रेशर के रूप में हम जानते हैं, उसके बढ़ते हुए कारणों के बारे में समझा। साथ में ये भी समझा कि हम क्या ऐसे छोटे कदम उठा सकते हैं जिससे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आज के सेहत स्वास्थ्य में ये रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला में हमने ये जाना कि हम किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, रिलेशनशिप्स को एक नए नज़रिए से देखा और फिर कई रोल्स जो हम हर रोज अदा करते हैं उनको कैसे हम हर बार चेंज कर सकते हैं वो हमारे अपने हाथ में है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और बात करते हैं रिसोर्सेज की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। हमने तीन पड़ाव तो तय कर लिए इस पूरी श्रृंखला में, और एक नई नज़र से जो है हम पूरे ना सिर्फ स्व को बल्कि अब जब अपने आप को मैनेज करते हुए हमने अपने रिलेशनशिप्स में और बाहर देखा तो काफ़ी सारे बदलाव दिखते हैं। आपने बात की थी कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट आता है रिसोर्सेस, यानी संसाधन, पर वो रिसोर्सेस क्या हैं?
1: ट्रू, बिकॉज ईच वन ऑफ अस, हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं। यू नो, जो हम कई बार अपने आप को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और हम कहते हैं इनके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है, वट एवर, एक्चुअली हम सबके पास वही रिसोर्सेज हैं। अंतर किस में आ रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करते हैं, एंड दैट विल ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट इन माई लाइफ, कि मेरे पास भी उतना ही है जितना आपके पास है, लेकिन आपका उसको यूज़ करने का तरीका और मेरा उसको यूज़ करने का तरीका वो डिफरेंट हो जाएगा। अब हर एक के पास जो रिसोर्सेज हैं सेल्फ के, वो तीन लेवल पर होंगे, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। थ्री रिसोर्सेज जो हम सब के पास हैं। सो लेट्स से फिजिकल रिसोर्सेज। आज फिजिकल वेलबींग की जितनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, मतलब शायद पहले इतनी नहीं, अवेयर ऑफ आर फिजिकल हेल्थ। आप मैगजीन्स देख लो, न्यूज़पेपर, आई मीन एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल वेलबींग, एंड येट एट द सेम टाइम इलनेस
0: बहुत ज़्यादा है। वी आर ऑल फिजिकली इल, कोई ना कोई बीमारी कहीं ना कहीं,
1: समवेयर कहीं छोटी सी कुछ तो फिर भी एक यू नो कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज वी सो अर्लियर वे अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वहाँ शक्ति अपने आप जाएगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जबकि हम सब अपने शारीरिक स्वास्थ्य का इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, इतने कॉन्शियस हो गए हैं, फिर भी हेल्थ क्यों नहीं आ रही है, फिर भी हम क्यों हमारी बीमारी की यू नो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, जबकि हम ध्यान ज़्यादा रख रहे हैं। पहले इट वॉज नॉट देयर, पीपल वर नॉट इवन सो अवेयर ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटा सा डिस्कनेक्ट है, और वो सिंपल जो डिस्कनेक्ट है वो ये कि पहली बात मैं कौन हूँ, इसी का जो आंसर था। सो व्हेन आई सॉ दैट आई एम द बॉडी, क्योंकि अभी तक तो हम इसी इल्यूजन में चल रहे थे कि मैं शरीर हूँ, तो मैं अगर शरीर हूँ तो मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो हम कहते हैं फीलिंग्स कौन सी आपकी, तो मेरी जो प्राइमरी फीलिंग्स हैं, मुख्य फीलिंग्स हैं जो मुझे अनुभव होती हैं, वो कौन सी होती थी?
0: पर शरीर को लेके,
1: हाँ,
0: या मुझे लेके कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
1: हाँ, तो वो कौन सी फीलिंग होती है? यू नो फीलिंग्स, जैसे आई वॉज डूइंग अ वर्कशॉप इन अ कंपनी एंड आई जस्ट आस्क्ड देम कि फीलिंग कहाँ क्रिएट होती है,
0: हार्ट
1: ना, उन्होंने कहा फीलिंग तो
0: बॉडी में होती है,
1: पूरे बॉडी में होती है,
0: व्हेन यू टच, यू नो दिस इज अ फीलिंग,
1: दिस इज अ फीलिंग, सी, सो मेजॉरिटी, एंड वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दैट कि हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे कि फीलिंग कहाँ क्रिएट होती है। दे सेड कहाँ क्या क्रिएट होती है, पूरे शरीर में तो क्रिएट होती है, देखो हर जगह फीलिंग क्रिएट हो रही है। व्हाई? क्योंकि अवेयरनेस इतनी बॉडी के ऊपर है कि मैं ये शरीर हूँ, तो जो स्टिम्युलेशंस, जो ये सेंसेशंस मुझे शरीर के थ्रू मिल रहे हैं, मैंने उन्हीं को अपनी प्राइमरी फीलिंग देख लिया, मैं सटल लेवल पर तो गई नहीं। तो एक थॉट के साथ चले कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर के द्वारा, इन पांच इंद्रियों के द्वारा जो जो सेंसेशंस आती हैं, यू नो आर फाइव सेंस ऑर्गन्स, तो माय साइट, माय ईयर्स, स्मेल, माय माउथ एंड टच, ये पांच कर्म इंद्रियों द्वारा जो सेंसेशंस आती हैं वो मेरी फीलिंग्स, माय प्राइमरी फिजिकल फीलिंग्स जिसको हम बोलते हैं, वो बनती गई सेंसेशंस। और फिर मैं शरीर हूँ, ये फीलिंग्स हैं, तो इनसे जो मुझे फील होगा ये मुझे खुशी देगा, कुछ अच्छा देखने से, कुछ अच्छा सुनने से मुझे खुशी मिलेगी, कुछ अच्छा खाने से मुझे खुशी मिलेगी, अरोमा, अरोमा थेरेपी, कि आपको वो अच्छी सुगंध मिलेगी तो खुशी क्रिएट होगी। यस, समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड, क्योंकि स्टिम्युलेंट तो है, तो वो स्टिम्युलेंट बाहर से आ रहा है, वो एक सेंसेशन क्रिएट कर रहा है।

0: लेकिन क्योंकि मैंने सोचा कि ये मेरी प्राइमरी फीलिंग है, मेरा नेक्स्ट कंक्लूजन ये था कि खुशी कहाँ से आती है, बाहर से।
1: तो हेल्थ भी यहीं से आएगी, यू नो, हम जो सारे अगर
0: एवरीथिंग वॉज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन कि आउटसाइड इन, तो इसलिए हम खुशी के लिए, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर एक का क्या था, क्या चाहिए, खुशी चाहिए। बट बिकॉज आई थॉट आई एम द बॉडी एंड देन आई रियलाइज्ड कि स्टिम्युलेंट बाहर से है, सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एवरीवेयर आउटसाइड। एंड फिर मैं कहती हूँ खुशी के लिए मैं ये करती हूँ, खुशी के लिए मैं ये खाती हूँ, खुशी के लिए मैं ये सुनती हूँ, खुशी के लिए मैं नए नए कपड़े खरीदती हूँ। एवरीथिंग वॉज वर्किंग दिस वे, तो वी स्टार्टेड बिकमिंग वेरी डिपेंडेंट।
1: लेकिन वो दे तो रही थी खुशी,
0: स्टिम्युलेशन, यस डेफिनेटली,
1: कुछ देर के लिए, चाहे वो नया कपड़ा था, चाहे वो कुछ जो मैं खाना चाहती हूँ, जो मैं देखना चाहती हूँ, वो दे तो रहा
0: है, स्टिम्युलेंट तो है। इसीलिए हम उसको स्टिम्युलेंट कहते हैं कि स्टिम्युलेंट आता है। आप टीवी देख रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, या आपको किसी चीज की आदत पड़ी है, चॉकलेट, चॉकलेट इज अ वेरी बिग स्टिम्युलेंट, कॉफी इज अ वेरी बिग स्टिम्युलेंट, ऑफकोर्स अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीजें, तो वो बार बार जो टेस्ट हम क्रिएट करते हैं वो स्टिम्युलेट तो करता है ना, कहीं ना कहीं।
1: अब स्टिम्युलेट किसे करता है, मेरे थॉट प्रोसेस को,
0: यस,
1: या मेरे बॉडी ऑर्गेनरी सेंसेस?
0: इट गिव्स अ टेस्ट बड हियर, राइट? टेस्ट मैंने लिया, जैसे चॉकलेट खाई, मैंने टेस्ट लिया, लेकिन टेस्ट को परसीव किसने किया?
1: माइंड।
0: परसीव तो माइंड ने ही किया ना, माइंड ने परसीव किया कि ये टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि मुझे ये रियलाइज नहीं था कि ये थॉट कौन क्रिएट कर रहा है, ये थॉट ऑफ हैप्पीनेस कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। सो आई थॉट कि अनलेस आई डोंट ईट दैट चॉकलेट,
1: चॉकलेट के कारण हो रहा है ये,
0: सो आई नीडेड दीज थिंग्स,
1: मतलब शॉपिंग करूंगी मैं तो शॉपिंग के कारण मुझे खुशी
0: मिल रही है। सो शॉपिंग आज बहुत बड़ा एक वो है लोगों को कि कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। सो शॉपिंग इज सपोज टू बी अ डी स्ट्रेसर, कि शॉपिंग करूंगी तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट इज डेफिनेटली अ स्टिम्युलेंट। तो अब इतने सारे स्टिम्युलेंट्स, यू नो, हम ढूंढते गए कि कौन सी चीज़ मुझे खुशी देगी, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे म्यूजिक है, आज वीडियो गेम्स हैं, यू हैव टू सी चिल्ड्रन विद दैट, आई मीन दे आर टोटली सक्ड इन, एब्सोल्युटली, उनको कोई अवेयरनेस नहीं है कुछ हो रहा है, तो उतनी देर वो चीज़ आपके ऊपर क्या कर देती है,
1: हावी हो रखी होती है, बिल्कुल
0: हावी हो जाती है पूरी तरह। एंड दैट्स वाई यू स्टार्ट फीलिंग कि दिस क्रिएट्स माई हैप्पीनेस।
1: ओके, बट व्हाट इज इट इन देम, उनमें ऐसा क्या है, वो क्यों ऐसे स्टिम्युलेंट है?
0: See, it's not a stimulant for everybody. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज स्टिम्युलेंट है। आपके लिए कॉफी स्टिम्युलेंट हो सकती है, मेरे लिए चॉकलेट हो सकती है, आपके लिए गेमिंग हो सकती है, मेरे लिए मोबाइल पे बात करना हो सकता है, आपके लिए टीवी देखना हो सकता है, मेरे लिए इंटरनेट चैटिंग हो सकती है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल,
1: और इतनी ज्यादा है, और इनफैक्ट यस, जो मेरे लिए नहीं है वो मुझे दूसरे को करते हुए नजर आता है कि वो गलत है उसके लिए,
0: लेकिन जो मेरे लिए है
1: वो मुझे ठीक लग रहा है,
0: मुझे नहीं पता,
1: क्योंकि वेरी ट्रू, यू नो, जब हम बच्चे को इन्वॉल्व हुआ देखते हैं तो हमें खुद को लगता है कि ये गलत हो रहा है,
0: लेकिन हम बहुत सारी चीजें करते हैं ऐसी जो हमें खुद उस टाइम नहीं अवेयरनेस आती। अब वो अलग अलग लोगों के लिए कैसे बन गई, जो चीज मैंने करनी शुरू की, एक बार खाई चॉकलेट, आई लाइक्ड इट, सेकंड टाइम आई एट इट, एंड वी हैव सीन के जो कर्म क्रिएट करते जाओ बार बार बार बार, तो थोड़े टाइम के बाद इट बिकम्स माय हैबिट, तो ये मेरी हैबिट बन गई है। अब मैंने समझा कि ये हैबिट मुझे खुशी देती है, तो आई एम फीलिंग लो, मेरा मूड ठीक नहीं है, एंड मेरे अंदर वो बिलीफ फिट है कि चॉकलेट खाने से
1: मुझे अच्छा लगता है,
0: तो इमिजिएटली मेरा हाथ कहाँ जाएगा, एक चॉकलेट की तरफ,
1: अवेलेबल भी है, चलो आसानी से,
0: या टीवी देखने से मेरा मूड ठीक हो जाएगा। नाउ व्हाई डज इट हैपन, क्योंकि टीवी मेरे माइंड इंटेलेक्ट पर इतना ओवरपावर कर देती है कि मेरी अपनी थॉट्स, सी इट इज अ सिचुएशन विच ओवरपावर्स मी, जैसे परिस्थिति मुझे ओवरपावर करती है, लोग मुझे ओवरपावर करते, उसी तरह वहाँ जो क्रिएट हो रहा है, दिस होल कॉन्शियसनेस कि कोई चीज मुझे ओवरपावर करती है एंड इट क्रिएट्स माई emotions actually is coming from the television. क्योंकि television या कोई भी movie या कुछ हम देख रहे हैं तो हम अपनी thought power, अपनी creativity बिल्कुल बंद करते हैं, वो उदास हैं तो हम उदास हैं, वो गुस्से में है, तभी तो हम कहेंगे ना सीरियल बहुत अच्छा है. कौन सा सीरियल और कौन सी मूवी अच्छी होती है जो आपको इमोशनली स्टिम्युलेट करती है,
1: जिसके साथ हम रिलेट कर पाते हैं.
0: तो हम कहते हैं हम उसके साथ जुड़ गए. जुड़ गए मतलब आप रोए मैं रोए साथ में. सो दैट इज द मूवी विच इज सक्सेसफुल, जो आपको पूरे 3 घंटे आपका मन आपकी बुद्धि कहीं नहीं गई. तो आपको कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ा उतनी देर. दैट वॉज डूइंग योर जॉब फॉर यू. इट वॉज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू. इट वॉज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू. यहाँ से हमें आदत पड़ती है और यही हमारी क्रिएटिविटी उस टाइम एकदम क्या बोलेंगे यू नो मोर और लेस इट्स इन द नील स्टेज. एंड बिकॉज ऑफ दिस इवन व्हेन आई कम इनटू रियल लाइफ सिचुएशंस आई वर्क इन दैट सेम मोड कि आप मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, सिचुएशन मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं.
1: मुझे आदत इतनी हो चुकी है, आई एम नॉट इवन रेडी, यू नो.
0: यस, आई एम नॉट क्रिएटिव. जो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मैं सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखकर, एक नया दृष्टिकोण देकर, एक नए तरह से रोल प्ले करूँ.
1: नहीं, वो तैयार ही नहीं होता. इनफैक्ट यू नो कितनी बार देखा गया है हम, इनफैक्ट अगर अपने अनुभव से भी देखें, मूवी हॉल से निकलते हैं हम पूरे उस मूवी के इन्फ्लुएंस में इतने ज़्यादा होते हैं और कितनी देर तक रहता है वो इन्फ्लुएंस. हम कुछ भी डिसीजन लेने के उसमें नहीं, उस स्थिति में नहीं होते. सीरियल से बाहर निकलते हैं या मैच देखते हुए कभी बाहर, जब फिनिश होता है मैच, कितनी देर तक हमारे ऊपर वो पूरा. और हम
0: ये हो गया ना किसी चीज ने हम पर. सेम थिंग इज हैपनिंग विद वीडियो गेम्स, सेम थिंग हैपेंस विद इंटरनेट. आप इंटरनेट पर बैठे हैं, आपको टाइम की अवेयरनेस नहीं रहेगी. कुछ आपके पास हो रहा है उसके मतलब इतने घंटों के बाद सडनली आप देखेंगे तो क्या हुआ, उतनी देर उस चीज ने आपको पूरी तरह से हावी कर लिया. ड्रग्स क्या करता है?
1: वो तो खैर फिजिकली हमने
0: देखा. सेम थिंग इज हैपनिंग. व्हाई इज दिस एन एडिक्शन? ड्रग्स क्या कर रहा है? हमें रियलिटी से परे लेके जा रहा है. ये चीजें क्या कर रही है हमें? मैं, मेरा मूड ठीक नहीं है आज, ऑफिस में कुछ हुआ, कोई ऊपर नीचे बात हुई है, मेरे मन पर चल रही है, मैं आकर टीवी ऑन कर दिया. वो टीवी पर जो चल रहा है उसने मुझे रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर दिया. मैं अपना स्ट्रेस भूल गई, ऑफिस की बात भूल गई, जितनी देर मैं वो देख रही थी मेरा माइंड और इंटेलेक्ट पूरी तरह से.
1: आई यूज्ड टू डू इट अर्लियर, यू नो, स्टार्ट अ नॉवल. आई यूज्ड टू रीड अ नॉवल. जैसे कोई प्रॉब्लम आई, रीड अ नॉवल, यू नो, आप ड्रिफ्ट हो गए.
0: yes.
1: फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम
0: प्रॉब्लम सॉल्व होगी. तो लेकिन जितनी देर आपने वो स्टिम्युलेंट लिया है आप उस दर्द से फ्री है. That's why we go for stimulants. कि मुझे और कोई तरीका नहीं पता ना अपने स्ट्रेस को खत्म करने का, अपने वो जो चिंता है मेरे मन पे उसको खत्म करने का. I don't have a way. So I need something जो मेरे मन और बुद्धि को उस सिचुएशन से, which is on my mind, उससे वो परे कर दे. So a 3-hour movie is a good thing. 3 घंटे वो बात मेरे मन पर नहीं आती.
1: हाँ.
0: और वो दूसरी चीज मुझ पर हावी कर जाती है. एंड देन वी से दिस इज एंटरटेनमेंट. हम इसको एंटरटेनमेंट कहते हैं. क्यों एंटरटेनमेंट? क्योंकि 3 घंटे
1: मैं कुछ नहीं क्रिएट कर रहा,
0: मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मुझे कोई स्ट्रेस. लेकिन वी डोंट अंडरस्टैंड दैट आफ्टर 3 आवर्स
1: अगेन दैट द होल थिंग विल कम बैक. एंड देन उसके बाद मेरी अपनी क्रिएटिविटी और डल हो गई.
0: क्रिएटिविटी डल हो गई क्योंकि वो इमोशंस ने आपके ऊपर हावी हो गए. जैसे ड्रग्स के लिए हमें मालूम है कि ड्रग्स डैमेजिंग है, वो हमें नंब कर देता है थोड़ी देर के लिए, एकदम यू नो हमारी अपनी क्रिएटिविटी खत्म. सेम इज विद एनी ऑफ दीज थिंग्स. इट्स ओनली यू नो वी डोंट कम टू नो बिकॉज द लेवल इज प्रोबेबली नॉट दैट मच. तो कोई भी चीज़ हम अपनी परिस्थिति को भूलने के लिए जिस चीज़ की तरफ हम जाते हैं, हम सोचते हैं इससे मुझे खुशी मिलेगी. एक्चुअली उससे खुशी नहीं मिल रही है, वो सिर्फ थोड़ी देर मेरे माइंड और इंटेलेक्ट को ओवर पावर कर रहा है. अब होगा क्या, बार बार करने से वो चीज़ धीरे धीरे मेरी आदत बनती जाएगी. एंड देन इट्स अ डिपेंडेंसी. वो मेरी क्रेविंग बन जाएगी कि उसके बिना आई एम नॉट एबल टू फील गुड.
1: आई स्टार्ट लुकिंग फॉर इट, यू नो, लाइक जैसे वो अस्थमा में जब अटैक पड़ता है तो आपको वो चाहिए होता है.
0: एब्सोल्युटली. लोग आज टेलीविजन सीरियल से अडिक्ट हो गए हैं. मतलब अगर एक दिन उनका वो सीरियल मिस हो गया या कुछ हो गया तो दे विल बी सो डिस्टर्ब. नाउ दिस इज एंटरटेनमेंट. हम एंटरटेनमेंट के लिए वो देख रहे हैं लेकिन आज हम उस पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि एक दिन नहीं देख पाए तो कहेंगे हमें अनइजी लग रहा है या मुझे तो देखना ही है. मैच आ रहा है. यू हैव टू सी हाउ पीपल बिकम. नाउ दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज हमने लगा कि ये चीज़ें हमें खुशी देती हैं. अब ये क्रेविंग बन गई, आदत बन गई और स्टिम्युलेंट का धीरे धीरे क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद आपको वही लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन क्रिएट करने के लिए, जो आज सपोज मैं 15 मिनट वीडियो गेम खेला तो मुझे एक हाई क्रिएट होता है ना वो अंदर, लेकिन वो 15 मिनट नहीं रहेगा
1: लेकिन फिर हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा और देर तक
0: yes, तो फिर उसकी जैसे ड्रग की डोजेज एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद आपको वो ड्रग उतने अमाउंट में असर नहीं करता, फिर आप ड्रग की डोजेज को बढ़ाते जाते हैं ताकि आपको वो सेम हाई फीलिंग आए. सेम विल बी एप्लीकेबल टू एनी स्टिम्युलेंट, किसी भी स्टिम्युलेंट के साथ आपको टाइम टू टाइम वो स्टिम्युलेंट की मात्रा बढ़ानी पड़ती है. आज आप 15 मिनट देख रहे हैं, कल आप एक घंटा देखेंगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा दो घंटे बीत जाएंगे, बिकॉज फिर आपको वो सेटिस्फैक्शन कम अमाउंट में नहीं मिलती है. सो द एडिक्शन जस्ट गोज ऑन बिल्डिंग अप. नाउ इट्स ओके एज फार एज द एडिक्शन इज देयर. अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये एडिक्शंस, ये हैबिट्स कहीं ना कहीं मेरे थॉट्स पर इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं, क्योंकि हैबिट है, अब मुझे ये चाहिए. अगर मुझे नहीं मिला तो क्या होगा, अगर ये ख़त्म हो गया तो क्या होगा, अगर किसी ने मुझे ये नहीं दिया तो क्या होगा. तो समवेयर
1: इनसिक्योरिटी,
0: डिफरेंट थॉट पैटर्न्स, वो एक एडिक्शन को लेके मेरे डिफरेंट थॉट पैटर्न्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं. तो वो स्टिम्युलेंट जो बाहर से आ रहा था वॉज सपोज टू गिव मी अ गुड फीलिंग, वो सेंसेशन तो आ रही है, वो गुड फीलिंग सेंसेशन वाली तो क्रिएट कर रही है, लेकिन उसकी जो मेरी डिपेंडेंसी बन गई है वो मेरे अंदर अब कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया है. लेट्स से सिंपल थिंग लाइक मनी. मनी एक डिपेंडेंसी है कि मुझे धन चाहिए क्योंकि धन से खुशी मिलती है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आई थॉट इट्स कमिंग लाइक दिस. अब फियर, मेरे पैसे को कुछ तो नहीं हो जाएगा, आगे ये बिजनेस करूँगा ये चलेगा तो नहीं चलेगा,
1: पैसा आएगा कि नहीं आएगा,
0: ये मेरे पैसे के रास्ते में रुके हुए हैं, इनकी वजह से मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स ऑफ एंगर, स्ट्रेस,
1: फ्रस्ट्रेशन,
0: ईगो, फ्रस्ट्रेशन, फियर, ऑल बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी कि कहीं मेरा ये स्टिम्युलेंट कम ना हो जाए, क्योंकि ये स्टिम्युलेंट मेरी खुशी है. तो अब क्या हुआ, वो स्टिम्युलेंट को पाने के लिए या उसको मेंटेन करके रखने के लिए मैंने इस प्रकार की थॉट्स क्रिएट करना शुरू किया. टेंशन, टेंशन किस बात की होती है, आज किसी को भी पूछो टेंशन किस बात की, फियर ये होगा या नहीं होगा, ठीक से होगा या नहीं होगा, ऑल रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू बिजनेस,
1: रिलेटेड टू रिलेशनशिप,
0: रिलेटेड टू रिलेशनशिप. रिलेशनशिप बहुत बड़ा एडिक्शन है,
1: बहुत एडिक्शन है, हाँ, वेरी ट्रू,
0: यस, रिलेशनशिप इज एन एडिक्शन, यस, अनलेस आई टॉक टू यू आई डू नॉट फील गुड, दिस इज एन एडिक्शन. ये स्टिम्युलेंट है ना, ये भी तो स्टिम्युलेंट है, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगेगा, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगेगा,
1: आपसे बात नहीं हुई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
0: आज मेरा दिन अच्छा नहीं बीता,
1: मेरा सारा दिन खराब हो गया.
0: से अगेन डिपेंडेंसी. तो कहीं ना कहीं अगर मेरी आप पर डिपेंडेंसी हो जाए इन अ रिलेशनशिप तो मेरी थॉट्स कैसे हो जाएंगे. कहीं मैंने आपको किसी और से ज्यादा बात करते हुए देख लिया, पोजेसिवनेस. कहीं आप मुझे मिले नहीं कुछ दिन, एंगर, सो मेनी थिंग्स.
1: बट वी आर ऑल एक्चुअली स्टक, हम किसी न किसी एडिक्शन में आज हम फंसे हुए हैं, और तभी तो फियर है.
0: तो तब बट वो सारी एडिक्शंस का मूल कारण क्या, मैं शरीर हूँ, आई एम द बॉडी, सो आई नीड दीज स्टिम्युलेंस खुश रहने के लिए, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ें ही खुशी देती हैं. Everyone just needs to prepare कि क्या क्या खुशी देता है, और आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, और वो सारी लिस्ट कहाँ है, यहाँ. तो समवेयर इस लिस्ट के कारण जो मैंने ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने शुरू हुए, जैसे ये थॉट्स क्रिएट हुए इनका फर्स्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ा,
1: मुझ पर
0: और फिर इस शरीर के ऊपर. अब मैंने एक एक थॉट, आज मेडिकल साइंस भी हमें ये बताती है कि थॉट्स वाइब्रेशंस हैं, तो जो वाइब्रेशंस, जो थॉट्स हम क्रिएट करते, पहले हमारे शरीर के एक एक अंग पर उसका असर पड़ता है. एंड दैट्स व्हाई टुडे द डॉक्टर सेज दैट द डिजीज इज साइकोसोमैटिक. आपकी कोई भी बीमारी लेकर आप डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कहेंगे मेजोरिटी बीमारियाँ आज साइकोसोमैटिक हैं, साइकी से कनेक्टेड हैं, कि आपकी थिंकिंग की क्वालिटी राइट नहीं है, तो इस वजह से आपको ये बीमारी हो गई. तो था सारा किस चीज़ के लिए, फॉर द हेल्थ एंड द हैप्पीनेस ऑफ द बॉडी. लेकिन उस थॉट के साथ चले कि मैं शरीर हूँ, ये चाहिए ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फियर क्रिएट हुआ और वो फियर ने इस शरीर को बीमार कर दिया.
1: ओह माय गॉड, लाइक इफ यू लुक एट इट, सारे जो मेरे स्टिमुलेंट्स थे जो मुझे हैप्पीनेस सपोजिटली दे रहे थे, कुछ कुछ देर के लिए ही, चाहे शॉपिंग दे रही थी, चाहे टीवी दे रहा था, चाहे चैटिंग दे रही थी, उनके ना मिलने का फियर ने मुझे बीमार करना शुरू कर दिया. एक्चुअली अगर हम देखें,
0: इट इज हैपनिंग दैट उनके ना मिलने का फियर, उनके ना मिलने की टेंशन, किसी और को उनका जिम्मेदार पकड़ करके इनकी वजह से नहीं मिल रहा गुस्सा, तो ये सारी जो हमने थॉट्स क्रिएट की उन्होंने इस शरीर को बीमार कर दिया. अब जिस समय हमें ये समझ में आता कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, एक रियलाइजेशन, एक ट्रुथ पता चलने से पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है. एंड नाउ द फोकस बिकम्स आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई डू नॉट नीड इट फ्रॉम आउटसाइड. फीलिंग्स जो क्रिएट करनी है दे आर नॉट हियर, दीज आर सेंसेशंस. सेंसेशन और फीलिंग में अंतर होना चाहिए. टुडे टच इज अ वेरी बिग सेंसेशन एंड हम कहते हैं उससे आई फील वेरी गुड. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फीलिंग गुड इज नॉट हियर.
1: थेरेपीज,
0: यस,
1: see we are
0: yes it's okay at see again at which level are we. Our primary level par aap stimulant ko le rahe hain, lekin stimulant aapki thought process par kya effect kar raha, that to we'll have to understand. Sirf stimulant lete rahenge lekin idhar work nahi karenge to aap sirf addicted ho jayenge itni sari cheezon mein. And addiction can never be positive energy kyunki addiction डिपेंडेंसी है. डिपेंडेंसी हमेशा फियर क्रिएट करेगी. जिस दिन मैं किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो गई, आई हैव स्टार्टेड माय फियर. एंड जैसे ही फियर स्टार्ट हुआ, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्टेड, इट विल अफेक्ट द बॉडी और वो कोई ना कोई बीमारी का रूप ले लेगी. तो इसलिए जिस समय समझ में आया कि मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, I am a soul, I am consciousness, I am a being. And most important, I am the creator of thoughts and feelings.
1: Actually, this is, you know, like I can create my own happiness.
0: Yeah, most important.
1: Again, yes, because ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मुझे happiness के लिए ही मैं ढूंढ रहा हूँ.
0: And जब ये perspective ही shift हो जाता, कि happiness ढूंढनी नहीं है, शांति ढूंढनी नहीं है, मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा, मैं हूँ ही आनंद स्वरूप आत्मा, तो पूरा फोकस क्या हुआ. अब क्या होगा, आपकी जो डिपेंडेंसी है या जो क्रेविंग है वो ऐसे नहीं कि एक दिन में चली जाएगी, क्योंकि इट्स अ हैबिट, यू नो, विच हैज़ बीन फॉर्म्ड मैनी मैनी ईयर्स. लेकिन जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, हम अपने थॉट पैटर्न को चेंज कर रहे हैं. दैट्स वाई वी आर गोइंग लाइक दिस. हैबिट जो बनी थी वो ऐसे बनी थी, हमारी क्रेविंग बाहर से आई, लेकिन बार बार करने के बाद वो हैबिट बन गई. अब हम इस थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे तो हैबिट अपने आप टूट जाएगी.
1: बट आई डोंट नीड दिस टू फील हैप्पी.
0: आई डोंट इवन नीड टू से दैट. अगेन इट्स अ नेगेटिव थॉट. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल मायसेल्फ आई एम अ हैप्पी सोल ऑलरेडी. एंड नाउ रिपीटेडली, अगेन इट्स अ रेपिटेशन ऑफ थॉट इन द कॉन्शियसनेस. बार बार अब इसको हैबिट बनाना है. जो थॉट हम बार बार क्रिएट करते हैं वो हमारी आदत बन रही है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन रहा है. तो व्हेन आई क्रिएट दिस थॉट इन मेडिटेशन एवरी डे, एंड हर रोज उस कॉन्शियसनेस के साथ हम जीवन की यात्रा में चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, याद रखेंगे आई एम अ पावरफुल सोल, आई डोंट नीड दिस पर्सन टू फील गुड, टू फील हैप्पी, आई कैन गिव हैप्पीनेस, आई कैन गिव गुडनेस. तो जब मुझे ये अवेयरनेस आ जाएगी तो मेरा थिंकिंग पैटर्न में परिवर्तन आ जाएगा. सी, परमात्मा आकर क्या करता है, ही हिट्स एट द रूट. सो ही सेज चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, एवरीथिंग एल्स विल ऑटोमेटिकली चेंज. मुझे ये आदत छोड़नी है, ये आदत, डजंट नीड टू वर्क लाइक दैट.
1: सी, आई डोंट रीड नॉवेल्स एनीमोर,
0: बट यू डिडंट हैव टू डू इट. सी, या दैट इज द वे.
1: आई वाज एडिक्टेड टू नॉवेल्स. लाइक किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती थी, आई यूज्ड टू पिक अप अ नॉवल एंड विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर मैं वो किताब पढ़ लेती थी और वो प्रॉब्लम आगे चली जाती थी. बट इन लाइक वन लास्ट वन एंड अ हाफ ईयर्स माई सिस्टर वॉज आस्किंग मी, मैंने एक भी नॉवल नहीं पढ़ा, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी.
0: लेकिन आपको कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं होगा कि एक्चुअली ये आदत छूट गई है. यू नो, वो आदत छोड़नी नहीं पड़ती है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो आदत कब छूट जाती है, क्योंकि डिपेंडेंसी छूट गई. डिपेंडेंसी क्यों छूट गई, क्योंकि यहाँ आत्मा ने राइट थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए. पहले आत्मा क्या थॉट क्रिएट कर रही थी, ये करूँगी तो खुशी मिलेगी, तो करो। करते करते वो आदत बनी। अब आत्मा ने थॉट क्रिएट किया, मैं हूँ ही आनंद स्वरूप आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। नाउ व्हेन आई स्टार्ट क्रिएटिंग दीज थॉट्स, व्हाट आर द वाइब्रेशंस? पॉजिटिव, पावरफुल। अब ये वाइब्रेशंस इस पूरे शरीर पे जाएंगे, और ये शरीर जो एक्चुअली नेगेटिव थिंकिंग से बीमार हो रहा था, अब ये राइट थिंकिंग से, पावरफुल थिंकिंग से ठीक होता जाएगा। तो इसलिए एक जो रियलिटी है वो नहीं पता होने के कारण हम एक्चुअली बीमारी की तरफ जा रहे थे,
1: क्योंकि मेजॉरिटी में जो है वो जो एक जो नहीं था, जो गैप था, वो फिल हो जाएगा
0: और रियलिटी पता चल जाएगी। एंड देन वी आर एबल टू वर्क विद आवर बॉडी, क्योंकि ये नहीं है कि हम शरीर को इग्नोर करेंगे। हमारा शरीर ये हमारा रथ है, दिस इज आवर चैरियट, इट्स वेरी वैल्यूएबल, बट इसकी वेलबींग मेरे हाथ में है। जब तक मैं आत्मा राइट थॉट्स नहीं क्रिएट करती, आई विल नॉट बी एबल टू हैव अ हेल्दी बॉडी। सो स्टिमुलेंट्स वर टेकिंग मी टुवर्ड्स अडिक्शन, एंड अडिक्शन ऑफ एनी काइंड विल क्रिएट फियर, एंड फियर विल क्रिएट डिजीज। तो स्टिमुलेंट से हमें आदत बनी, क्रेविंग बनी, उससे डर क्रिएट हुआ, उससे बीमारी आ गई। स्टिमुलेंट्स की आदत खत्म हो गई क्योंकि आत्मा ने राइट थॉट क्रिएट किया, राइट एनर्जी क्रिएट की, शरीर धीरे धीरे हेल्दी होने लग गया। एंड दैट्स व्हेन आई एम एबल टू यूज माय फिजिकल रिसोर्सेज इन द राइट चैनल।
1: वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। आज जो पूरी हमने बातचीत की, और जिन आदतों को या जिन स्टिमुलेंट्स को हम ये मानने लगे थे कि वन, दे आर द नीड ऑफ माय लाइफ, यू नो, मैं उनके बिना नहीं जी सकता, दूसरा वही मुझे खुशी दे रहे हैं, आई नीड देम टू फील हैप्पी, कहीं ना कहीं उस पूरे थॉट प्रोसेस, उस मकड़ जाल से हम बाहर निकल सकते हैं। यू नो, समवेयर वो जो एडिक्शन का एक पूरा विशेष सर्कल है जो हमें खुद रियलाइज ही नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच। ओम शांति,
0: ओम शांति।
1: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है जो आज की इस बातचीत से जुड़ा हो, पूरी श्रृंखला से जुड़ा हो, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-666, 0983-555-0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरे श्रृंखला में बहुत सी बातें जो नई हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट करके देखें, और जिन स्टिमुलेंट्स की आज हमने बात की है वो ज़रा देखने की कोशिश तो करें, अवेयर तो हों कि हम किन किन बातों को स्टिमुलेंट्स मान रहे हैं, और फिर उन पर काम करें। तो आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, आपसे विदा लेते हैं।
2: ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम भूल जाओ गम। जी हाँ साथियों, सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है, तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम लोग सोमवार को वापस ड्यूटी पर ज्वाइन कर लेते हैं तो सारी थकान जो है रिफ्रेश हो गई होती है। छुट्टी का माहौल होता है संडे को, और संडे के बाद फिर से मंडे से हम जो है एक नई ऊर्जा के साथ अपने कारोबार में लग जाते हैं। तो आशा करूंगा कि अभी आप संडे का जो है खुशी के साथ आप मंडे की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अभी भी अपने आप को रिफ्रेश नहीं कर पाए तो थोड़ा सा उठिए और जो है हाथ पैरों को मोमेंट दीजिए और नहा लीजिए, और साथ ही साथ गर्मा गर्म चाय नाश्ते के साथ आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूं मैं आज के इस दिन विशेष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपको। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बोलता हूँ जताना से, कैसे हो सर
0: जी?
1: हेलो जी, हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: है, काम कर रहे हैं, बारिश अभी रुक गई है, दो तीन चार दिन तो बहुत बारिश आई इधर।
0: जी जी सुना हमने, हाँ हाँ,
1: आज रुक गई है तो अच्छा है माहौल थोड़ा सा। तो देखते हैं तो बारिश में तो लोग इतने भीग जाते हैं, कहीं जाना आना हो तो रुक जाते हैं, नहीं जाते हैं। थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है तो सभी लोग आज आ रहे हैं, वरना तो घर से बाहर निकलना भी नहीं था। सोमवार है, हफ्ते की शुरुआत है, आज का दिन की शुभकामनाएं सभी को, भोले बाबा की कृपा बनी रहे हमारे सभी मित्र और आपको, पर हमारे रेडियो मधुबन के सभी परिवार को भी हमारा तरफ से नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: हमारे बुरीलाल जी है, हमारे बुरा राम जी को भी हमारा राम राम है, क्योंकि बुरीलाल बुरा राम हमारे कभी राम राम करना कभी नहीं छूटते, हर रोज सबको राम राम की अच्छा एक फील कर लेते हैं, सुबह सुबह में सबको अच्छा खुश कर देते हैं, हमारे बुरीलाल जी भी खुश कर देते हैं सबको।
0: जी जी जी जी,
1: तो बताऊँ तो आज पुलिस दिन भी है, क्योंकि हमारे जो कई सारे जवान, मैं बताऊँ सर तो अहमदाबाद में इतनी बारिश आई थी, लोग कहीं कहीं फंसे थे, तो हमारे पुलिस कर्मी ने खड्डे पर बिठा के महिलाओं को भी उस पर लगा दिया, कई कई जगह से फंस गए तो उसको भी सबको उठा के अच्छी जगह पर ले गए, कई सारी मदद की है हमारे पुलिस जवानों ने अहमदाबाद में, और लोगों को भी और लोगों ने भी की है, लेकिन पुलिस जवानों ने बहुत मदद की है इस बार, क्योंकि सभी घरों में पानी घुस गया था, क्या करें, सभी इतने परेशान थे, पीने का पानी भी नहीं था,
0: और है बराबर
1: अभी भी ऐसा हाल है, क्योंकि इस सारी सोसाइटी में पानी घुस गया है, तो ठीक होते होते 15 दिन हो जाएगा। क्योंकि कादर कीचड़ बहुत जो आता है बाहर से, गटरों का पानी बाहर आता है तो गंदगी ज्यादा हो जाती है सर
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: लोगों को घरों को साफ करने में बहुत दिक्कत आती है, तो चलो अच्छा है साहब, अच्छा हो जाए कि परमात्मा से कम पता करें, सब कुछ ठीक हो जाए। तो सोमवार है तो बस मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा हो जाएगा ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ठीक है सर
0: जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुना है रिमाल वन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और चलिए सुबह सुरेश जी से काफ़ी अच्छी बातें हुई, और उन्होंने पूरा जो है गुजरात का जो बाढ़ चल रहा है उसके बारे में बताया, और आज बारिश रुक गई है तो लोग थोड़ा सा जो है आवक जावक करने में लगे हुए हैं, वरना तो घर से या फिर कहीं से भी रुक गए हैं तो वहाँ से बाहर निकलना ही मुश्किल था। और आइए, आज सोमवार का दिन है तो हफ्ते की शिव मेरी पूजा है ना, ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी को सुनाते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, उसके बाद फिर हम लोग बातें करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के खूबसूरत भजन सुनते हैं तो आनंद ही आनंद बरसने लगता है। तो आइए इस आनंद को और बढ़ा देते हैं। हमारे बीच विशेष कुमार जी हैं तो उनसे बातें कर लेते हैं अभी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए और बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। और आज के हमारे खास मेहमान, आज के इस प्रोग्राम के विशेष मेहमान मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस कुमार जी, जो विशेष हीलिंग थेरेपिस्ट हैं और साथ ही साथ जो है सिंगर भी रहे हैं और अभी जो है राजयोगा प्रैक्टिस को करते हैं। और बहुत सारे लोगों की समस्याएं रहती हैं, शारीरिक रहती है, मानसिक रहती हैं, उन सभी चीज़ों को सुनकर उनको ठीक ढंग से प्रैक्टिस बताना और उनको ठीक करना, ये अभी आप कर रहे हैं। तो आइए, आज हम लोग ऐसे ही जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि समस्याएं इतना ज़्यादा क्यों मेरे ही पास आ रहे हैं। ये सवाल हमारे मन में हमेशा रहता है कि क्या ईश्वर मेरे साथ है या नहीं, या समस्याएँ मुझे घेर के रखा हुआ है। तो ऐसे में हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या किया जाए। तो आइए इन्हीं चीजों पर आज विचार करेंगे। तो आप सभी की तरफ से यश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: मुझे भी बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के, और इस जो टॉपिक आज हमने लिया है
0: जी,
1: तो इसके ऊपर चर्चा करने में मुझे भी अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि सुनने वाले दर्शकों को भी इससे काफ़ी कुछ लाभ होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल यश कुमार जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने एक बड़ा सुंदर जो है जनरल टॉपिक ले लिया, जो सबके मानस पटल पर ये बात रहती है, तो उन्हें जवाब नहीं मिलता कि मेरे पास ही समस्याएं क्यों आती हैं।
1: रमेश जी, देखिए मेडिकल में मुझे 4 डिग्रियाँ हैं और मेडिकल की पढ़ाई करते हुए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आए
0: जी
1: कि उन सब्जेक्ट्स को आम तौर पे दुनिया इतना तवज्जो नहीं देती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत उस पर इंटरेस्ट लगा और मैंने बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। जैसे कर्म फिलॉसफी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है। तो बेसिकली मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कॉस्मोलॉजी में, यानी साइको न्यूरोबिक में। तो एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर और शुरू से लेकर के मैंने सिर्फ क्रिटिकल केस ही हैंडल किए हैं और ये सभी केसेस हैंडल करते हुए एक केस हिस्ट्री हमें डेवलप करनी होती है। ये शुरुआत से लेकर के हमारी पहली प्रैक्टिस यही, मतलब जब ये हम इंटर्नशिप कर रहे थे तो हमें यही सिखाया गया था कि आप पहले केस का हिस्ट्री जो है उसको पहले समझो। तो केस हिस्ट्री समझने के लिए, यानी एक सिम्टोमेटिक तरीका अलग होता है कि भाई सर दर्द हो रहा है, ठीक है गोली ले लेना, नहीं लेकिन वो सर दर्द हो क्यों रहा है उसके डिटेल में जाना। तो कर्म फिलॉसफी के अनुसार ये बहुत ही रेयर बात है जो मैं अभी बोलने के लिए जा रहा हूँ
0: जी,
1: कि जब भी 5 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली 5 तरह के प्रॉब्लम हैं, शायद और भी कुछ हो सकते हैं लेकिन हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारी केस हिस्ट्री बनाने के अंदर ये 5 ही प्रॉब्लम सामने आए हैं। एक होता है फिजिकल यानी शारीरिक,
0: बिल्कुल।
1: दूसरा होता है मानसिक यानी मेंटल डिसऑर्डर्स। तीसरा होता है सोशल प्रॉब्लम्स। अब सोशल के अंदर आपके रिलेशनशिप का जो है लिखा जोखा होता है, रिलेशनशिप क्या है उसके ऊपर से होता है, वो फैमिली के अंदर भी हो सकता है या फिर आउट ऑफ द फैमिली उनके रिलेशनशिप जैसे वर्किंग प्लेस में है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। चौथा है व्यावसायिक प्रॉब्लम्स यानी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, और पांचवा जो है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी आर्थिक प्रॉब्लम्स भी लोगों के सामने आते हैं। अब ये 5 प्रॉब्लम्स जो है, हम अगर उसको भगवान ने बनाए हैं या कुदरत ने बनाए हैं, किसी भी तरीके से अगर हम उसको लें, तो ये बेसिकली बने ही हैं हमारे अपने कर्मों के हिसाब के अनुसार, ठीक है। जब कोई बीमारी होती है, ये मुझे तो एकदम स्पष्टीकरण से सिखाया था, एक किताब है, एक राइटर है, उनका नाम है लुइस हे, एक लेडी है लुइस हे उनका नाम है, और उनकी किताब यू कैन हील योर लाइफ, वो किताब हमें ना टेक्स्ट बुक के तौर पे थी मेडिकल की पढ़ाई में। तो उस किताब के अंदर कुछ 30-40 पन्ने ऐसे हैं जिसके अंदर हर एक बीमारी का जो मुख्य कारण है ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण से ये बीमारी हुई है, इसके ऊपर बड़े गहराई से उस किताब के अंदर बहुत ही स्पष्टीकरण से लिखा हुआ है। और जब प्रैक्टिस के अंदर आए तो फिर मुझे इसके ऊपर कुछ खास तौर से ध्यान देना पड़ा, और डायग्नोसिस के समय पर इसका जो है ज़्यादा मुझे स्ट्रेस करना पड़ा कि आखिर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, वो शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, सोशल प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसके पीछे बेसिकली हमारे अपने कर्मों का ही लेखा जोखा होता है, हमारे कर्मों का ही असर होता है। तो अब जो आगे मैं बात कहने जा रहा हूँ तो ये है कि आर वी रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। हमारी तकलीफ जो है नहीं उड़ते हुए ऐसे नहीं आई और हमारे जीवन में नहीं आ गई, ये शरीर में कोई बीमारी आ गई है, दर्द हो रहा है, तो ये बीमारी या दर्द ऐसे उड़ते उड़ते आकर के और शरीर में आकर के हमें तकलीफ नहीं दे रहा है। सबसे पहली चीज बात ये होती है कि क्या हम उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं, और ऐसे अनन्य किस्से हैं संतों के जीवन से रिलेटेड या और भी कई, या किताबों के अंदर, महाभारत के अंदर, रामायण के अंदर, उसमें भी आमतौर पर धारणा ये सुन लेते, ताली बजाते हैं, निकल चले जाते, वो अंदर उतरता नहीं है, इस वजह से उससे फर्क नहीं पड़ता है वो सुनने से। आर वी रिस्पॉन्सिबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। और अगर हम दूसरों पर उसका दोष मढ़ते जाएंगे, यकीन मानिए जिंदगी भर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, ये प्योरली हमारे कर्मों का खाता होता है। मैं एक एक शब्द थोड़ा सा संभल करके बोल रहा हूं ताकि किसी को बुरा ना लग जाए कि हमारे पाप कर्मों का खाता। ठीक है, दो शब्द होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, पहले मुरली में भी आता था पाप कर्म और विकर्म का खाता, और बाबा ये भी उसका सॉल्यूशन देते थे कि तुम्हें योग अग्नि में अपने विकर्म के खाते को भस्म करना है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वो बेसिकली है तो हमारे अपने कर्मों से ही डेवलप हुआ है।
0: जी एस कुमार जी, काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे हमारे कर्म जो है वही हमारे जो है हमें समस्याओं में डालते हैं या समाधान देते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे कर्म प्रदान ये हैं, और इसके लिए आपने बहुत अच्छा सलूशन भी बताया कि पहले हमारे विकर्मों को विनाश करने के लिए ईश्वर को या परमात्मा को याद करना है, जिससे हमारे विकर्मों का दग्ध होगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इससे हमारी समस्याएं सारे जो है न्यूट्रल हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो कई बार एक सामने और बात आ जाती है कि जब जब हम लोग चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई इस समस्या आते हैं तो वो चले जाते हैं किसी न किसी ऐसे तांत्रिक के पास या फिर ऐसे कुछ मंत्र वगैरह के पास, तो वो लोग भी कहते हैं कि भाई आपका जो है आप आ जाओ समस्या लेके और एक सेकंड में आपकी छुट्टी कर देंगे समस्याओं के। तो क्या ये सही है या फिर आपने जो बताया उन चीज़ों पे हमें जाना चाहिए?
1: देखिए बाहर जैसे हमारे पास तो हर तरह की समस्या लेकर के लोग आते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को भी लेकर के आते हैं, तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करते हुए फिर उनके अंदर से पता चलता है कि फिर वो बताते हैं कि भाई हम फलाने जगह गए थे, इस ज्योतिष के पास गए थे, उस तंत्र के पास गए थे, यहाँ वहाँ गए थे, सब जगह। तो हम तो उनको यही कहते हैं कि भाई ये सब दुनिया भर में घूमना, पहले ये चीज़ तो बंद करो और एक जिम्मेवारी लो कि भाई ये क्यों उत्पन्न हुआ, ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आई है। अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो जीवन में बैड पैच आता है, यानी साढ़े साती लगती है, ग्रहों की दशा खराब होती है, वास्तु के दोष लगते हैं, उससे सब है। तो हम बेसिकली ये होता है कि हम एक्सटर्नली उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि कहीं से कुछ हम करके आ जाएं और उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन क्या उससे परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है? अभी समझो किसी ने किसी को बता दिया कि भाई तुम हर शनिचर जाओ और मंदिर में जाके ये करो वो करो, उसके मन में एक तसल्ली आ जाती है कि मैं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता है, वो करते करते करते करते उस प्रॉब्लम को यूज टू हो जाता है और अब जो है प्रॉब्लम की इंटेंसिटी उसको उतनी नहीं लगती है, वो एक समाधान कर लेता है, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि बस ऐसा ही है और मुझे ये करते रहना है। हकीकत वो नहीं होता है। असली में हम जो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जा रहे हैं, या फिर थोड़ा सा और इसके अंदर आए तो बहुत कुछ मटेरियल मार्केट में इतने धड़ल्ले से बिकता है कि ये फलानी चीज़ घर के अंदर टांग लो तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, ये हो गया वो जाए। अब बेसिकली हमारी तकलीफ तो हमारा अपने कर्मों का हिसाब है। अब वो चीज़ जो एक झुंझुना टांग लिया या कुछ आपने घर में लगा लिया, ये कलर कर लो, उससे वो कार्मिक अकाउंट कैसे सॉल्व होगा? वो कार्मिक अकाउंट फिनिश नहीं हो सकता है। ये बहुत बहुत अज्ञानता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये अज्ञानता है। हमें इस अज्ञानता से निकल करके ज्ञान में आना है और फिर जा करके समझ के साथ में सॉल्यूशन को ढूंढना है। और उसके लिए जैसा हमने पहले कहा था, पहली स्टेप यही होती है, टेक द ओनरशिप ऑफ योर प्रॉब्लम, कि भले इस जन्म का हो सकता है या पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब निकल रहा है, तो मुझे पहले उसकी ओनरशिप लेनी है। और क्रिश्चियनिटी में एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं कन्फेशन। तो करंट वो चर्च में जाते हैं, एक जाली की जैसी दीवार होती है, उसके पीछे जो है प्रीस्ट बैठते हैं और इस तरफ में आकर के वो अपनी जो पाप कर्म किया है उसके बारे में वो कन्फेस करते हैं। कन्फेस करते हैं, अब कौन बैठा है इस तरफ वो नहीं पता है और कौन सा प्रीस्ट वो साइड में बैठा है वो भी नहीं, बिशप बैठा है वो भी नहीं पता है। बस वो अपने गलती को, अपने पाप कर्म को स्वीकार करते हैं। वो बहुत अच्छी चीज है। अभी इसमें दो चीज होती है, कन्फेशन अर्थात स्वीकारना कि हाँ हमने किया है, देखो इसमें कितना अहम को तोड़ना पड़ता है। दूसरी चीज एक ओथ लेना पड़ता है कि फिर आगे हम वापस ये गलती नहीं करेंगे। तब जाकर के वो बिशप प्रेयर करके भगवान के सुपुर्द करते हैं और शायद उन्हें फिर उसका हल मिलने लगता है। लेकिन हम यहाँ गलती भी कर मतलब स्वीकार भी कर रहे हैं और गलती भी करते जा रहे हैं, करते जा रहे करते जा रहे, तो सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे पहली चीज़ है कि हम कन्फेस करें, अपने आप से कन्फेस करें, या जिस भी इष्ट को, जिस आप कुल देवी को, किस परमपिता परमात्मा को मानते हैं, तो उनके सामने हमें कन्फेस करना पड़ता है कि हाँ हमसे ये गलतियाँ हुई हैं। और फिर बाद में एक प्रण लेना पड़ता है कि हम आगे फिर कभी इस गलती को नहीं करेंगे। अब जैसा हमने कुछ समय पहले कहा था, एक तो होता है पापकर्म, एक होता है विकर्म। तो पापकर्म अर्थात क्या, कि संस्कारों के प्रभाव में आकर के कुछ गलती हो गई और फिर मन अंदर से बोलता, अरे ये गलत किया हमने, ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, जो कर्म हो गया उसका खाता तो बन गया है। और एक पाप कर्म वो होता है कि जानबूझ करके, प्लानिंग करके कि मैं तो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बदला लेकर के रहूंगा, जो होगा आगे देखा जाएगा। तो विवेक को इस्तेमाल करके जो हम कर्म करते हैं या जो गलत कर्म करते हैं तो उसको विकर्म कहते हैं। तो पहले तो हमें अपने से उसका समझ आना चाहिए कि मैंने ये किया है, क्यों किया है। ठीक है, तो कहने में तो यही आता है कि बदला न लो, बदल कर दिखाओ। ठीक है, जिस किसी ने आपको तकलीफ दे दी है उसने अपना कर्म का खाता बना लिया, उसका तो अपने आप निकलना ही निकलना है। लेकिन यहाँ हमने बदला लेकर के उसको हानि पहुंचा दी, उसको कोई तकलीफ पहुंचा दी, तो उसका भी बना और हमारा भी बना। देन जो कर्म का खाता बन गया, जैसे मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे लेकर के आता हूँ कि कई बारी कोई कुछ मंत्र उच्चारण करने के लिए बोलते हैं, भाई तुम इतनी मालाएं रोज करो, वो भी एक तरह की साधना है, वो भी एक तरीका है जिससे कि जो कर्मों का खाता है, जो पाप कर्म का खाता है, वो डिसॉल्व होना हो सकता है। कितना होता है वो तो इंडिविजुअल तपस्या के ऊपर रहता है। लेकिन मेडिटेशन के अंदर जब स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम योग की अग्नि में कन्फेस करते हुए और ओथ लेते हुए कि फिर कभी ये नहीं करेंगे, तब जाकर के योग की अग्नि में विकर्मों का खाता जो है ये भस्म होने लगता है और तब जाकर के हम डार्कनेस से लाइट की तरफ आने लगते हैं। हमें हल्कापन लगने लगता है क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया करने के अंदर कहीं ना कहीं छुपे रूप से हमारे संस्कारों के अंदर परिवर्तन आने लगता है। हमारे वो कड़े और नेगेटिव संस्कार परिवर्तन होने लगते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारे कर्म करने में, दूसरों के साथ में पेश आने में परिवर्तन आने लगता है, तो हमारे जीवन के अंदर हल्कापन आने लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एस कुमार जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातें, आपकी जो जिस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें हमें क्या करना है वो एक सलूशन आपने दिया है। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप?
1: मैसेज यही देना चाहूंगा कि अच्छे कर्म करो, फायदा नुकसान को न सोचते हुए मुझे ईश्वर की तरफ देख करके ईश्वर को सपुर्द करते हुए अच्छे कर्म करने हैं, अपनी नीयत सही रखनी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है। अगर आप मुझे
2: जी
1: एक मिनट दे सकते तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी मेरी उम्र भी देखो, बहुत जल्दी 10 सितंबर आएगा तो मैं 62 इयर्स का हो जाएगा। इतना साल हमने देखा है, एक समय था जब इंसान ना गलत काम करने से डरता था, बहुत मतलब सत्य मार्ग पे ही चलना चाहता था। आज वैसा समय नहीं रहा है। बूढ़े बूढ़े लोग हो जाते थे, उनके दांत सलामत रहते थे, तो उनकी आईसाइट बढ़िया रहती थी, उनकी याददाश्त बहुत बढ़िया रहती थी। आज आप देखो तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर में भी अल्जाइमर या डेमेंशिया आ चुका है। और पिछले 2 साल से देख रहा हूं कि अल्जाइमरिक डेमेंशिया नाम की बीमारी आ गई है। रोजाना केसेस आ रहे हैं हमारे पास। तो हमने फिर इसके ऊपर से बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, रिसर्च किया कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो मुझे ये आया है, इसका सॉल्यूशन ये निकला, जो अपने कार्य व्यवहार में, वो बिजनेस हो या दूसरा कोई भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा

0: झूठ को इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप उनका मेंटल स्टेटस गिरता है, उनको अल्जाइमर होता है। और जो बहुत ज्यादा फरेब को इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा मोमेंटरी गेन्स के लिए, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए या एक्स्ट्रा बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उन्हें डेमेंशिया होता है। ये प्योरली हमारे कर्मों का ही हिसाब होता है।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, आपने यश कुमार जी को सुना और वर्तमान समय में जो बीमारियां हैं वो हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये सब को मिलाकर बीमारियां हमारे बीच में आती है। तो बीमारियों के भी अलग अलग नाम है और उस नाम से उस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है। डिमेंशिया एक दिमाग की बीमारी है, यानी मन की बीमारी है। ये हमारी कर्मों का ही फल है, जो हम करते हैं उसका हमें दिमाग में ये सारी चीज़ें घुस जाती हैं। तो उसको कैसे स्ट्रगल करें या उसको कैसे रिजॉल्व करें, उसको कैसे टैकल करें, इसके बारे में यश कुमार जी से बातें हो रही थी। आशा करूंगा आप सभी को आज का ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए, अब सीधे मैं चलता हूं आपको लेकर दिल्ली समाचारों की तरफ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
3: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
2: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संद्रिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
3: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
3: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
2: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
3: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
4: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
5: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
2: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा

0: जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमरीका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। रूस और यूक्रेन के बीच कई क्षेत्रों में रात भर हमलों की खबर। तूफान नौल ने दक्षिणी चीन में तबाही मचाई। अचानक आई बाढ़ से 10 लोगों की मौत। फ्रांस में जंगल की आग के कारण नए सिरे से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगभग 2,20,000 निवासी विस्थापित हुए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन

0: ने रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ POK पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच रात भर संघर्ष जारी रहा। आज सुबह रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव पर हमला किया जिससे कई स्थानों पर आग लग गई और 3 नागरिक घायल हो गए। यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में हुए हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि होर लीवका शहर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेना ने रात भर में रूसी इलाके काला सागर और क्रीमिया पर 133 यूक्रेनी ड्रोन के हमलों को विफल किया। कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको ने कहा कि आज सुबह रूसी हमलों से कीव में ऐतिहासिक केंद्र के पास एक इमारत में आग लग गई। उन्होंने कहा कि हमलों के मलबे से दूसरी जगहों पर भी आग लगी जिससे इमारतों, गाड़ियों और पार्किंग क्षेत्र को नुकसान हुआ। भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए, 27 जुलाई की बातें हो रही थी और आज विशेष हमने काफ़ी अच्छी बातें आपसे शेयर किया कि कैसे सुरेश कुमार जी ने बड़ी अच्छी बातें आपको बताई हैं। और इस बीच सुरेश जी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, शायद उन्होंने फ़ोन किया है, तो चाहूँगा कि आप फिर से फ़ोन करके बताइए क्या बताना चाहते थे और आज विशेष जिन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। कल्पना दत्त इनका जन्मदिन है और विशेष उद्धव ठाकरे इनका भी जन्मदिन है और भारती मुखर्जी इनका भी जन्मदिन है, KS चित्रा इनका भी जन्मदिन है। इसके साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस भी आज है। तो आइए बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, और ये RCF के नाम से जाना जाता है। इसका एक शाखा जो है माउंट आबू में भी स्थित है, और ऐसा बताया जाता है केरी पुल मूलत क्राउन रेजिमेंट पुलिस के नाम से 27 जुलाई 1939 को नीमच मध्य प्रदेश में पहला बटालियन के साथ स्थापित किया गया था। आज़ादी के बाद क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस को केरीपुल बल में परिवर्तित कर दिया गया था, और 27 जुलाई तक विशेष महत्व का दिन है जिसे एक प्रत्येक वर्ष इस दिन को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बल की दूसरी बटालियन आज़ादी के बाद तुरंत बनी थी, और तीसरी बटालियन 1956 में बनी थी, और फिर आतंकवाद नक्सलवाद तथा भयावह हालतों का सामना करता है। आज इसकी संख्या एक से बढ़कर 217 बटालियन की हो गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना बल माना गया है। ये बल राज्य सरकारों की आवश्यकता अनुसार उनके प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों के मुताबिक भी कार्य करता है। बल का प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा देश के आंतरिक हिस्सों में असामंजस्य तत्वों से निपटाना आदि भी इसके मुख्य कार्यों में से एक है। तो ये है विशेष केंद्रीय पुलिस बल के बारे में, और आज उनकी स्थापना दिवस है। तो ढेर सारी खुशियां, बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हां, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए एक और सुंदर गीत आपके लिए अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं। और भारती मुखर्जी के बारे में अब बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है। और ये विशेष एक विशेष भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका थी जिन्होंने अमेरिका में कई पुरस्कार जीते थे। उन्होंने प्रवासियों के आंतरिक संस्कृति टकराव पर कई कहानियां लिखी जिनमें से डी मिडिल मैन को अमेरिका का शीर्ष साहित्य अवार्ड मिला। और भारती मुखर्जी द्वारा लिखे गए जैस्मिन उपन्यास को पूरे विश्व में सबसे अधिक गहरा सहारा गया और उसे खरीदा गया। इससे उन्हें समृद्धि के साथ साथ पुरस्कार भी मिले। तो इनके बारे में बात करें तो भारती मुखर्जी का जन्म आज के दिन 27 जुलाई 1940 को भारत में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ। उन्होंने समेत इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और अमेरिका में रचनात्मक लेखन में एडवांस उपाधि ली। वह एक दशक से भी अधिक समय तक कनाडा में रही और बिगड़ते हुए सांस्कृतिक मूल्यों की आधुनिक सच्चाइयों का सामना करते हुए उसकी तस्वीर अपने लेखन में उभरी। भारती मुखर्जी ने पूरी दुनिया में प्रवासियों की आवाज और समस्याओं को पूरे जोर आवाज दी थी। उनके लेखन और पति कार्ल ब्लेस के अनुसार भारती मुखर्जी गाठिया और तनाव से उपजे हृदय रोग से पीड़ित थी। और भारती ने अपना आत्मकथा लिखा जिसमें प्रवासियों की खाता और सहस्त्रवदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उनके अधिकांश उपन्यास और कहानियाँ युवा महिलाओं को पुरुष प्रधान संस्कृति में दर्द के साथ गढ़ा गया है। उनकी कहानियाँ और उपन्यासों में महिला चरित्र अक्सर ये सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ। तो आइए इसके बारे में अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी नेट पे। और उनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। द टाइगर्स डॉटर, दूसरा है वाइफ और डैन डार्कनेस, द होल्ड ऑफ द वर्ल्ड, द होल्डर ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसके बाद आता है डिज़ायरेबल डॉक्टर्स, द ट्री ब्राइड और मिस यू इंडिया। तो ये सारी जो रचनाएं उनकी काफ़ी पॉपुलर रहीं। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं एक और गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हां, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और सुंदर गीत आपके लिए खास। सुनते रहो मुस्कुरा।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना। इसके साथ ही आइए बात करते हैं कल्पना दत्त के बारे में, जिनका जन्मदिन आज है और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली एक महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी सूर्यसेन के दल में अपना नाता जोड़ लिया था और 1933 में कल्पना दत्त पुलिस के मुठभेड़ होने पर गिरफ्तार कर ली गई थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से ही वो जेल से बाहर आ पाई थी। अपने विशेष महत्वपूर्ण योगदान के लिए कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए उनके बारे में विस्तार से बात करते हैं कुछ ही पलों में। कल्पना दत्त का जन्म आज ही के दिन श्रीपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और चटगांव में शुरुआती शिक्षा उन्होंने पूरी की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता गई। उसके बाद क्रांतिकारियों के जीवनी पढ़कर और उनसे प्रभावित होकर वो स्वयं को क्रांतिकारी बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई और 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रगर लूट की घटना होते ही कल्पना दत्त कोलकाता से वापस चटगांव चली गई और क्रांतिकारी सूर्यसेन के दल से संपर्क किया और उसके बाद उसी दल में उन्होंने प्रवेश ले लिया। वो वेश बदलकर इन लोगों को गोला बारूद आदि पहुंचाया करती थी और इस बीच उन्होंने निशाना लगाने का भी अभ्यास कर लिया था और इस तरह से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। और कल्पना जी उनके साथियों के साथ क्रांतिकारियों का जो मुकदमा है उसे सुनाने वाली अदालत के भवन को जेल के भीतर ही उड़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस को सूचना मिल जाने पर इस कारण उनको ये काम करना आया नहीं और पुरुष वेश में घूमती कल्पना दत्त गिरफ्तार कर ली गई और अभियोग सिद्ध न होने पर उन्हें छोड़ भी दिया गया। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, एक और खूबसूरत देशभक्ति का गीत आपको सुनाता हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। 9:40 हो रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप जो रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं उसमें जो भी बातें आपके दिल को स्पर्श करती हैं तो अवश्य हमें बताइएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल्पना दत्त के बारे में बातें हो रही थी, और कल्पना दत्त को हमेशा जो है अपनी गतिविधियों को लेकर बीच बीच में उन्हें जो है जेल की यातनाएं सहनी पड़ती थी, और क्योंकि क्रांतिकारियों के बीच रहना अपने आप में एक चैलेंज ही होता था। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो
1: जी, नमस्कार, वेरी नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार,
1: कैसे हैं आप और आप हमारे सब दोस्त?
0: जी बढ़िया बढ़िया, आप बताओ।
1: कलेजी को नमन करता हूँ। आज के दिन की बहुत खूबसूरत दिन है, भोलेनाथ का, और चावन का इंतजार कर रहे हैं सब और आपको नमस्कार करते हैं, और रेडियो मधुबन को, नवी किरण को, और हमारे रमेश जी को, और हमारे सभी शो को, और बच्चे अभी सुन सकते हैं क्योंकि बारिश है और मौसम पकड़ा था, रेडियो नहीं पकड़ा था है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सुबह से सुना है, नहीं आए नहीं है, कोशिश बहुत की है, मगर कोई बात नहीं। और आपको नमस्कार करते हैं, आज जिनका भी जन्मदिन सभी को नमस्कार करते हैं, और बस आपको थैंक करते हुए आप चलते हैं और कहते हैं कि मुलाकात होगी कि आमने सामने बात होगी, होगा क्या क्या पता क्या खबर, होगा क्या क्या खबर क्या खबर, अंधे का अनजाना मुकुला वो कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा ऐसा होगा, मेरे दिल इस दिल होगा क्या क्या पता क्या खबर, होगा क्या क्या खबर क्या पता। नमस्कार सर, और बस आज हमारे कुछ आप लोग आ रहे हैं, इसलिए हम आमने सामने बात करेंगे और सब अच्छी बात होगी, तो हम सोचते हैं अच्छा ही होगा, क्या होगा अच्छा ही होगा। बस नमस्कार करते हैं आपको, रेडियो मधुबन को, और आज के दिन को, और एक एक चेकिंग को याद करते हुए आपको नमस्कार करते हैं, और जिनका भी जन्मदिन है इनको बहुत बहुत नमन, ओम शांति, और बर्थडे इनको बहुत प्यारा पूरे इनके परिवार को।
0: जी जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। 9:50 हो रहे हैं, और ये थे हमारे मदन जी, जो अपनी भावनाएं, विचार और गीत हम सभी को सुनाते रहते हैं। और कल्पना जी के बारे में बातें हो रही थी, और उनके साथियों ने क्रांतिकारियों का मुकदमा सुनवाने के लिए ये जो है काम किया था, और 1933 में कुछ समय तक पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच शस्त्र बल मुकाबला होने के बाद कल्पना दत्त भी वापस गिरफ्तार हुई। मुकदमा चला और 1934 में सूर्य सिंह तथा तारकेश्वर दस्तीकर को फांसी की, और 21 वर्ष की कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा हो गई। 1937 में जब पहली बार प्रदेशों में भारतीय मंत्रिमंडल बने, तब गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि इनके विशेष प्रयासों से कल्पना जी को जेल से बाहर ला सके, और अपनी पढ़ाई पूरी की उन्होंने। बाद में वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई, और 1943 में उनका कम्युनिस्ट नेता पूरन चंद्र जोशी से विवाह हो गया और कल्पना जोशी बन गई। बाद में कल्पना बंगाल से दिल्ली आ गई और इंडो सोवियत संस्कृत सोसाइटी में काम करने लगी। सितंबर 1979 को कल्पना जोशी को पुणे में वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें कल्पना दत्त के बारे में। आप सुन रहे हैं रिमोट 107.8 FM। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को ले चलते हैं एक और सुंदर गीत जो आपके दिल को

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 27 जुलाई को जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं। 1913 में कल्पना दत्त का जन्म हुआ, जो आजादी के संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। 1940 में भारती मुखर्जी का जन्म हुआ, जो भारतीय मूल की बहुत ही पॉपुलर लेखिका थी, जिन्होंने अमेरिका में कई पुरस्कार जीते थे। 1960 में आज के दिन उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ, जो भारतीय राजनीतिक तथा महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री हैं। 1963 में KS चित्रा का जन्म हुआ, जो भारत की बहुत ही पॉपुलर गायिका रही। 1967 में आज के दिन आसिफ बसरा, इनका जन्म हुआ, जो भारतीय सिने अभिनेता और टीवी कलाकार थे। और 1983 में आज के दिन सीमा पुनिया का जन्म हुआ, जो भारतीय महिला चक्का फेंक डिस्क थ्रोअर एथलेटिक रही है। तो चलिए, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

शुभ मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुरा।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा।

खम्मा गणिसा, बढ़ाए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर अपच की समस्या है तो क्या करेंगे, सोचिए जरा। हम तो उपाय देंगे ही, लेकिन आप भी जरा सोचिए। और जी हाँ, आज सिखाने वाली हूँ सलाद, परंतु कौन सा वाला वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और स्पोर्ट्स का जीवन में कितना महत्व है, और हमारी बहनों को बेटियों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इस तरह के हम खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे एक विशेष जो एक बिटिया आई है उसके साथ, और आप सभी भी जुड़ेंगे, ठीक है। और आज की पहेली तो बड़ी शानदार है, पहेली पूछने वाली हूँ, ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ। बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। इस सृष्टि रंगमंच पर सदियों से पुरुष अर्थात आत्मा प्रकृति का खेल चला आ रहा है। प्रकृति से हमारा तात्पर्य पांच तत्वों जल वायु आकाश अग्नि और धरती से है। अनंत काल से प्रकृति हमारी पालना करती आ रही है, परंतु हमने कभी रुककर मां प्रकृति को धन्यवाद भी नहीं किया है ना। यूं तो भक्ति में हम पांचों तत्वों का पूजन वंदन करके मतलब प्रकृति का मान रखते हैं। सदियों से हम इस तरह पूजा और वंदन करते हुए उनका मान रखते आए हैं, परंतु निश्चिन प्राकृतिक आपदाओं से आहत होते मनुष्य का मन अब प्रकृति का उतना मान नहीं रख पा रहा है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुरते होठ, कितनी ठंड है कह करके प्रकृति के प्रति असंतुष्टता जताते हैं। कभी तपती धूप में पिघलते हौसले प्रकृति को बदनाम कर जाते। कभी बारिश में हुए कीचड़ से प्रकृति कुरूप नजर आती। मतलब कि चाहे मौसम कोई भी हो, खुले दिल से प्रकृति के प्रति अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन प्रत्येक जन करता ही है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का कोई दोष नहीं है। जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके आसपास की प्रकृति होती है। प्रत्येक के घर का वातावरण आबोहवा एक दूसरे से भिन्न होती है। मंदिर के पवित्र वातावरण और किसी कत्लखाने के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क होता है। है तो वही पांचों तत्व सभी जगह एक ही, फिर भी वहां रहने वाले मनुष्यों के मन का प्रभाव प्रकृति पर पड़ने से यह अंतर दिखाई देता है। जापान के वैज्ञानिक इमोटो ने पानी पर किए गए प्रयोग से ये बात सिद्ध की थी कि किस तरह मानव मन में उत्पन्न विचारों का प्रभाव पानी पर गहरा पड़ता है। ऐसे ही बहुत समय पहले लूथर बर्बेंक नामक वैज्ञानिक ने कैक्टस से बात कर करके एक बिना कांटों वाला कैक्टस उगाया था। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पौधों को यदि हल्का क्लासिकल संगीत सुनाया जाए तो पौधों पर सकारात्मक परिणाम देखने में आते हैं। इन सब बातों से हम ये तो समझ ही रहे हैं कि किस तरह ये प्रकृति मनुष्यों के संकल्पों और क्रियाकलापों से प्रभावित होती है। जिस तरह राजा के महल की वस्तुएं और एक गरीब की झोपड़ी में मौजूद वस्तुओं में फर्क दिखता है ना, ऐसे ही एक सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति और नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के रहने के स्थान का वातावरण

सकारात्मक रहना है और सकारात्मक वाइब्रेशन हमें फैलाना है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे अपच पर। भाई देखिए, गर्मी के मौसम में अपच की समस्या बढ़ जाती है। अपच या खाना न पचने पर खाद्य प्रणाली के अंगों में दर्द होने लगता है, गैस भरती है जिसमें भारीपन, बेचैनी, जी मिचलाना, बमन वगैरह वगैरह चलता रहता है। अग्निमांद, अपच, अजीर्ण, बदहजमी सभी का अर्थ एक ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि खाने का नहीं पचना, जो भोजन हम कर रहे उसका नहीं पचना। तो बदहजमी में क्या होता है, दस्ते भी लग सकती है या फिर गैस, वमन ये होने की शक्यता रहती है। तो बदहजमी के दस्तों को संग्रणी भी कहते हैं। तो अपच की समस्या है तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय दे रही हूँ, इसको आप आजमा करके अपने अपच की समस्या पर निजात पा सकते हैं। देखिए, हींग, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन सब आप समान मात्रा में लीजिए, ठीक है। और सब को समान मात्रा में लेकर के इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। फिर एक चम्मच तीन बार पूरे दिन में गर्म पानी से फाकी लेना है, सुबह, दिन में और रात को। सुबह उठने के बाद एक बार ले लीजिए आप नन्हे कोटे, फिर दिन में ले लीजिए कि भोजन के डेढ़ दो घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, फिर आप रात को सोने से पहले ले लीजिए। तो ये जो अपच की समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्या क्या लेनी है फिर से दोहरा रही हूँ। हींग लीजिएगा, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन समान मात्रा में लेनी है सभी, ठीक है। जैसे एक एक छोटा चम्मच ले रहे तो सभी एक एक छोटा चम्मच लीजिएगा, फिर इन सभी को पीसिएगा, पाउडर बना दीजिएगा और इसके तीन बार फाकी लेनी है दिन में, पूरे दिन में। तो फाकी लेकर के नौ सेका पानी आपको पीना है, इससे अपच की समस्या ठीक हो जाएगी। और भी सुनेंगे आप अगला उपाय। एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट पानी से फाकी लीजिएगा। खाली एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन ले लीजिए और उसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूखे पेट आप वही सुबह सुबह नन्हे कोटे आप इसकी फाकी लेकर के नव सेका पानी आप पी लीजिएगा, इससे भी अपच की समस्या ठीक होगी। अगर ये नहीं कर सकते तो और भी सुनेंगे आप सुंदर सा उपाय, कि 25 नीम की पत्ती, 3 लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीस करके थोड़ा पानी और शक्कर मिला करके सुबह शाम रोज आप 3 दिन पीजिए। 3 दिन में ही आपको आराम महसूस होगा। 25 नीम की पत्ती, 3 ले लीजिए लौंग, 3 काली मिर्च, इन सबको पीसिए और इसमें थोड़ा सा शक्कर और पानी मिला करके गट गट गट गट गट पी जाइए, ठीक है। ऐसा आपको 3 दिन तक लगातार करना है सुबह और शाम, तो अपच की समस्या में राहत मिलेगी। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि खाना नहीं पचता है, बदहजमी हो जाए तो एक दिन केवल पानी पीकर ही रहे, अन्य कुछ भी नहीं खाना है। कब्ज रहे तो फिर आप भोजन के साथ घुट घुट पानी पीते रहिए, ठीक है। सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना जरूरी है। तो अगर संग्रहणी है, बदहजमी है, तो उस दिन आप कुछ मत लीजिए, खाना मत खाइए, पूरे दिन आप ऐसे ही उपवास करिएगा, बीच में घुट घुट पानी पी लीजिएगा, ठीक है। तो आपके वापिस हाजमा सिस्टम, मतलब उसका लेवल आ जाएगा, बैलेंस बन जाएगा वापिस, ये जो अपच की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और लास्ट उपाय यही है कि कब्ज रहता है तो भोजन के साथ घुट घुट पानी पीजिए और सुबह उठते ही एक गिलास पानी तो हमेशा पीना ही है। तो ये हुए उपाय आज के सुंदर से नुस्खे। और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली ध्यान से सुनिएगा और सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, बहुत ही सरल पहेली है, आराम से आप जवाब दीजिएगा। चार

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू, हलचल में तो मिट जाए। क्या चीज है? पहली बहुत ही सुंदर और सरल है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम व्यंजन तो जरूर सिखाएंगे, परंतु क्या बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत ही सरल आपको पहेली पूछी है, फिर भी सोचिए, कोई बात नहीं, सोचने का अवसर तो मिलना ही चाहिए, समय तो आपको मिलना ही चाहिए, और आप सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा। आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ, चार एक

फट जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारूं, हलचल में मिट जाए। बहुत ही सरल है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। ये चीज नहीं है तो जीवन नहीं है। अब आप सोचिए, मैंने बहुत ही अच्छा हिंट दे दिया आपको, ठीक है? अब तो आपके लिए सरल हो चुकी है पहेली, तो जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और अब पधारिए आशियाना के किचन में, आज बना देते हैं सलाद। परंतु कौन सा वाला? केरी और दाल का। वैसे तो सलाद हर मौसम में खाना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में तो ऐसी चीजें खाने की ज्यादा इच्छा होती है ना? रोटी के ऐसा लगता है रोटी बहुत कम खाए, कुछ फल फ्रूट, जैसे फल फ्रूट में भी पानी वाले फल फ्रूट, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, आम तो भाई वैसे ही गर्मी का सीजन का राजा ही है ये तो, सब फलों का। तो इस तरह की चीजें खाने की ज्यादा इच्छा रहती है। तो सामग्री आप लेंगे, पेन और डायरी तैयार है ना? बिल्कुल लिख लीजिएगा। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी आप लीजिएगा 1/2 कप, मतलब कद्दूकस किया हुआ, ठीक है? और तेल ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, कड़ी पत्ता लीजिए 5-6, नमक और चीनी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा हल्दी पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्च का पेस्ट लेना है आपको 1 छोटा चम्मच, और राई, हींग, जीरा तड़का के लिए ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। हरा धनिया अपने स्वाद के अनुसार, मतलब आवश्यकता के अनुसार लीजिए, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। तो ये सलाद की सामग्री हो चुकी है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। देखिए, सलाद भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। वैसे आप कच्चा भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन दाल के साथ आप कैसे खाएंगे? तो आपको एक अलग ही प्रकार का सलाद सिखा रही हूँ। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी कद्दूकस की हुई 1/2 कप ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच क्या लेना है? तेल 5-6 लीजिएगा, कड़ी पत्ते, नमक, हल्दी पाउडर, चीनी, ये सब अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर हरी मिर्च की पेस्ट लेनी है 1 छोटा चम्मच, राई, हींग, जीरा तड़का लगाने के लिए लेना है थोड़ा थोड़ा सा आवश्यकता के अनुसार, हरा धनिया भी अपने आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। आइए अब केरी और दाल का सलाद कैसे बनाएंगे, विधि आपको बता रही हूँ। चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दीजिए, ठीक है? फिर पानी निकाल करके बिना पानी दरदरा पीस लीजिए। तेल में राई, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल करके तड़का लगाइए। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल में डाल दीजिए। अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और गैस तुरंत बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर सलाद सर्व करिए, पिरसिए। तो ये बन गए केरी दाल का सलाद। फिर से दोहरा रही हूँ विधि। देखिए, इसको भी आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक बार तो विधि यही दोहराऊंगी, फिर इसकी दूसरी विधि भी आपको बताऊंगी। आप क्या करेंगे, चने की दाल जो हमने ली है ना, इसका 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर पानी निकाल दीजिए 4 घंटे के बाद, और इसको दरदरा ऐसे ही पीसिए, पानी नहीं रखना है, ठीक है? फिर आप तेल रखिए कढ़ाई में, और तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई, जीरे का तड़का लगाइए, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए, और तड़का लगाना है। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल डाल दीजिए, ठीक है? अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर आप सलाद पिरस सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि आप चने की दाल को 4 घंटा के लिए पानी में तो आपको भिगोना ही है, ठीक है? तो फिर आप दाल की मात्रा थोड़ी सी कम कर लीजिए, और भिगो दिया 4-5 घंटे के बाद पानी निकाल दीजिए, और इसी दाल में आप कैरी कद्दूकस करके डालिएगा। फिर इसी में आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, जीरा पाउडर डालना है, और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ठीक है? तो ये सब डाल करके आप कच्चा ही खाइएगा तो भी स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है? अब आपको जिस तरह खाना हो खाइए, मैंने आपको विधि बता दी है। भले आप इस तरह छोक लगा कर खाइए, भले आप कच्चा खाइए। तो ये बन गया केरी दाल का सलाद। अब मैं आपको एक और सलाद सिखाऊंगी, परंतु कौन सा वाला, वो तो आप ब्रेक के बाद ही जान पाएंगे।
तो आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ये पहेली का जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। अब हम सुनेंगे यहीं पर एक प्यारा सा गीत, उसके बाद पुनः आपसे मिलेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आप सभी आशियाना की किचन में हो और आशियाना की किचन में बना रहे थे केरी और दाल का सलाद। ठीक है, अब मैं दूसरा भी आपको सलाद ही सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई सलाद का नंबर लिया है तो मैं आपको पूरा ही सिखा देती हूँ। इच्छा हो ऐसा सलाद बना करके खाइएगा, लेकिन गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा और इस तरह पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइएगा। सलाद में जो हम चीज़ें डालते हैं उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा ककड़ी है, हरा धनिया है, पालक है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं आपको मिक्स सब्जी का सलाद अब सिखाने जा रही हूँ, परंतु आप जानते हो परंतु मैंने क्यों बोला है, पहेली फिर से सुना रही हूँ इसलिए बोला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि पहेली क्या है। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हलचल होते ही फिर हम स्वयं के फोटो को नहीं देख सकते, स्वयं के चेहरे को, स्वयं को नहीं निहार सकते, बाकी आराम से हम निहार सकते हैं। अब मैंने इतना हिंट दे दिया हो, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं। अब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। और अब मिक्स सब्जी का आपको सलाद सिखा रही हूँ, इसके लिए आप सामग्री लीजिएगा। पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, ठीक है, एक कप ले लीजिए, भले आप कद्दूकस करके एक कप ले लीजिएगा। पालक ले लीजिए बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक छोटी लेनी है आपको, ठीक है, टमाटर एक लेना है, अंकुरित मूंग आधा कप ले लीजिए, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है, चीनी अगर पसंद है तो लीजिएगा, स्वाद के अनुसार नहीं हो तो कोई बात नहीं मत लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा नमक अपने स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर भी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और नारियल कसा हुआ लीजिएगा दो छोटा चम्मच। यही सामग्री है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पत्ता गोभी कद्दूकस की हुई लीजिएगा एक कप, फिर पालक ले लीजिएगा, मतलब ये सब धुलाई करके ही आपको लेना है, ठीक है, पालक लीजिएगा बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक लेनी है, उसके भी गोल स्लाइस कर लीजिएगा छोटी वाली ककड़ी, फिर टमाटर भी एक लेना है, इसको भी आप बारीक उतर लीजिएगा, और ककड़ी को भी आप स्लाइस मत करिए, इसको भी कुतरिएगा, क्योंकि हम स्लाइस वाला सलाद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा अंकुरित मूंग ले लीजिएगा, नमक काली मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है और नारियल कद्दूकस किया हुआ दो छोटे चम्मच लीजिएगा। अब मैं आपको मिक्स सब्जियों का सलाद कैसे बनाया जाता है सिखा रही हूँ। सामग्री सारी इकट्ठी कर ली, अब इन सभी सामग्री और अंकुरित मूंग को सभी को मिक्स कर देना है और एक जार में डाल करके अच्छी तरह इसको मिला लेना है। इसके बाद नींबू का रस, चीनी, काली मिर्च पाउडर और नमक मिला दीजिए, इसमें नारियल मिला करके सब मिक्स करके आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गया, इसको हम एनर्जी सलाद भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें एनर्जी की है, तो एनर्जी से भरी हुई। तो क्या करेंगे, जो भी हमने सलाद किया, जो सब्जियां सवार के रख रखी है, जैसे कि पत्ता गोभी, ककड़ी, पालक, टमाटर, ये सब आप मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें ही आप मूंग भी, जो अंकुरित मूंग लिए है, इनको भी मिक्स कर दीजिएगा और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च भी डाल दीजिएगा और नींबू का रस भी निचोड़ करके सबको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप जब प्लेट में रखते हैं ना सलाद, तब ये कद्दूकस किया हुआ नारियल ऊपर से डालिएगा, तो एक डेकोरेट लगेगा और सलाद को देखते ही इच्छा होगी कि अरे भाई ये स्पेशल सलाद है, ये तो मैं जरूर खाऊंगी, ऐसी इच्छा हो जाएगी।
तो भोजन के पहले एक प्लेट सलाद खा करके फिर आप भोजन करें, ताकि क्या है कि रोटी कम खाएंगे और ये सब्जियां ज़्यादा खाएंगे तो एनर्जी बनी रहेगी। आप सुबह भी खा सकते हैं, जैसे नाश्ता नहीं करके सलाद खा सकते हो। अब आपकी इच्छा पर छोड़ा कि आप कब खाते हो, ठीक है। तो आइए, दोनों ही प्रकार के सलाद बन चुके हैं, लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप दो प्लेट में दोनों ही सलाद रखिए, फिर जो भी सब्जी चपाती जो भी बनाई है वो भी रखिएगा। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित, मेहमानों सहित आनंद लीजिएगा। कौन कौन से सलाद का? केरी और दाल का और मिक्स सब्जी वाला, दोनों ही सलाद का आनंद लीजिए। और फिर आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चार

ऐसी क्या चीज है जो शांत रहने पर हम आराम से निहार सकते हैं स्वयं को उसमें, और जब हलचल होती है तो मिट जाता है सब कुछ। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आप सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः हम आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: ओए रुक, ओए रुक रुक, कोई सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो आप, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और विशेष करके स्पोर्ट्स पर बहनों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, खुल करके बहनें सामने नहीं आ पाती है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे सामने बैठी है सेजल। सेजल गोस्वामी आबू रोड की रहने वाली है, और 10th क्लास अभी एग्जाम दिया है 10th का, और 11th में आई है। तो सेजल को स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, तो सेजल से तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन आप भी जरूर जुड़िएगा। आपको तो आप जानते ही हो कि भाई खुशनुमा जीवन में आपका खुलकर स्वागत है, और आज की पहली भी बहुत ही सुंदर है जिसको दोहरा रही हूँ। बीच में भी आप फोन कॉल्स करके पहली का जवाब दे सकते हो। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो शांत रहने पर स्वयं को देख सकते और हलचल में ये मिट जाती है? जवाब देने के लिए और खुशनुमा जीवन में जुड़ने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और खुशनुमा जीवन में भी आप अपने बात रख सकते हो, प्रश्न का इस पहेली का जवाब भी दे सकते हो। आइए सेजल से मिलते हैं। सेजल आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। सेजल आपको स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलती है?
3: जैसे कि रनिंग है, कबड्डी है, मतलब और भी कई खेल है।
2: जी जी, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़ चुके हैं। हेलो
4: हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते कमलेश बहन।
4: हाँ नमस्कार जी, थोड़ा कसरत की है
2: जी
4: खेलने के लिए
2: जी।
4: तो उसमें मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा कि भाई समुंदर समुंदर ही होता है,
2: अच्छा।
4: बहुत ज्यादा आवाज आती है, शांति से देखे तो मजा आता है।
2: अच्छा
4: हेलो।
2: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं।
4: हाँ जी।
2: अच्छा
4: आज का मेले का उत्तर है मैडम जी समुंदर।
2: अच्छा ठीक है,
4: क्योंकि देखने के लिए अपन शांति से देख सकते
2: हैं,
4: हलचल रहती है, आवाज होती है पानी की बहुत, तो शांति से देखे तो उसमें निहारने में मजा आता है।
2: अच्छा
4: ठीक है मैडम।
2: और कमलेश बहन आप जुड़ ही चुके हैं रेडियो मधुबन से, तो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक है?
4: इसका मैडम
2: आपने कभी कभी स्कूल में आपने जैसे कि अपने कंपटीशन होता है ना 100 मीटर की दौड़,
4: हाँ जी
2: 500 मीटर की दौड़, दो टांग रेस, फिर कभी कबड्डी खो खो, इस तरह के गेम आपने खेले?
4: हाँ जी मैडम जी खेले थे।
2: तो आपको कैसा लगता है इस तरह का गेम खेलना?
4: बहुत मजा आता है, आनंद आता है बहुत, इससे बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, शरीर भी अच्छा रहता है।
2: जी जी जी,
4: बहुत मजा आता है
2: जी। तो ये कम हमारी बहनें थोड़ा कम खेलती है, आप क्या कहना चाहेंगे?
4: ये तो मैडम सबको खेलना चाहिए, ये तो अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, ये भी एक योगा है।
2: बहुत सुंदर, परंतु है ना जो माता पिता ज्यादा परमिशन नहीं देते बच्चों को, वो माता पिता की नजर में क्या होता है, अरे उछल कूद नहीं करना है, शांति से रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप क्या कहेंगे?
4: नहीं मैडम जी, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई जैसा ही है।
2: बहुत ही अच्छी बात है कि ये भी पढ़ाई अपनी जगह है और गेम्स अपनी जगह है।
4: हाँ सही बात है मैडम
2: जी,
4: ये भी जीवन में बहुत जरूरी है।
2: बहुत सुंदर, तो ठीक है कमलेश बहन, और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कभी आप किस में भाग लेते थे, कौन से गेम आप खेलते थे?
4: मैं तो मैडम जी बास्केटबॉल में खेलती थी, खो खो में खेलती थी।
2: क्या बात है।
4: हाँ कबड्डी कबड्डी सब में भाग लेती थी, जीतती थी मैं तो हर बार।
2: अरे वाह, तभी आप फिट एंड फाइन है।
4: घर वाले घर नहीं परमिशन नहीं देते, साथ ही तक ही पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी
2: जी,
4: पर जब तक पढ़ी तब तक मजे लिए हमने खूब।
2: बहुत अच्छी बात है, खुलकर जीवन जीना चाहिए। और स्टूडेंट लाइफ तो बात ही क्या कहना है, गोल्डन लाइफ है।
4: तो वो तो इसमें तो किसी को मानती नहीं थी, खेलने के लिए भागती थी।
2: बहुत
4: और शौक नहीं था मैडम जी, और कोई शौक नहीं था मुझे, एक तो खाना बनाना, नई नई चीजें सीखना
2: जी,
4: और ये खेलना कूदना, गाने गाना।
2: बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो ये भी किसी से कम नहीं है, आप वैरायटी खाना बनाकर परिवार वालों को खिलाओ, वैसे ही वो खुश रहेंगे कि अरे वाह क्या भोजन मिला है। इंसान काम करता है 24 घंटे, लेकिन खाना अच्छा मिल जाता है तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है,
4: सब खत्म हो जाता है, शांति हो जाती है, आत्मा को तृप्ति हो जाती है।
2: जी जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने बात की है।
4: थैंक यू
2: जी। तो सेजल आप क्या कहेंगे गेम्स के बारे में, जैसे आपको रुचि है, आप टूर्नामेंट में भी जाते हैं?
3: एक बार गए थे।
2: अच्छा, फिर क्या रिजल्ट रहा?
3: मतलब आगे जाने, मतलब फर्स्ट आए थे।
2: फर्स्ट आए, कौन सी क्लास में आप गए थे टूर्नामेंट में?
3: छोटे ही थे उस समय तो, मतलब होंगे 6th 7th में।
2: अच्छा, और कौन सा गेम खेला था आपने?
3: बैडमिंटन में।
2: अच्छा, अरे वाह। कौन से गांव आप गए थे टूर्नामेंट में?
3: अनादरा।
2: अनादरा, और वहां से जीत के आए। उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ?
3: उसके बाद स्कूल की तरफ से कभी लेके तो गए नहीं।
2: हेलो
5: हेलो, हाँ नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई दानेरा।
2: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
5: बस अच्छे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
2: जी जी जी। सेजल हम आपसे बात जरूर करेंगे, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं तो इनसे बात करेंगे। अच्छा सुरेश भाई, स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे?
5: बट जीवन जी। में दीदी, इंसान के लिए, खास करके यंगस्टर इंसान के लिए स्पोर्ट का बहुत महत्व है, चाहे कुछ भी स्पोर्ट खेले। और अभी जो आपने बात भी बताई कि लड़कियां जो बहुत, अब तो ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी आगे आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत कम, जैसे ही बड़ी होती है तो शादी कर दी जाती है, और गांव की ये चीजें रीति रिवाज है। और मैं पहले की बात बताऊं तो लड़कियां लगभग 5 साल से ऐसी खेल खेलते, जो 5 पत्थर के लेते, वो नाम भी पता नहीं, वो खेलते किसी को भी।
2: सितोलिया?
5: अरे हाँ, वही नहीं जीतने देती, या रस्सी कूद में, ऐसे बहुत सी ऐसे खेल है, वो बचपन में बहुत हमने भी खेले हैं।
2: जी क्या बात तो, है। जी
5: जी, तो सभी को, माँ बाप को बस ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी लड़की को अगर स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में रुचि है तो जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वहीं पर रोक दिया ना जाए, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा।
2: जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है।
5: और जी, और जो आपकी पहेली है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से आईना होना चाहिए, आईना।
2: अच्छा,
5: तो कांच बोलते हैं हम। हाँ
2: ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, आपके प्रश्न का जवाब जरूर हम देंगे, पहेली का जवाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। तो सेजल आपकी ओर बढ़ते हैं हम फिर से। आपने बताया कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, और किस किस में रुचि है, और क्या आप ही खेलते हो या आपके क्लास के लगभग सभी बच्चियां खेलती हैं?
3: सारी बच्चियां खेलती हैं।
2: अच्छा, तो जैसे आप एक बार टूर्नामेंट में गए, दूसरी बार नहीं गए फिर?
3: दूसरी बार स्कूल की तरफ से लेके नहीं गए कभी।
2: अच्छा, जीत करके आए फिर भी?
3: जीत करके आए, फिर स्कूल वालों ने नाम तो लिखवाए थे, पर कोरोना आ गया था बीच में, इसलिए वो मना हो गया।
2: अच्छा, तो अब कोरोना तो हट गया है, अब फिर से आप बच्चियां मिल करके सर से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं?
3: बीच में हुआ था तो, मतलब बॉयज का था, अब भाई गर्ल्स का नहीं था।
2: अच्छा जी जी जी। तो बहुत सारे देखते हैं हम गांवों में क्या है, माता पिता, जैसे सुरेश भाई भी बता रहे थे कि गांवों में माता पिता थोड़ा अलाउ नहीं करते बच्चियों का, बच्चों को तो परमिशन दे देते लेकिन बेटियों को परमिशन नहीं देते, क्या कारण है?
3: उनके तरफ से रीति रिवाज होगा शायद कोई, कि मना करना, पर मना नहीं करना चाहिए इस पे, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
2: जी जी,
3: गांव की हो या शहर की हो, कोई ना कोई खेल खेलने देना चाहिए
2: जी जी। तो सेजल आपको तो घर से मना नहीं करते?
3: नहीं, मुझे पूरी छूट है।
2: चलिए अच्छी बात है, तो यहीं पर अब हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं, खुशनुमा जीवन में अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसको भी स्पोर्ट्स का शौक है, जो खेलते हैं वो भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे श्रोता बंधु का जाते जाते फोन उठा देते हैं। हेलो
6: हेलो, ओम शांति।
2: हाँ जी नमस्ते, ओम शांति मंजू जी, कैसे हो आप?
6: बस बढ़िया है।
2: बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुश रहिए।
6: बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
2: जी जी आप भी कुछ कहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में? आपको शौक रहा है, कभी आपने भी गेम्स खेले?
6: बिल्कुल, इतने मतलब खेलते थे, खेल बैठे घर पे, अंदर बाहर मैदान में, अब तो याद ही नहीं है। मतलब हर प्रकार के जो गेम होते थे सब खेले थे बच्चे थे तब।
2: जी जी जी।
6: और मेरे को कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता था। हम स्टूडेंट लाइफ में टीचर के साथ भी खेलते थे, फिर घर पे छुट्टियां होती थी तब भी खेलते थे, और भैया वगैरह ये क्रिकेट खेलते थे तो कभी कभी हमें भी बॉल फेंकने का मौका मिलता।
2: अच्छा, बॉलिंग करते थे आप?
6: दोनों ही,
2: बैटिंग और बॉलिंग।
6: हाँ, बहुत अच्छा लगता था।
2: जी,
6: उनको
2: जी,
6: भी
2: जी।
6: अच्छा लगता था, हमको भी। लेकिन आजकल है ना, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई है खेल, मतलब खेल के मैदान में हर जगह अव्वल रहती है लड़कियां, और खेलना भी चाहिए। हमारा मानसिक और शारीरिक विकास ये मतलब खेल से बहुत ज्यादा बढ़ता है, और खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है, और दिमाग के घोड़े तो ये खेल में ही दौड़ते हैं।
2: जी
6: बिल्कुल, इतना मतलब हर खेल में दिमाग का ही उपयोग होता है सबसे ज्यादा तो।
2: जी,
6: और दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी भी मजबूत रहती है।
2: बहुत सुंदर। तो मंजू जी, गांवों में अभी भी माता पिता थोड़े बेटियों को परमिशन नहीं देते हैं, आप क्या कहेंगे?
6: देते भी है, कम लोग हैं जो नहीं देते हैं। आजकल तो मतलब ऐसा कोई परिवार भी नहीं है हमारे आसपास देखें तो लड़की स्कूल पढ़ाई नहीं कर रही है या किसी खेल में भाग नहीं ले रही है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या खेल कूद का हो, हर प्रकार के प्रोग्राम में जाती भी है और अव्वल भी रहती है। कबड्डी तक ऐसे खेल, खो खो है।
2: जी चले, बहुत अच्छी बात है, गेम्स में आगे बढ़ना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परमिशन सभी को मिलनी चाहिए।
6: दस साल में तो बहुत परिवर्तन हो गया।
2: जी जी जी जी। और आज के पहेली का जवाब देंगे?
6: पहेली का जवाब पानी हो सकता है मैडम जी, और क्या।
2: अच्छा ठीक है, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपके जवाब जरूर सुनाएंगे।
6: बावड़ी तो आपने बोल दिया, पानी है।
2: ठीक है, तो देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, वो आप सुनिएगा कार्यक्रम। ठीक है,
6: कोई बात नहीं, ये भी एक दिमाग की प्रैक्टिस है।
2: जी शुक्रिया,
6: धन्यवाद।
2: हाँ जी, तो आइए यहीं पर हम भी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही। चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं, मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं। हेलो
1: हेलो शमन जी।
0: हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस नमस्कार नमस्कार बहन जी, दुकान पे एक काम करते हैं
0: जी, जी
1: लड़का खेती का काम पूरा हो गया, उस लड़का काम करना पड़ेगा क्योंकि आस पास आदिवासी भाइयों का जो लग्न की चीजें दे देने पड़ेंगे, तो सुबह शाम काम चलता है, दोपहर तो गर्मी बहुत पड़ती है
0: जी,
1: तो रेस्ट भी करना
0: जी जी बिल्कुल, और सुबह सुबह हो जाता है वो हो जाता है, फिर गर्मी तो है ही है।
1: हाँ सुबह में उसके बैठ जाना पड़ता है ना, उसके पूजा पाठ करके आ जाते हैं दुकान पे
0: जी जी जी। तो कंचन भाई स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी कभी खेल कूद किया करते थे?
1: हाँ जी बहन जी, स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो देखो हमारे यहाँ स्कूल थी तो व्यायाम का पीरियड रहता, व्यायाम पहले तो क्या था टीचर किए हुए व्यायाम टीचर होते थे
0: जी,
1: तो 4 से 5 बजे घंटे हमें मैदान में ले जाते थे और कबड्डी है खो खो है ऊंची कूद है ये सब हमें करवाते थे
0: जी,
1: ठीक है तो जी। हम भी भाग लेते थे और हमारे यहाँ आस पास आदिवासी एरिया है तो बहनों ज्यादा करके कई जिला पहुंचे थे पढ़ते थे, बाला बैग बच्ची बैग ये सब बहने भी और धनुष सिर काम था
0: जी,
1: ऐसा ये भी मैंने भाग लेती थी, अब तो ये बंद हो गया है बहन जी, ये सब है ना व्यायाम का कोई ये ही बंद हो गया पीरियड और कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है
0: तो समय के साथ विकास होना चाहिए उसकी जगह बंद हो गया।
1: हाँ बंद हो गया और जिसने देखो सीपीएड बीपीएड ये सब किया है ना जिसने
0: जी,
1: वो अभी घर पे बैठे हैं, वो भर्ती या होती ही नहीं।
0: अच्छा
1: क्या करे यार
0: जी जी जी जी,
1: तो वहाँ से शुरू होता था हमारे हमारी बात करे तो ये तो सब अब तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये सब कंप्यूटर ये सब आ गया है तो छूट गया है इस
0: जी जी जी।
1: है
0: और कंचन भाई आज की पहेली का जवाब देंगे?
1: पहेली क्या है
0: जी? पहेली है 4 खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। कोई बात नहीं
1: तो
0: सोचिएगा जी, आप सोच के फिर से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है?
1: हाँ जी
0: हाँ जी, शुक्रिया। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, सेजल हमारे साथ बैठे हुए हैं। सेजल आपके यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बाहर ले जाना बंद कर दिया कोरोना के बाद है ना, टूर्नामेंट्स में अभी तक नहीं हुआ है लड़कियों के। अच्छा तो आपके स्कूल में होते हैं?
2: हाँ।
0: अच्छा और ग्रुप वाइज होते हैं या क्लासेस टूर्नामेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं?
2: ग्रुप वाइज होते हैं।
0: ग्रुप वाइज होते हैं तो उसमें आप भाग लेते?
2: हाँ।
0: अच्छा कितने गेम्स आप खेल सकते हैं?
2: बैडमिंटन, बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हैं।
0: नहीं जैसे एक स्टूडेंट को कितने गेम्स खेलने की छूट है टूर्नामेंट में कंपटीशन में?
2: 3 3 गेम्स।
0: तो आप कौन कौन सा खेलती हो?
2: बैडमिंटन 2 पैर और रस्सी कूद।
0: अच्छा तो सभी बच्चे 3 3 गेम्स खेलते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार?
2: अपनी इच्छा के अनुसार।
0: अच्छा बाहर लेके जाते हैं टूर्नामेंट में तो वहाँ पर कितने गेम्स खेले जाते हैं?
2: उधर तो किस तरीके से तुम्हें कौन से गेम से लेके जा रहे हो उस तरीके के गेम खेलाए जाते हैं।
0: अच्छा।
2: एक गेम के ऊपर
0: एक गेम ही होता है। तो गेम्स खेलने के फायदे क्या है, स्पोर्ट्स में जो हम भाग लेते हैं उससे क्या फायदा मिलता है?
2: गेम्स खेलने के बहुत फायदे हैं,
0: जैसे कि
2: उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारे अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। मोटे लोग भी गेम खेलते हैं
0: जी,
2: तो जिनकी वजह से उनके जो बॉडी है ना वो फिट रहती है
0: जी। बहुत सुंदर बात कही सेजल कि गेम्स के बहुत सारे फायदे हैं, एनर्जी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, जो मोटे लोग हैं ना वो भी गेम्स अगर खेलते हैं तो उनका भी मोटापा कंट्रोल में आ जाता है, फिट एंड फाइन हो जाते हैं और एनर्जी और एक्टिवनेस बढ़ती है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप पढ़ाई में कैसे हैं?
2: पढ़ाई में मीडियम है।
0: अच्छा, तो आगे कोई लक्ष्य बनाया आपने?
2: हाँ, ब्यूटिशियन का है।
0: अच्छा, क्यों गेम्स में आपको रुचि और ब्यूटिशियन बनना, दोनों ही अलग अलग हो गए फील्ड?
2: गेम्स में है, पर गेम्स में जाते हैं ना आगे, कभी कभार खेलते हैं, मतलब गेम्स के अंदर स्कूल से लेके जाते हैं।
0: जी जी जी,
2: आगे बड़े होके।
0: और ब्यूटिशियन तो अपना सेल्फ रहता है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल से आगे नहीं ले जा सकेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ब्यूटिशियन पर अपना सेल्फ है, सेल्फ डिसीजन है, जब चाहे तब खोल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सीखना पड़ेगा?
2: सीखना पड़ेगा, मतलब एक साल का कोर्स होता है इसका।
0: अच्छा,
2: अहमदाबाद से, कोई भी बड़ी सिटी होती है से।
0: अच्छा, फिर कहीं पर भी आप खोल सकते हो?
2: हाँ, आप कंपनी से भी जुड़ सकते हो, किसी कंपनी से जुड़ के भी आपको हो सकता है।
0: अच्छा, अपना अपना शौक है, अच्छी बात है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है। तो सेजल, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई है कि स्पोर्ट्स में आपको किस तरह रुचि है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी के सामने रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
3: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी ला।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा विचार भी दिया तो नुस्खे भी अपच पर दिए। जरूर ध्यान दीजिएगा, रेसिपी में आपको जो सलाद बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर थी, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जवाब भी आप जो आपने सुनाया है वो मैं अभी बताऊंगी। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। ये आज की पहेली थी, जिसका जवाब दिया है कमलेश बहन माउंट आबू ढूंढई से। उन्होंने कहा है कि समुद्र पहले आत्मा का फिर बाद में समुद्र कहा है, लेकिन ये गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से, उन्होंने पर्यावरण कहा है, ये गलत है। कुपराम जी कोजरा से, सबसे पहले इनका जवाब सही है, परंतु क्या है वो मैं बाद में सुनाऊंगी। सुरेश भाई थानेराव से, आपने कहा आईना, ये गलत है। मंजू जी बाड़मेर से, आपका भी जवाब सही है जो मैं बहुत ही शीघ्र सुनाने वाली हूँ। सुरेश भाई झोटाना से, आपका भी जवाब गलत है, उन्होंने भी आईना ही कहा है।

किशन भाई मंडाली से, आपने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब दिया है कुपाराम जी और मंजू जी बाड़मेर से, पानी। तो ये जवाब सही है, ढेर सारी ताली आप दोनों के लिए। और देखिए आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है सभी ने, इसके लिए आप सभी के लिए भी ढेर सारी ताली। देखिए आपने कांच वगैरह कहा, आईना कहा, वो ठीक है, लेकिन पहली बहुत ही सुंदर थी कि चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए। अब किससे हिलोरा खा रही है? पानी से खा रही है ना। और शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। शांत पानी में आप देखिएगा आपका चेहरा साफ दिखाई देगा, आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, लेकिन एक कंकड़ भी अगर पानी में गिर गया तो फिर आप अपने आप को निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, हलचल हो जाती है ना उसमें, आपका फोटो फिर चारों तरफ फैल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए पानी जवाब सही है। आज का मीठा मोती है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हंस हंस मारे छक्का। गेम्स के ऊपर ही है। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो दिल में पड़ी दरार, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, बने मूर्ति ऐसे वे तो फूल के हो गए कुप्पा, करी गुदगुदी मुन्नी ने तब हंस हंस मारे छक्का। इधर उधर का दोनों दौड़े, इधर उधर को दोनों दौड़े, हंस हंस देके कक्का, कोई किसी के हाथ न आए, हो रही धक्कम धक्का, हो रही धक्कम धक्का, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूठ गए तो

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: से।
1: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: जब प्राण तन से।
1: नमस्कार सभी को, आपका अपना सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, जो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम हिंसा को नौ में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा को रोकने में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। जहां लोग शिक्षित होंगे वहां समझदार होंगे, समझदार होंगे तो स्वाभाविक है वहां किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। शिक्षा से समझ मिलती है और जहां समझ है वहां फिर हिंसा की गुंजाइश नहीं रहती है। अक्सर हम देखते हैं कि घरों में किस तरह हिंसा होती है, महिलाओं के साथ तो कहीं कहीं पर पुरुषों के साथ भी होती है, लेकिन अक्सर हम महिलाओं के बारे में सुनते हैं कि महिलाओं के साथ हिंसा ज्यादा होती है। उसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि बेटों को तो फिर भी पढ़ाना चाहेंगे माता पिता, लेकिन बेटियों को पढ़ाने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि माता पिता की सोच होती है कि बेटी पराया धन है, पराए घर चली जाएगी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करना है। वैसे समय बदला है, लोगों की सोच भी बदली है, लेकिन आज भी ऐसे गांव है जहां बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। तो सुनेंगे आप ऐसा नाटक जिसका विषय है घरेलू हिंसा को रोकने में शिक्षा का प्रभाव।
2: आज आपको सिरोही जिले के एक गांव में ले चलते हैं, जहां एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता और दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा राघव को पढ़ने की छूट है, लेकिन बेटी राधा की इच्छा पढ़ाई करने की बहुत है, लेकिन उसे पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इस परिवार में क्या हो रहा है।
3: मन पढ़वा को है शौक, पर बाबोसा को नहीं जावा दे। मन लिखवा को है शौक, पर बाबोसा को नहीं जावा दे। बाबोसा को नहीं जावा दे, मन मायड़ को नहीं जावा दे। मन पढ़वा को है शौक, पर बाबोसा को नहीं जावा दे। मन लिखवा को है शौक, पर बाबोसा को नहीं जावा दे।
4: अरे राधा, काहे बोल रही है तू पढ़ाई पढ़ाई?
5: पापा, मैं भी पढ़वा जाऊं, मने भी स्कूल भेजो ना।
4: राधा की माँ, मारे काम पे जानो है, और ये राधा पढ़ाई पढ़ाई काई कह रही? तू बात कर, मैं जाऊं। राम राम।
6: हाँ राम राम, थे जाओ, मैं बात करू। काई कह रही छोरी तू? अबे बोल, मने बता।
5: मम्मी, मारे भी पढ़ाई करनी है, मैं भी स्कूल जाऊं। बस मैं जाऊं स्कूल।
6: तने कतरी बार क्यों कि तू छोरी है, थारे पढ़ाई कोनी करनी, घर को काम कर, फिर भी तू एक की बात कर रही है। रट लगावे कि मारे पढ़नो पढ़नो, चुपचाप बैठ घर में और घर को काम कर। स्कूल का नाम ली दो ने तो ठीक नहीं बेवेला।
5: मम्मी, भाई ने भी तो तू पढ़वा भेजे, तो मैं कई बिगाड़ियो, मारे भी पढ़वा जानो, मारे भी जानो।
6: भाई तो छोरो है, घर को दीपक है, वो वीने पढ़ानो तो बहुत जरूरी, थारे तो पराया घरे जानो है, चोको चुल्लो संभालनो है, समझी? अने वास्ते घर को काम सीख ले।
2: तो देखा दोस्तों, राधा के पढ़ने की इच्छा बहुत थी, लेकिन उसको पढ़ने नहीं दिया गया, और एक दिन शादी करके उसको ससुराल भेज दिया जाता है। पढ़ने की इच्छा बचपन से थी, तो यहाँ भी कोशिश करती है पढ़ने की। तो देखते हैं कि क्या ससुराल में उसको पढ़ने दिया जाता है।
5: चिंटू, काई पढ़ रहे थे?
7: भाभी, आपको पढ़ना है क्या?
5: हाँ चिंटू, मने बचपन से घणो शौक हो पढ़वा को, पर कोई मने पढ़ायो को नहीं, मने कोई पढ़वा नहीं दी दो।
7: मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या आप मुझसे पढ़ोगी?
5: हाँ चिंटू, मैं पढ़ू।
7: ठीक है, मैं रोज जो आपको पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस करते रहना। ओके
5: ओके।
8: वीननी, कटे है तू?
9: सासू माँ, राधा ने अबे पढ़वा को सोख चढ़ियो है, काम दाम तो करनो को नहीं, महाराणी ने पढ़वा बैठगी।
8: हो जद मैं आवाज दे रही हूँ, पर सुने को नहीं रही, काई करे तू?
5: सासू माँ, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, चिंटू मने पढ़ाई रहा है।
8: यो कई पढ़ाई पढ़ाई को रट्टो लगा रखियो है तू? पढ़ाई करी तो घर को काम कौन करी?
9: अणी उम्र में भला पढ़ाई बेती हुई।
4: राधा, ओ राधा।
10: बीननी, दिलीप काम सो आ गयो और थने आवाज दे रही हो, जा कई काम के रही हो वो?
5: हाँ सासू माँ।
4: काई कर रही थू? मैं आवाज दे रही हूँ थने, सुने को नहीं देवे?
5: वो चिंटू मने पढ़ाई रहा।
11: राधा तू के पागल होगी, अनी उम्र में पढ़ाई कर रही है, अनंत पचे घर को काम कुण करी। तारी माँ दिमाग मु पढ़ाई रो भूत उतार दीजे, समझी?
5: मैं कई बाने जान थोड़ी पढ़ाई कर रही हूँ, अपना चिंटू पढ़ाई रहा तो मैं घर में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, कभी भी जरूरत पड़ सके।
11: माँ आदमी लोग के मर गया कहीं तो थारी पढ़ाई रही जरूरत पड़ी, जा काम कर घर को।
2: राधा को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, हर कोई कुछ भी सुना देता है, लेकिन राधा भी ठान लेती है कि मुझे पढ़ाई करनी ही है। तो आइए देखते हैं आगे का माहौल किस तरह का है।
3: पढ़ाई करूंगी दुनिया से नहीं डरूंगी, शिक्षा से बनूंगी मजबूत मैं पढ़ाई करूंगी दुनिया से नहीं डरूंगी।
8: बीनी थोड़ी तो शर्म कर, तेरी जेठानी आका घर को काम करे और तू बेटी बेटी पढ़ाई करे।
5: सासू माँ मैं काम भी कर रही हूँ और पढ़ाई भी। चिंटू क्यों के प्रैक्टिस करता रहो, नहीं तो भूल जाओ।
10: मारे थारा सु बेस कोनी करनी, अगर थारी जेठानी भी एड़ी होती तो घर को सारो काम मारा ऊपर ही आ जातो हूँ।
6: तू कई छोटी बच्ची है जो पढ़ाई कर रही?
5: बच्ची ही जदी भी कटे पढ़वा दीदी मने।
8: खबर कोनी अब मने ये कसी नौकरी करवा की के।
5: मारे कोई नौकरी कोनी करनी, पर थोड़ो अक्सर ज्ञान को तो होनो ही चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सके।
9: घर का पुरुष लोग कई करी वे बता दे, और आज दिन तक जरूरत पड़ी।
5: यो कई कर रहा भाभी, मारी किताबा तो मत फेंको, मारे पढ़ाई करनी है।
10: ओफो बेसबाजी बंद करो। बीननी जा मारे चाय बना लेना।
5: हाँ सासू माँ लाऊं। सासू माँ सासू माँ, अरे भाभी जल्दी आओ, भाभी एम्बुलेंस वाला ने फोन करो।
9: राधा मने तो एम्बुलेंस का फोन नंबर की कोनी था, देखा मैं चिंटू ने बुलाऊं।
5: जटा तक तो घनी देर वे जाई, लव फोन मने दो मैं करू फोन।
12: हेलो 108 एमरजेंसीज, हाउ कैन आई हेल्प यू?
13: डॉक्टर साहब मेरी माँ कैसी है?
14: अब ठीक है। अच्छा हुआ सही समय पर एम्बुलेंस बुलाकर आपकी माँ को यहाँ एडमिट करवा दिया, वरना कुछ भी हो सकता था।
13: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
14: मेरा नहीं अपनी पत्नी का धन्यवाद करो, आज आपकी माँ की जान उसकी वजह से बची है।
11: मने माफ कर दे राधा, मैं थने पढ़वा सु रोक तो हो, आज थारी पढ़ाई की वजह सु मारी माँ की जान बची, माफ कर दे मने।
9: हाँ राधा मने भी माफ कर दे, आज मने ठा पड़ी कि पढ़ाई करनो कतरो जरूरी है, और पढ़ाई की कोई उम्र भी कोनी होवे है, आज सु मैं भी थारा साथ में पढ़ाई करूँ।
8: बीननी मने भी माफ कर दे, मने ठा पड़ी तारी वजह सु आज मारी जान बची है, आज मारा समझ में आयो कि पढ़ाई जीवन में कतरी जरूरी है। चाहे मने छूट दे हूँ के जतरी थारे पढ़ाई करनी वे वतरी कर, और चिंटू ने के मने भी अक्षर ज्ञान दे दे वे।
2: तो देखा दोस्तों कि किस तरह राधा को बात बात पर ताने सुनने पड़े, लेकिन राधा हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई करती रही, और यही पढ़ाई उसके सासू माँ की जान बचाने में काम आई। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में आप पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा से समझ मिलती है, और समझ आने से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, अनेक प्रकार की हिंसा से स्वयं को बचा सकते हैं। अगर हिंसा से बचना है तो स्वयं को शिक्षित बनाइए।
1: तो देखा दोस्तों राधा ने आखिरकार अपने मजबूत इरादे की वजह से पूरे परिवार के लोगों के विचार को बदल डाला और बताया कि जीवन में शिक्षा कितनी जरूरी है। जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो अनेक लोगों को हिंसा के प्रभाव से बचा सकते हैं। शिक्षा हर प्रकार की हिंसा को समाप्त कर सकती है, इसलिए जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। वह कहावत है ना कि जब जागे तब सवेरा। जब मन में ठान लिया कि हम किसी भी कारणवश पहले नहीं पढ़ पाए लेकिन अब पढ़ना चाहते हैं, तो बस उठे और जीवन की एक नई शुरुआत करें। आशा करती हूँ कि दोस्तों ये कार्यक्रम आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही कार्यक्रम लेकर फिर से मिलेंगे एक नए नाटक के साथ। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर प्रस्तुत कार्यक्रम हिंसा को नो में सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी कहिए सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा x-ray है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बारे में क्या कहें, जैसे सब कुछ संगीत में समा जाता है। स से जैसे पूरी सृष्टि ही संगीत है, ग से जैसे हर ग्रह नक्षत्र तक वो म्यूजिक, वो संगीत, वो सुर पहुंच जाते हैं। त की बात करें तो शायद तीनों लोग ही एक साथ झूम उठते हैं जब ऐसा संगीत उत्पन्न होता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो दूर दूर से गोपियां दौड़ी चली आती थी। क्या जादू है इस संगीत में। कहते हैं तानसेन जब गाते थे तब बादल भी गरज उठते थे, तब दिए भी जगमगा जाते थे। इस संगीत के जादू को जीवित रखते हैं कई ऐसी हस्तियां हैं भारत में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपको मिलाएं उन सितारों से जो कुछ चमक रहे हैं और कुछ जल्द ही संगीत के आसमान में बहुत ऊंचा स्थान पाने वाले हैं। आज हम आपके सामने एक और गेस्ट, एक और मेहमान को लेकर आए हैं जो कि संगीत के ऐसे ही जगमगाते सितारे हैं, जिनका नाम है सोम जी, जो कि आए हैं नेपाल से। उनसे बातें भी करेंगे और उनके गीत भी सुनेंगे। बहुत मधुर आवाज है, बहुत कमाल का गिटार बजाते हैं। सोम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरसी, थैंक यू सो मच।
0: सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने आपका पूरा नाम, आपके घर में कौन कौन है एंड आप क्या करते हैं।
1: अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम सोम गुरुंग है, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल की बहुत सुंदर नगरी जिसे पोखरा बोलते हैं, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, उसी जगह से मैं हूँ। और मेडिटेशन करते हैं, अपने जीवन में कुछ नई जिंदगी, नए नए अनुभव करते हैं, तो पहले से ज़्यादा मेडिटेशन के बाद बहुत अच्छा अनुभव करते हैं।
0: ओके, ठीक है। और जैसा आपने बताया सोम जी, मेडिटेशन के आप एक्सपीरियंसेस के बारे में तो आपसे बात करेंगे ही, म्यूजिक के बारे में कुछ बात करेंगे आपसे, लेकिन क्योंकि म्यूजिक का कार्यक्रम है तो चलिए पहले आपका एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे और आपसे करेंगे संगीत के बारे में खूब सारी बातें। रेडियो मधुबन 90.4 FM पे दोस्तों, आइए अगला गाना आप सुनेंगे सोम जी की आवाज में। तो पहला गाना आप जो हमारे दोस्त जो आपको सुन रहे हैं उन्हें कौन सा सुनाना चाहेंगे?
1: So, any songs, आपकी चॉइस में?
0: मेरी चॉइस तो वैसे बहुत सारे गाने पसंद है, सोचना मुश्किल है। क्यों ना अच्युतम केशवम से शुरुआत करें।
1: हाँ, श्योर, बहुत प्यारी गीत है।
0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अच्युतम केशवम, ये सुंदर सा भजन सोम जी की आवाज में। लौट कर आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर लौट कर आ गए हैं हम। संगीत की ये सभा लगी हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं सोम जी, जिनकी आवाज में आपने सुना बहुत सुंदर भजन अच्युतम केशवम। ये गीत सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि शायद एक अलग ही माहौल बन चुका है और अब बोलने का तो मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे गीत सुन के सच में ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें और कुछ ना कहें। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और सोम जी से और ढेर सारी बातें करनी है, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं। सोम जी, आप जैसा आपने अपने बारे में तो बताया, मैं चाहूंगी आप अपने संगीत की जर्नी के बारे में बताएं। कब से आपको संगीत पसंद था या कब से शुरुआत हुई आपके सफर की?
1: अच्छा, संगीत के बारे में, जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल में हम गिटार बजाते थे, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे स्कूल के एक फ्रेंड बहुत अच्छा गिटार वो प्ले करता था, तो उसके हिसाब से जब मैंने फर्स्ट टाइम गिटार का साउंड मैंने सुना, तो वो गिटार के जो साउंड है वो मेरे दिल को छू गई। तो स्कूल में एक वैकेशन, समर वैकेशन था उस टाइम पर, के एक गिटार खरीद करके तो थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में एक महीने के ट्रेनिंग के बाद थोड़ा थोड़ा गीत बजाने और दोस्तों के साथ थोड़ा हम करने, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन हो गई। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करके, कोई टीचर्स तो नहीं है हमारे, फिर भी दोस्तों के साथ टीचर्स के वीडियोस देख करके, तो ऐसे ऐसे ही हमने बहुत मेहनत की और गिटार से शुरू किया। तो थोड़ा बहुत ड्रम्स भी बजाते हैं, कीबोर्ड थोड़ा बहुत करते हैं, तो स्पेशलिटी मेरा गिटार ही है। तो मैं अभी लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए मेरे गिटार बजाए हुए, लेकिन ऑन एंड ऑफ, बीच में छूट भी गए थे कुछ ऐसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अभी फिर मेडिटेशन के साथ साथ अभी म्यूजिक भी अभी जुड़ चुके हैं, तो अभी मैं ये भी करना शुरू किया हूँ।
0: क्या बात है। और जब आपने म्यूजिक शुरू किया, आप, क्योंकि यूथ की बात करें तो उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है तो करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने भी अपना करियर बनाया म्यूजिक में?
1: जी, करियर जब स्कूल से आउट हुआ तो उसके बाद में छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम के लिए तैयारियाँ करते थे, तो फ्रेंड्स के साथ जुड़ जाते थे। तो बाद में जब थोड़ा थोड़ा जब मैच्योरिटी लेवल आई, तो अच्छे अच्छे म्यूजिशियन से मिलना हुआ, तो उनके साथ अच्छे अच्छे गाने कंपोज करने लगे। तो कभी कभी ऐसे ही बार में, क्लब में, तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए ऑफर आते थे, तो उधर जा करके थोड़ा बहुत कर लेते थे। तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमारी जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो इंक्रीज होती चली गई। तो बाद में एक एज बैंड बोल करके, हमने नेपाल में क्वाइट पॉपुलर है ये यंगस्टर के बीच, तो उस बैंड में काम करने का मौका मिला। तो हमने जो काम किया तो उसके हिसाब से हम बहुत सेटिस्फाई भी है, लेकिन बीच के कुछ ऐसे ही पढ़ने के सिलसिले में, कुछ ऐसे ही स्टडीज के मामले से करके हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अभी बैंड तो कंटिन्यू है, फिर भी मैं अब्रॉड चला गया था, तो उसके हिसाब से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहा। फिर अभी ये मौका मिला है, तो अभी मैं अपने खुद के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कंपोज करता रहता हूँ अभी। तो अभी थोड़ा तीव्र

0: तो इसीलिए आपको फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। तो फाउंडेशन तो आप जैसे कि आपके घर के माहौल, जिस जगह पे आप रहते हो, जो आपके अंग संग के लोग हैं, इसके रंग भी आपको अवश्य लगते हैं। तो इसीलिए म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे जो पुराने म्यूजिशियंस हैं उनके गाने सुनने पड़ेंगे। तो कैसे वो कंपोज करते थे, क्यों ये गाने उस ज़माने में लिखे थे, बनाए थे 50 साल आगे, फिर भी अभी भी वो उतना ही प्रिय है, बहुत सुंदर है, लोग अभी भी उनको सुनना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या है कि उन लोगों की जो डिसिप्लिन थी, एक बात से बोलते हैं आध्यात्मिक हिसाब से बोलते हैं, तो उसमें एक प्योरिटी थी वो कलाकार में, क्योंकि उन दिनों के कलाकार बहुत प्योर रहते थे। तो उन दिनों के कलाकार और आज के कलाकार अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत बहुत ये बीच में बहुत दूरी हो गई है, क्योंकि आज के आर्टिस्ट वो भूल गए हैं कि ये जो कला है इसमें अगर आगे बढ़ना है, लॉन्ग टाइम स्टेबल रहना है, तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है
1: जी।
0: सो आप हमारे टीचर्स, गुरु, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग लोग जो सिखाते हैं, उसको भी आत्मसात करते हुए अपने नेचर को सुधारते हुए अगर ऐसा करते हो तो ज़रूर किसी न किसी दिन ये ज़रूर रंग ले आएगी। ये छुपे नहीं रह सकते, भले देर हो लेकिन ये बहुत अच्छा कर सकती है।
1: जी जी, मतलब कि जो संगीत है उसके प्रति हमारी जो सच्चाई है, जो हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे दिल भी उसी में है तो दिमाग भी उसी में है, तो वो सच्चाई शायद बहुत ज़रूरी है।
0: जी,
1: सिर्फ अच्छा दिखना नहीं स्टेज पे, लेकिन उस फील में होना कि हम अपने लिए गा रहे हैं।
0: जी हाँ, दिल से,
1: दिल से,
0: दिल को छूना बहुत ज़रूरी है। जी,
1: और दिल को छूने के लिए दिल से गाना जरूरी है,
0: जरूरी है।
1: जी, तो बहुत बहुत अच्छी बात आपने डेडिकेशन की भी कही सोम जी। आगे भी कुछ बातें करेंगे आपसे, लेकिन एक और गीत की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
0: अगला गीत मैं एक बार श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा एज अ मैंने आरुषि जी को भी बोला है कि थोड़ा टाइम की कमी थी तो मैं उतना प्रिपेयर कर नहीं पाया, फिर भी आज हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो थोड़ी समय में पूरा ट्राई किया हुआ है, अगर कोई मिस्टेक्स आपको सुनाई दे तो भी इसको आप स्वीकार कर ले, अगर फ्यूचर में कोई मौका मिलता है तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस करके, लोग अभ्यास करके आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो अभी आपके लिए मैं कृष्णानी वाला गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत प्यारी सॉन्ग है।
1: चलिए दोस्तों, इस प्यारे से गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में, और मैं आपको बता दूं कि वो गा भी रहे हैं और साथ साथ गिटार भी वो खुद ही बजा रहे हैं। तो आइए इस गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अपने मुस्कुराने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, और गाने का भी, गुनगुनाने का भी, क्योंकि ये कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड जो हम आपके लिए लेकर आते हैं संडे को रात 8 बजे। आप भी जुड़ सकते हैं, अगर आप भी एक कलाकार हैं, आपको लगता है कि आप आसपास रहते हैं, आप हिस्सा बनना चाहते हैं इस कार्यक्रम का, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। साथ ही मैसेज भेज के हमें ये भी बताइए ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। सोम जी, जैसा आपने बताया कि आपका एक बहुत फेमस बैंड जो रहा नेपाल में, जो है अभी भी, तो क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं जब हम म्यूजिक, हमें पसंद है, आपने कहा डेडिकेशन ज़रूरी है, बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन साथ में काम करने में या हम बहुत जगह परफॉर्म करने जाते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, और आप अगर आए तो आपने क्रॉस कैसे किए?
1: बहुत प्यारी क्वेश्चन है ये। जो मैटर है, हर एक को फेस करना पड़ता है इससे, तो नॉर्मली सबके लाइफ में तो ये तो स्ट्रगल तो करना पड़ता ही है। फिर भी अगर बैंड की बात करें तो, क्योंकि एक बैंड में नॉर्मली 5-6 से एक बैंड बनता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो 5 लोग होंगे तो 5 हेड होंगे उधर, उनके अपने विचार होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, संस्कार होते हैं, तो इसलिए तो जब ग्रुप में काम करते हैं तो थोड़ा संस्कार की बातें भी आती है, फिर भी
0: नेचर अलग अलग
1: होती है, उनके ग्रोन अप अलग होते हैं, तो फिर भी अगर आर्ट म्यूजिक की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत अगर हम स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, इस ज्ञान को, तो इजीली इस समस्या को हम कोप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पहले मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में जब मैं बैंड में था, तो फिर भी मेरी नेचर क्या थी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करता था, तो दोस्तों के साथ मैं उनके साथ एडजस्ट हो करके उनको भी मनाता था, तो एज अ न्यूट्रल में रहकर, बीच में रहकर मिलाने की ट्राई करता था, तो थोड़ा बहुत ये इस नेचर से उनको भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ। मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, फिर भी वो भी ट्राई करते थे, हम भी ट्राई करते थे, क्योंकि जो भी हम स्टार्स देखते हैं, रॉक स्टार देखते हैं, सेलिब्रिटी देखते हैं, ये लोग ऐसे ही ऊपर नहीं पहुँचते, इनके पीछे बहुत कड़ी मेहनत चाहिए, डेडिकेशन तो होता है, ज़रूरत होती है। इसीलिए क्या लगता है अभी जो बोला मैंने कि थोड़ा बहुत अनुशासन, क्योंकि ऐसा जो टीवी में देखते हैं, जो वीडियोस में हम देखते हैं, उनका लाइफ ऐसा नहीं रहता है। वो लोग 4 बजे से आगे उठते हैं, उनके डेली लाइफस्टाइल ऐसी रहती है। एक दो मूवीज़ में, एक दो बार पार्टीज़ में देखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हमें मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड करते हैं, ऐसे लोग ही सफल होते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अगर हम कला से जोड़ेंगे, संगीत से जोड़ेंगे, तो ये बहुत प्रोडक्टिव भी होगी, सेटिस्फाइड भी रहेगा।
0: क्या बात है, और मुझे लगता है आपने एक लंबी जर्नी के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से बताया
1: जी।
0: क्योंकि सक्सेस भी है तो उतार चढ़ाव भी है
1: जी।
0: तो अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में, जिसमें मेडिटेशन जो है बहुत मदद करता है,
1: बहुत मदद करता है,
0: जैसा आपने कहा
1: जी।
0: तो हम आगे भी आपसे कुछ गुफ्तगु ज़रूर करेंगे। सोम जी, अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे आज?
1: अगला कोई तो है जो।
0: ओके, चलिए तो ये गीत सुनते हैं ओम जी की आवाज़ में। और आपको कैसा लगा ये गाना, आप हमें ज़रूर बताइए कि गाना एंड गिटार सोम जी, क्योंकि दोनों प्ले कर रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन के स्टूडियो में, तो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें मैसेज करके बताइए 9414151415 पर, यानी कि 9414151415 पर।

0: बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. हमारे साथ हैं सोम जी, जो कि बहुत एक फेमस बैंड के मेंबर भी हैं और साथ साथ वो संगीत में कई लोगों को अब सिखा भी रहे हैं, तो कई जगह परफॉर्म कर चुके हैं, गिटार भी बजाते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, साथ में बहुत सुंदर आवाज है उनकी, तो उनसे आज हम बातें कर रहे हैं. सोम जी, जैसा आपने अपने बैंड के बारे में तो बताया, यहाँ पे म्यूजिक के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि म्यूजिक जब आप शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आपको कोई एक माहौल की जरूरत होती है या क्या लगता है, क्या उस वक्त आपको जरूरत होती है?
1: जी, मेरे विचार से जब से मैंने गिटार पकड़ा है, ये गिटार एक मेरे कंपेनियन के जैसा है, एक फ्रेंड की तरह, क्योंकि लोग होते हैं, दोस्त भी ऑल द टाइम हम साथ नहीं रह सकते, लाइक परिवार भी हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन ये जो गिटार है, गिटार माना कला, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हर एक इंसान कुछ ऐसी चीज़ों से है तो निर्जीव है, लेकिन इसमें बहुत सारे ये ब्रह्मांड की चीज़ इसमें समाई हुई है, तो इसको फ्रेंड बनाएंगे तो आप कभी अकेले फील नहीं करोगे. तो बाद में जब मेडिटेशन जब हमने लर्न किया तो लगने लगा कि हाँ, स्टाइल तो एक ही है, ये स्थूल रूप में है और ये जो मेडिटेशन है ये अंदरूनी बात है. तो मुझे लगता है अगर कोई इसी हिसाब से कला में जुड़ जाता है, अगर एक फ्रेंड बना लेते हैं उस चीज़ को, तो वो भी उसी तरह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी. उसके लिए आपके डेडिकेशन और आपके उस प्रति जो रिस्पेक्ट है, भावनाएं हैं, वो बहुत मायने रखती है. तो
0: लेकिन सोम जी, अक्सर ऐसा समझते हैं कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी ये एक एज के बाद ज़रूरी है, यूथ को क्या ज़रूरत है?
1: अभी तो मेरे हिसाब से लगता है कि यूथ को ही ज़्यादा ज़रूरत है.
0: अच्छा.
1: क्योंकि अभी जो संसार में हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी बन रही है, ये साइंस वाले, अभी ये डिजिटल दुनिया है, जो कुछ भी बन रहे हैं, ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, मन को भड़काती है, डिस्टर्ब करती है, और हमारे जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, उसकी पावर को ये घटाता है, तो इसको कोई ना कोई हार्म पहुंचाते रहता है. तो जिस तरह से आज लोग डिपेंडेंट हो गए हैं इन चीज़ों से, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, अब ये सोशल मीडियाज है, ये बहुत हमारी आत्मा की शक्ति को, मन की शक्ति को ये डिप्लीट करती है. तो मुझे लगता है क्योंकि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ज़्यादा डिपेंड रहते हैं स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इसके छूटने पर अगर किसी दिन हमारे पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो ये दिन क्या होता है उनके लिए खराब रहती है.
0: Right.
1: तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर एक यंगस्टर्स अगर वो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपना ले, तो एक अंदरूनी शक्ति जो खुद से इंजॉय कर सकते, खुद से बातें कर सके और अपनी एग्जिस्टेंस का वो खुद पता कर सके कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करने हैं मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लक्ष्य उद्देश्य क्या है. तो अगर ज़िंदगी में ये बातें किसी को समझ में आ जाता है, तो वो संसार जीत सकता है, ऐसा मुझे लगता है.
0: बहुत अच्छी आपने बात कही समझी, और ये मुझे लगता है क्योंकि करियर हमारा जो हमें बनाना है या हम बना रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. तो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, अपने मन को और ताकतवर बनाने के लिए आप मेडिटेशन साथ साथ कर सकते हैं, जैसा कि सोम जी भी प्रैक्टिस करते हैं. तो अगला गीत सोम जी आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
1: अभी हमारे पास ओम जय जगदीश
0: जी
1: गाना है जी. तो मैं श्रोताओं को ये सुनाना चाहता हूँ
0: जी. चलिए, तो हम ये गीत, ये आरती सुनते हैं, लौट कर आएंगे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: घड़ी की आवाज़ तो कह रही है कि इस वक्त आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है, लेकिन दोस्तों मधुबन अनप्लग्ड कार्यक्रम लेकर आते हैं तो इस वादे के साथ आते हैं कि अगले हफ्ते फिर से जरूर आएंगे। आज हमारे साथ सोम जी जुड़े हैं जो कि बहुत बहुत सुंदर मेलोडियस आवाज़ में हमें एक दूसरी दुनिया की ओर लेकर जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ और डेफिनेटली ऐसी आवाज़ ऐसे गीत हों तो ऐसा लगता है कि अच्छा दिन भर कुछ और सोच रहे थे लेकिन अब मन फिर से करता है कि एक नई सोच की ओर आगे बढ़ा जाए। तो मन पॉजिटिव, मन शक्तिशाली तो नया कुछ सोचने का दिल भी करता है ना दोस्तों। तो आइए सोम जी से जाते जाते मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। कई बार जब हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं कि हम, क्योंकि लेट नाइट भी है, पार्टीज भी हैं, दोस्त भी हैं और पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा सा पीछे हो जाता है, छूट जाता है कभी कभी। तो आप क्या कहना चाहेंगे
1: इसके लिए? मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। तो कोरोना से आगे लगभग 3.5 साल मैं नेपाल के जेल में हमारे ब्रह्म कुमारी के एक मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ से गवर्नमेंट से हमने स्वीकृत ले करके, तो वहाँ पर जाते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, रोज़ रोज़ उनकी समस्याओं की बातें, उनको मोटिवेट करते हैं। तो मैंने क्या देखा यंगस्टर में, तो ज़्यादातर जितने भी ये गलत कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, ये सब गलत खान पान और गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ों से दिल बहलाना और गलत संगत के कारण बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी वहाँ भी जेल में अपने जीवन बिता रहे हैं। तो देखा तो उनको जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हर एक यंगस्टर के पीछे वो एक अंदर से उनकी चाह तो होती है, फिर भी वो मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, तो इसलिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, कोई शराब का, ऐसे जो गलत आदतें हैं इन चीज़ों का सहारा लेने से, क्योंकि उनकी जो खान पान है, खान पान गलत होने के कारण, एक घटना मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 3 दोस्त मिले थे तो 3 दोस्त की मीटिंग हुई, तो मीटिंग होने के साथ क्योंकि वो गलत चीज़ खान पान करते थे तो होटल में गए, वो होटल में जा कर के गलत चीज़ खाए, शराब पी। वो खाने के बाद क्या हुआ, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल होते हैं तो मोबाइल में ज़्यादातर लोग गलत चीज़ ही देखते हैं और ये तो यंगस्टर लोगों की ये आदत जैसी बन गई है अभी। तो उसके बाद क्या हुआ, उनमें जो अंदर गलत चीज़ वो सेवन कर रहे थे और गलत चीज़ देखने से उनकी वो जो माइंड पे एक ट्रिगर हो गया, उनको वो चाह अंदर से निकल गया, वो जो वो क्या बोलते हैं, वो राक्षसीपन होते हैं ना अंदर से, वो निकलने लगे, तो उनके गलत विचार आने लगे, तो उन्होंने जाके ऐसे गलत व्यवहार किए, तो उसके हिसाब से वो अभी जेल में है बोला। तो मैंने देखा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खान पान को सुधारते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, जैसा आहार वैसा विचार बोलते हैं, तो भगवान भी यही कहते हैं, ईश्वर भी यही कहते हैं, अगर आपके खान पान अच्छे हो तो आपके दोस्त, आपके संग अच्छे मिलेंगे। क्योंकि आपके खान पान अच्छे नहीं है, जहाँ भी जाओगे गलत चीज़ खाओगे तो गलत ही लोगों को आपको संगत मिलेगी, तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले आपको गलत खान पान से बचना होगा। गलत चीज़ जो सेवन करते हैं, जो इस शरीर के लिए गलत है, जो हानिकारक है, ऐसे चीज़ों से बचना है जी। और जो हम देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, जो अच्छे नहीं हैं, जो हम परिवार के साथ देख नहीं सकते, जो अश्लील है, तो ऐसे चीज़ें अगर ना देखें तो ये इसमें ही बहुत लाभ मिलेगा
0: जी।
1: और उसके बाद में संगत, आपके जितने दोस्त हैं उनको भी आपको विचार करना है, क्योंकि आपके पास चॉइस है करना ना करना, कैसे संग के साथ आप रहना नहीं रहना, ये आपके साथ चॉइस है। इसलिए ये 3 चीज़ों को आप यंगस्टर विचार करेंगे, इसको समझ पाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी
0: जी। थैंक यू सो मच सोम जी। और जैसे आपने कहा गलत हैबिट्स नहीं, तो अगर नशे की ओर या गलत और आदतों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन में जो सपने हम जीना चाहते हैं वो शायद कहीं जाके ब्रेक लग जाता है वहाँ पे, जो नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते किसी के साथ भी हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। सोम जी आपने जो बातें कही जीवन की, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी विजडम है
1: जी।
0: तो हम ज़रूर इसमें से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जाते जाते आप हमें आखिरी आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
1: तो आखिरी गाना ये मूवी का सॉन्ग है, शायद हर एक ने सुना हुआ होगा, ये आसियाना गीत। ये बहुत प्यारी गीत है, आप सभी श्रोताओं के लिए पेश करना चाहता हूँ।
0: चलिए जरूर सुनेंगे, बहुत खूबसूरत ये गीत सोम जी की आवाज में हम सुनेंगे। गिटार भी उन्होंने बजाया है, गाया भी उन्होंने है। और दोस्तों जाते जाते आपको रेडियो मधुबन का नंबर फिर से बता देते हैं, अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने गांव का नाम लिखकर हमें भेज दीजिए। नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। संगीत को अपने जीवन में हमेशा शामिल रखिए, संगीत उम्र नहीं देखता, पर आप उस संगीत से जुड़े रहेंगे तो जीवन और खुशहाल होगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आवाज री दुनिया हम सफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवाला सगला श्रोताओं ने केसी जिनगर रा गणा गणा राम राम गणी खम्मा ने जय माता दी। आप सुन रहे हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधुअन कार्यक्रम रे मायने आप समाज रे में फैली उड़ी कुरुतियों वे है वन बारा में समाज रे लोगों ती बात करो हो और अन्य अलावा अपने भारत देश में कई जातियों में है उन्होंने का रीति रिवाज वे उन्होंने का संस्कृति उन्होंने परंपरा वन बारा में समाज रे लोगों ती जानकारी लेना आप तक पहुँचावा रही पूर्ण कोशिश रेडियो मधुबन रही है। और अपने समाज रे में ही समाज सेवी वे जो समाज रे में अपनी सेवाओं दे है उन्होंने का अनुभव वे है वे भी अपने श्रोता बंधुओं तक पहुँचावा की कोशिश करो कि वे भी उन्होंने प्रेरणा ले है और अच्छा काम समाज में करे। और अन्य अलावा अपने समाज में कई बुजुर्ग मानस वे है उन्होंने का तजुर्बा वे है वे भी अन्य कार्यक्रम में आपो प्रसारित करवारी कोशिश करो हो। और श्रोता बंधुओं आप ती एक अपील है कि रेडियो मधुबन रो अपनो समाज कार्यक्रम मारवाड़ी सो आप रो अपनो है अपने माती कोई अपना समाज रा रीति रिवाज या अपना अनुभव रेडियो मधुबन रे मार्फत प्रसारित करवारी मनसा राखे है तो रेडियो नंबर माते जरूर मैसेज करजो। रेडियो नंबर है 94-14-15-14-15। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन। तो श्रोता बंधुओं हमें अपने मेहमान पेरू सिंह जी गुर्जर जो पोटले हफ्ते गुर्जर समाज रा रीति रिवाज बतावता था कुछ रीति रिवाज और बाकी है वे हमें अन हफ्ते आपो आज प्रसारित करोला। तो आज बेरू सिंह जी थी हमें आपको पहला पूछो हो कि आपने जो समाज रिवाज है जो कोई बच्चा रो जन्म वे बतायो अन अलावा कोई बच्ची री शादी करो तो वन बारे में आज आपको जानकारी लियो। तो सबसे पहला अनोरो रेडियो मधुबन में स्वागत करो हो। तो बेरू सिंह जी गुर्जर साहब आपरो रेडियो मधुबन में स्वागत है।
1: सबको मेरा राम राम। मैं भैरव सिंह गुर्जर आबू रोड का गांधीनगर से बोल रही हूँ।
0: तो भैरव सिंह जी सब भाइयों ने राम राम किया है जो भी श्रोता बंधु होबले रिया है उन्होंने राम राम है तो अपने तरफ से भी भैरव सिंह जी ने राम राम है। और तो भैरव सिंह जी मैं आपने पूछे हूँ कि आपने समाज के बारे में आप गुर्जर समाज और इतिहास बतायो ठीक है तो हमें आप बताओ कि आपने समाज में कोई बच्चा बच्ची री शादी करो तो क्या रिवाज करो।
1: सबसे पहला तो जब बच्चों पढ़ लिख के होशियार हो जावे
0: जी
1: तो उनकी सगाई

0: लिए जो मतलब लड़की देखा परिवार में उमे हमारे चार गोत्र टाड़ा हाँ
1: जी। चार गोत्र में की टाड़ो?
0: चार गोत्र में जो मतलब खुद को गोत, माँ को गोत, नानी को गोत और दादी को गोत।
1: चार गोत टाड़े पे सगाई करो?
0: ये चार गोत टाड़ के फिर सगाई करा। लेकिन आजकल समाज में कई जगह जो मतलब बच्चिन की कमी हो गई तो उनके हिसाब से जो मतलब नानी को गोत कई लोग है जो मतलब छोड़ देवे हैं। तीन गोत तो पक्का टाड़ी टाड़े हैं
1: जी। चलो हम पूछो आपने के आप क्यों बच्ची और कमी होगी समाज में कारण का?
0: ये जनरेशन बड़ी बात है और कहीं भी नहीं है। मतलब हमारे तो मतलब न तो बाल विवाह है न भ्रूण हत्या है
1: जी।
0: कोई इसी प्रकार की कोई कुरुति हमारे समाज में यहाँ एरिया में नहीं है
1: जी। चलो ठीक है, मारा सवाल हो तो कि कोई बच्चा रो जब शादी करो कोई बच्चा या बच्ची री तो केड़ा रिवाज करो? मतलब की कौन लगन लिखाओ?
0: जब सगाई के लिए बात पक्की हो जाए कोई लड़का लड़की की उनके बाद फिर मतलब लड़की वाला आवे।
1: अच्छा।
0: लड़का के हाथ में जो मतलब रुपये नारियल देर जावे हैं
1: जी जी।
0: उनके बाद फिर लड़का वाला जो लड़की वाला के यहाँ जावे
1: जी,
0: वो भी बच्ची का हाथ में जो मतलब रुपये और नारियल जो भी देना हो देवे हैं
1: जी।
0: और बात पक्की हो जाए।
1: बात पक्की हो जाए शादी की तारीख पक्की की तो बुढ़े जो शादी करो तो केरा रिवाज करो?
0: अब जब देखा गया सगाई और शादी कई बार सगाई शादी साथ में करें
1: शादी करो तो कई रिवाज करो?
0: शादी को मुहूर्त निकलवा, सबसे पहला मुहूर्त निकलवा करके और फिर सगा संबंधी को जो मतलब निमंत्रण भेजा।
1: अच्छा।
0: तो मुहूर्त निकल दो के हिसाब से लगन 5 दिन की लगन निकली, 7 दिन की लगन निकली, 9 दिन की लगन निकली है, दिन के हिसाब से उन लगन लिखाई जावे
1: जी। लगन कितना दिन पहला लिखावे?
0: 7 दिन 9 दिन 5 दिन।
1: ये तो हुआ कि भाई 7 दिन रो पार्ट आया, 9 दिन रो आया, 5 दिन रो आया। लगन कोई कहे कि भाई 2 महीना पहला भी लिखा है, 15 दिन पहला भी लिखा है, 1 महीना पहला भी लगन लिखा है, जो तोरो लगन थोड़ा पाए बनो लगन होना पाए एक भी जान लिखान दो कनी वो कितना दिन पहला महीना पहला दो की कने?
0: नहीं हमारे से कोई रिवाज नहीं है
1: जी।
0: हमारे यहाँ तो जब मुहूर्त निकलवा दियो शादी को उनके बाद जो मतलब पंडित खुद ही निकाल दे फला दिन लगन लिखी जाएगी, उनमें 7 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन
1: ठीक है
0: उनके हिसाब से लगन उन्हीं दिन लगन लिखी जाएगी। लिख करके जिस दिन लगन लिखी जाएगी
1: लगन लिखन कौन कनी देवा जाए? अपने बेटी वाला तरफ से देवा जाए, बेटा वाला वटीन देवा जाए?
0: तो ये लगन लिखी जाएगी बेटी वाला की तरफ से।
1: अच्छा।
0: और बेटी वाला लगन लिखे उन दिन ही वहां से अपने घर का परिवार का 5 आदमी 7 आदमी 11 आदमी
1: अच्छा।
0: या उनकी श्रद्धा के अनुसार उनकी
1: अच्छा।
0: उनको जो मतलब पावना भेजे यहाँ लड़का वाला के यहाँ वे लगन ले रहा है।
1: अच्छा।
0: और फिर वही फंक्शन जो वहाँ लगन लिखाई में हुई हो उसे ही फंक्शन यहाँ होएगो।
1: अच्छा।
0: समाज का सारा समाज का है मिलवा जुलवा लोग है इकट्ठा होएगा और फिर जो मतलब लगन जलाई जाएगी, पंडित आएगो मंत्र बोलेगो।
1: आप मतलब है लगन लड़की वाला अटे लिखे है और पछे लगन लिखी और बाद में बेटी वाला बेटा वाला मतलब जो लड़का वाला अटे जाए है और वो घर की 5 मेंबर 6 मेंबर जो भी आवे वे लगन लेन आवे आवे झिलावे है तो वे सब आया उन्होंने बदान लो आपको धाम धूम थी?
0: हाँ बिल्कुल उनको गाजा बाजा के साथ बजा के लेवा घर में।
1: अच्छा मेहमान ने कोई सीख वीख देनी पड़े बच्चे?
0: लड़की वाला उनको मरते से कोई सीख देवे नहीं, लड़की वाला ले भी नहीं है।
1: जो 5 जना आवे लगन लेन तो उन्होंने सीख देवा रिवाज नहीं है?
0: नहीं कोई रिवाज नहीं सीख देवा,
1: खाली रोटी पानी खाएं जाए।
0: बिल्कुल रोटी पानी खा जाए सीख देवा कोई रिवाज हमारे नहीं।
1: चलो मतलब कोई खर्चा नहीं आप रहे फालतू खर्चा नहीं है ठीक है अच्छी बात है। चलो बताओ कि चलो लगन झेलिया तो मैं अगर 5 दिन रहा आप रहा अगर लगन आया है और 5 दिन में अपने पाठ बैठाना है तो 5 दिन पाठ बैठाओ वनदंती शादी तक कोई बंदोला वंदोला वे आप रहे?
0: हाँ बिल्कुल वो रिवाज सारे ही है जो भी नजदीक का संबंधी है
1: जी।
0: वो बंदोरा देवे बंदोरा में कोई तो मिठाई देवे कोई सगरे बंदोरा देवे तो फिर क्या पूरा परिवार जिम्बा जाए उनके घर पे
1: सगरी बंदोरा?
0: हाँ सगरी बंदोरा पूरा परिवार जिम्बा जाए उनके घर पे
1: मतलब वन में कोई बाकी नहीं सब जाए?
0: हाँ उन घर का सब लोग जावे।
1: अच्छा। सगरी बंदोरा कौन दे ज्यादातर?
0: ज्यादातर जो अपना नजदीक सगा संबंधी है वे देवे।
1: नजदीक में मतलब भाई बहन मासी मसाल?
0: हाँ भाई बहन मासी है ईशा लोग देवे। हाँ जो भी देवे।
1: बेटी भी दिए?
0: हाँ अगर बेटी बहन भी है जो तो भाई को दे भाई को ब्याह है बेटी को बहन को ब्याह है तो आप भी दे सके?
1: दे सके।
0: हाँ दे सके।
1: चलो ठीक है तो 2 टाइम बिंदोला खावा जाओ एक टाइम इस खाए मतलब
0: बिंदोला एक ही टाइम खावा जाओ
1: तो एक टाइम घरे खाना खाए?
0: हाँ एक टाइम फिर अपने हिसाब से
1: ठीक है। चलो शादी में चलो तैयारी की थी शादी री बारात ले जाओ तो बटे का रिवाज में
0: बारात ले जाओ पहला तो बंदोड़ी को रिवाज बंदोड़ी काटे
1: वो तो बिंदोड़ी एक दिन
0: हाँ एक दिन पहला काट ले में फिर दूसरे दिन जो मतलब जो बारात जा रही है ऊँटे घुड़छड़ी करना है हाँ। घर को सारो मतलब जो रीति रिवाज बना रखे हुए
2: हाँ।
0: कि बच्चा के भाभी आंख में काजल डालेगी, माँ बच्चा को जो मतलब दूध पिलाएगी।
2: अच्छा, आज भी रिवाज है?
0: आज भी रिवाज ये है।
2: अच्छा, शास्त्र है मतलब?
0: शास्त्र है।
2: अच्छा,
0: वो सब है जो मतलब करना पड़े।
2: तो क्यों करें मतलब?
0: ये पुरानी पद्धति चली आ रही है
2: जी।
0: और इनमें है जो मतलब ये कोई काटछाट हमने किसी पर ही करी नहीं है।
2: मतलब जो पुरखा रिवाज बना है वेरे वेरे जो आज ले नालो रही आप,
0: वही चल रही हो।
2: ठीक है, तो आप मतलब जो गुर्जर ब्राह्मण में आप जो शादी करवा बटे जाओ तो बारात लेन गया स्वागत करे तो वटे गियो बुटे आपरे जो समाज में कोई रिवाज वे पड़ला पहुंचावा रहे?
0: हाँ, बारात को ठहरावा को इंतजाम जनवासा के नाम से बताया, जनवासा में बारात को ठहरा देवे।
2: जनवासा मतलब क्या है मतलब?
0: जहाँ मारवाड़ी में हमारी भाषा में बारात को जान खेवे।
2: जान?
0: हाँ, जान जा रही है, जान आ रही है,
2: जान आ रही
0: है। हाँ, तो जान को जहाँ ठहराए वो जनवासो खिलावे।
2: जन मतलब अपने घर ती जो जौन लेन जाओ, जौन लेन जाओ, जन ठकोने वन जगह में ठहरावे, जटे बारात ठहरे वन जगह ने जनवासो करे।
0: हाँ, मतलब जान को स्थान दियो ठहरवा को। अच्छा, उनको वास दियो वहां पर।
2: अच्छा,
0: तो जनवासो कहलाए वो।
2: अच्छा,
0: वहां से फिर जो मतलब परिवार का कुछ लोग
2: हाँ,
0: नजदीकी
2: हाँ,
0: वे जो अगर सगाई भी साथ में करी है तो सगाई को सिस्टम भी करवा जावे।
2: अच्छा,
0: और नहीं सगाई पहला कर दी है हाँ, तो पड़लो ले जावे।
2: पड़ला में क्या कर लें जे?
0: पड़ला में जो बिंदनी का जितना भी मतलब पांच बेस है, तीस मेस हैं, ईशा मतलब ले जावे
2: जी।
0: और श्रृंगार को सारा सामान लेके जावे, जेवर जांटो जो भी होए, जो भी चढ़ानो लड़की के
2: हाँ,
0: वो सारो जेवर ले जावे लड़का वाला।
2: जेवर कोई तो नहीं के मोर तो जेवर ए जो जे मतलब कोई मांग तो नहीं बैठी उन्होंने?
0: इसी कोई मांग नहीं है।
2: अच्छा,
0: जो अपनी मर्जी अपनी श्रद्धा है
2: हाँ,
0: उनके अनुसार है जो मतलब हम ले जावा
2: जी। हाँ, और मांग वे किलो चांदी चढ़ावनी है, फलाना है, जेवर लावना है, होनारी लावनी, नत लावनी, टीका लावना है।
0: हमारा समाज बहुत ही गरीबी से ऊंचे उठो हुए है
2: जी जी।
0: और इस तरह का संपन्न लोग था भी नहीं और ऐसा मांग भी नहीं होती थी हमारे यहाँ पे।
2: आज भी मांग नहीं है?
0: और आज भी मांग नहीं है,
2: मतलब बिल्कुल सादा रिवाज है आपरे समाज में। जेरे इंसान री गुदड़ी एरी शादी करे ना वे के?
0: हाँ बिल्कुल, जैसी गुदड़ी इसी शादी, कोई लेन देन नहीं। अगर लड़की वाला अपनी बेटी को कहीं देना चाहे
2: हाँ,
0: तो उसकी मर्जी है,
2: मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है।
0: कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मांग नहीं।
2: ठीक है, चलो अच्छी बात है। आपरे समाज रे मेरा कोई फालतू रिवाज नहीं है, अच्छा रिवाज है, मतलब जो भी खर्चीला रिवाज नहीं है। तो आप बताओ, चलो आप पढ़ लो लेन गया, वरना बाद में फेरा वेरा वे तो वरने बाद में का रिवाज है? फिर बाद में मतलब जान तुरंत दिनों दिन निकले, एक दिन और रोके की कहने?
0: ईशा पढ़ लो लिख गया, पढ़ला के बाद में फिर है जो मतलब वो अपन को टाइम बता दे में कि सब 17 बजे हमारे आप द्वार पे पहुंच जा जो।
2: अच्छा,
0: तो जनवासा से हम बारात की पूरी तैयारी करके
2: हाँ,
0: और ढोल धमाका के साथ, गाजा बाजा के साथ, बैंड बाजा के साथ बारात लेके वहां जावा जा करके, और फिर वहां सबसे पहला हमारे यहाँ पर यहाँ की भाषा में सामेलो खेवे। हमारे यहाँ खेवे ठेक बैठक।
2: ठेक बैठक?
0: ठेक बैठक।
2: ठेक बैठक में का वे मन बताओ थोड़ा?
0: ठेक बैठक में,
2: ठेक बैठक में वे का मन बारे में बताओ।
0: ठेक बैठक में जो मतलब जाजम बिछा दी जावे
2: जी,
0: जाजम बिछा करके
2: हाँ,
0: और बारात के बींद को बिठाया जावे पाटा के ऊपर
2: हाँ,
0: बींद का पिता है, काका है, उनका परिवार का लोग हैं, वो उसके साथ बैठे हैं
2: जी।
0: उसको एक तरफ है जो लड़की वाला बैठे हैं, लड़का वाला बैठे हैं, और एक तरफ लड़की वाला बैठे हैं। उनके बाद पंडित है जो पूजा करावे हैं
2: हाँ,
0: तो क्षत्रिय समाज से हैं हम लोग
2: हाँ,
0: तो वह जो मतलब फिर शस्त्र पूजन भी साथ में, तलवार ले जावा, तलवार से हमारे तोरण मारे
2: जी जी,
0: तो तलवार को भी पूजन करावे हैं। तो उनके बाद फिर है जो मतलब लड़की वाला
2: जी,
0: जो वर पक्ष है हाँ, वर पक्ष वाला को है जो मतलब सांपो बंधावे हैं।
2: करने बंधा सांपो मतलब पिताजी ने बंधा है, बच्चा ने बंधा?
0: वो बच्चा को भी बंधा सके, बच्चा को बंधा सके
2: हाँ,
0: अगर संपन्न है देनो चाहे तो दे सके
2: हाँ,
0: विषयों में कोई ईश्वर नियम नहीं है
2: तो। लेकिन साफा कितना जनन बंधा है
0: वो लड़का वाला उनको बतावे, भाई आपके हमारा परिवार में पांच आदमी है, सात आदमी है, नौ आदमी,
2: इतना जनन है साफा बंधा है
0: हाँ, तो उनके हिसाब से वो साफा ले रहा है
2: हाँ,
0: और वही नाम उनको बता दें, पहला अतर साफा हमारे लगेगा सब उन हिसाब से साफा पहरा।
2: चलो ठेक बैठक हुए तो वन में और कोई बस साफा पहरा और रिवाज हुए, और भी रिवाज हुए कोई?
0: बस साफा पहरा करके आओ भगत करके और माया ले लेवा उनको, ऊँटे हम कोई ठंडो पिलाड़ो करणो है, कहीं भी है कोई हाँ वो उनको करा दे वहां पर, और फिर तोरण मारवा के लिए द्वार पे लिया वहां।
1: पाछो बच्चों घोड़ी माथे बे बस उतरियो, घोड़ी माथे उतरियो बस,
0: नहीं घोड़ी से उतर करके वापस घोड़ी बैठ के तोरण मारे वो।
1: अच्छा घोड़ी ऊपर बैठना तोरण मारला,
2: ठीक है अच्छी बात है।
1: हाँ तो श्रोता बंधुओं,

0: मैं शर्मा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: ब्रेक रे बाद में अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं रो स्वागत है। ना अपने मेहमान भैरु सिंह जी गुर्जर उन्होंने भी स्वागत है जो हाल फिलहाल गांधीनगर में रह रिया है और अपने सेवानिवृत्ति लेन आराम से अपने घरे बैठा है और कुछ समाज सेवा का कार्य भी कर रिया है और समाज में कुरूतियों ने कम कर वास्ते समाज में विकास ला वास्ते कोशिश कर रिया है। तो आप अनौती और अनोरा समाज रा रीति रिवाज जानवा की कोशिश करो हूँ। तो भैरु सिंह जी मु आपने पूछू हूँ कि बताओ, चलो शादी हुई अने बाद में पछे कोई रिवाज वे वरे कोई लेन देन रा वरे दहेज वेज कोई दे रही आप रे?
2: जब तोरण मार दे तोरण मार दे बींदनी की माँ वा आके टीके की बींद को, हाँ टीक के और फिर उनको बाद में अंदर ले लेंगे बींद को, फिर चबरी में जा बैठ जाएंगे वहाँ, फिर जो भी फेरा को टाइम है फेरा हो गया।
1: जब विदाई वे तो अपना कहने कि भाई कोई दहेज वेज दिए आपने दिए?
2: लड़का वाले की तरफ से तो अक्सर कोई मांग होती होवे नहीं और लड़की वालों अपनी तरफ से देना चाहे तो वो है जो मतलब उनको कोई ना भी नहीं है कि अपनी बच्ची को कहीं दे रही होगा, जो उन्हें दे दियो वो सब वहाँ पे है जो सजा के रख दे हुए लोग,
1: ठीक
2: ताकि समाज का लोग भी देख लें भाई बेटी को कहीं दे रही हो कहीं नहीं दे रही हो।
1: चलो आपको भाई और करने पाए दहेज देवान नहीं वे तो की करने?
2: कोई जरूरी नहीं है।
1: अच्छा।
2: कोई जरूरी नहीं है, दो जोड़ी कपड़ा में बेटी को भेज दो ब्याह कर, ईसो भी कर सके लोग,
1: कोई शिकायत नहीं करती?
2: कोई कोई भी शिकायत नहीं है और ना हमारे मांग की प्रथा है ना शिकायत है।
1: अगर कोई जीत करेगा हमारा देश लेना ही चाहिए मैंने तो कोई समाज में बंदिश करे?
2: अभी यहाँ ई एरिया में
1: जी
2: तो ऐसा कोई भी बंदिश है नहीं हमारे,
1: हाँ।
2: और ना कोई दंडित करे कोई को।
1: अच्छा।
2: और ना कोई इसी खाप पंचायत है हमारे यहाँ,
1: हाँ।
2: लेकिन हमारा जो मतलब सघन एरिया है गुजरन का वास है जहाँ पर,
1: हाँ।
2: दौसा बांदीकुई भरतपुर,
1: हाँ।
2: यहाँ वहां पर अगर वहां पंचायत भी बैठे हैं अगर ऐसा कोई अनहोनी मांग करे तो पंचायत वालों को टोक सके
1: तो वे पैसे रिश्तों नहीं करवा दे उन्हें?
2: नहीं रिश्ते तो हो जाए, रिश्ता को तोड़े नहीं है लेकिन हाँ उनको मतलब समझा दे तो मान जाते मान जावे। अच्छा। और अक्सर मतलब 90% हमारे यहाँ हुए नहीं है।
1: आप कोई कोई मांग नहीं है दहेज वास्ते कोई ऐसी डिमांड नहीं करते, समाज में बिल्कुल साफ सुथरा रिवाज है, अच्छा रिवाज है। चलो ठीक है, हमें शादी हुई, हमें अपने समाज में बालिका शिक्षा ने कतरो महत्व है?
2: पहला तो नहीं थी बालिका शिक्षा, लेकिन अब जो समाज सभ्य होते जा रही हो है जो बच्ची को है जो मतलब स्कूल भेजा
1: जी
2: और जहाँ तक वो पढ़े
1: जी
2: वहाँ तक उनको पढ़ावा
1: जी
2: यह रिवाज है।
1: आप कहना बच्चियाँ जटावधि बनो चाहे वटावधि बनाओ पर पहला बच्चियों ने नहीं बनावता, पहला बच्चों क्यों नहीं बनावता?
2: पहला हम भी हमारे बुजुर्ग भी शिक्षित नहीं था,
1: ठीक है,
2: पढ़ा लिखा नहीं था
1: जी।
2: बस वो तो खेती का काम में बस वो बच्चे समझदार हुई और घर का काम में उनको लगा देता।
1: अच्छा।
2: खेती का काम में सहयोग लेता उनसे बच्चे करता अपनी समझदारी के घर को काम सिखाओ बेटी को काल सासरे जाएगी या खेती बाड़ी को काम सिखाओ वहां भी आगे करना पड़ सके।
1: अच्छा, अच्छा।
2: तो उन हिसाब से मतलब पढ़ाता नहीं था, अब जो समाज सब होते जा रही है पढ़ाई साक्षरता आती जा रही है क्यों क्यों बच्ची को पढ़ा रही है और बच्ची जो मतलब पढ़ करके अच्छे अच्छे पद पर भी पहुंची है कई बच्चियां।
1: आप लोग पर्दा पढ़ता तो नहीं है?
2: पर्दा प्रथा है हमारे,
1: हाँ।
2: गांव में है, हाँ। शहर में है जो धीरे धीरे यह प्रथा विलुप्त होती जा रही है।
1: अच्छा। अगर पर्दा प्रथा रो वन्ने बारे में आप लोग का कहना मतलब वेणो जूझी या नहीं वेणो जूझी?
2: अभी आज का सभ्य समाज में पर्दा प्रथा की कोई मतलब वो महत्व नहीं रह गई।
1: अच्छा।
2: पहला लोग है जो मतलब लाज शर्म है जो मतलब करता था सारा करता था,
1: हाँ।
2: परिवार के लोग भी शिक्षा देके भेजता था बेटी को,
1: हाँ।
2: बेटे को सासरा में इनसे पर्दो करनो है घूंघट काटनो या करनो है, लेकिन आजकल है जो धीरे धीरे ये सब खत्म से होती जा रही है
1: जी।
2: और बच्चियां आवे तो घर में जब बहू का ही बहू और बेटी एक सी रहे में।
1: अच्छा। आप क्यों रहा मतलब पर्दा पढ़ता रो एरो को महत्व नहीं, पहला पुराना जमाना में करता ठीक है पर आजकल बेटी ने और बहू ने एक समान समझे आपसे समाज में?
2: हाँ बराबर सही बात है, बेटी और बहू है जो हमारे हम अक्सर लोग जो सभ्य हैं वो तो अभी समझे ही समझे हैं, बाकी जो आज भी देहातन में रह रिया हैं तो उनका देहात का हिसाब से जो मतलब आसपास के लोग वहाँ का वातावरण के हिसाब से
1: जी।
2: वो है जो मतलब पर्दा प्रथा को माने हैं और उन हिसाब से रह रहे हैं वो।
1: आज भी गांव में पर्दा प्रथा है?
2: हाँ गांवन में है, गांवन में उनको मान बिल्कुल मर्यादा से रहे हैं
1: जी।
2: बहुएं कितनी पढ़ी लिखी हो,
1: अच्छा,
2: वहाँ जाएगी तो अगर वहाँ ब्याह कर दियो और गांव में है तो पर्दो करेगी वो।
1: अगर आप भी गांव में जाओ, अपने परिवार बहू जाए आज पढ़ी लिखी है तो आज भी उन्होंने घूंघट काटना पड़े?
2: हाँ, गांव में अगर हमारी बहू यहाँ से पढ़ी लिखी जाए, कोई पढ़ रही है, अच्छा, और अच्छी क्वालिफिकेशन है उनकी, हाँ, अच्छा पद पे भी है
1: जी,
2: लेकिन गाँव में जाएगी तो वहाँ उनको जो मतलब पर्दो करी है।
1: चलो, अच्छा रिवाज है आपका, बिल्कुल साफ सुथरा रिवाज है, और आपने समाज में कोई खर्चीलो रिवाज नहीं है, और मतलब बालिका शिक्षा ने खूब महत्व है आपके समाज में, दहेज प्रथा बिल्कुल समाज में नहीं है, कोई तरह किसी तरह की मांग नहीं है, कोई शादी वेश सगाई वे तो ठीक है, गुर्जर समाज रहा बहुत अच्छा रिवाज है। हाँ, तो श्रोता बंधुओं, अपने मेहमान भैरव सिंह जी गुर्जर साहब है जो अपने समाज रहा रीति रिवाज बता रहा है, पर आपो अनोरा समाज रीति रिवाज और आपो अनौती जोड़ोला प्रवंती पहला एक छोटो सो ब्रेक लो हों, और व्यक्ति पहला एक अपील है आपती के आपरे माती कोई आपरा समाज रीति रिवाज अपना अनुभव समाज रे माए कुरुतियों है तो वन ऊपर बात करवो चाहे तो रेडियो रे नंबर माते जरूर मैसेज कर जो, रेडियो रे नंबर है 94 14 15 14 15। आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो, मुस्कुराता रहो।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: ब्रेक रे बाद में अपनो समाज कार्यक्रम रे मायने रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोताओं रो स्वागत है। ना अपने मेहमान भैरव सिंह जी गुर्जर उन्होंने भी स्वागत है जो हाल फिलहाल गांधीनगर में रह रिया है और अपने सेवानिवृत्ति लेन आराम से अपने घरे बैठा है और कुछ समाज सेवा का कार्य भी कर रिया है और समाज में कुरूतियों ने कम करने वास्ते समाज में विकास ला वास्ते कोशिश कर रिया है। तो आप अनौती और अनोरा समाज रा रीति रिवाज जानवा की कोशिश करो हूँ। भैरव सिंह जी गुर्जर आज आपने गुर्जर समाज रीति रिवाज बता रिया है तो मैं भैरव सिंह जी ने पूछे हूँ कि आपने समाज में कोई बंदूरी मृत्यु हो जाए तो क्या रिवाज करो।
2: हाँ, मृत्यु हो जाए मतलब मृत्यु के टाइम में सगा संबंधी सबन को समाचार दे, सब पहुंची हैं, आ गई हैं, जो जिस निकट संबंधी हो तो उसी हिसाब से तुरंत पहुंचे हैं वहां पर। उनके बाद सूर्यास्त के पहला पहला हम दाग देवा, सूर्यास्त के बाद में दाग नहीं दी जाए हमारा समाज में।
1: ठीक है, जो हर समाज में देख रही हूँ कि जब मृतक हुई है तो तीसरा करो तो क्या रिवाज करो आपने भी।
2: और हमारे यहाँ दाग करा उनके बाद 3 दिन बाद तीसरा करा तो वहां से अस्थियां चुन के लेके आवा,
1: फूल लेवा जाओ, तीसरे दिन जाओ
2: फूल लेके आवा।
1: तो बेटा कोई बनान कुछ ले जाओ,
2: वहीं बनावा,
1: सब कुछ वटेज बनाओ,
2: सब कुछ यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाएगा, वहां ले जाके चाय भी बनाएगा, खीर भी बनाएगा, भोग लगाएगा, मिठाई यहाँ से रेडीमेड तैयार लेके जाएगा।
1: फूल लेना आया तो वह फूल ने पछे आप घर में रखो या पुष्कर जी जाओ या सीतपुर जाओ या नक्की लेक माउंट आबू जाओ या गंगा जी जाओ, आप कटे लेन जाओ।
2: फूल हमारे घर में लेके नहीं आवे, प्लेन को पीपल को झाड़ होए या तो ऊपर टांग देवे या पीपल का पेड़ की जड़ में है जो मतलब गाड़ देवे।
1: अच्छा,
2: और वहां से जिस दिन जावे उस दिन वापस जिस रीति से रिवाज से फूल को वहां से धोर लेके आया था शमशान से वही रीति रिवाज से पूरा वहां फूल को धोएगा और वहां फिर ज्वारा बोएगा, जौ बोएगा।
1: जटा थे फूल वे गाड़ी आता पीपल रे वन में जड़ों में बटे पाचा ज्वारा बोला अन बटाती वे फूल हटावला बिल्कुल शुद्धिकरण कर वरने बाद में लेन जाओला तो घरे लेन नहीं आता आपरे।
2: हाँ, पंचामर से धो करके और फूलन को कुलड़ी में रख के और लेके जो जो गंगा जी जा रही हैं वो है जो उनके गड़ा में पैर लेगा और उनको लेकर के फिर जो मत घर में नहीं आएगा फूल को लेकर वापस। अच्छा। अब वहीं से सीधा गाड़ी में जाएगा।
1: घना समाज में देखो हूँ कि फूल लेन तो घरे आ जाए वरने बाद में मुहूर्त काड़न पछे वे जाए तीसरा हिसाब थी गंगा जी तो गंगा जी तो जाए। चलो आप रखोगे आप फूल घरे नहीं आता जेटे भी पीपल रो पेड़ भी बटे या तो लटका देला वन बांध देला या जमीन में गाड़ देला अन पाचा वन जड़ो माती पाचा जन दन जाएला वन दन लेन जाइला तो जाओ तो घनी टुकड़े देखूँ कि एक मेंबर एक्सपायर हुआ वन मृत्यु हुई है तो वन नौ टिकट अलग लिए आपरे भी रिवाज है।
2: बिल्कुल, यह रिवाज हमारे भी हैं। जो जिको देहांत हुयो है उनका नाम को भी टिकट है जो मतलब लेकर के जाए जितना जा रही है तो उनका तो ले रही है लेकिन जो मृतक है जिसकी अस्थि लेके जा रही है फूल लेके जा रही है उनको नाम को टिकट भी है जो मतलब बराबर पक्को लेके जाएगा
1: लेना पड़े। ठीक है, आप गंगा जी गया गंगा जी पूजन हुई पाछा आया तो गंगा जी लेना आया तो गंगा जल निकालो आपरे।
2: हमारे गंगा जल लेके आवा तो उन टाइम जहाँ पर हम मुझे अस्थि रखी थी वहां से लेके गया था पीपल के नीचे या मंदिर जो भी है वहां है जो मतलब जो जो गंगा जी गया था उनके ससुराल पक्ष का लोग कुछ सापो हैं कमीज है ऐसे कपड़ा ले रहा है वे उनको भेंट करें उनके बाद फिर गंगा जी माथा पर रख के और घर में ला करके और स्थापित कर दें। लेकिन ये गंगा जी जब जिस दिन 12वां को दिन होएगो उस दिन मंदिर से लेकर के आएगा।
1: बार बार बाद में लाना चाहिए बार बार पूजन वो फूटे लाना
2: नहीं 12वां के दिन जब हमारे यहाँ हवन होएगा 12वां के दिन 12वां के दिन ही गंगा जी जहाँ स्थापित किए मंदिर में वहां से लेकर के आएगा।
1: ठीक है, मतलब आपने मनक तो गंगा जल काटे धाम धूम दी काटे 2-4 लाख रुपए खर्च हुए आपने समाज में रहा खर्च हुए।
2: अभी धीरे धीरे ये प्रथा को कम करता जा रहा है लेकिन हमारा जो मतलब बहुत ही आबादी वाला क्षेत्र है गुजरन का और देहात का है वहाँ थोड़ा कहीं कहीं चल रही हो है लेकिन ज्यादातर लोगों ने जो मतलब ये प्रथा को कम करता जा रही है।
1: खर्चीली प्रथा है।
2: हाँ, खर्चीली प्रथा है और उनमें जो मतलब समय की और मतलब धन की बर्बादी है।
1: जी, जी। मतलब आप कहना है जो जो समय निकले रही है आज जो शिक्षित वेताचार्य समाज में लोग तो जागरूक वेताचार्य लोग तो आज एरी प्रथा ने थोड़ी थोड़ी कम करता जा रही है। तो उनमें कोई गंगा प्रसादी रही अलग खानो वे या मृत्यु भोज इसमें
2: बस वो मृत्यु भोज और गंगा प्रसादी हमारे एक ही दिन वो हो जाती है बस।
1: नहीं गणित होने वे के सुबह तो मृत्यु भोज वे तो सुबह हवन वे बारह बारो तो बार बार हवन वो तो वन खाणो करे मृत्यु भोज वन में पूरा समाज जिम्मे कई ठोकने नहीं जिम्मे तो आपरे समाज में मृत्यु भोज समाज जिम्मे या नहीं जिम्मे
2: हवन करवा के बाद में पहला सबसे पहला तो हम बारह ब्राह्मण को जिमावा।
1: बारह ब्राह्मण ने जिमाना जरूरी है।
2: हाँ बारह ब्राह्मण जिमावा। बारह ब्राह्मण जिमा करके उनके बाद फिर जो मतलब समाज का लोग जो भी आया है उनको जिमावा।
1: ठीक है तो मतलब मृत्यु भोज आज भी समाज में है तो कतरा लोग आवे आपरे मृत्यु भोज में
2: ज्यादातर नजदीक का सगा संबंधी आम आदमी आजकल कम हो गया पहला तो खूब आता था।
1: अच्छा।
2: और पूरा समाज आया तो लेकिन अब धीरे धीरे जो मतलब प्रथा को कम करता जा रही है लोगों में समझ आती जा रही है जो एक कुरीति को हटाते जा रही है लोग।
1: तो मतलब गंगा जी जाओ जरूर पर गंगा प्रसाद ही नहीं करता आप रहे।
2: हाँ गंगा जी जावा जरूर और बारवा के रूप में ये जो मतलब कर दे गंगा प्रसाद भी खेवा और बारवा भी खेवा।
1: चलो आपने मतलब एक खर्चा में सब निकाल दो मतलब।
2: हाँ एक खर्चा में जो मतलब ये सब निकल जाओ।
1: चलो अच्छा रिवाज है मतलब आपने जो भी समाज का रिवाज है बिल्कुल कम खर्चीला है साफ सुथरा रिवाज है और अनौती अपने सीखने जो है कि अपो फिजूल खर्ची समाज में नहीं करो जो समाज में जागरूकता लावा की कोशिश करो समाज में अच्छा कार्य करो तो गुर्जर समाज रहा भी बहुत अच्छा समाज रहा रीति रिवाज है और अपने अनौते सीखना जो है कि समाज में दहेज प्रथा ने अनोर स्थान बिल्कुल नहीं है बालिका शिक्षा ने खूब महत्व दे रहा है और अनोर समाज में देखो गंगा प्रसादी भी नहीं करता सिर्फ बार बार भोजन करे है वही समाज रहा लोग जो रिश्तेदार आवे वे करें चले जाए और बस वह गंगा जी जाना है मतलब एरो कोई दबाव नहीं अनोर समाज में कि गंगा प्रसादी करनी जरूरी है या नहीं।
2: हाँ इसको कोई दबाव नहीं है हमारे यहाँ
1: जी
2: कि गंगा प्रसादी करनी ही करनी है और कोई अपनी श्रद्धा से करना चाहे तो अपना हिसाब से जो कितना लोगों को बुलाना है अपनी श्रद्धा से करे लेकिन उनको भी हम तो कम करता हटाता जा रहे हैं। कई जगह दौसा भरतपुर बांदी कोई क्षेत्र है वहाँ तो पंचायत ने ही जो मतलब प्रतिबंध लगा दियो
1: जी कोई अन टाइप रो कोई खर्चो नहीं करेला मृतक वे तो।
2: हाँ पहला तो मतलब आसपास का 20 गांव तो 20 गांव आता था
1: जी, जी।
2: लेकिन अब जो खास सगा संबंधी है वही आवे हैं और वही कार्यक्रम पूरा पूर्ण करके और फिर चले जाओ।
1: तो मृत्यु भोज में कोई मिठाई विठाई तो नहीं बनाता खाली बस दाल रोटी बनावे
2: नहीं वो मैं जो मिठाई बनावा नुक्ती बनावा है चक्की बनावा है तो पूड़ी बनावा है सब्जी है
1: कोई मरिया हुआ तो क्या मीठो मीठो करना घर में तो अपना शोक हुआ है।
2: हाँ शोक तो ये है लेकिन क्या जैसे जवान मौत होती है तो जवान मौत में तो कई बारह ब्राह्मण ही कर दे समाज को जिमावा ही नहीं हो
1: बारह ब्राह्मण ने पे दक्षिणा देनी पड़े।
2: हाँ पूरी ब्राह्मण जितना भी आए बारह ब्राह्मण उनको सबको भोजन कराएगा भोजन के बाद उनको जो दान दक्षिणा देगा उनसे आशीर्वाद लेगा
1: जी
2: सुख शांति के लिए परिवार में घर में।
1: चलो अच्छा रिवाज है तो भैरव सिंह जी चलो आप रिवाज समाज रहा बताया आपने धन्यवाद है रेडियो मधुबन आप आभार प्रकट करे है पर हमें आपने आज रेडियो पर खूब मन खोबले रिया है तो आपने केरो लाग रिया
2: मधुबन रेडिया ने ब्रह्मा कुमारी आके और हमारा यहाँ का क्षेत्र का लोगों को खूब ही माकर आकर्षित कर दिया है। स्कूल का बच्चा है जो वहाँ जो मधुबन रेडिया उनको बुलाए वहाँ जाके अपना अपनी योग्यता अनुसार अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है अपना गीत गा रही है भजन गा रही है समझे और वो अपनी बता रही है अपना टैलेंट बता रही है बच्चा
1: जी, जी।
2: हमारे यहाँ से भी कई बच्चा गया है
1: जी।
2: मेरी बेटी को बेटो है परीक्षित गुर्जर वो मधुबन रेडियो में कई बार गानों का बाकी बुलाया और उन्होंने कई बार गानों गाया वहाँ जाकर के और भी लोग आवे उनको प्रोत्साहित भी करें आगे बढ़वा की उनको मतलब उम्मीद भी जगावे।
1: आपने क्या लग रही है आज
2: बहुत अच्छा लग रही है मेरे को
1: आज आपने अपना समाज रहा रीति रिवाज बताओ रहा आज मौको मिल लिया तो आपने क्या महसूस कर रही है
2: आज एक मधुबन रेडिया ने मेरे को एक अवसर दिया है
1: जी।
2: तो मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं मेरे समाज के जो मतलब जो भी रीति रिवाज हैं उनको बताऊं हूं और सब समाज वालों को संदेश दूं कि जहां भी कोई कुरीति चल रही है तो उन कुरीति को जो दिन पे दिन अपन खत्म करते जाओ वहां बिल्कुल कुरीति हटा दो। हमारे यहाँ भ्रूण हत्या नहीं के बराबर है दहेज प्रथा नहीं के बराबर है और मृत्यु भोज भी हमारे यहाँ धीरे धीरे खत्म होते जा रही हो।
1: तो भैरव सिंह जी आप समाज रहा लोगों वास्ते संदेश का भाई आज समाज में बेटियों की खूब कमी हुई है घना समाज में देखो आज बेटियों अतरी कम है कई समाज में लड़का आज कुंवारा फरे रिया है कि उन्होंने जोड़ा नहीं मिले रिया लड़कियों वास्ते तो आप रो समाज लोगों वास्ते का संदेश है बेटियों की संख्या बढ़ा वास्ते।
2: मैं तो सबसे पहला भ्रूण हत्या खत्म बिल्कुल बच्ची इनको पढ़ाओ बच्ची बच्ची इनको पढ़ाएगा पढ़ा करके उनको शिक्षित करो
1: जी।
2: समाज के अंदर जो भी कुरीति है उनको खत्म करो और ये ही नहीं, मैं तो जो सरकार ने नियम चलाई है कि योजना कि बेटी बचाओ भ्रूण हत्या को खत्म करो, मैं तो उनको पूर्व सहयोगी हूँ और हमारा समाज में 90% से ऊपर इशू है ही नहीं। और आज भी समाज के लोगों को संदेश दूं मैं कि जहां तक हो बच्ची को खूब अच्छी तरह पढ़ाओ, लड़का लड़की को एक समान समझो और जो भी मृत्यु भोज का कोई कहीं चल रहा कार्यक्रम उनको खत्म करो और समाज को उन्नति की राह पर ले जाओ।
1: श्रोता बंधुओं, आज भैरव सिंह जी गुर्जर है जो उन्होंने अपना समाज रा रीति रिवाज बताया है और अनोरो संदेश है कि बेटियों ने बचावनी है, कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी है, बेटा और बेटी समान समझना है, अगर बेटी बेटे खुशी मनाओ और बेटो बेटे खुशी मनाओ। तो अनोर समाज में भी आज बेटा बेटी ने समान समझे रिया है और आज तक बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं समझे रिया है, तो अच्छी बात है। अपने अनोर समाज से सीखना जोजिए और बेटियों ने खूब पढ़ाओ, अपने आसपास रा वातावरण ने साफ सुथरा रखो। जो मोदी जी रा अभियान है कि अपने भारत देश ने स्वच्छ भारत बनाना है, तो अपने पहला अपने घर रे आसपास साफ सफाई रखनी जरूरी है। और हमें मुकेशी जिनकर समय देखता खातर अपनी वाणी ने विराम दे हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें,

0: नमस्ते दोस्तों, चलिए जल्दी से मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। लेकिन दोस्तों, चुपचाप जाना मीना के पास, क्योंकि उसकी बहन जी पूरी क्लास को कुछ बता रही हैं।
1: प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो, कल हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव है और कल स्कूल में एक खास मेहमान आने वाले हैं।
2: कौन बहन जी?
1: भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी मोहित सिंह।
2: हाँ, मोहित सिंह।
1: हाँ सुनील, स्पिन गेंदबाज मोहित सिंह। वो तुम सबसे मिलेंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हें ऑटोग्राफ भी देंगे।
3: मजा आएगा।
2: सुनील, कहाँ जा रहे हो?
4: बाजार, लाला जी की दुकान पे नया बैट खरीदने।
2: तुम्हारा क्रिकेट का मैच है क्या?
4: नहीं मीना, वो तुम तो जानती हो मुझे मोहित सिंह कितना अच्छा लगता है।
2: हाँ, ये बात तो सब जानते हैं।
4: कल जब मोहित सिंह हमारे स्कूल में आएंगे तो मैं अपने नए बैट पे उनका ऑटोग्राफ लूंगा।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
4: चलो।
5: आओ आओ बच्चों, क्या लेना है खंभा उखाड़ के?
4: लाला जी, कोई बढ़िया सा क्रिकेट बैट दिखाइए।
5: बेटा ये देखो, कई तरह के बैट हैं, एक से बढ़कर एक, जो अच्छा लगे ले लो खंभा उखाड़ के।
4: हाँ ये वाला। नहीं, ये तो बहुत हल्का है। ये नहीं नहीं, इसका हैंडल कमजोर लग रहा है। ये वाला। हाँ ये है बढ़िया बैट। लाला जी ये वाला।
5: वाह बेटे वाह, माननी पड़ेगी तुम्हारी पसंद, एकदम चुन के बैट निकाला है।
4: कितने का है ये बैट लाला जी?
5: बहुत सस्ता है बेटे, सिर्फ 200 रुपए का। इससे सस्ता बैट मेरी दुकान में है ही नहीं खंबा उखाड़ के।
4: लाला जी मेरे पास तो 150 रुपए ही है, मेरे गुल्लक में बस इतने ही थे।
5: कोई बात नहीं बेटा, घर जाओ, 50 रुपए

0: और लाओ, फिर ये बैट ले जाओ खंबा उखाड़ के।
1: चलो मीना।
2: सुनील, इसमें उदास होने की क्या बात है? मोहित सिंह का ऑटोग्राफ तो तुम क्रिकेट बॉल पे या फिर अपनी डायरी में भी ले सकते हो।
1: नहीं मीना, नए बैट पे ऑटोग्राफ लेने की बात ही अलग होती।
3: चूड़ी वाला, चूड़ी वाला।
2: सुनील चलो ना, चूड़ियाँ देख कर आते हैं।
1: तुम जाओ मीना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा।
2: ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई,
1: कहीं जाना मत।
4: मीना 5-10 मिनट चूड़ियों की दुकान पे रुकी और जब वो वापस आई तो
2: सुनील, सुनील कहाँ गया? सुनील, सुनील,
1: मीना,
2: सुनील कहाँ चले गए थे तुम? और ये क्या खा रहे हो?
1: बर्फी।
2: बर्फी? तुमने ये बर्फी कहाँ से?
1: रमेश भैया ने दिया है।
2: रमेश भैया? ये रमेश भैया कौन है?
1: पता नहीं, मैं भी उनसे आज पहली बार ही मिला हूँ।
2: मैं कुछ समझी नहीं।
1: जब तुम चूड़ी वाले की दुकान पे गई थी तब एक आदमी ने मुझे इशारे से बुलाया, वहाँ लाला जी के दुकान के पीछे। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे अपना नाम रमेश बताया और ये बर्फी दी। पता है मीना, रमेश भैया मुझे बैट खरीदने के लिए पैसे भी देंगे और बर्फी बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी खाओ।
2: नहीं सुनी, भूल गए? बहन जी ने कहा था कि हमें कभी भी किसी अनजान आदमी से कोई मिठाई या खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए।
5: सुनील।
1: अरे रमेश भैया, मीना यही है रमेश भैया।
5: कैसी हो मीना?
2: सुनील चलो यहाँ से।
1: लेकिन मीना।
5: सुनील तुम्हें मेरे घर चलना होगा, ज्यादा दूर नहीं है। अब वो क्या है ना, मेरा बटुआ घर पर ही रह गया है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बैट खरीदने के लिए पैसे दे दूंगा।
2: सुनील चलो यहाँ से, मेरी गुल्लक में पैसे हैं, तुम उन पैसों से अपना बैट खरीद लेना, अभी यहाँ से चलो बस।
1: ठीक है। रमेश भैया अभी हमें जाना है, मैं आपके घर कल आ जाऊंगा।
5: सुनील वो देखो, वहाँ उस पहाड़ी के पीछे कच्ची ईंटों वाला मकान है, वही है मेरा घर, कल याद से आ जाना।
4: और जब मीना और सुनील मीना के घर पहुँचे तब
1: मीना, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे गुल्लक में पैसे हैं?
2: सुनील मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम उस रमेश भैया के घर ना जाओ। बहन जी कहती है कि हमें किसी भी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।
1: अब नया बैट कैसे आएगा?
2: सुनील तुम चाचा जी से बात क्यों नहीं करते?
1: नहीं मीना, पिताजी से पैसे मांगते हुए मुझे डर लगता है, वैसे भी वो मेरी कोई भी बात ध्यान से कहाँ सुनते हैं।
4: सुनील उदास होके अपने घर चला गया और अगले दिन स्कूल में।
2: बहन जी मोहित सिंह जी 2-3 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सुनील अभी तक स्कूल आया ही नहीं।
6: ये कैसे हो सकता है, सुनील तो मोहित सिंह का बहुत बड़ा फैन है।
2: बहन जी कल सुनील और मैं बाजार गए थे, वहाँ उसको।
4: मीना ने बहन जी को सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद बहन जी ने सुनील के घर जाने का फैसला किया।
7: क्या सुनील स्कूल नहीं पहुँचा? लेकिन बहन जी वो तो सुबह ही स्कूल के लिए घर से निकल गया था।
2: बहन जी इसका मतलब सुनील बाजार गया होगा बैट खरीदने। चाचा जी क्या सुनील ने आपसे कुछ पैसे मांगे थे बैट खरीदने के लिए?
7: मीना बेटी कल रात को सुनील मुझसे कुछ बात तो करना चाह रहा था, लेकिन मैं अपने काम की वजह से थोड़ा परेशान था तो मैंने ध्यान नहीं दिया और उसे चुप रहने को कहा।
2: बहन जी कहीं सुनील उस रमेश भैया के घर तो नहीं चला गया?
7: रमेश भैया? कौन रमेश भैया?
4: मीना ने सुनील के पिताजी को सारी बात बताई, जिसे सुन के सुनील के पिताजी बोले,
7: बहन जी मुझे सुनील की बहुत चिंता हो रही है।
6: भाई साहब मीना जानती है रमेश का घर, हमें तुरंत वहाँ जाना चाहिए।
7: आप ठीक कह रही हैं बहन जी, चलिए आओ मीना बेटी।
2: बहन जी यही है वो कच्ची ईंटों वाला मकान,
6: लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है।
2: जी मिट्टू ने उस खिड़की से अंदर झांक के देखा है, ये कह रहा है कि अंदर सुनील रस्सी से बंधा हुआ है।
7: सुनील अब क्या करूं? बहन जी ये देखिए पास में एक और दरवाजा है, अभी तोड़ता हूँ इसे। सुनील मेरे बच्चे तुम्हें ऐसे रस्सियों से किसने बांधा?
6: हेलो इंस्पेक्टर साहब।
4: बहन जी ने तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रमेश एक खतरनाक अपराधी था जो भोले भाले बच्चों को रुपए पैसे चॉकलेट मिठाई वगैरह का लालच देके उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था और उन्हें शहर ले जाके उनसे मजदूरी करवाता था। सुनील को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहन जी से बोला,
1: मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, ना मैंने आपकी बात याद रखी ना ही मीना की बात मानी।
7: माफी तो मुझे भी मांगनी है बहन जी, अगर कल रात को मैंने सुनील की बात सुनी होती तो आज ये इस मुसीबत में ना फंसता।
6: भाई साहब, हर बच्चे के माता पिता को अपने घर का माहौल ऐसा रखना चाहिए जिसमें बच्चा खुद को आजाद, खुश और सुरक्षित महसूस करे। माता पिता को बच्चे के साथ एक दोस्ती का रिश्ता भी बना के रखना चाहिए ताकि बच्चा उनसे अपने दिल की बात करते हुए झिझके नहीं, क्योंकि जिन बच्चों को घर में प्यार और सही सलाह नहीं मिलती वो रमेश जैसे अपराधियों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं।
7: बहन जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं सुनील का पिता ही नहीं बल्कि इसका दोस्त भी बनकर रहूँगा।
1: बहन जी, मैं भी ये वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी अनजान आदमी पे विश्वास नहीं करूँगा।
6: शाबाश सुनील, चलो अब जल्दी से स्कूल चलते हैं, तुम्हें मोहित सिंह जी से भी तो मिलना है।
4: मीना और सुनील बहन जी के साथ जल्दी से स्कूल पहुँचे। और दोस्तों, जानते हो मोहित सिंह ने सुनील को किस चीज पे अपने ऑटोग्राफ दिए? एक नए बैट पर, जो सुनील के पिताजी उसके लिए लाए थे। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता।
1: अनजाने लोगों के झांसे में तुम कभी ना आना,
8: दूर ही रहना उनसे, तुम ना उनको दोस्त बनाना।
4: वाह, क्या बढ़िया कविता लिखते हैं अपने मीना और मिट्ठू। दो पंक्तियों में कितनी गहरी बात समझा जाते हैं, है ना? चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, खूब पैसे कमाओगे।
1: बेटी मेरे साथ शहर चलो, तुम्हें टीवी फिल्मों में काम दिलवाऊंगा, खूब नाम।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया। चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो आज का शब्द है मदद। मदद का मतलब पता है बच्चों?
3: मदद का मतलब होता है सहायता।
1: शाबाश सुनील। चलो बच्चों अब मदद के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
3: बहन जी मदद का पहला अक्षर है म और

0: आता है और द से होता है दांत।
1: शाबाश। और दांत से जुड़ा मुहावरा कौन बताएगा?
2: दांतों तले उंगली दबाना, और इसका मतलब होता है बहुत हैरान होना।
1: शाबाश मीना, मजा आया ना बच्चों?
3: जी बहन जी।
4: मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
2: दोस्तों, चिट्ठी जरूर लिखना, मैं आपके पत्रों का इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100-3।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: चुलबुली चीनी।
2: चीनी अपनी तीन मंजिला बिल्डिंग की छत पर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी।
3: अरे तेज भागो, नहीं तो हम हार जाएंगे।
4: हुर्रे, हम जीत गए।
2: अचानक इस बिल्डिंग में कोई है क्या?
3: लगता है कोई हमें आवाज लगा रहा है। चलो देखे कौन है।
2: चीनी ने छत से ही आदमी से पूछा,
3: तुम्हें क्या चाहिए?
5: बच्ची जरा नीचे आओ, फिर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा।
3: ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ।
2: चीनी तेजी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई।
3: हाँ अब बताओ क्या बात है।
5: मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे खाने के लिए या कुछ रुपये दे दो बेटी।
3: ये आदमी हट्टा कट्टा है और अपाहिज भी नहीं है, फिर यह भीख क्यों मांग रहा है?
2: चीनी सीढ़ियों पर आ गई और बोली,
3: मेरे पीछे आओ।
5: लगता है ये लड़की मुझे खाने के लिए अच्छी चीज देने वाली है।
2: चीनी के साथ भिखारी भी छत पर पहुंच गया।
3: माफ करना, पर तुम्हें देने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही खाना।
5: क्या?
3: मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मम्मी कहती है कि भीख मांगना गंदी बात है। तुम तो हट्टे कट्टे हो और अपाहिज भी नहीं हो, मेहनत करके क्यों नहीं कमाते हो? अब तुम जाओ।
5: ये तो तुम नीचे भी कह सकती थी, फिर मुझे ऊपर क्यों लाई?
3: अगर तुम मुझे खाना मांगने के लिए नीचे नहीं बुलाते, तो मैं भी मना करने के लिए तुम्हें ऊपर नहीं बुलाती।
6: ओए रुको, रुको, ओए रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको? ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
7: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
6: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
8: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
9: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 4 की ध्वनि पुस्तक गणित का जादू, 10वां पाठ पैटर्न, पृष्ठ 107। टीनू ने इस ब्लॉक की मदद से एक साड़ी बनाई है। यहां पर एक साड़ी का चित्र है जिस पर एक ब्लॉक की मदद से डिजाइन बना हुआ है। फिर उसने ये चादर भी इसी ब्लॉक से बनाई। यहां पर एक चादर का चित्र है जिस पर ब्लॉक से बने हुए डिजाइन हैं, पृष्ठ 108। उसने इस ब्लॉक की मदद से यह दुपट्टा भी बनाया। यहां पर एक दुपट्टे का चित्र है जिस पर ब्लॉक की मदद से विभिन्न डिजाइन बने हैं। क्या तुमने देखा कि टीनू ने एक ही ब्लॉक के प्रयोग से अलग अलग पैटर्न कैसे बनाए? अब तुम भी इस ब्लॉक की मदद से तीन अलग अलग पैटर्न बनाओ, पैटर्न एक, पैटर्न दो और पैटर्न तीन। यहां पर तीन आयताकार चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र को 14 बराबर भागों में बांटा गया है। अब तुम इस ब्लॉक की मदद से यहां पर अलग अलग पैटर्न बनाओ, पृष्ठ 109। यामिनी ने अपने ब्लॉकों से अलग अलग पैटर्न बनाए। क्या तुम इन पैटर्नों को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हो? यहां पर तीन पैटर्नों के चित्र हैं। पहले चित्र में पत्तियां दिखाई गई हैं। इसके पहले भाग में एक पत्ती, दूसरे भाग में दो पत्तियां, तीसरे में तीन पत्तियां, चौथे भाग में चार पत्तियां और पांचवें भाग में फिर एक पत्ती दिखाई गई है। अब तुम इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए खाली स्थान भरो। दूसरे चित्र में तीरों के निशान हैं। पहले भाग में दो तीरों के निशान ऊपर की तरफ, दूसरे में दो तीरों के निशान नीचे की तरफ, तीसरे भाग में तीन तीरों के निशान ऊपर की तरफ और चौथे भाग में तीन तीरों के निशान नीचे की तरफ हैं। अब तुम खाली स्थानों में इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तीसरे चित्र में गोले बनाए गए हैं। यहां पर तीन गोले दर्शाए गए हैं। प्रत्येक गोले को चार बराबर भागों में बांटा गया है। हर गोले का एक भाग रंगा हुआ दिखाया गया है। पहले गोले के चार भागों में से दाहिनी ओर का ऊपर का भाग रंगा हुआ है। दूसरे गोले में दाहिनी तरफ का नीचे का भाग रंगा हुआ है और तीसरे गोले में बाईं तरफ के नीचे का भाग रंगा हुआ है। अब तुम इन खाली स्थानों में इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। हम संख्याओं और अक्षरों से भी पैटर्न बना सकते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देखो और आगे बढ़ाओ। यहां पर चार चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं। पहले चित्र के छह भाग हैं। इसके पहले भाग में ए बी सी, दूसरे में डी ई एफ और तीसरे भाग में जी एच आई लिखा है। अब तुम इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। दूसरे चित्र में कुछ संख्याएं और अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। पहले खाने में 28 जेड, दूसरे खाने में 27 वाई और तीसरे खाने में 26 एक्स लिखा है। अब तुम बचे हुए खानों में इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तीसरे चित्र में कुछ संख्याएं लिखी हैं जो इस प्रकार हैं। पहली संख्या 864, दूसरी संख्या 764, तीसरी संख्या 664। अब तुम बाकी बचे हुए स्थानों में इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ। चौथे और अंतिम चित्र में भी कुछ संख्याएं लिखी हैं जो इस तरह हैं। पहले भाग में 9, दूसरे भाग में 109 और तीसरे भाग में 209 लिखा है। अब तुम इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं को आगे बढ़ाओ। संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न खुद बनाओ। यहां पर दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में छह आयत एक के साथ एक जुड़े हुए दिखाए गए हैं। पहला आयत नीचे से चौड़ा, दूसरा ऊपर से चौड़ा, तीसरा नीचे से चौड़ा, चौथा ऊपर से, पांचवा नीचे से और छठा ऊपर से चौड़ा दिखाया गया है। और दूसरे चित्र में आधे गोले दिखाए गए हैं। पहला आधा गोला ऊपर से सपाट, नीचे से गोलाई, दूसरा गोला ऊपर से गोलाई, नीचे से सपाट, तीसरा गोला ऊपर से फिर सपाट, नीचे से गोलाई, चौथा गोला नीचे से सपाट ऊपर से गोलाई, पांचवा गोला ऊपर से सपाट नीचे से गोलाई और छठा गोला ऊपर से गोलाई और नीचे से सपाट दिखाया गया है। पृष्ठ 110। अब बिना संख्याओं का पैटर्न बनाओ। यहां पर एक चित्र है जिसके छह बराबर भाग दिखाए गए हैं। कोई संख्या दोबारा ना आए। दिए गए संख्या चार्ट को देखो, क्या तुम्हें कोई पैटर्न नजर आया? यहां पर एक वर्ग का चित्र है जिसके नौ बराबर भाग हैं और जिसमें एक दो और तीन संख्या लिखी हुई है जो इस प्रकार हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन बाएं से दाएं तरफ एक दो तीन, उसके नीचे तीन एक दो और सबसे नीचे दो तीन एक। इन संख्याओं में एक को नीले रंग से, दो को पीले रंग से और तीन को गुलाबी रंग से रंगा गया है और साथ ही दो बच्चों के चित्र भी हैं। लड़की कहती है, किसी भी लाइन में कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। इसी तरह तुम भी ए बी सी को दिए गए बॉक्स में लिखो, कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। यहां पर एक वर्ग बना है, उसके 9 भाग हैं। अब तुम इन भागों को ए बी और सी अक्षर से भरो। ध्यान रहे कि कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। शिक्षकों के लिए निर्देश, यहां पर पंक्ति और स्तंभ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, पर लाइन शब्द का इस्तेमाल करते हुए अध्यापक पंक्ति और स्तंभ की धारणा पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। पृष्ठ 111। जादुई पैटर्न। 1 से 7 तक की संख्याओं के इस पैटर्न को देखो। हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। यहां पर 7 सितारों की मदद से बनाया हुआ एक पैटर्न दिखाया गया है। इस चित्र में सबसे ऊपर 3 सितारे हैं, उसके बाद 1 सितारा और सबसे नीचे 3 सितारे हैं। सबसे ऊपर वाले सितारों में लिखी संख्याएं इस प्रकार हैं, 2, 3, 7। बीच वाले सितारे की संख्या 4 और सबसे नीचे के सितारों की संख्या 1, 5, 6। दूसरे चित्र में 9 तारे दिखाए गए हैं। हर पंक्ति में 3-3 तारे हैं। अब तुम 1 से 9 तक की संख्याओं को इन तारों में भरो। नियम यह है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 आए। जादुई तिकोन। अंकों के इस पैटर्न को देखो। नियम, तिकोन की हरेक लाइन की संख्याओं का जोड़ 9 है। पहले गोले में 3 जमा दूसरे गोले में 4 जमा तीसरे गोले में 2 बराबर 9। अब यह भी देखो कि तिकोन की बाकी 2 लाइनों का जोड़ भी 9 होता है या नहीं। यहां पर एक चित्र में त्रिभुज दिखाया गया है जिसमें 6 गोले बनाए गए हैं। इन गोलों में 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हैं, जो इस प्रकार हैं। ऊपर से नीचे बाई तरफ 3, 4 और 2 लिखा है। नीचे से दाई तरफ 2, 6 और 1 लिखा है और दाई से ऊपर की तरफ गोले में 1, 5, 3 लिखा है। पृष्ठ 112। 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपना जादुई तिकोन बनाओ। नियम, हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 10 आना चाहिए। अब तुम 1 से 6 तक की संख्याओं को इन तारों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक लाइन का जोड़ 10 आए। यहां पर एक और त्रिभुज बना है जिसमें 6 तारे हैं। संख्याओं की मीनार। संख्याओं को मीनार की तरह लगाया जा सकता है। इस संख्या पैटर्न को समझने के लिए नीचे से शुरू करो। यहां पर संख्याओं का एक मीनार दिखाया गया है जिसमें सबसे ऊपर 1 वर्ग है, उसके नीचे 2 वर्ग और सबसे नीचे 3 वर्ग बनाए गए हैं। सबसे ऊपर वाले वर्ग में लिखा है 80, उसके नीचे लिखा है 30 और 50 और सबसे नीचे लिखा है 10, 20 और 30। क्या तुम्हें यहां कोई नियम दिखाई दे रहा है? नियम, नीचे की 2 संख्याओं को जोड़कर ऊपर की संख्या बनती है। इस पृष्ठ के अंतिम भाग में संख्याओं के 2 मीनार दिए गए हैं जिनमें एक तरह की ही संख्याएं लिखी हैं। जैसे पहली मीनार में 80, 30 और 10 संख्याएं नीले वर्ग में दर्शाई गई हैं और 50, 20 और 30 संख्याओं को लाल वर्ग में दिखाया गया है। संख्याओं की दूसरी मीनार में सबसे ऊपर लाल वाले वर्ग में 80, उसके नीचे लाल वाले 2 वर्गों में 30 और 50 और सबसे नीचे नीले वाले 3 वर्गों में 10, 20 और 30 लिखा है। संख्याओं की दूसरी मीनार में 80, 30 और 50 को लाल वर्ग में और 10, 20 और 30 संख्याओं को नीले वर्ग में दर्शाया गया है। पहली संख्याओं के मीनार के नीचे लिखा है 20 + 30 = 50 और दूसरी संख्याओं के मीनार के सामने लिखा है 30 + 50 = 80। पृष्ठ 113। इसी नियम को मानते हुए नीचे दिए संख्या मीनारों को पूरा करो। यहां पर संख्याओं की दो मीनारें दिखाई गई हैं। पहली संख्या मीनार में 10 गोले हैं, 5 गोले खाली हैं और 5 गोलों में संख्याएं लिखी हैं। पहली संख्या मीनार में सबसे नीचे वाली पंक्ति में 5, 10, 15 और 20 लिखा है और उससे ऊपर वाली पंक्ति में 10 और 15 के ऊपर 25 और उसके अगल बगल वाले 2 गोले खाली हैं। उसके ऊपर 2 गोले खाली और सबसे ऊपर वाला 1 गोला खाली है। अब आपको पिछले पृष्ठ के नियम को देखते हुए इन खाली गोलों में सही संख्या भरनी है। दूसरी संख्या मीनार में 15 ईंटें दर्शाई गई हैं। इन्हें 5 पंक्तियों में दिखाया गया है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 5 ईंटें हैं जिन पर अंक लिखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इसके ऊपर की 4 ईंटें खाली हैं, उसके ऊपर की 3 ईंटें खाली हैं, उसके ऊपर की 2 और सबसे ऊपर की 1 ईंट खाली है। अब आपको इसी नियम को देखकर खाली ईंटों पर सही संख्या लिखनी है। बराबर जोड़ का नियम। कुछ दोस्त संख्या कार्डों के साथ खेल रहे हैं, देखो वो संख्याओं को कैसे जोड़ रहे हैं। यहां पर एक चित्र में 6 बच्चे दिखाए गए हैं जिनके हाथ में एक कागज है और उन पर संख्याएं लिखी हुई हैं। ये संख्याएं इस प्रकार हैं। बाएं से पहला 11, उसके बाद दाहिनी ओर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 16, और दाएं से पहला 16, फिर बाई तरफ 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12 और फिर 11। क्या तुम वो नियम ढूंढ सकते हो जिससे हर बार संख्याओं का जोड़ बराबर आ रहा है? नियम: संख्याओं का जोड़ बराबर आएगा अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें, बाएं से पहली और दाएं से पहली, बाएं से दूसरी और दाएं से दूसरी, बाएं से तीसरी और दाएं से तीसरी। यहां पर एक चित्र है जिसमें 3 पंक्तियों में संख्याएं दिखाई गई हैं जो इस प्रकार है। पहली पंक्ति की संख्याएं 11 + 16 = 27। दूसरी पंक्ति की संख्याएं 12 + 15 = 27 और तीसरी पंक्ति की संख्याएं 13 + 14 = 27। यहां पर एक और चित्र है जिसमें 4 खाने दिखाए गए हैं और उसके नीचे दूसरे चित्र में 2 पंक्तियों में खाली स्थान दर्शाए गए हैं। दूसरा चित्र इस तरह से है। पहली पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान, दूसरी पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। अब तुम कोई भी संख्या लिखो और फिर उससे अगली 3 संख्याएं लिखो। इसी नियम को मानते हुए एक पैटर्न बनाओ। पृष्ठ 114। जोड़ के पैटर्न। यहां पर 3 पंक्तियों में संख्याओं का जोड़ लिखा है। आओ इन्हें पढ़ते हैं। पहली पंक्ति 1 + 2 + 3 = 6। दूसरी पंक्ति 2 + 3 + 4 = 9। तीसरी पंक्ति 3 + 4 + 5 = 12। यहां पर पान के आकारों में कुछ संख्याएं लिखी हैं और साथ ही एक लड़की का चित्र है जो कह रही है, ओ हर जोड़ पिछले जोड़ से 3 ज्यादा है। और ये जोड़ इस तरह से हैं। पहली पंक्ति का जोड़ 6, दूसरी पंक्ति का जोड़ 9 और तीसरे पंक्ति का जोड़ 12, यानी 6 जमा 3 बराबर 9 जमा 3 बराबर 12। दूसरे चित्र में पत्ते नुमा आकार में कुछ संख्याएं लिखी हैं। ये संख्याएं 3 पंक्ति में हैं। आइए अब इन्हें पढ़ते हैं। पहली पंक्ति की संख्याएं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 10। दूसरी पंक्ति 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 बराबर 14। और तीसरी पंक्ति 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 बराबर 18। और साथ ही एक बच्चे का चित्र बना है जो कह रहा है, यहां हर जोड़ पिछले जोड़ से 4 ज्यादा है। ये जोड़ इस प्रकार ज्यादा है, पहली पंक्ति का जोड़ 10, दूसरी पंक्ति का जोड़ 14 और तीसरी पंक्ति का जोड़ 18, यानी 10 जमा 4 14, 14 जमा 4 18। अब तुम 5 संख्याओं के साथ पैटर्न बनाने की कोशिश करो। यहां पर आयताकार खाली चित्र बने हैं। आयताकार चित्रों की 5 पंक्तियां हैं। अब हम इन्हें पढ़ते हैं और आपको यहां पर खाली स्थानों में 5 संख्याओं के साथ पैटर्न बनाना है। पहली पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। दूसरी पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। तीसरी पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। चौथी पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। और पांचवी पंक्ति रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान जमा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। क्या हर बार हर जोड़ पिछले जोड़ से 5 ज्यादा है? पृष्ठ 115। गुप्त संदेश। यहां पर एक लड़की और एक लड़के का चित्र बना है। लड़की कहती है, तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला, मेरे दोस्त ने जो पत्र मुझे दिया है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे देखने दो। हैं? ये तो कोई गुप्त संदेश लग रहा है। यहां पर दो बच्चों के चित्र हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की है। इन दोनों ने अपने हाथ में एक कागज पकड़ रखा है जिस पर कुछ अंक लिखे हैं। पहली पंक्ति में लिखे हुए अंक हैं 7, 15, 15, 4 और दूसरी पंक्ति के अंक हैं 14, 9, 7, 8 और 20। यामिनी ने नियम समझाया। अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया है, जैसे जे बराबर 10 है, पी बराबर 16 है, अतः जे यू एम पी हो जाएगा 10, 21, 13 और 16। इस सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से पूरी करो। यहां पर एक चित्र में 2 पंक्तियों में एक सूची है। पहली पंक्ति में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं, ए बी सी डी और ई। और दूसरी पंक्ति में कुछ संख्याएं लिखी हैं, जो इस तरह हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब तुम अक्षरों और संख्याओं की मदद से इस सूची को पूरा करो। टीनू अपने दोस्त को गुड मॉर्निंग लिखकर देना चाहती है। इस नियम को मानते हुए उसे क्या लिखना होगा? रिक्त स्थान। इस खाली जगह में तुम अंग्रेजी अक्षरों को देखकर सही संख्याएं लिखो। अगर हम नियम को बदल दें और बी के स्थान पर 1 लिख दें, डी के स्थान पर 3 लिख दें और इस तरह लिखते जाएं, तो हम लेट अस डांस कैसे लिखेंगे? यहां पर एक गोलानुमा चित्र में खाली स्थान भरा है। वहां पर तुम इसी नियम को देखकर अक्षर लिखो। शिक्षकों के लिए निर्देश, गुप्त संदेशों का कोडिंग और डीकोडिंग करना पैटर्न पहचानने का हिस्सा है। गणितीय चिंतन के लिए नियम की पहचान करना जरूरी है। 116। कुछ और गुप्त संदेश। यहां पर तीन बच्चों के चित्र हैं। दो बच्चों के हाथ में दो दो कागज हैं। इन कागजों पर अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। लड़की के दोनों कागजों में इस तरह से लिखा है। पहला कागज अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आई एफ एम एम पी विस्मय बोधक चिन्ह। दूसरी पंक्ति आई पी एक्स बी एस एफ। तीसरी पंक्ति जेड पी वी प्रश्नवाचक चिन्ह। लड़की के हाथ का दूसरा कागज और अक्षर हैं पहली पंक्ति एक्स जे एम एम, दूसरी पंक्ति जेड पी वी क्यू एम बी जेड और तीसरी पंक्ति एक्स जे यू आई एन एफ प्रश्नवाचक चिन्ह। लड़के के हाथ के दोनों कागजों में इस प्रकार लिखा है। पहला कागज पहली पंक्ति के अक्षर जी जे ओ एफ कॉमा, दूसरी पंक्ति यू आई बी ओ एल, तीसरी पंक्ति जेड पी वी फुल स्टॉप। दूसरा कागज अक्षर हैं जेड एफ टी विस्मय बोधक चिन्ह। यहीं पर एक दूसरी लड़की लड़के के बगल में खड़ी हुई कुछ सोचती हुई दिखाई गई है। शबलू और जग्गू एक खेल खेल रहे हैं। वो कुछ गुप्त संदेश लिख रहे हैं पर काहुली उनको समझ नहीं पा रही है, इसलिए जग्गू ने नियम समझाया। जग्गू देखो, हमने हर एक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया है, इसलिए एफ के स्थान पर जी, एन की जगह पर ओ लिख रहे हैं, इसलिए वाई ई एस यस जेड एफ टी बन गया है। काहुली ओह अब समझ में आया। काहुली अब तुम बता सकते हो कि मैंने क्या लिखा है। यहां पर काहुली द्वारा लिखे गए अक्षर इस तरह से हैं एक्स एफ बी एस एफ जी एस जे एफ ओ ई टी। काहुली का गुप्त संदेश क्या था? रिक्त स्थान। शबलू और जग्गू ने क्या लिखा था? रिक्त स्थान। इसी नियम को अपनाते हुए मीट मी ऑन द मून लिखने की कोशिश करो। तुम अपने नियम बना सकते हो और अपने दोस्तों से ये गुप्त संदेश समझने को कह सकते हो। पृष्ठ 117। उल्टा पुल्टा। अनीशा खेल खेल रही है। वो अपने दोस्तों को दिखा रही है कि वो अपने सिर पर खड़ी हो सकती है। यहां पर अनीशा के दो चित्र बने हैं। पहले चित्र में अनीशा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे हैं और अपने दोनों पैरों को खोल रखा है। दूसरे चित्र में अनीशा उल्टी हाथ के बल खड़ी हुई दिखाई गई है और उसके दोनों पैर ऊपर की तरफ हैं। अब अनीशा इस कार्ड से खेल रही है। ये कार्ड उल्टा होकर कैसा दिखेगा? यहां बनाओ। यहां पर दो कार्डों के चित्र हैं। पहला कार्ड भरा हुआ है और दूसरा कार्ड खाली है। पहले कार्ड में सबसे ऊपर 7 लिखा है और उसके साथ पान का छोटा चित्र बना है। सबसे नीचे 7 उल्टा लिखा हुआ है और साथ ही पान का उल्टा छोटा चित्र बना है। इसके अलावा पान के 7 चित्र और बने हैं और ये चित्र 3 पंक्तियों में इस प्रकार बने हैं। पहली पंक्ति 3 बड़े चित्र, दूसरी पंक्ति 1 बड़ा चित्र और तीसरी पंक्ति 3 बड़े चित्र। दूसरा कार्ड खाली है। अब आपको इसी कार्ड को इस तरह बनाना है कि ये उल्टा होकर कैसे दिखेगा। फर्श के पैटर्न। फर्श के पैटर्न। क्या तुमने कभी ऐसा फर्श देखा है जिसमें ऐसी टाइल्स लगी हुई हों? यहां पर फर्श के 2 चित्र हैं। इनमें टाइलों के 2 अलग अलग पैटर्न बने हैं। पहले फर्श के चित्र में गोलाई नुमा पैटर्न बने हैं और दूसरे चित्र में उल्टा वी वाला पैटर्न बना है। इन टाइल्स को फर्श पर कुछ इस तरह लगाया जाता है कि ये पूरी तरह से फर्श पर फैल जाए और बीच में खाली जगह भी ना बचे। पृष्ठ 118 क, अब तुम इस फर्श को दी गई टाइल्स से भरो। यहां पर एक चित्र में चार टाइल्स को दिखाया गया है जो तिकोने आकार की हैं। इन चार टाइलों में पहली और तीसरी टाइल संतरी और दूसरी और चौथी टाइल बैंगनी है। अब तुम दिए गए खाली स्थानों में बिंदुओं की सहायता से इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर बाकी टाइलें बनाओ। ख, क्या तुम एक वृत्त के आकार की टाइल से फर्श ढक सकते हो? इस हरी टाइल के प्रयोग से फर्श को बिना जगह छोड़े भरने की कोशिश करो। क्या तुम कर पाए? अपने दोस्तों से चर्चा करो। यहां पर एक चित्र बना है। इस चित्र में एक हरा गोला बनाया गया है। अब तुम दिए गए खाली स्थानों में बिंदुओं की सहायता से इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर बाकी टाइलें बनाओ। ग, नीचे बने टाइल के पैटर्न को पूरा करो। इस चित्र में आयताकार कुछ खाने बने हैं जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है और इनके बीच में लाल रंग से एक तारा बना हुआ है। अब आपको टाइलों के इस पैटर्न को बिंदुओं की मदद से आगे बढ़ाना है और पूरा करना है। पृष्ठ 119। घ, रमैया ने अपने ब्लॉक की मदद से एक दीवार बनाई है। क्या तुम उसके लिए इस दीवार को पूरा कर सकते हो? यहां पर एक दीवार का चित्र है जिसकी चार पंक्तियां हैं। हर पंक्ति में 10 ईंटें हैं। ये ईंटें अलग अलग पैटर्न में रंगी दिखाई गई हैं। दीवार की पहली पंक्ति इस प्रकार है। पहली ईंट संतरी, दूसरी ईंट नीली, रेखाएं तिरछी, तीसरी ईंट बैंगनी, इस पर कुछ बिंदु बने हैं, चौथी ईंट संतरी, पांचवी ईंट नीली, तिरछी रेखाएं, और छठी ईंट बैंगनी, इस पर बिंदु बने हैं। अब तुम बाकी चार खानों में इसी पैटर्न की मदद से ईंटें बनाओ। दीवार की दूसरी पंक्ति, पहली ईंट नीली तिरछी रेखाएं, दूसरी पंक्ति बैंगनी कुछ बिंदु, तीसरी ईंट संतरी, चौथी ईंट नीली तिरछी रेखाएं, पांचवी ईंट बैंगनी कुछ बिंदु और छठी ईंट संतरी। अब तुम बाकी चार ईंटों को इसी पैटर्न से आगे बढ़ाओ। दीवार की तीसरी पंक्ति इस प्रकार है। पहली ईंट संतरी, दूसरी ईंट नीली तिरछी रेखाएं, तीसरी ईंट बैंगनी कुछ बिंदु, चौथी ईंट संतरी, पांचवी ईंट नीली तिरछी रेखाएं और छठी ईंट बैंगनी कुछ बिंदु। अब तुम बाकी की चार ईंटों को इसी पैटर्न की मदद से आगे बढ़ाओ और दीवार की अंतिम पंक्ति इस प्रकार है। पहली ईंट नीली तिरछी रेखाएं, दूसरी ईंट बैंगनी कुछ बिंदु, तीसरी ईंट संतरी, चौथी ईंट नीली तिरछी रेखाएं, पांचवी ईंट बैंगनी कुछ बिंदु और छठी ईंट संतरी। अब तुम बाकी की चार ईंटों को इसी पैटर्न की मदद से आगे बढ़ाओ। ळ, रेणु ने इस दीवार पर रंग करना शुरू किया है। अब तुम उसकी इस काम में मदद करो। पृष्ठ के अंतिम हिस्से में एक चित्र बना है जिस पर पांच पंक्तियों में कुछ लाइनें हैं और इनमें अलग अलग रंगों से कुछ चित्र बने हैं। पहली पंक्ति के रंग इस प्रकार हैं। पहले हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, और उसके बाद खाली स्थान दिए गए हैं। और उसके बाद के खाली स्थानों में तुम इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर रंग भरो। दूसरी पंक्ति के रंग इस प्रकार हैं। पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, और इसके बाद खाली स्थान दिए गए हैं। अब तुम बाकी के स्थानों में इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर रंग भरो। तीसरी पंक्ति, रंग हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला। अब तुम बाकी के स्थानों में इसी पैटर्न की मदद से रंग भरो। चौथी पंक्ति, पहला रंग पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, और इसके बाद के खाली स्थानों में इसी पैटर्न की मदद से तुम रंगों को स्वयं भरो। पांचवी पंक्ति के रंग, पहले हरा, फिर पीला। अब तुम दिए गए खाली स्थानों में इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर खुद रंग भरो। और इसी के साथ दसवां पाठ पैटर्न अब यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ चौथा पाठ टिक टिक टिक अब यहीं समाप्त होता है। स्वर प्रवीण शर्मा, तकनीकी समन्वयक बटिलेंग लिंगदो, ध्वनियंकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग रुचि शर्मा, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: जम्मो नान हे संगवारी मन ला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मंदलोर विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी मन के
1: जय जोहार।
0: संगवारी हो, हमर आसपास के पेड़ पौधा नदी नरवा औ हवा हा हमर जिंदगी के आधार आय जेला हमन पर्यावरण कहथन। एला साफ नहीं रखबो तो हमर जीवन मुश्किल में पड़ जाही। तो संगवारी हो, यही पर्यावरण संरक्षण विषय ला लेके नाना कार्यक्रम के साथ उपस्थित हन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मंदलोर के लयिका मन। तो चलो आप मन सुनो ये कविता ला जेला प्रस्तुत करत है हमर साथी झरना यादव हा।

0: करके बनाओ, जय जोहार।
1: तभी हमन सुनत रहन झरना यादव के कविता, बहुत सुंदर कविता। आओ संगी मिलके गावो, हमर गांव ला स्वर्ग बनाबो। अब हमन सुनबो एक लघु वार्ता, जनला प्रस्तुत करत हावय कक्षा 8वीं के साथी भाई डेमन देवंगन और प्राची साहू।
2: राम राम देवंगन।

0: भाई कहाँ जावत हस अउ चिप्स ला खा के झिल्ली ला रद्दा म फेंकत हस। ए बात ठीक नो हरे।
1: राम राम प्राची बहनी, एक ठक नानुक झिल्ली ला फेंके ले का हो जाही। पूरा गांव म तो जगह जगह कचरा झिल्ली अउ कूड़ा करकट बगरे हे।
0: यही तो हमर सबले बड़े गलती यार डीमन भाई। ते ऐसा सोचबे त तोर असन सोचैया हमर गाँव म अउ मनखे हावय, तब तो हमर गाँव म कचरा के ढेर बन जाही। जगह जगह प्लास्टिक झिल्ली फेंकत रहो त ए सबसे पर्यावरण नुकसान है। काबर की ए झिल्ली अउ प्लास्टिक ह कभू नहीं सड़े।
1: माटी में नहीं सड़ी त का होइस, हमला का करना है अउ हमला का फर्क पड़ी।
0: कतनो फर्क पड़ी भाई, ए प्लास्टिक के मारे खेत के माटी बंजर होवत है। पानी में बोहा के तरिया में जाते त पानी ला गंदा करते, अउ कोनो गाय गरु बछरू एला खा डरिस त ओखर परान घलो चल देते।
1: तोर गोड तो सही लागत है प्राची बहनी, फिर हमन रुख राई ला घलो कतना काटत हन अउ एको ठक पेड़ पौधा लगावत घलो नहीं हन।
0: यहू चिंता के गोठ हरे डेमन भाई। रुख कटत है त गर्मी बाढ़त है, समय म पानी तक नहीं गिरत है। जौन साफ और शुद्ध हवा हमन ला रुख राई ले फोकट म मिलत है, वहू है एक दिन अस्पताल में पैसा दे के लेबर लागी।
1: सिरतोन के है प्राची बहने की ये सब गोटला तो मैं कभू सोचे तक नहीं रहे हूँ। मोला क्षमा कर दे प्राची बहनी, मैं अभी वो झिल्ली ला उठा के कचरा डब्बा में डाल हूँ।
0: वाह डेमन भाई, एला कही थे समझदारी। यदि आज हमन पर्यावरण ला बचाबो तभे हमार काली भविष्य बाँची।
1: हाँ प्राची बहनी, अब ले मैं घलो प्लास्टिक के उपयोग ला बंद करूँ। पानी अकारत नहीं बोहा अउ अपन जन्मदिन में एक ठक रुख जरूर लगाबो।
0: रुख लगाबो,
1: भुइयां बचाबो। अभी हमन सुनत रहें कक्षा 8वीं के संगी डेमन देवांगन अउ प्राची साहू के एक लघु वार्ता। ये वार्ता ले सीख मिलते कि हमार छोटे छोटे आदत ह पर्यावरण ला कतना नुकसान पहुँचाते अउ छोटकुन सुधार तको ह कतना बदलाव ला सकते। तसंगी हो यही कड़ी में हमन सुनथन एक प्रेयक प्रसंग, जिला प्रस्तुत करत हावय कक्षा 8वीं के साथी छाया पटेल।
2: संगवारी हो, मैं आप मन ला एक प्रेरक प्रसंग सुनावत हाँ, जे हर गीता थनबर्ग के आय। उमर छोटे है त का होइस, हौसला बड़े है। साल 2018 मा स्वीडन के एक स्कूली लड़का ग्रेटा थनबर्ग ह देखिस कि दुनिया के बड़े बड़े नेता मन पर्यावरण अउ गर्मी बाढ़े के ऊपर सिर्फ बड़े बड़े गोड़ बात करते, फिर कोनो ठोस कदम नहीं उठावे। ओ ह सोचिस कि अगर हमर आगू के दिन ह सुरक्षित नहीं है तो हमर स्कूल जाके पढ़े के का फायदा। ओ ह अकेला अपन स्कूल के पढ़ाई ला छोड़िस अउ अपन देश के संसद के बाहर मा एक ठन तख्ती धर के बैठ गए, जेमा लिखे रहीस पर्यावरण बर स्कूल के हड़ताल। शुरू मा मनखे मन ओला एक लड़का समझ के ध्यान नहीं दीन, फिर ओकर कड़ा निर्णय ला देख के धीरे धीरे दुनिया भर के लाखों लड़का मन ओकर संग जुड़ गिन। नतीजा ग्रेटा के छोटकुन कदम हा फ्राइटेज फॉर फ्यूचर नाम के बड़े आंदोलन के रूप ले लीस, जेमा दुनिया भर के लाखों लड़का मन सड़क मा उतर के सरकार मन ले पर्यावरण बचाए के मांग करीन। संगवारी हो, इकर ले सीख मिलते कि अपन आवाज उठाए बर अउ पर्यावरण के हल में ठाढ़े होए बर हमर उमर कभू छोटा नहीं होवे।
1: सुघर प्रियक प्रसंग सुनावत रहीस बहनी छाया पटेल ह, जेकर ले हमन ला सीख मिलते अपन आवाज उठाए बर अउ पर्यावरण के हक मा खड़े होए बर उम्र कभू छोटे नहीं होए। संगी हो, आओ अब एक कविता सुनथन, जिला रखत हावय कक्षा 8वीं के भाई ऋतुराज वर्मा ह।
3: संगवारी हो, आओ हम सब मिलके हमार धरती मैया बर एक कसम खाबो। पेड़ लगाबो, पानी बचाबो, करबो धरती के मान, तबे सुरक्षित रही जाही हमार अउ सब जीव के प्राण। चारों कोती हरियर जंगल, हरियर हरियर डारा हो, चिड़िया मन के सुग्घर बोली गुंजे संगी सारा हो। नदिया नरवा तरिया मन मा साफ साफ जल बहे दो, प्रकृति के ये सुंदर रूपला सब कुन आप सहे दो। पानी बिन ये दुनिया सुना, सूखा जाते खेत खार, अन्न कहाँ ले पाबो संगी, रोवत है ये संसार। पुरखा मन के रद्दा धर के रुख राई ला अब बचाबो, अपन घर के अंगना बारी सुंदर सफा अब बनाबो। मत काटो अब रुख राई ला, विपदा भारी आ जाही, जोन पेड़ ला आज काटू ओकर छाँव का पहू। घर घर में तय एक पेड़ लगा के धरती के ये मान बढ़ावा, आने वाला पीढ़ी भर सुघर सुंदर कल बनाओ। पर्यावरण बचाना हम सब के जिम्मेदारी है संगवारी, प्रकृति ले ही हमार जिंदगी के उजियारी है संगवारी। संगी हो, मैं हाँ खुद अपन जन्मदिन में एक पेड़ लगाथ हूँ और ओकर सुरक्षा तको करथ हूँ। और आपो मन से निवेदन है कि आपो मन अपन जन्मदिन में एक पेड़ लगाओ और ओकर सुरक्षा तको करो और धरती मैया ला सुघर बनाओ। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर कविता सुने हैं भाई ऋतुराज वर्मा के, और ओकर संदेश पर्यावरण बचाना हमार जिम्मेदारी है। त आओ आप मन ले विनती है, आपो मन अपन जन्मदिन में एक ठक पेड़ जरूर लगाओ और ओगर सुरक्षा तको करो। आओ अब हमन एक कहानी सुनथन, जिला सुनावत हावे कक्षा सातवीं ले साथी भाग्यश्री साहू हा।
4: धारनी 14 साल के एक जन समझदार लेकर ही ओहा रायपुर में पढ़ा है। ए दारी गर्मी के छुट्टी मा ओहा अपन दादा और दादी के गांव मंदलोर गे रहीस। धानी अपन बचपना मा सुने रहीस कि मंदलोर गांव हा चारों मुड़ा ले हरियर हरियर साफ सुथरा और सुघ्घर नदी नरवा वाला गांव हरे। फिर जब ओहा गांव पहुँचिस त गांव ला देख के बड़ा धक्का लागिस। बदलत गांव और पनपत संकट, नदी के पानी अब साफ नहीं रहीस, ओमा प्लास्टिक के झिल्ली चिप्स और कुरकुरे के पाउच तौरत रहीस। तरिया के तीर मा और खेत खार मा माटी के जगह प्लास्टिक के ढेर जमे रहीस। गर्मी और प्रदूषण के मारे सांस ले मा घुटन महसूस होत रहीस। एक दिन धानी हा देखिस कि एक ठन गाय हा खेत के तीर मा पड़े प्लास्टिक के झिल्ली ल चाबत रहीस। ओहा तुरंते दौड़ीस और गाय के मुँह ले प्लास्टिक ल निकालीस। ओहा समझ गए कि यदि ए प्लास्टिक के राक्षस ल समय रहते नहीं रोकबो त हमर पुरखा मन के सुघर गांव बर्बाद हो जाही। ओहा खुद कुछु करे के सोचीस। ओहा अपन गांव के संगी और संगवारी क्षमा प्राची और छाया मन ल सकेलीस और ओ मन ल समझाइस। संगी हो, हमन अब 14 बरस के हो गए हन, हमन सिर्फ लैकन ओहन जेमन कुछ नहीं कर सकन। ये हमर पर्यावरण है, हमर भविष्य आए। यदि हमन आज चुप रहबो त काली साफ हवा और पिए भर साफ पानी नहीं बाछी। सबो लैका मन मिल के अपन टोली के नाम मंदलोर के इको वारियर्स राखी। इको वारियर्स के काम काज धानी और ओकर संगी मन मिल के 3 बड़े काम करीन। पहला इतवार सफाई अभियान, हर इतवार के दिन लैका मन हाथ में दस्ताना और जूट के बोरा धर के निकले। ओ मन नदी तरिया के तीर मन ले जम्मो प्लास्टिक कचरा मन ला सकेले। दूसरा प्लास्टिक के बदला कपड़ा के झिल्ली। लैका मन घर के पुराना फटे साड़ी और कपड़ा मन ले सुघर सुघर थैला बनाइन। ओमन ए थैला मन ला गांव के साग भाजी और किराना दुकान मा मुफ्त में बाटीन। तीसरा कचरा के कंचन माने सोना, प्लास्टिक के बोतल मन मा माटी भर के लैका मन ओमे छोटे छोटे पौधा ला लगाइन और स्कूल के दीवार मा टांग के एक ठन सुघर गार्डन बना दीन। बड़े मनखे मन के आँखी खुल गए। ओ मन देखिन कि लइका मन के मेहनत ले नदी ह कांच कस साफ दिखत थे और दुकान मन में झिल्ली के कचरा नहीं निकलत हे। तब बड़े मनखे मन ला अपन लापरवाही के शरम आगे। गांव के सरपंच ह लइका मन ला सम्मान करिस अउ पूरा मंदलोर गांव मा सिंगल यूज प्लास्टिक मा कड़ा प्रतिबंध लगा दिस।

0: जम्मो हरियर हरियर रुख राई ल काट डरिन, मोर नस म बहैया सफा पानी ल जहरीला कर दिन, सांस ले बर हवा नइ बाचिस, मोर दम घुटत हे, मोला ऐसे लागत हे ए मनखे मन मोला मार डरही।
1: संगवारी हो, संतो हाथ में कुल्हाड़ी धर के पेल ला काटे बर गे हे। प्लास्टिक के बाटर में पानी पीते और बाटर ल उही कर फेंक देते।
2: मैं संतु हरों, आज ये जुन्ना रुख ला काट के फेंक दूँ, यहाँ शहर के व्यापारी मन दुकान ल खोलही, मोला बढ़िया बड़ा कम पैसा मिलही।
1: मैं बरगद हरों, अरे रुक जा संतु भाई, मोला झन काट, मैं तोला मीठ मीठ फर देता, गर्मी में ठंडा छाँव देता, और सबले बड़े गोट तोला जिए बर मुफ्त में साफ ऑक्सीजन घलो देतो, मोला झन काट भाई, मोला झन काट।
2: चल चल, ते मोला झन सीखा, हवा तो कतको जगह मिल जाही, तब मोला आज मोर अपन फायदा देखना है।
1: अतका कही के संतु पेल ला काटे बर कुल्हाड़ी उठाते, वतके बेरा 14 साल के मुके दौड़त आते और रुख ला अपन बाह म पोटार लेते। रुक जा संतु काका, रुक जा, तोर कुल्हाड़ी ला नीचे मढ़ा, त ये रुख ला झन काट काका, अगर त ये रुख ला काटबे त हमर गांव म शुद्ध हवा और ऑक्सीजन के कमी हो जाही।
2: भगरे टुरा, ते अभी नान कुन टुरा, ते मोला बतावे मोला का करना है।
0: ए ठीक कहा थे संतु, जब तुमन अपन स्वार्थ बर रुख ल काट दू, तरिया नदिया म कचरा फेंक दू, त आघू चल के तुअर लइका मन काय पैसा ल खा के जीही, हवा पानी बिना सब बर्बाद हो जाही बेटा।
1: अतका सुन के संतु ल अपन गलती के एहसास होते, ओ ह कुल्हाड़ी ल भुइया म मढ़ा देते और हाथ जोड़ते।
2: मोला क्षमा कर धरती मैया, मैं पैसा के लालच में अंधरा हो गए रहे, दो पैसा के लालच में अपने लइका मन के जिंदगी ला संकट में डालत रहे, अब मैं कभू रुख लाइला नहीं काटा।
1: औ काका, अब ले हमन पानी घलो अकारत नहीं बुहान, धरती मैया ला साफ सुथरा रखबो, पेड़ पौधा लगाबो और हमर धरती ला हरियर बनाबो,
3: रुख राई ला बचाबो, भुइया ला सरक बनाबो।
1: संगी हो, अभी हमन सुनत रहन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बंदलोर के पढ़ैया लइका मन के पर्यावरण संरक्षण पर कार्यक्रम। अब हमन ला विदा दो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का छठा पाठ बूंद बूंद दरिया दरिया पृष्ठ 51 बात पुरानी। यह है 650 साल पुराना घड़सीसर। सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सीसर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। पृष्ठ 52 अल बिरूनी की नजर से। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगें। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो ये लिखा था अल बिरूनी ने। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ एक डाक टिकट का चित्र है जो 1973 में छपा था, जब अल बिरूनी के जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। देखो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? जैसे जमीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहां की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। पृष्ठ 53। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी? लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते। यह एक सांझी यानी सबकी जरूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़े रहते, चाहे व्यापारी हों या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह जमीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता। यहाँ एक चित्र दिया गया है, उसे देखकर बताना है कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? यहाँ एक बावड़ी का चित्र है। चित्र को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसीलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनाई गई थीं। पृष्ठ 54। पानी से जुड़े रिवाज। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। यहाँ उत्तराखंड का एक फोटो दिया गया है। पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। पृष्ठ 55। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? कहाँ? पता करो, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो। यह कितना पुराना है? किसने बनवाया होगा? इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है? पानी साफ है या नहीं? क्या इसकी सफाई होती है? यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं? क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है? पानी कहीं सूख तो नहीं गया? पृष्ठ 56। जरा सोचो, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में दो पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती हैं? चर्चा करो। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? हाल की बात, आज लोग पानी का इंतजाम किस किस तरह से करते हैं? चर्चा करो। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर सही का निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखो। पृष्ठ 57। एक बच्चे ने कहा, हमारे मोहल्ले में दिन में दो बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। एक बच्ची ने बोला, हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं एक साल पहले सूख गए। अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते। एक बच्ची बोली, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। एक बच्ची बोली, हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। एक बच्चा बोला, मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है लेकिन उसका पानी काफी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। एक और बच्चा बोला, हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं। एक और बच्चा बोला, हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें। एक बच्ची बोली, हम नहर से ही पानी भरते हैं। पृष्ठ 58। चर्चा करो। जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीदकर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीचे से ज्यादा पानी खींच लेते हैं, यह कहां तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? पानी के बिल को देखकर बताओ, ये बिल कौन से दफ्तर से आया है? तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? बिल किसके नाम से है? कितने महीनों के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग है? बड़ों से पता करो। पृष्ठ 59। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। यहाँ दड़की माई का चित्र है। ये हैं दड़की माई। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया? हम क्या समझे? पोस्टर बनाओ, पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। एक पानी का बिल लाओ, उसे देखकर बताओ ये बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है, इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे। इसके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर हुआ खर्च। बूंद बूंद दरिया दरिया। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक का ये 6वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली

0: आप खबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेजियो ने मुस्कुराता रेजियो।
1: रिक्शा
2: कहाँ जाना है माँ जी?
1: रेलवे स्टेशन। कितना लोगे?
2: 200 रुपया।
1: क्या बात कर रहे हो भैया, मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ यहाँ से।
2: इतना कम नहीं होता, अब बोहनी का टाइम है माँ जी, चलना है तो चलिए वरना जाने दो मुझे। सुबह सुबह बुढ़िया दिमाग खा रही।
1: क्या बोला, जोर से बोलो।
2: 150 लूंगा, उससे कम नहीं होगा।
1: मैं तो हमेशा 120 में जाती हूँ। और रिक्शा आते रहते कितने?
3: माता जी आलू गैस पर रखे हैं, एक सीटी हो गई है, एक दो और होने दो।
1: दीदी इस रिक्शा में मत जाना, ये रेलवे स्टेशन तक का ही 150 मांग रहा है, दूसरी रिक्शा मिलेगी ना।
2: अरे दीदी आप हो, आइए आइए, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा, आइए ना, 120 में ही चलेंगे।
3: चलो चलती हूँ मैं, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना।

0: भैया माताजी से तो 150 मांग रहे थे और मुझसे 120 क्यों?
1: दीदी आपको क्या झूठ बोले, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है धंधे में।
0: भैया आप रिक्शा चालकों की एक कम्युनिटी है, आपका किराया किलोमीटर के हिसाब से फिक्स होता है, आपका मीटर क्यों नहीं चलता?
1: कौन मीटर चलाता है अब? सच कहूँ तो आज के जमाने में सच बोलकर कोई अमीर नहीं बना, जो चल रहा है वही करना पड़ता है, नहीं तो भूखे मर जाएं।
0: अगर दुनिया झूठ बोलती है तो क्या आप भी वही करें?
1: क्या बताऊं दीदी, आजकल सच्चाई से काम नहीं चलता, अगर मैं सही रेट बोलूं फिर भी कहेंगे भैया थोड़ा तो कम करो।
0: तो आप पहले से ज्यादा रेट बोलते हो?
1: हाँ हाँ, पहले ज्यादा बोल देता हूँ, फिर जो बार्गेनिंग करता है उसे सही रेट बता देता हूँ, ग्राहक खुश हो जाता है और मुझे भी नुकसान नहीं होता।
0: लेकिन भैया यही तो शुरुआत है उस आदत की जो पूरे समाज को बिगाड़ती है।
1: अब हम जैसे लोग अगर सच भी बोलें तो लोग हमारी मेहनत की कद्र नहीं करते, इतनी धूप में इतने खराब रास्तों पर दिन भर सवारी ढोते रहते हैं, हालत खराब हो जाती है पूरी।
0: भैया सोचिए, जब आप ज्यादा रेट बताते हो तो आप ही ग्राहक को बार्गेनिंग करने की छूट दे रहे हो, क्यों ना शुरू से ही फिक्स रेट बताएं?
1: बोलना आसान है दीदी, पर जीना बड़ा मुश्किल है। लोग बड़े बड़े दुकानों में मॉल में कोई मोल भाव नहीं करते, पर हम गरीबों से हर बार मोल भाव करते हैं।
0: आप दिन भर इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हो, लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा कमाई के चक्कर में जो 30-40 रुपए ज्यादा लोगे, वही पैसा शायद अगले हफ्ते आपकी गाड़ी पंक्चर करवा देगा या घर में कोई ऐसी जरूरत खड़ी कर देगा कि वो 30 की जगह 300 चले जाएंगे। क्योंकि छोटा मोटा झूठ बोलकर पैसा तो आ सकता है, लेकिन पुण्य नहीं आता, और जो धन दुआओं के बिना आता है वो चैन और सुख कभी नहीं लाता।
1: आपने तो सोचने पे मजबूर कर दिया।
0: हर ग्राहक के साथ एक कर्म जुड़ता है, आप चाहो तो रोज 2 रुपए कम ले जाओ, लेकिन 2 सच्ची दुआएं साथ ले जाओ, वही दुआएं आपके बच्चों की रक्षा करेगी और घर में शांति लाएगी।
1: ये आदत तो बहुत पुरानी है, अचानक कैसे बदले?
0: जब आपकी नीयत साफ, भाषा विनम्र और आत्मविश्वास पक्का होगा तो लोग आपको विश्वास से देखेंगे। फिक्स रेट बोलिए, प्रेम से बोलिए और डटे रहिए। हर बड़ी आदत एक छोटे से संकल्प से बदलती है।
1: आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में, काश हर कोई ऐसा सोच पाता। कभी कभी तो कोई सवारी गुस्से से बात करती है, बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है, एकदम चिढ़ जाता हूँ।
0: हाँ तो आप भी सेंटर आ जाया करो, आप जैसे कई लोग सेंटर पर आते हैं, आप सेंटर के सामने से ही कई बार आते जाते होंगे।
1: हाँ आना तो चाहते हैं, लेकिन दिन भर भाग दौड़ करता रहता हूँ, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इतने सारे खर्चे बढ़ गए हैं।
0: जी भैया, लेकिन धन तो टिकता ही नहीं, ये सोच और खर्च बढ़ा देता है। इससे अच्छा कहूँ मैं धनवान हूँ, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं।
1: कर्म अच्छे हो वह तो समझ में आ गया, लेकिन आप बुरा नहीं मानना, मैं धनवान हूँ बोलने से धन अगर आ जाता तो लोग काम धंधा छोड़कर बस यही जाप करते।
0: कई लोग हमेशा यही गलती करते हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं टिकता, और यही गलत सोच उन्हें और गरीब बना देती है। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, हम जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे।
1: ओ, अब मैं समझा, आपकी बात बिल्कुल सच है। मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले ही छोटा सा ही धंधा चालू किया था, लेकिन उसे जब भी पूछो कैसा चल रहा है तो बोलता था भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और देखते ही देखते उसने बहुत तरक्की कर ली। सोच का असर तो होता है।
0: देखा, लाइव प्रूफ। भैया एक मिनट, कॉल आ रहा है।
2: हेलो दीदी, अब
0: अरे भैया क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? आप तो पिछले दिनों तबीयत खराब बता रहे थे, अब कैसे हो? जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, रोहन के पापा बोले थे आपके ठीक होते ही वो भी आपके साथ सेंटर आएंगे कोर्स करने।
2: दीदी दरअसल मैं उन्हीं की बात करने के लिए कॉल कर रहा था।
0: क्या हुआ भैया, क्या बात है?
3: रोहित के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे।
0: क्या?
1: हे भगवान।
0: शायद इसलिए भगवान कहता है कभी भी कुछ भी हो सकता है।
2: हाँ दीदी, सच में मुझे आज रोहन का कॉल आया। जब उसने ये बताया तो सच में मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
3: दो दिन पहले ही तो वो मिलने आए थे और कल ही उनका कॉल भी आया था। बोल रहे थे जल्दी से ठीक हो जाओ, हम दोनों साथ में सेंटर जाएंगे।
0: मैं अभी जाती हूँ उनके घर मिलने।
2: अभी रोहन की माँ से कोई बात नहीं कर सकता, डॉक्टर ने मना किया है, उनको बड़ा धक्का लगा है।
0: अच्छा ठीक है भैया, जब आप वहाँ जाओ तो रोहन से मेरी फोन पर बात करा देना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ।
2: हाँ दीदी जरूर, मैं रोहन से बात करवाऊंगा।
0: देखा भैया, सुना आपने?
1: हाँ सुना मैंने, जानता हूँ मैं उनको, बड़ा भला आदमी था, लेकिन देखो ना, धन शोहरत सब यहीं रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता।
0: साथ जाते हैं सिर्फ हमारे कर्म, इसलिए बस अच्छे कर्म करो और सिर्फ धन के लिए नहीं जियो, कुछ दुआएं भी कमा लो, यही आत्मा के साथ जाता है।
1: हाँ दीदी सच कहा आपने, आज से मैं सच के रास्ते पर चलूंगा और सिर्फ धन के लिए नहीं दुआएं भी कमाऊंगा।
4: क्योंकि
5: आज जमाना बदलने का समय है, बदलाव की शुरुआत अपने आप से करें। मोल भाव की मानसिकता तब तक रहेगी जब तक हम खुद को सच्चाई पर नहीं टिकाते, इसलिए आज से संकल्प लें, ना तो बेईमानी करेंगे, ना झूठा रेट बोलेंगे और ना किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे। सच्चाई से कमाएं, सच्चाई से जिएं, यही है असली रिचनेस, यही है असली जीत। झूठ से कमाया धन मन का सुख खा जाता है, लेकिन सच्चाई से कमाया हुआ धन दुआओं और आत्मसम्मान के साथ आता है।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए आज के दिन विशेष को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। आज विशेष 27 जुलाई आज का तारीख है और 27 जुलाई की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। रेवती नक्षत्र आज है और कल्पना दत्त, भारती मुखर्जी, उद्धव ठाकरे, के एस चित्रा, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही अब्दुल कलाम, सलीम अली, कृष्णकांत, शिवधन राम जोशी, पीताम्बर लच्छू महाराज, अमजद खान, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास बातें, कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से आपको जोड़ना चाहूँगा और साथ ही साथ आप सभी को बहुत सारे गीत सुनाएंगे और एक खूबसूरत गीत के साथ आपको जोड़ना चाहूँगा। अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा जो कोटेशन है, सुंदर विचार है, वो मैं बताना चाहूँगा और ये विचार बहुत ही काम करते हैं। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो, यही सफलता की कुंजी है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत से। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है कल्पना दत्त। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक थी। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारी सूर्य सेन के दल में नाता जोड़ लिया था। 1933 में कल्पना दत्त पुलिस से मुठभेड़ होने पर गिरफ्तार कर ली गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयासों से ही वो जेल से बाहर आ पाई थी। अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए कल्पना दत्त को वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कल्पना दत्त का जन्म चटगांव के श्रीपुर गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। चटगांव में आरंभिक शिक्षा के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता आई थी। वहाँ पर प्रसिद्ध क्रांतिकारियों की जीवनियाँ पढ़कर वह प्रभावित हुई और शीघ्र ही स्वयं भी कुछ करने के लिए आतुर हो उठी। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार लूट की घटना होते ही कल्पना दत्त कोलकाता से वापस चटगांव चली गई और क्रांतिकारी सूर्य सेन के दल से संपर्क कर लिया। वो वेश बदल कर इन लोगों को गोला बारूद आदि पहुंचाया करती थी। इस बीच उन्होंने निशाना लगाने का भी अभ्यास सीख लिया और हुआ ऐसे कि कल्पना और उनके साथियों ने क्रांतिकारियों का मुकदमा सुनाने वाली अदालत के भवन को और जेल की जो दीवार है उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस को सूचना मिल जाने के कारण इस पर अमल नहीं हो सका। पुरुष वेश में घूमती कल्पना दत्त गिरफ्तार कर ली गई और पर अभियोग सिद्ध न होने पर उन्हें छोड़ भी दिया गया। उनके घर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, लेकिन कल्पना पुलिस को चकमा देकर घर से निकलकर क्रांतिकारी सूर्य सेन से जा मिली। सूर्य सेन गिरफ्तार कर लिए गए और मई 1933 में कुछ समय तक पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच मुकाबला होने के बाद कल्पना दत्त भी गिरफ्तार हो गई। मुकदमा चला और फरवरी 1934 में सूर्य सेन तथा तारकेश्वर दासी कार को फांसी की और 21 वर्ष की कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा हो गई। 1937 में जब पहली बार प्रदेश में भारतीय मंत्रिमंडल बने, तब गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के विशेष प्रयासों से कल्पना जेल से बाहर आ सकी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वह कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई और 1943 में उनका नेता पूरन चंद जोशी से विवाह हो गया और वो कल्पना जोशी बन गई। बाद में कल्पना जो है बंगाल से दिल्ली आ गई और इंडो सोवियत संस्कृत सोसाइटी में काम करने लगी। सितंबर 1979 में कल्पना जोशी को पुणे में वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए कल्पना दत्त के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। भारती मुखर्जी के बारे में अब बात करते हैं। ये एक विशेष राइटर हैं, साहित्यकार हैं और भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका जिन्होंने अमेरिका में कई पुरस्कार जीते हैं। प्रवासियों के आंतरिक सांस्कृतिक टकराव पर कई कहानियां लिखी, जिनमें से दी मिडिल मैन को अमेरिका का शीर्ष साहित्य अवार्ड मिला। भारती मुखर्जी द्वारा लिखे गए जैस्मिन उपन्यास को पूरे विश्व में सबसे अधिक सराहा गया और इससे उन्हें पुरस्कार भी मिले कई। भारती मुखर्जी का जन्म आज के दिन 27 जुलाई 1940 को भारत में पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। भारत समेत इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में स्कूली शिक्षा हासिल की और अमेरिका में रचनात्मक लेखन में एडवांस उपाधि ली थी। वो एक दशक भी अधिक समय तक कनाडा में रही और बिगड़ते हुए सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिक सच्चाइयों का सामना करते हुए उनकी तस्वीर अपने लेखन में उभारती रही। भारती मुखर्जी ने पूरी दुनिया में प्रवासियों की आवाज़ और समस्याओं को पूरा जोर शोर से आवाज़ दी थी। उनके लेखक पति क्लर्क ब्लेज ने उन्हें उनके अनुसार भारती मुखर्जी घाटियाँ और तनाव में उपजे हृदय रोग से पीड़ित थी। भारती ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि प्रवासियों की कथा इस सरहदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उनके अधिकांश उपन्यास और कहानियों में युवा महिलाओं को पुरुष प्रधान संस्कृति में दर्द के साथ गढ़ा गया है। उनके कहानियां और उपन्यास में महिला चारित्र अक्सर ये सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ। द टाइगर्स डॉटर 1972 में, फाइफ 1975 में, डार्कनेस 1985 में, दी होल्डर ऑफ द वर्ल्ड 1993 में, दी ट्री ब्राइड 2004 में और मिस न्यू इंडिया 2011 में इस तरह के उपन्यास उनके प्रकाशन में आए। तो ये थे कुछ खास बातें भारती मुखर्जी की। और यूनाइटेड स्टेट्स में ही मैनहैटन में 28 जनवरी 2017 को इनका निधन हुआ। तो चलिए, ये थी कुछ कहानी भारती मुखर्जी के बारे में आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दोस्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं, खास सुरेश जी डोटाना से, सुरेश जी पिंडवाड़ा से, कुपाराम जी कोटड़ा से और भूपत सिंह जी सिद्धपुर से और हमारे दयाराम जी विशेष रूप से गुजरात से और उमेद सिंह जी और भी हमारे मित्र हैं जो याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बहुत ही प्यारा संगीत आपके लिए खास। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधवन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं अब एक और शख्सियत के बारे में, KS चित्रा के बारे में। जी हाँ, कृष्णन नायर शकुंतला कुमारी भारत की बहुत ही पॉपुलर गायिका है। दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों की गायिका, अपनी मधुर आवाज से लाखों लोगों का दिल जीता है। KS चित्रा ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, बंगाली और उड़िया ऐसी भाषाओं में 25,000 से भी अधिक गाने गाए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में पार्श्व गायन के इतिहास में वह पहली महिला गायक है जिन्होंने दक्षिण भारत की 4 राज्यों की सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए सम्मानित किया गया। KS चित्रा को वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो आइए इनके बारे में और बातें जानते हैं। KS चित्रा का जन्म केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में आज ही के दिन 27 जुलाई 1963 को हुआ। उन्होंने अपने दिवंगत पिता कृष्णा नायर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर गायक और संगीतकार थे, उनके मार्गदर्शन में ही संगीत की शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी। KS चित्रा ने संगीत में स्नातक किया और बाद में केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के ओमन कुट्टी की देखरेख में संगीत में पारंगत किया और इस तरह से धीरे धीरे फिर अपनी कला के माध्यम से मलयालम फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध संगीत निर्देशन MG राधाकृष्णन ने KS चित्रा को उनकी फिल्म आत्महसम और बाद में स्नेहपुरम मीरा और नंजन कनकानू में मौका दिया। प्रसिद्ध तमिल संगीतकार इलाया राजा ने उनको तमिल फिल्म उद्योग में फिल्म नेतनन अनंत कुयल के माध्यम से परिचय करवाया और हिंदी फिल्म में KS चित्रा ने फिल्म लव, प्यार तूने क्या किया, विरासत, अक्स, अशोका और रंगीला आदि जैसे फिल्मों में अपनी गायकी से संगीत प्रेमिकों के दिल में जगह बना दी। और सारंगी गिटार वादक उस्ताद सुल्तान खान के सहयोग से उनकी एल्बम पिया बसंती काफ़ी लोकप्रिय हुई। KS चित्रा ने प्रसिद्ध गजल गायक गुलजार और भूपेंद्र के साथ अपनी अगली एल्बम सनसेट पॉइंट में गायन भी किया है। KS चित्रा को सलील चौधरी, अनु मल्लिक, नदीम श्रवण और AR रहमान जैसे प्रसिद्ध संगीतकार निर्देशकों के साथ काम करने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो आइए इनके बारे में और भी बातें, वक्त मिले तो ज़रूर करेंगे, उनके खूबसूरत गाने भी आपको सुनाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो लीजिए एक और खूबसूरत संगीत आपके नाम। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर सफ़र। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए, आज के दिन विशेष रूप से शाम का समय है और बड़ा अच्छा लग रहा है शाम के समय में आप सभी के साथ रूबरू होते हुए। मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बदल रहा है। और अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में। भारत के राजनीतिक तथा महाराष्ट्र के 19 से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हिंदू राष्ट्रवादी दल शिवसेना के नेता हैं और उद्धव ठाकरे शिवसेना के संस्थापक अध्यक्ष बालासाहेब ठाकरे के बेटे हैं। पहले वे शिवसेना के एक मराठी दैनिक सामना का कामकाज संभालते थे। उद्धव ठाकरे पार्टी की चुनाव संबंधित गतिविधियों में भाग लेते थे और 2002 में बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी को सफलता मिली तो उन्हें जनवरी 2003 से पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो उद्धव ठाकरे आज ही के दिन 27 जुलाई 1960 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ वे शिवसेना के पूर्व अध्यक्ष और सुप्रीमो बाल ठाकरे तथा मीना ठाकरे के पुत्र है। हेलो जी, नमस्कार, ओम शांति, कैसे हैं आपको? पराम जी बोलिए।
2: आजकल कहाँ पे हो, कोई दिखते नहीं है, सुनाई नहीं दे रहे, दिखते तो क्या
1: यहीं पर है। और बताइए,
2: आबू रोड़ी हो गया?
1: हाँ, नहीं नहीं आबू रोड़ी हूँ।
2: और एक शनिवार के दिन मैं वहाँ सानवाड़ा गया था। अब वो है ना जगदीश जी, एक
1: हाँ
2: बड़ी बड़ी ससमा वाले मारवाड़ी भाषा में वो एक बोला, होता रहो और मुस्कुराता रहो।
1: हाँ
2: उनके घर गया था, उनके पिताजी के और मेरे थोड़ी पहले की पहचान है।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, शुरूगंज में काम करते थे तो इस प्रकार बच्चों का कोई ढूंढ का कार्यक्रम रखा था। मेरे को भी वो उधर एक दो का जाड़ोली भी काम था ना शाम वाला, तो मैं वहाँ शनिवार को किया था। ठीक है। और एक वो केसी जिंदर साहब की किताब जिनको देके आया था मारवाड़ी शो वाली।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
2: बहुत दिन हो गए थे, मैं याद तो कर लो। ठीक है,
1: बिल्कुल।
2: तो वो पहला वाले ही है, तो दूसरा फोन है।
1: अच्छा अच्छा,
2: उसमें रिचार्ज अभी नहीं किया हुआ था, ये चलता था, मैंने इसे याद कर लो आपको।
1: ठीक है ठीक है, ओके जी।
2: ठीक है,
1: नमस्कार। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये थे कुपाराम जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे। और चलिए, मैं आपको उनकी कहानी बता रहा था उद्धव ठाकरे की। और आज ही के दिन 1960 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। और विशेष रूप से ये राजनीति में आने से पूर्व शिवसेना के स्पष्ट उत्तराधिकारी के रूप में शायद ही कोई उद्धव ठाकरे को जानता था। एक महत्वपूर्ण तत्व था कि पार्टी के भीतर उद्धव ठाकरे ने कभी भी सक्रिय राजनीति में अपना ध्यान नहीं लगाया था। अपने आप को वन जीवी फोटोग्राफी में ही व्यस्त किए रखा और वे एक बहुत ही

पॉपुलर फोटोग्राफर थे और वार्षिक प्रदर्शनियों में उनकी फोटोग्राफी काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी। तो उपलब्धियों की बात करें तो एक लंबी लिस्ट है। और फिर 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के वाले उद्धव ठाकरे 29 जून 2022 को अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इस तरह वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ 943 दिन तक ही टिके रहे और उनसे पहले सिर्फ दो ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूरे 5 साल तक सीएम की कुर्सी संभाली। मराठा संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून 2022 को फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, लेकिन 30 जून 2022 को फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये थी कुछ खास बातें उद्धव ठाकरे के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। सुनते रहो मस्क।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आज 27 जुलाई आज का तारीख है और बड़ा ही अच्छा लगा जो आप सभी ने कुछ कुछ महान लोगों की कहानी आपने सुनी। के अश्चित्रा एक भारतीय गायिका, कल्पना दत्त जो एक क्रांतिकारी, भारती मुखर्जी एक साहित्य कारा जिनके बारे में हमने आज सुनी, और आशा करूँगा कि आप इन सभी की जीवन कहानी को सुनकर कहीं ना कहीं आपके मानस पटल पर एक नई चीज़ जो है उभर कर आई होगी, एक नई चेतना आपके अंदर आई होगी। तो भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

मैं ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी छोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परिहारी बोली।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और दोस्तों हम सब आ गए हैं आपके पास लेकर एक नए विषय और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है मोनिका. और दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज उस विषय के बारे में जो एक जीवन को कुछ इस तरीके से प्रभावित करता है कि समझ लें कि वो एक नया मोड़ ही ले आता है. हम बात कर रहे हैं कि जब कुछ ऐसी परिस्थिति या सिचुएशन आ जाती है, एक बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है, ड्रॉप करना पड़ता है. कुछ मजबूरी होती है, कुछ चॉइस भी होती है, लेकिन कभी कभी लैक ऑफ अवेयरनेस यानी हमें ये महसूसता नहीं होती कि क्या असर पड़ जाएगा. कई बार होती है मगर परिस्थिति कुछ ऐसी होती है कि वो हम कुछ नहीं कर सकते. तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी सिचुएशंस में क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी जानेंगे, क्या उपाय हैं वो भी जानेंगे और बात करेंगे इस विषय में. मोनिका आपका स्वागत है.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया.
0: तो मोनिका सबसे पहले तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में.
1: वैसे शिक्षा का महत्व तो आजकल सभी को पता है और शिक्षा के मामले में आजकल सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएँ बनाई है. तो वैसे आजकल सारे लोग शिक्षा लेते हैं पर ऐसे कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें इस मामले में जागरूकता नहीं है और कोई ना कोई ऐसे कारण होते हैं जिनके वजह से वो स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं बीच में ही. और फिर एक ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में जब उन्हें लगता है कि हम क्या हम फिर से जा सकते हैं, क्या हम फिर से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. तो उनके लिए आज ये हमारा सेशन है. राइट.
0: ओके. तो जैसा आपने कहा कि क्या हम एक शिक्षा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ये मन में आता है, पर क्या रीज़न होते हैं, मतलब क्यों आपको लगता है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्या विश प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या लगता है आपको?
1: जी सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि किसी कोई परिवार होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल वित्तीय प्रॉब्लम्स होती हैं. पर आजकल सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्लान अमेंडमेंट किया है, राइट टू एजुकेशन जिसको बोलेंगे. 2009 में ही हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो पास हुई थी जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षण प्राप्त किया जाता है. तो ये प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, मतलब
0: सॉल्व करने का प्रयास तो हो रहा है बिल्कुल. लेकिन हम अगर गांव-गांव में देखते हैं, आज बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं जब माता पिता दोनों काम पे जाते हैं और घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें देखने के लिए कोई नहीं होता, तो कई बार बड़े भाई बहनों को स्कूल छोड़ना पड़ता है. कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जो बच्चे हैं वो उन्हें वो माहौल नहीं मिलता कि घर पे पढ़ाई के लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, तो उन्हें लगता है कि शायद पढ़ाई करके क्या ही फ़ायदा है. कई बार माता पिता को भी ऐसा लगता है क्योंकि इतनी नौकरियां अब कहाँ से गांव में दिखेंगी, गांव में खेती करनी है या वही काम करना है, तो माता पिता को भी ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो अभी कमाएं क्योंकि बाद में भी यही काम करना है और अभी भी यही काम करना है. एक ये भी सिचुएशन होती है. और कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि छोटी सी बात बड़ी बुरी लग जाती है किसी टीचर की, कोई टीचर डांटेगा या फिर उनसे डर लगने लगता है या किसी और बात से डर लगने लगता है और लगता है कि छोड़ो मेरे दोस्त भी तो नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जाता हूँ. और वो एक दिन एक महीना और एक महीना एक साल और एक साल न जाने कितने साल बन जाता है और स्कूल जाना ही बंद हो जाता है. कई बार एक सब्जेक्ट पसंद नहीं आता उस चक्कर में ऐसा हो जाता है. कई बार लड़कियों के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि रास्ते में छेड़छाड़ के मामले हो जाते हैं और वो ना घर पे बता पाती हैं ना स्कूल में किसी की मदद ले पाती हैं, और ऐसे में किसी को पता चलता है तो मुश्किल का सामना लड़कियों को ही करना पड़ता है, उनका स्कूल जाना कॉलेज जाना बंद करा दिया जाता है. ये सब समस्याएं हैं लेकिन हल नहीं है. स्कूल बंद करा देना हल कभी नहीं हो सकता, सल्यूशन कभी नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि पूरे जीवन का जो आधार है वो है शिक्षा. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, कर रहे हैं. ये इतना आसान तो नहीं है लेकिन हम सभी के प्रयास से मिलकर हम कुछ सफलता हासिल ज़रूर कर सकते हैं. और मोनिका और क्या लगता है, आपने इस बारे में और पढ़ भी रहे थे, आप क्या पढ़ा आपने?
1: जी कहीं कहीं पे लड़कियों के को शिक्षित करना एक समझा जाता है कि क्या ही करेगी पढ़ के, आगे जाके शादी करनी है और ज़्यादा पढ़ लिया तो फिर वर मिलना, वो वो भी चीज़ें हो जाती है जो माता पिता सोचते हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्ची, और लड़कों के मामले में रहता है कि आगे जाके इसने हमारा ही बिजनेस संभालना है तो क्या फ़ायदा हो, मतलब पढ़ के
0: ऐसा भी सोच लेते हैं
1: जी, जी। और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कोई कोई स्कूल्स में एक ही एक साथ बहुत काफ़ी बच्चों को बिठा देते हैं और काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ाते हैं, उसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट भी चला जाता है, और कहीं पे जो सिखाते हैं स्कूल में वो ऑफ टॉपिक हो जाता है, जो बच्चों को लगता है कि इसका हमारे जीवन में रिलेशन नहीं है कुछ भी, इसका कहीं कहाँ उपयोग हो सकता है, तो हम क्या ही करेंगे पढ़ के
0: क्या फ़ायदा है
1: जी, तो इसके लिए शिक्षा इस तरह से बनाई जानी चाहिए, नॉलेज एजुकेशन इस तरह का हो कि वो बहुत एंगेजिंग हो, बच्चों का ध्यान आकर्षित करे, और
0: टीचर्स कुछ नए नए तरीके इस्तेमाल
1: नए तरीके होते हैं
0: जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी बात है
1: जी। और जो लड़कियां होती हैं उन्हें वो क्यों, वो कभी कभी इस कारण से भी स्कूल नहीं जाती है कि स्कूल में शौच घर नहीं होता है, तो उस कारण से भी वो नहीं जाते हैं, क्योंकि वो आजकल काफ़ी स्कूल्स में बनाया भी जाता है
0: जी,
1: अवेलेबल किया जाता है, पर कहीं कहीं पे नहीं भी है, तो वो भी एक कारण है,
0: बहुत बड़ा कारण है बिल्कुल
1: जी।
0: तो इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ऐसा लगता है कि अभी उस समय महसूस नहीं होता कि कितना बड़ा ये हमारे जीवन पर असर डालेगा, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं देखते हैं कि और उनके साथ के जो लोग हैं वो आगे निकल रहे हैं या अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं या कुछ अपना कर रहे हैं, तो महसूस तो होती है और फिर गिल्ट भी होता है, बुरा भी लगता है माता पिता को भी और बच्चों को भी। हाँ ये ज़रूर है कि भाई जिनका वो समय निकल गया, वो यूथ हो गए, बड़े हो गए, वो भी पढ़ सकते हैं हालांकि, लेकिन जो बच्चे हैं अगर आप लोगों ने किसी भी कारण से स्कूल छोड़ दिया है ना दोस्तों, तो उस कारण का दूसरा निवारण ढूंढ लीजिए, क्योंकि स्कूल छोड़ना सल्यूशन नहीं है, आपके जीवन के लिए स्कूल जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस बारे में और भी बात करेंगे मोनिका, एक छोटा सा गीत हमारे दोस्तों को सुनाते हैं, लौट कर आएंगे। कार्यक्रम रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं युवा मंच, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

रेडियो पर प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज करा सकते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी, डेप्यूटी डायरेक्टर, रूम नंबर 116, इवनिंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001, फोन नंबर 0112388647, ईमेल prabhudat.sharma@nic.in या CISCELL-MOIB@nic.in।

0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और हम बात कर रहे हैं आज दोस्तों स्कूल ड्रॉप आउट कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं। अब लेकिन कैसे और क्यों, मुझे लगता है सबके कारण अलग अलग हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशंस भी हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए शो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों हमारे साथ मोनिका जुड़ गई है स्टूडियो में। मोनिका, और क्या कारण है, आपको क्या लगता है क्यों होता है स्कूल ड्रॉप आउट?
1: जी कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस में JEE और नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनना होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तो इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो कुछ बच्चे इन्हें टाइम इसके लिए तैयारी करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम इसमें देते हैं और उसकी वजह से वो स्कूल के जो क्लासेस होते हैं वो मिस करते हैं और फिर वो स्कूल में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फिर वो छोड़ देते हैं स्कूल। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार फेल होते होते फिर उनका फिर वो छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं करते, हम ऐसे ही कोई बिजनेस कर लेंगे। ये भी एक कारण है। और कुछ पेरेंट कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इधर उधर वो शिफ्ट करती रहती हैं, जो बहुत सिटीज़ में जो डिफेंस फैमिलीज होती हैं और उसकी वजह से
0: होते हैं वो बहुत सारे जो मजदूरी करते हैं, भाई बहन बंजारे भी होते हैं, वो एक जगह पे नहीं टिकते तो उनका कहीं पे बच्चों की उनकी पढ़ाई एक जगह नहीं हो पाती है।
1: जी डिस्टर्ब हो जाता है उनका और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो भी उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। और जैसे कि हमने बुलिंग के बारे में भी बात की थी, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल और कॉलेज छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। और इसके अलावा कुछ फैमिलीज़ में बैकग्राउंड ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पे शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं होता है और बच्चे जुआ और सट्टा ज़्यादा खेलते हैं,
0: गलत आदतों में पड़ जाते हैं।
1: जी तो वहाँ शिक्षा का महत्व नहीं होता है तो इस वजह से भी वो स्कूल छोड़ देते हैं।
0: और कई बार लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है, मैंने कहा ना कि लड़कियों स्कूल छोड़ने की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है और कई बार तो शुरुआत भी नहीं हो पाती, उनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता। कई बार भेजा जाता है तो उनकी पढ़ाई को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता जितना लड़कों की पढ़ाई को समझा जाता है।
1: हाँ जी।
0: और कई बार तो छुड़वा भी दिया जाता है स्कूल।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: हाँ, किसी के पास अगर आर्थिक समस्या है, पैसे वित्तीय समस्याएं हैं तो उनकी शादी करवाई जाती है, तो इसलिए ये भी कारण है, खास करके जो लड़कियाँ होती है।

0: बिल्कुल, और कई बार लड़कियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर छोटा भाई बहन है घर में, तो भले वो लड़की खुद बहुत छोटी है, बट उसे खुद अपने छोटे भाई बहन को देखना संभालना होता है। दोस्तों, परिस्थिति को हम समझ सकते हैं, और अगर परिस्थिति इतनी बड़ी है ना कि नहीं हैंडल हो रही, तब भी मिलकर पूरा परिवार कोई ना कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर वो छोटी बच्ची की पढ़ाई छुड़वा दी गई, तो उसका पूरा भविष्य दांव पर लग जाएगा, और उसके पूरे भविष्य में अगर वो कल को चाहेगी कि एक अच्छे जॉब के लिए अप्लाई कर पाए, या मान लीजिए आज हम देखते हैं घरेलू हिंसा, कितने लोगों को इस घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, कितनी लड़कियों को अत्याचार सहने पड़ते हैं शादी के बाद भी। तो अगर एक लड़की आत्मनिर्भर है, अगर वो पढ़ी लिखी है, फिर उसकी शादी होती है, ज़रूरत पड़ने पर वो अपने को इतना संभाल सकती है, अपनी केयर कर सकती है, बल्कि दूसरों की भी केयर कर सकती है, सिर्फ अपनी नहीं, उसको मदद मिलती है, उसको हौसला मिलता है। तो पूरे जीवन के लिए पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं चाहिए, पढ़ाई जीवन के लिए चाहिए। तो इसीलिए लड़कियों की पढ़ाई तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं छुड़वानी चाहिए। आप अगर मिलके सोचेंगे, मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। लेकिन वो बच्ची अगर स्कूल के अगर रास्ते को भूल गई ना, तो कल को हो सकता है उसका भविष्य उतना अच्छा ना हो पाए जितना चाहते हैं या वो खुद चाहती है। तो बहुत दुख होता है कई बार जब बच्चियों को छोटे-छोटे देखते हैं और उनको स्कूल जाने को नहीं मिलता है।
1: जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी। एक्चुअली हमारे हम भी ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पे बोलते थे कि ज़्यादा पढ़ाना नहीं है और शादी करा देते हैं जल्दी, और हमें भी बोला जाता था कि क्या करोगे पढ़ के, और मतलब हमें ऐसे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे थे कि उनकी शादी करा देते थे पढ़ाई होने के बाद, फिर ऐसी सोच थी। पर आज हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, हमारे माता पिता ने हमें बहुत अच्छे से शिक्षित किया है, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सिर्फ पैसे कमाने के लिए शिक्षा का महत्व खाली वहाँ तक नहीं है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व बहुत बहुत विकसित होता है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स अच्छा दिख के आता है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन जीने की कला हमें शिक्षा से मिलती है, शिक्षा हमें बहुत कुछ सिखाती है।
0: बिल्कुल, और कितनी सही बात की। अब देखिए, आपके घर वालों ने इस बात को समझा
1: जी,
0: है ना, नहीं तो अगर समाज की, अड़ोसी पड़ोसियों की, या कई बार रिश्तेदारों की बातों में भी आ जाते
1: जी,
0: तो हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है उन लोगों की बातों में हम आ जाते जिनकी हमारे जीवन से कोई लेना देना भी नहीं है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले, ना हम उनके किसी काम आने वाले हैं भविष्य में, तो जो होना है वो होना है, लेकिन फिर भी उनकी बातों का असर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लड़की को तुमने इतना पढ़ा दिया, लड़की को तुमने इतनी छूट दे दी, है ना। तो इस तरह की बातें भी बहुत होती है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी कौन है? आपके बच्चे ज़रूरी हैं या लोग ज़रूरी हैं? और लोग तो बातें करते ही रहेंगे, कभी भी वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, जो बातें सही हैं, जो समाज को समाज बनाने के लिए ज़रूरी हैं, ज़रूरी है, हम सब एक समाज में रहते हैं तो हम उनका पालन करें, लेकिन अगर एक बच्चे की पढ़ाई की कुर्बानी देनी पड़ रही है उन बातों को पूरा करने के लिए, अगर किसी का भविष्य खराब करना पड़ रहा है उन बातों को सही ठहराने के लिए, तो आपका निर्णय अपने बच्चों के लिए बल्कि समाज के लिए भी गलत होगा, क्योंकि हमें समाज भी ऐसा चाहिए, वो बच्चे जो कल का भविष्य है वो पढ़े लिखे चाहिए, है ना, तभी तो बदलाव होगा, तभी तो परिस्थिति बदलेगी
1: जी।
0: जो हम चाहते हैं कि बेटर हो हमारा, कल को पैसे ज़्यादा आए घर में, घर की कंडीशन बेहतर हो, सब कुछ बेहतर चाहते हैं, कोई तो नहीं चाहता और बिगड़ जाए चीज़ें, नहीं तो वो सुधरने का बहुत बड़ा हथियार है शिक्षा
1: जी,
0: बहुत ज़रूरी है।
1: जहाँ पे लोग पूछते हैं, ऐसी बातें करते कि क्या करोगे, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं आपने क्या पढ़ाई की है,
0: बिल्कुल,
1: तो उन्हें जवाब देने के लिए भी हमें पढ़ना तो ज़रूरी है।
0: कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमें बोलने का, अगर हमने पढ़ाई नहीं की है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो लोग तो बोल रहे हैं इतने अच्छे से, हम डर जाते, कॉन्फिडेंस नहीं आता, उस चक्कर में हम जो टैलेंट है ना, जो हुनर है वो भी दिखा नहीं पाते आप। तो कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के महत्व को समझना ही होगा। हाँ, जो हो गया सो हो गया, जो नहीं पढ़े, जिन्होंने कार्य जल्दी शुरू कर दिया, अपने घर को संभाला, उनकी बहुत बड़ा त्याग है उन्होंने किया, और वो त्याग जाहिर ना हो इसके लिए आप आने वाली जनरेशन को पढ़ाइए, इस जनरेशन को पढ़ाइए। इनफैक्ट जो घर में लोग हैं, अक्षर ज्ञान तो वो भी ले सकते हैं ना, मम्मी को अपने, आप बच्चे जो स्कूल जाते हैं अपनी मम्मी को आप लिखना सिखाओ, अपनी मम्मी को ABCD क क ख सिखाओ, और आप उनको साइन करना सिखाओ ताकि वो कल को बैंक में जाते हैं या बस में बस लेने जाते हैं तो वो पढ़ पाएँ, उन्हें किसी को पूछना नहीं पड़े कि वो क्या लिखा है, कहाँ साइन करना है, कैसे साइन करना है, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाए, उनके साथ कोई गलत नहीं कर पाए। तो आप अपनी माँ को भी पढ़ाइए, आप अपने बहन को भी पढ़ाइए, आपके घर में जो लोग नहीं पढ़े हैं भले उम्र में बड़े हैं, अक्षर ज्ञान ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी है ना मोनिका
1: जी? बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस मुहिम को आप सब आगे लेकर जाएंगे हमारे साथ साथ। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9914151415, यानी कि 9414151415। फिलहाल बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: लौट कर आ गए हम कार्यक्रम युवा मंच में और दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्कूल को ही बीच में छोड़ देने से क्या होता है। वैसे अनुभव जो स्कूल छोड़ते हैं उनको भी है, उनके माता पिता को भी है, उनके अड़ोसी पड़ोसी और परिवार वालों को भी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये शायद बहुत ऐसी बात है कि सब कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब भाई किसी के दोस्त सारे अगर स्कूल छोड़ के बैठे हैं खेल रहे हैं तो बच्चे को भी लगता है कि मैं भी खेलूं, मैं क्यों जाऊं, रोज़ मुझे टीचर मारती है डांटती है, ये करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, जाना पड़ता है, क्यों मैं, मेरे दोस्त कितना इन्जॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी अपना मस्ती कर रहे हैं, जो कर अपने दिन में खुश हैं, तो मैं भी क्यों ना खुश रहूं, मेरे साथ ये। लेकिन अब बात यह है दोस्तों, ऐसे में उस समय वो बच्चा तो नादान है, छोटा है, लेकिन माता पिता को उन्हें बहुत बहुत अच्छे से समझाने की ज़रूरत है कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी ही है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम टॉप ही करो, एकदम परसेंटेज 90 आ जाए 80 आ जाए, लेकिन पढ़ाई करो, समझो और आगे बढ़ो। और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा जीवन इससे अफेक्ट होता है। और मोनिका क्या लगता है आपको इस बारे में? और
1: जी बिल्कुल आपने सही कहा, जब मैं छोटी थी और ऑफ कोर्स जो भी बच्चे होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि पढ़ाई से छुटकारा हो जाना चाहिए, बस खेल कूद होनी चाहिए और मज़े होने चाहिए। लेकिन अभी हमें लगता है कि नहीं, पढ़ाई का, शिक्षा का बहुत इम्पोर्टेंस है। जब हम देखते हैं हमारी एज के कुछ बच्चे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ विदेश में जाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, तो अभी हमें शिक्षा का महत्व पता चलता है। हम छोटे रहते हैं तो नादान रहते हैं और एज अ पेरेंट हमें तो पता है इम्पोर्टेंस, तो हमें बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर बच्चों का मोटिवेशन, बच्चे खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है,
0: पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। और दोस्तों अगर हम बात करें कि कुछ आपको अगर डेटा आपके साथ शेयर करना चाहें, तो दोस्तों एक रिसर्च हुई, एक स्टडी हुई जो कि डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने कराई, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त 2023 की। 2023 को 9 अगस्त को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जागरण में, और दोस्तों उसमें बताया गया कि उन्होंने एक स्टडी की थी और जिसमें उन्हें ये पता चला कि जो रूरल इंडिया है, अगर हम बात करें गाँव की बात करें, कई ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को ग्रेजुएशन लेवल तक भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लड़कियों के माता पिता हैं 78% और लड़कों के 82 यानी 82%, यानी लड़कों के माता पिता अभी भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों के माता पिता हाँ अवेयर हैं, ग्रेजुएशन कराना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कंपैरिजन में कम है। लड़कियों की पढ़ाई को अभी भी महत्व कंपेरेटिवली लड़कों से कंपेयर किया जाए तो कम मिलता है। और ये जो स्टडी हुई यानी जो रिसर्च हुई, ये ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया और संबोधी रिसर्च एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने करवाई, और ये रिसर्च जो 6 से 16 साल तक के बच्चे होते हैं गांव में, रूरल कम्युनिटीज़ में, उनके माता पिता से पूछा गया था, बात की गई थी, और करीब 20 स्टेट में ये रिसर्च कंडक्ट की गई। तो दोस्तों जब ये रिज़ल्ट आता है तो एक ये भी एहसास होता है कि हाँ पहले से हालात बहुत बदल गए हैं, लेकिन अभी भी एहसास होता है कि अभी भी लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना लड़कियों की शिक्षा को मिलता है, है ना
1: जी।
0: तो दोस्तों ज़रूरी है कि हम ये बातें जानें, और अगर हम ड्रॉप आउट की इस वक्त बात कर ही रहे हैं, टोटल जो ड्रॉप आउट है, अब उसकी बात करें तो ड्रॉप आउट रेट जो है कि लड़कियों के जो छोटी बच्चियां होती है उनमें ज़्यादा है, और इसी रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ, 35%, आप सोचें 35%। और आप अगर लड़कों की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल ये रेट ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों में हो ही नहीं रहा, लड़कों में नहीं हो रहा, लेकिन लड़कियों में अभी भी ज़्यादा है। यानी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लड़की सिर्फ शादी करके दूसरे घर नहीं जाएगी, बल्कि उसका जीवन भी उतना ही, उम्र वो जीने वाली है उतना ही, वो ज़रूरी है उतना ही, वो समाज का हिस्सा है उतना। और सोचिए एक लड़की, कहते हैं ना कि भाई एक लड़के को पढ़ाते हैं तो एक लड़के को पढ़ाते हैं, लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, ये कहावत है
1: जी।
0: और आप कुछ कहना चाहोगे, आपने जो पढ़ा जो इस बारे में विषय में समझा?
1: जी वैसे आजकल लड़कियां लड़कों से आगे ही है हर क्षेत्र में। हम स्कूल में भी देखते थे कि जो टॉपर्स रहते थे और आजकल यूनिवर्सिटी टॉपर्स मोस्टली लड़कियां रहती है और लड़कियां किसी के मामले में कम नहीं है. कहीं कहीं पे लड़कियों ने दिखा दिया कि लड़कों से कम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे आज भी ऐसे लड़कियों की शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता है. हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम लड़कों वाले लड़कियों वाले दोनों काम कर लेते, तो एक अच्छा लगता है कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं,
0: अपने माता पिता को भी संभाल सकते हैं, उनको कोई ज़रूरत पड़े तो हम मदद कर सकते हैं, चाहे ट्रेन का टिकट करना हो, कुछ सामान खरीदना हो, कुछ भी करना हो
1: जी.
0: तो लड़कियां गाड़ियां चलाती हैं, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, तो अगर वो शिक्षित नहीं होती तो वो संभल कैसे होती
1: जी.
0: और दोस्तों जब भी बात शिक्षा की आती है तो मुझे लगता है एक प्रश्न सबके मन में आता ही है, और वो ये भी अभी भी हमें ये ज़रूर लगता है कि पढ़ा के क्या होगा. अगर मान लो काम वही करना है जो हमारे माता पिता कर रहे हैं तो पढ़ के क्या फ़र्क पड़ जाएगा.
1: नहीं, पढ़ने से तो बहुत फ़र्क होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं. सिर्फ पढ़ाना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कमाई का साधन नहीं है, बहुत कुछ सीखते भी हैं, तो पढ़ाई से बहुत फ़ायदे होते हैं.
0: अब पता है मैंने कहा एक प्रश्न ये ना, छोटे छोटे बच्चे गांव में एक प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पास के ही, और उन बच्चों से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि मतलब स्कूल, अगर मान लो आपको स्कूल से क्या, स्कूल जाने से क्या होगा. तो उसमें से एक छोटी सी लड़की थी, वो लड़की ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 6-7 साल की थी शायद. तो उस लड़की ने बोला कि अगर मुझे खाना भी बनाना है तो अगर मैं पढ़ लिख जाऊँगी ना तो मैं कुछ नया नया और बना पाऊँगी, मुझे पता चलेगा और कहाँ कहाँ क्या बनाते हैं, कैसे मैं पढ़ पाऊँगी, कैसे कैसे बनाते हैं. तो सिर्फ जो यहाँ बनता है, जो हम खाते हैं, हम कुछ और भी नया नया आपको बना के खिला पाएंगे. वहाँ एक छोटा बच्चा भी था, उसने कहा कि अगर मुझे खेती करनी है, मान लो मुझे अपने माँ बाप का जो काम है उसको आगे बढ़ाना है, अच्छे से खेती करनी है, एक अच्छा फार्मर भी तो देश की नींव है ना
1: जी.
0: तो उसने बोला कि मैं और तरीके से खेती कर पाऊँगा और स्टाइल अपना पाऊँगा इरिगेशन के, या फिर उसने मतलब इरिगेशन शब्द का उपयोग तो नहीं किया, परंतु उसने ये ज़रूर कहा कि मैं खेती के नए तरीके ढूँढूँगा, बेहतर करूँगा खेती को. तो अब ये कितनी बड़ी बात है, वो छोटे छोटे बच्चे इस बात को समझ रहे हैं कि वो जो जीवन जी रहे हैं उसी को बेहतर कर सकते हैं अगर वो शिक्षा हासिल कर लें तो.
1: जी, आपको एक बात बताऊंगी. एक्चुअली मैंने तो वैसे कॉमर्स किया है, पर अचानक से मुझे ऐसे इंटरेस्ट आया कि साइंस की बुक होती है जो NCERT जो UPSC की प्रिपरेशन करता है, तो उनकी मैंने साइंस की बुक पढ़ी थोड़ी सी, और मुझे इतना सारा नॉलेज मिला उसमें से कि कौन सी चीज़ों में विटामिन्स मिलते हैं, कौन सी चीज़ में एनर्जी मिलती है, और जो जैसे कि आपने कहा जो खेती करते हैं उन्हें उस क्षेत्र में भी बहुत सारा नॉलेज मिला. मैंने एक ही किताब पढ़ी और इतना नॉलेज अगर मिल रहा है तो पूरी की पूरी अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप कितने ज़्यादा शिक्षित हो जाओगे, और वो आपको काम में आएगा. आप कैसे जीना है, अच्छे से अपने आप को कैसे रखना है. आप हम पढ़ाई क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण है ना. पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी करेंगे, डिग्री मिल गई उसके लिए, हमें उसमें से सीखने को मिल रहा है. अगर वो प्रथा चलती आ रही कि पढ़ाना है तो उसमें से फ़ायदा हो रहा है, तभी हम पढ़ाई को, शिक्षा को इतना महत्व दे रहे हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. और देखो आपने वो बुक पढ़ी इसलिए कि आपको जानकारी मिले, आपको एग्जाम नहीं देना था, वहाँ स्कूल की किताब नहीं थी आपकी. तो नॉलेज जहाँ से मिले आपको काम ही आएगी एक ना एक दिन, आपको वो मदद ही करेगी कभी ना कभी. खाली नहीं जाती कोई भी चीज़ अगर आपने सीखी है तो. ये कहता है, हमारे बड़े बूढ़े हमें समझाते आए हैं, कहते आए हैं इस बात को. और मोनिका, क्योंकि हमारे शो भी ख़त्म होने वाला है थोड़े समय में, आपने कुछ NIOS के बारे में भी पढ़ा है और उपाय सॉल्यूशंस की भी अगर बात करें तो आप क्या सोचते हो.
1: जी, जो लोग सोचते हैं कि हमने बहुत साल हो गए और हमने स्कूल छोड़ दिया था, हमने 4th to 8th grade पढ़ाई की थी, और हम क्या हम फिर से पढ़ सकते हैं, क्या हम फिर से स्कूल जा सकते हैं और कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, तो उनके लिए खुशखबर है कि हाँ जी बिल्कुल आप कर सकते हो. और उसका सॉल्यूशन ये है कि एक NIOS, जैसे कि आपने कहा कि इंस्टीट्यूट है, सरकार, भारत सरकार ने जारी किया है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल ओपन स्कूलिंग कहा जाता है, एक ये ऑप्शन है. उसके अलावा जिन बच्चों ने हाल ही में स्कूल छोड़ा है और अभी स्कूल जाने की एज में है, वो स्कूल जा भी सकते हैं तो वो रेगुलर स्कूल्स में जाके भी फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, और जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है वो NIOS के थ्रू जा सकते हैं। हर एक स्टेट का ओपन स्कूलिंग का इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। मैंने एक्चुअली सर्च किया था ये, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, वो जनरल है, और
0: यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान
1: जी, और एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है,
0: इग्नू जिसे कहते हैं
1: जी। और उसके अलावा काफ़ी स्टेट्स हैं जिनके अपने अपने NIOS हैं, ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बेंगलोर में भी अपने अपने ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इतनी व्यवस्था आई है, मतलब आप कभी भी पढ़ना चाहो, कभी भी वापस शिक्षा प्राप्त करना चाहो तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जाके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। एजुकेशन काउंसलर्स होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं, उनसे।
0: जैसे आपने इग्नू वगैरह की बात करी और ऐसे कॉलेजेस की बात की, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी वो होती हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन करते हैं, यानी आप 12वीं कर चुके हैं, आप उसके बाद की पढ़ाई होती है। NIOS की बात कर रहे हैं हम, वो ओपन, हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो ड्रॉप आउट जिन्होंने स्कूल में किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो ओपन लर्निंग कर सकते हैं। मतलब आपको रोज़ स्कूल नहीं जाना है, आपको किसी पर्टिकुलर जगह एडमिशन नहीं, लेकिन हाँ आप वो पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते हैं और आपके पास वो डिग्री, वो आपको आ जाता है कि एक क्लास आपने पास कर ली है। तो अगर आप किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वैसे तो सबसे अच्छा है स्कूल जाना, लेकिन आप बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र निकल गई है या कुछ और मुश्किलें अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। ये लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम है पूरी दुनिया का, आप सोचें कितना बड़ा ये कार्य चल रहा है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार के अंडर आता है, और आप अगर इस बारे में जानना चाहें तो दोस्तों आप nios.ac.in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, nios.ac.in
1: जी। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, लोगों को, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत साल निकल जाएंगे पढ़ने में, लेकिन NIOS का, ओपन स्कूलिंग का एक फ़ायदा होता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। आपकी, आपको किस क्षेत्र में पढ़ना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, वो अपने उसके हिसाब से आपका प्लान बनाते हैं, और आपका पढ़ाई भी आपकी स्पीड आपके ऊपर है, आपको कितनी स्पीड से पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए तो वो भी पॉसिबल है, इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है।
0: और दोस्तों अगर आपको इसकी और अधिक जानकारी चाहिए तो एक टोल फ्री नंबर भी है जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो नंबर है 1800 1800 9393। नंबर मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 1800 1800 9393। तो ये नंबर भी है जहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, और आप पढ़ाई अपनी पूरी ज़रूर कीजिए। दोस्तों जाते जाते भी हम यही दरख्वास्त करेंगे आप सभी से, अगर आपके आसपास कोई है जो स्कूली शिक्षा अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए तो उन्हें भी मोटिवेट कीजिए, उनको जिस तरह से मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए। वैसे तो हम एक दूसरे के लिए कितना कुछ करते हैं ना, बर्थडे होता है तोहफा लेकर आते हैं, कुछ और उसको खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को शिक्षा का उपहार दिया है दोस्तों, तो उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता। समझ लीजिए आपने उसे जीवन का नया उपहार दे दिया है। तो शिक्षा पूरी करने में किसी ना किसी की मदद ज़रूर कीजिए, अगर हम एक एक की भी मदद करेंगे तो हम समझ लीजिए भारत की मदद कर रहे हैं, पूरे अपने देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और ये कर्तव्य तो हमें निभाना है मिलकर। आप जाते जाते मोनिका कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, और कोई उम्र नहीं होती है शिक्षा सीखने, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मर्यादा नहीं रहती है। आप किसी भी उम्र में, आप चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो फिर से, तो आप कभी भी कर सकते हो, वापस कंटिन्यू कर सकते हो।
0: जी तो ज़रूर कीजिए आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई, और फिलहाल सीख लेते हैं आपसे इजाज़त। हम आएंगे अगली बात अगले विषय के साथ लौट कर कार्यक्रम में।

गम में पिए या दुख में धुआं उड़ाए। तंबाकू के सेवन से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़ों के कैंसर, लिवर कैंसर, मुंह का कैंसर, कोलन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर होने का भी जोखिम होता है। इसलिए आप कहिए नो टू टोबैको, धूम्रपान को कहिए अलविदा और कह

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

नमस्ते, मैं हूँ किरण शूद्र की सांगली और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना,

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस एक मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो इतिहास है, जो रीति रिवाज है, सब तक पहुंचाने के लिए एक सामुदायिक रेडियो सरकार ने दिया। ऑल इंडिया रेडियो तो सभी जानते हैं, लेकिन कमर्शियल रेडियो जो भी एडवर्टाइज के लिए बड़ा बड़ा शहर में रहता है, लेकिन गांव के लिए सरकार ने एक कम्युनिटी रेडियो, आपका रेडियो दिया सामुदायिक रेडियो के नाम पे। तो आज रेडियो मधुबन सामुदायिक से पहुंचे और सामुदायिक आवाज को बुलंद करने के लिए, उनका प्रतिभा को, उनका स्वर लय और ताल को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच दे रही है। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय, ये दोनों विद्यालय की मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास कार्यक्रम में उनका भाव भावना दिल का उद्गार संगीत का रूप में, हृदय में जो संगीत आता है भाव और भावना को लेकर आज प्रस्तुत करेंगे। और हमें बहुत खुशी है क्योंकि इस विद्यालय में जब भी आते हैं कोई भी भामाशाह तरफ से कुछ मिलता है तो बच्चों को बैग हो चाहे यूनिफॉर्म हो, जो भी आवश्यकता है मिलता है। तो आज हमें बहुत खुशी है और इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा मैम जी भी उपस्थित है। मैम को भी स्वागत करेंगे, मैम अपना परिचय देंगे बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। मैम, क्योंकि मैडम हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैम हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए और आप अपना परिचय दीजिए। आपका आवाज सुनकर बच्चे भी अपना गीत को प्रस्तुत करेंगे क्योंकि हमारा श्रोता भी सुन रहे, तो आपका वेलकम।
1: नमस्कार, ओम शांति। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलदर से विज्ञान की वरिष्ठ अध्यापिका सुनीता बोल रही हूँ।
0: जी मैम।
1: और शांति वन से हमारे आदरणीय भाई साहब यहाँ पर बच्चों का कुछ कार्यक्रम लेने आए हैं, जो कि बच्चों को उत्साहित करेगा, उनको प्रेरित करेगा और आप सुनिएगा उनको। थैंक यू।
0: मैम, आप भी कभी बच्चे थे उस समय क्या प्रिपरेशन किया, आज मैडम बन गए, क्योंकि बच्चे भी आज आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेहनत, आपका जो लगन बचपन में, जिसका चलता आज यहाँ तक वरिष्ठ अध्यापक साइंस टीचर बने हैं, तो क्या मेहनत करते थे जिसका चलता आज बच्चे भी आपको सुन रहे हैं और रेडियो के माध्यम से जो बच्चे सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे, तो उनके लिए क्या आपको शिक्षा देना चाहते?
1: मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ।
0: जी मैम।
1: और मेरा भी एक किसान परिवार से मैं आई हूँ।
0: जी।
1: मेरे पापा आर्मी में थे पर माँ किसानी थी।
0: ओके।
1: माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको ये था कि मेरी बेटियां, मेरे बच्चे अनपढ़ नहीं रहने चाहिए।
0: क्या बात।
1: तो जैसे इन बच्चों को आज लगता है कि मैडम पता नहीं कहाँ से, कोई शहर से पढ़ के आए होंगे इसलिए मैडम बने होंगे, जिस जैसे परिवेश में ये बच्चे रह रहे हैं, हमारे ट्राइब के बच्चे, हम भी ऐसे गांव से ही उठ के आए हैं, लेकिन हमें ये लगन थी कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है। जो हमारे गुरुजियों ने हमें जो सिखाते थे उस पे हम पूरा ध्यान करते थे कि उसको पढ़ना है और घर जाके उसको बार बार रिवीजन करना है। हालांकि जैसे इनके माँ बाप भी काम में रहते हैं, खेत में रहते हैं, अपने परिवेश में रहते हैं, हमारे माँ बाप भी अपने काम में रहते थे, लेकिन हमें जो ऐसा था कि बाकी बच्चों से हमें आगे जाना है, उठना है। अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो मेरे गांव में आज से 35 साल पहले 8वीं क्लास में 30 लड़कियां थी
0: उस समय।
1: और जो हायर सेकेंडरी हमारा स्कूल था 6 से 12 तक,
0: जी।
1: उसमें कम से कम हजार बच्चे थे उस टाइम।
0: जी जी।
1: और लड़कियों का अनुपात इतना कम था कि 10वीं में लड़के तो थे 250 और लड़कियां थी 10।
0: और आज
1: जो है वो पूरा परिदृश्य बदल गया है। मैं 9th क्लास में अभी हूँ, तो 9th क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से लगभग दुगनी है।
0: वाह, लड़कियों के लिए ताली बजना चाहिए भाई, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो हमारा बहन आगे बढ़ेंगे, बेटी आगे बढ़ेगी, जैसे मैम अपना बता रहे उस समय और आज का जमाना कितना अंतर है।
1: और मैं ये इन बच्चियों से हमेशा इनको प्रेरित करती हूँ और इनको ये कहती हूँ कि एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे आप इस परिवेश से ऊपर उठ के आप अपना कितना ही ऊंचा मकान बना सकते हो, कितना ही प्रोग्रेस कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो बहुत ऊंचे उठ जाते हैं उनके लिए कोई अलग से उनके दिमाग होता है या अलग से कुछ सुविधाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग में हमारे होता है कि वो अलग लोग होते होंगे, लेकिन वो अलग लोग नहीं होते, वो हम जैसे ही होते हैं। बस पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, समय चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए। तो पढ़ाने वाले स्कूल में है, किताबें आपको सरकार दे रही है, आपको सिर्फ अपने समय का सदुपयोग करना है, तो आप भी उसी ऊंचाई पे पहुंच जाओगे जहां आप चाहोगे। थैंक यू।
0: मैं इसमें ऐड करूंगा जी, विद्यार्थी जीवन में बड़ों का बात मानना अति आवश्यकता है। बड़ों में आपका माँ बाप, टीचर, बड़ा भाई बहन, क्योंकि वो आपका भलाई के लिए चाहते हैं। भले आपको खराब लगेगा, लेकिन उस समय आप थोड़ा ध्यान दे देंगे ना माँ बाप का, जो भी बोलेंगे माँ बाप, शिक्षक जो भी बोलेंगे, आपका भलाई के लिए करता, आपका हित के लिए। उस समय जब ले लिया माँ बाप को भगवान तुल्य मान लिया, टीचर को भगवान तुल्य माना, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा गारंटी, और उसके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन आशीर्वाद भी आवश्यकता है। तो इसे मैम ने बताया, अपना माँ बाप को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि इतना आगे आपने बढ़े।
1: हमारी माँ ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, और हमारे लिए 3 बजे सुबह उठ के, सर्दियों में भी 3 बजे उठ के हमारे लिए चाय बनाते थे, उसके बाद हमें बिठाते थे, हमारे साथ बैठे रहते थे 3 बजे उठ के
0: जी।
1: और उनकी बदौलत ही हम आज यहाँ हैं।
0: तो आज बच्चे इसको आत्मसात करेंगे, तब जाकर कुछ आज से हम संकल्प लेंगे जी, हमारा बड़े जो है उनका बात मानना चाहिए, जो भी करेंगे, जो भी हमारे लिए करेंगे, हमारा फायदा के लिए। हाँ कि नहीं बच्चे? आज से क्या करेंगे? माँ बाप का, बड़ों का बात मानेंगे, संकल्प किया। हाँ ऐसे तो मानते हैं, लेकिन आज सौदा मानेंगे, कभी कभी नहीं, सौदा के लिए। जब तक है तब तक सुनना है, सुनना है कि नहीं माँ बाप का? कौन कौन नहीं सुनना चाहते, हाथ उठाओ। नहीं, सभी सुनना चाहते, कोई हाथ नहीं उठाया, सभी सुनना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को, इतना उमंग उत्साह दिलाया, और बच्चे ऐसे सच्चे होते। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आगे बढ़ते हुए बच्चों का आवाज न हो और विद्यालय में आए तो बच्चों का आवाज न हो, ये हो ही नहीं सकता। बच्चों का आवाज को हम पहले प्रार्थना सत्र में प्रार्थना के रूप में एक माँ सरस्वती का वंदना सुनेंगे और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय देलदर का आवाज अब सुनेंगे बारी बारी। और हमारा साथ चार छात्रा है, होबनहार छात्रा, बड़े होकर मैम को देखकर भी लोग तो बन जाएंगे मैम, बड़े होकर मैम तो बनेंगे ही है, बनेगी मैम। क्या नाम है?
1: दीक्षा।
0: लेकिन मैम जैसे माँ बाप का बात सुनते थे और सुबह सुबह उठकर अपना पढ़ाई करते थे, उस तरह करेंगे तब होगा। चलिए सभी को धन्यवाद देते हैं। अपना नाम बताना सभी।
2: मेरा नाम संतोष गर्ग है।
3: मेरा नाम हिमांशी है।
0: हिमांशी।
4: मेरा नाम आशमा।
0: चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे।

0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। जिसको मंच चाहिए था, आज वो मंच बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि झिझक दूर करके कोई डरना नहीं और कोई डर नहीं लगा होगा। कोई डर लगा, कोई झिझक
0: नहीं,
1: कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई डर है
0: नहीं,
1: क्यों डर तो नहीं। रेडियो में माइक में बोलने के लिए अभी मैम बोले भाई आप पहले प्रिपरेशन करते हो, थोड़ा अच्छा बोलते, शब्द छूट गया ऐसे सोचते हैं, लेकिन बच्चे को जब अचानक में पहुंचते हैं कोई प्रिपरेशन नहीं करते, फिर भी बच्चे अपना भाव को देखते, क्योंकि संगठन का जो बल है एकता, एकत्रित होके सिंगल गाने में उसको झिझक लगेगा, लेकिन सामूहिक रूप में जब गाते हैं तो एक बल मिलता है कि नहीं?
0: हाँ,
1: मिलता है। तो बड़े होकर क्या बनेगी तुम?
0: IPS।
1: वाह, क्या दिल तो जीत गया IPS। इसे ऊंचा विचार रखना चाहिए, ऊंचा एम्बिशन, एम्बिशन अच्छा रखेंगे तो उससे नीचे भी हो सकता है, लेकिन अच्छा रख दीजिए। पहले चपरासी सोचेंगे तो क्या इसका नहीं होगा, तो फिर नीचे आ जाएगा, इसलिए बड़ा पोस्ट रखेंगे तो छोटा पोस्ट तो मिलना ही है, इसलिए ऊंचा पोस्ट रखना है। उसको प्रिपरेशन करते तो मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा तो उसका नीचे वाला पोस्ट तो जरूर मिलना है। जैसे फर्स्ट क्लास नहीं होगा तो सेकंड क्लास तो जरूर होना ही है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में टच करते करते हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो सेकंड क्लास तो होना ही है। लेकिन बोले हाँ थर्ड क्लास, थर्ड क्लास नहीं मिलेगा तो फेल हो जाएंगे, इसलिए थर्ड क्लास तो नहीं रखना है। पर ऊंचा विचार,
2: 100% समझ के तैयारी करोगे कि मुझे 100% लेके आना है, तो आपके 90 तो हमें आएंगे आएंगे।
1: मैम इसलिए अपना भाषा में बताया भाई परसेंटेज, क्योंकि विद्यालय में पढ़ते ना बच्चे तो हमारा 100% सोचेंगे ना, 100% बोलेंगे तो 99 तक आएगा, तब भी टॉपर में आ जाएगा, इसलिए ऊंचा रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। और तुम क्या बनेगी रे?
0: IPS।
1: कॉपी कर दिया देखकर, बोलते हमारा सभी दोस्त का यही सपना है, बस सभी ठान लिए। जैसे मैम बता ना भाई 100% IPS, 100% IAS, 100% उसको नहीं होगा तो भाई सब कलेक्टर तो हो जाएंगे, कलेक्टर नहीं मिलेगा तो सब कलेक्टर होगा, नहीं होगा तो भाई वीडियो बन जाएंगे ना, तो इसलिए ऊंचा रखना। उसके लिए मेहनत क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ेगी
0: उसके लिए, सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगानी होती है, कसरत करनी होती है।
1: आपका घर में आपको भी देखा IPS ऑफिसर को, IAS ऑफिसर को देखा, क्या काम करते वो लोग? पूरा जिला का संभालते हैं, सब उनका हाथ में। IAS ऑफिसर का काम है पूरा प्रशासन, अनुशासन। अभी अनुशासन स्कूल में मिल रहा है ना, आत्म अनुशासन मिला कि नहीं? खुद को कंट्रोल करना आता है कि नहीं? क्या देखना है, क्या सोचना है आपको आ गया? हाँ, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो भी आपको आ गया? क्योंकि आप ही तो करते ना पढ़ाई, हम तो नहीं करते, पढ़ाई तो आप करते हैं। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपको आया? कौन पढ़ता है?
0: हम
1: वाह, हम कौन है, हम सब कौन है? विद्यार्थी ना आत्मा,
0: विद्यार्थी और आत्मा,
1: दोनों विद्यार्थी भी है और आत्मा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: घर घर बहक। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला कड़ी में गुड़िया आएगी, किंतु गुड़िया का पहले और एक प्रस्तुति भजन के रूप में सुनेंगे, और हमारा वही छात्रा है जो पहले प्रस्तुति किए थे ब्रेक का पहले, उनको पुनः स्वागत करते वंस मोर, और एक प्रस्तुति सुनेंगे, और उनका जो भावना है, भाव है आज हृदय में, जो संगीत है, जो ताल है, जो लय है, और मैम जब वार्म अप करा दिए तो बच्चे भी एक के बाद एक प्रस्तुति के लिए रेडी है। कौन बोलता है भाई, ग्रामांचल बच्चे कम है किंतु शहरांचल बच्चों को भी टक्कर देने वाले है, क्योंकि देलदर का स्कूल के बच्चे है। चलिए सुनते हैं और एक प्रस्तुति, हमें खुशी है इस तरह बच्चे बढ़ चढ़ कर जोड़ लेते, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, अचानक में आए हाँ जी, क्या बोले हाँ जी, प्रस्तुत है और प्रस्तुति देने के लिए हम सब प्रस्तुत है, रेडी है ना, रेडी, चलिए शुरू करते हैं।

0: हमें कर दे।
1: चलिए वंस मोर कहते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है और सभी उमंग उत्साह से दिए प्रोग्राम और सभी तो मेहनत करते। घर में कोई चीज आता है तो किसको पहले मिलता है? नया चीज, कोई भी नया चीज आता है भाई को मिलता है ना बहन को मिलता है? तुम बताओ।
0: मुझे।
1: आपको मिलता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई को नहीं मिलता है? भाई को बाद में। आप लाडली है, वो लाडला है और लाडली। भाई बोलता है बहन को दो, बहन बोलेगी भाई को, ऐसे होना चाहिए है ना। भाई क्या बोलेगा? बहन को दे दो। और बहन क्या बोलेगी?
0: भाई को दे दो।
1: बोलेंगे ना। कोई भी चीज, नया चीज आएगा तो किसको देने के लिए पहले बोलेंगे? पहले आप, पहले आप, बाद में मैं। और मार खाने के लिए किसको पहले? पहले मैं, ना भाई को। मार खाने में पहले मैं और बाद में भाई को, ऐसा होना चाहिए ना। अच्छा चीज में भाई को, बुरा चीज में खुद को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

बाबा याद है, आओ हम सब शिव बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें और उनका मंगल गान करें।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला कड़ी में ब्रेक का पहला प्रार्थना के रूप में सभी बच्चों को सुन रहे थे, तत्पश्चात और एक प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत है भावना। भाव और हृदय का साथ जो संगीत है, आदिवासी जो देसी गीत है उस जिसमें शुद्धता है, पवित्रता है और ज्ञान वर्धक है। ऐसे हर गांव में हर बच्चे बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, उसका माँ बाप जब गाते हैं तो छोटे बच्चे भी ऐसे शादी में, विदाई में और गणगौर त्योहार में, होली में, हर त्योहार में जाकर सीख जाते। तो हमारा भावना आज इस कार्यक्रम को सजाएगी। तो भावना क्या प्रस्तुति करेगी, तो अपना परिचय पहले दे। भावना तुम अपना परिचय पहले दो, कौन हो, कहाँ से आए और कौन सा क्लास और स्कूल का नाम बताओ।
4: मेरा नाम है भावना कुमारी, हैदेलदो स्कूल में पढ़ती हूँ।
3: और कौन सा फल से, कौन सा ढानी से आती?
4: मैं टूका से आ रही हूँ।
3: ओ बाप रे, टूका बहुत दूर है, बारिश का टाइम है, नदी में पानी जो आता है, कैसे आते तुम लोग उस टूका से?
4: आते
3: हो जाता है पानी, बारिश का टाइम में बहुत पानी आता है ना, पुल बन गया। हाँ अभी तो कोई दिक्कत, अभी 5 साल पहले हम जब जाते थे वहाँ पर बहुत दिक्कत से बच्चे आते थे, इतना दूर। सरपंच उस गांव में था, टुका का गांव का है ना, क्या नाम जानते सरपंच मैडम को, जानते हैं? हाँ पहले थे
4: नाम नहीं।
3: हाँ तो चलिए एक प्रस्तुत सुनाएगी हमारा भावना। ओके शुरू करो।
4: रे रे बन जावियो मगे रे, जावे झोला था जावियो।

0: था एहनी ऐसी कुवत जाबी आलूरे पहलू जारे चूजोला था एह जाबिया रे तू जबने जाने रे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भावना, अपना अच्छा काम किए तो कोई बता नहीं, लेकिन भावना इस कार्यक्रम को सजाए अपना टूटी फूटी आवाज में जितना उनका पास था वो दे दिए, ना ज्यादा ना कम, लेकिन मानना पड़ेगा पूरा सांस है भावना का, जो सांस है बुलंद है। और कौन सा क्लास, 9th क्लास, फिर भी हाइट जो देखेंगे बहुत 5th क्लास 6th क्लास में जैसे लड़के लग रहा है, लेकिन फिर 9th क्लास है, लेकिन फिर भी बहुत उमंग उत्साह। बड़े होकर तो क्या बनेगी भावना, बड़े होकर क्या बनेगी भावना, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, मैडम, क्या बनेगी?
0: मैडम।
1: मैडम घर में कौन कौन है?
0: दादी, माता पिता, बहन, भाई।
1: चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा। भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

कार्यक्रम को एक का बाद एक चलिए चलिए और आगे बढ़ते जाइए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहे। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल और खासकर देलदर का आवाज, राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय बच्चों का जो भाव और भावना था और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, एक को देकर दूसरे भी आए। जैसे भावना भी इसका पहले गीत गाई, अपना भाव को भावना को प्रकट किए, तत्पश्चात और एक सेम ग्रुप वंस मोर कर तीसरा बार हमको चांस मिल रहा है हमारा बच्चिया, तो इस कार्यक्रम को सजाएंगे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और भावना को कौन भूल पाएगा, भावना को और एक चांस मिल रहा है। भावना अपना देसी गीत में गाएगी।
1: नके जे बजाऊ कलम गाड़ी से लाऊ रे मोई काला दियो आवे बूटी से लाऊ।

0: Tebanu kerenakine mai kala dio ave mungade selav re nake jav kala mungade selav ude puru hai vere mungade selav abu wala hat guma mungade selav re dire dile hake kala mungade selav mai kala dio ave mungade selav re।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय दलदर का आवाज, और सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद, आभार।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की कैन हो। रात के बज रहे हैं 8 और बाहर अरावली की पहाड़ियों को चूमती हुई बारिश की बूंदें जमीन पर एक अलग ही धुन बजा रही है। और जैसे ही हमारा शो शुरू हुआ, हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे। चले बात करते हैं उनसे। हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार। जब आप आ जाते हो तो हमारे बरसात भी बंद हो जाती है।
0: क्या बात कर रहे हो, बरसात बंद हो गई?
1: कभी बरसात भी हो जाती है।
0: अच्छा।
1: क्या कह रहे हैं, आपके साथ में हमारे को जुड़ करके रहना है हमेशा के लिए।
0: क्या बात है, वाह वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मेरा एक वो गाना है ना सर
0: जी, बोलिए।
1: वो छुड़ा देना तो मैं भी मजा ले लूंगा और आप भी मजा लेते रहना चाहते।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, मैं हूँ प्रेम रोगी।
0: हाँ हाँ,
1: किसी वेद को तो बुलाओ, कोई दवा तो कराओ। हाँ, प्रेम रोग का गाना है।
0: फिर से एक बार सुना दीजिए।
1: बोला देना सर, प्रेम रोगी।
0: खाली प्रेम रोगी नाम है गाने का?
1: गाने का नाम है, नाम बताओ।
0: हाँ, गाने के
1: प्रेम रोगी तो है।
0: गाने के बोल सुनाइए।
1: गाने के बोल ये है, मैं हूँ प्रेम रोगी।
0: मैं हूँ प्रेम रोगी,
1: वेद को बुलाओ।
0: अच्छा,
1: प्रेम रोग है, गाने का नाम प्रेम रोग है।
0: अच्छा, ओके, चलिए कोशिश करते हैं हम आपके लिए ये गाना सुनाए। अगर मेरे प्लेलिस्ट में होगा तो जरूर से सुनाऊंगा।
1: सभी को, सुरेश भाई को, भूरा राम जी को, मदन भाई को, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार भी है। एक वो सुभाष भाई नहीं आते टोटले टोटली आवाज में
0: जी,
1: उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है।
0: चलिए,
1: अगर सुरेश पुराने साथी है
0: जी, बिल्कुल, अगर सुभाष जी सुन रहे हैं हम सबको तो कोशिश करते
1: हैं। उनको भी कह रहे हैं आपका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते रहना सर।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद। थैंक यू सो मच
1: गुरुलाल,
0: थैंक यू सो मच गुरुलाल जी कॉल करने के लिए। और ये थे हमारे बुरीलाल जी, सबसे पहला कॉल आज उनका, हमें अटेंडेंस दी आज के सोमवार की, हमें उन्होंने अटेंडेंस लगाई कि यस शो शुरू हो चुका है, चलिए हम आपके लिए हाजिरी लगा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुरीलाल जी। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि बारिश की बूंदें हैं, गिर रही है बारिश और एक अलग ही धुन बजा रही है। खिड़की से आती वो ठंडी ठंडी हवा, सौंधी सी मीठी की खुशबू, सच कहूँ तो इसमें मौसम में दिल अपने आप गुनगुनाने लगता है ना, होता है ना आप सभी के साथ कि जब बारिश गिरती है हम घर में शाम के समय पे, ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश गिर रही है, आपके हाथ में चाय का प्याला है या कुछ ऐसी गर्मा गर्म चीज़ हम कुछ खा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त केवल और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बातों का। दोस्तों, आज शाम 8 बजे बारिश की बूंदे ने जब आबरोड को ढका तो दिल ने कहा कि क्यों ना आज कागज की कश्तियां और बचपन की वो बेफिक्री शाम को याद कर लिया जाए। जी हाँ, बारिश का मौसम भी कितना अजीब होता है। जब हम छोटे थे तो बारिश का मतलब होता था स्कूल की छुट्टी, पानी के गड्ढों में कूदना और माँ के हाथ के गरम गरम पकौड़े। और आज बारिश का मतलब है हाथ में चाय, पुरानी यादें और अपनों के साथ दिल की बातें। दोस्तों बताइए, आज की इस सुहानी शाम को और खास बनाने के लिए आपके हाथ में कटिंग चाय है या अदरक वाली स्पेशल कॉफी या फिर दिल के किसी कोने से याद दस्तक दे रही है, आप हमें जरूर से कॉल कीजिए, हमें बताइए। फोन नंबर है 9414151415। तो चलिए, बारिश की हसीन रात में आपके दिल को तार, आपके दिल के तार जोड़ने के लिए बजाते एक ऐसा नगमा जो आपकी यादों को और भी ताज़ा कर देगी। और आज का जो हमारा पहला गाना है वो है राजस्थानी फोक। जी हाँ, राजस्थानी फोक गाना मुझे आज याद आ रहा था कि ये हम गाना प्ले करें, तो चलिए सुनते हैं पहले ये राजस्थानी फोक सॉन्ग और फिर करते हैं और भी ढेर सारी बातें।

वेलकम बैक दोस्तों। और बहुत ही सुंदर गाना अभी हमने सुना, आयो रे सावन आयो, है ना। बहुत ही प्यारा सा राजस्थानी सॉन्ग था। बड़े दिनों के बाद ऐसा कुछ गाना भी, मतलब राजस्थानी सॉन्ग सुनने को याद आ रहा था मुझे। चलो मैंने कहा ऐसा एक सावन के ऊपर कोई गाना है। आपके ध्यान में भी कोई आज राजस्थानी सावन के ऊपर या बारिश के ऊपर या कोई ऐसा सॉन्ग है जो आज के दिन को सूट करता हो, तो आप हमें वो राजस्थानी सॉन्ग हमें बिल्कुल से बताइए। कोशिश करते हैं आपके लिए वो गाना सुनाने के लिए। कॉल कीजिए 9414151415 पर। जी हाँ दोस्तों, ये जो गाना अभी हमने सुना, इसको म्यूज़िक और लिखा था निर्मल मिश्रा जी ने, और इसे गाया है सीमा मिश्रा और सतीश तेहरा जी ने। जी हाँ, ये थे ही राजस्थानी फोक डांस। और आगे बढ़ते हैं अगले सॉन्ग के लिए। हमारे भूरीलाल जी ने कहा कि आज तो हमें, आप भी आनंद लीजिए इस गाने का, हम भी आनंद लें। तो भूरीलाल जी, आपके लिए आपका ये गाना आज हमें हमारे प्लेलिस्ट में मिल चुका है, तो आपके लिए प्ले कर रहे मैं हूँ प्रेम रोगी। सुनिए गाना और झूमते रहिए आज के सावन के दिन में, बारिश के मौसम में। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: तेरे की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ।
0: किक किक किक किक
1: स्टेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

0: वेलकम बैक दोस्तों। और एक बड़ा झोल हो गया, हम सोच रहे थे गाना बजेगा बुरी लाल जी का, मैं हूँ प्रेम, लेकिन गाना बज गया कोई और। कोई बात नहीं, गलती होती रहती है बोलने में भी और बजाने में भी। बट अभी आपने जो गाना सुना, बहुत ही प्यारा गाना अभी आप लोगों ने सुना, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियाँ हजार दे, या फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर। और ये गाना 1954 में, जी हाँ दोस्तों 1954 में नवकेतन फिल्म्स की थी, मतलब नवकेतन फिल्म्स के बैनर के अंडर में थी। और इस फिल्म का एक एक गाना लाजवाब था, लेकिन एक गाना ऐसा है जो आज भी जब बजता है तो चेहरे पे हल्की सी मुस्कान छोड़ देता है। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियाँ हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे, है ना दोस्तों। जो लिखा था दोस्तों साहिल लुधियानवी जी साहब ने, कि कलम से निकले इस अल्फाजों पर ज़रा गौर कीजिए। साहिल साहब ने जिंदगी का कितना बड़ा सच इतने हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया। कहते हैं, भाव अगर बढ़ा भी डाले सेठ यार गम ना कर, भाव अगर बढ़ा भी डाले सेठ यार गम ना कर, खाए जा मज़े के साथ जब तक उधार दे, है ना। उस समय यानी महंगाई और कल की फिक्र में आज की खुशी क्यों गंवाना, जब तक जिंदगी चल रही है मस्त होकर जियो। और इस गाने का सबसे एक असीन और गहरा मैसेज तो आगे आता है, बांट कर जो खाए उस पे अपनी जान और दिल लुटाओ, और नो जो नाक बचाए माल उसकी जूतियों को हार दे। चलिए दोस्तों, बातें करनी और भी है, लेकिन हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे, सुनते हैं पहले उनसे। हेलो,
1: हाँ बुराराम बोल रहे सर।
0: बुराराम जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं हम तो ठीक है, लेकिन इतना दिन आप गायब हो गए, मैं रोज फोन लगाता था आपका, बोले तो आवाज ही नहीं, आज तो आपकी आवाज सुन के बहुत दिल खुश हो गया मेरे को।
0: शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, कुछ एक हफ्ता बाहर थे और अगले हफ्ते में भी एक दिन हम किया था मंगलवार को, और फिर
1: एक दिन मिले थे वो, फिर उसके बाद में सब बिल्कुल रोज लगाता मैं फोन, मैं बोला मेरे को क्या मालूम
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं है, इधर ही थे, लेकिन किसी काम की वजह से और भी सेवाएं थी तो उस वजह से नहीं आ पा रहे
1: थे। पर्सनल कोई घरेलू काम भी होते हैं,
0: जी
1: जी चलो चलो, बाकी तो ठीक है ना।
0: बिल्कुल
1: आपका भी
0: बिल्कुल, बारिश है वहाँ पे आपकी तरफ और में
1: आप? अरे बहुत बढ़िया, और बरस रहा है वो थोड़ी थोड़ी
0: चलिए बहुत
1: खेती लायक बरस रहा है पानी।
0: चलो बहुत अच्छा है, खेती लायक हो जाए पानी पूरे साल हमें खींच।

0: या तो बहुत अच्छा, इतना ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
1: भाइयों को, मधुबन भाइयों को, और खास करके मधु अपने सुरेश भाई आजकल मिलते नहीं फोन पे, और हमारा वो उनको नमस्कार बोलना सुरेश भाई और भूरीलाल जी और सब मधुबन भाइयों को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भूरीलाल जी तो आ गए और उन्होंने सभी को नमस्कार कर दिया है, और जैसे ही हमारे सुरेश भाई और भी लोग आते हैं उन सभी की तरफ से आपको ढेर सारे।
1: अच्छा बोल देना। अच्छा दूसरा एक गाने का चॉइस है तो एक सुना देता हूँ।
0: बिल्कुल बताइए।
1: वो सोखियों में घोला जाए फूलों का सवाब, फिर उसमें मिला जाए थोड़ा सा शराब, होगा यू नशा जो त्यार, वो ऐसा करके गाना है जो थोड़ा सुनाएंगे तो सुनते।
0: चलिए कोशिश करते हैं, आपका ये गाना अगर मेरे प्लेलिस्ट में है तो हम जरूर से बजाते हैं।
1: अच्छा सर, और
0: ठीक है, थैंक यू सो मच उराराम जी कॉल करने के लिए।
1: ओके सर।
0: जी हाँ, तो ये थे हमारे बुराराम जी और इन्होंने हमें कॉल किया, और बहुत ही दिनों के बाद हमारी इनसे बात हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कई दिनों के बाद हम फिर से ट्रैक पर है, फिर से हम बातें कर रहे हैं, है ना। यहाँ दोस्तों बात हो रही थी साहिर साहब की, सीधा सा फलसफा था, जो बांट कर खाना चाहते हैं वही असली इंसान है, और जो सिर्फ जोड़ कर रखने में लगा है उसे ज़िंदगी के असली मज़े कभी नहीं मिलते। फिल्म टैक्सी ड्राइवर और इस गाने से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं, जैसे इस गाने में जो अल्हड़पन और बेफिक्री है वो किशोर कुमार की आवाज़ के बिना मुमकिन नहीं थी। दादा जिसे हम SD बर्मन जानते हैं कि उन्होंने जॉनी वॉकर साहब के मस्ती भरे अंदाज पर अगर कोई आवाज़ जादू चला सकती है तो वह सिर्फ और सिर्फ किशोर दा की है। तो इस तरह से SD बर्मन जी ने किशोर साहब को जुगलबंदी में लिया हमारे इनके साथ, जॉनी वॉकर साहब के साथ। पर्दे पर यहाँ गाना महान कॉमेडी जॉनी वॉकर और देवानंद साहब पर फिल्माया गया था। गाने के बीच में जब कार का पहिया पंचर होता है और जॉनी वॉकर कहते हैं अरे तेरी की हाँ निकल गई, ये डायलॉग और उनका नेचुरल एक्सप्रेशन आज भी उतना ही मज़ेदार लगता है। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है वो। चलिए एक और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बातें करते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी
2: पवन
0: कौन बोल रहे? शायद रॉन्ग नंबर लगा है, पता नहीं। चलिए दोस्तों वक्त है एक मज़ेदार क्वीज का। आज हम सभी सुनेंगे एक प्यारा सा क्वीज, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने कोई पहेली नहीं पूछी है। पहेली है इसी फिल्म के गाने के रिलेटेड। आपको बताना है फिल्म टैक्सी ड्राइवर के इस मशहूर गाने जो अभी हमने सुना, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे। शायद फिर से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, चले सुनते हैं। हेलो
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
3: ओम शांति, गुड इवनिंग भाई जी, कैसे हो?
0: बढ़िया सुभाष जी, आप कैसे हैं?
3: मैं भी बढ़िया हूँ। देखो कितने दिन, कितने महीने, कितने साल बीत गए
0: जी,
3: प्यार में जीते, प्यार में लड़ू, रेडियो मधुबन से सुनते जाएंगे, मुस्कराते जाएंगे, देखेंगे देख लेना
0: जी,
3: देखेंगे देख लेना। ओम शांति सभी को, नमस्कार। सुभाष भाई का बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, थैंक यू।
0: थैंक यू सुभाष जी, शुक्रिया सुभाष भाई, आपने हमें कॉल किया और आपको आज याद भी कर रहे थे हमारे भूरीराम जी, तो उनकी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, और वो भी शायद सुन ही रहे आपको, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो ये थे हमारे सुभाष जी और से हमारे भूराराम जी, सभी ने हमें कॉल कर लिया। और जी हाँ दोस्तों, बात चल रही है हमारे आज के प्रश्न की, फिल्म टैक्सी ड्राइवर के इसी मशहूर गाने जो अभी हमने सुना, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, में पर्दे पर जॉनी वॉकर साहब के साथ कौन कौन से दिग्गज कलाकार एक ही फ्रेम में नज़र आते हैं। जी हाँ, फिर से मैं दोहराता हूँ, ये जो भी हमने गाना सुना टैक्सी ड्राइवर मूवी से, इसमें पर्दे पर जॉनी वॉकर साहब के साथ और कौन कौन से दिग्गज कलाकार एक ही फ्रेम में, यानी कि उस मूवी में या उस गाने में नजर आते हैं। आपके लिए ऑप्शंस दे रहा हूं, पहला है देवानंद और शीला रमानी, दूसरा है राज कपूर जी और नरगिस जी, तीसरा है गुरुदत्त और वहीदा रहमान। जी हाँ, फिर से ऑप्शन दोहराता हूँ, देवानंद जी या शीला रहमानी, देवानंद जी और शीला रहमानी जी, राज कपूर और नरगिस जी, गुरुदत्त और वहीदा रहमान जी। चलिए, अगर आपको सही जवाब पता है तो आपको पता है क्या करना है, उठाना है फ़ोन, हमें कॉल करना है 9414151415 पर, या फिर इसी पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9414151415 पे, आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। सही जवाब देने वाला के नाम हम अगले सेगमेंट पे ऑन एयर ज़रूर से लेंगे, या फिर आपको ऑन एयर ज़रूर से हम बात कराएंगे। चलिए फिर से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे, चले सुनते हैं उनसे। हेलो
3: भाई जी।
0: जी सुभाष जी,
3: फिर से सभी को नमस्कार, बुराराम जी, सुरेश भाई, सभी को, कंचन भाई, मुफत भाई, सभी को नमस्कार। और सवाल का जवाब भाई जी, ऑप्शन ए, सवाल का जवाब ऑप्शन ए। थैंक यू, शुक्रिया।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: वेलकम बैक दोस्तों। जाने से पहले हमारे साथ हमारे सुभाष जी जुड़े हुए थे और शायद नेटवर्क इशू या कुछ कारण से शायद उनको तक अमीरी आवाज़ नहीं पहुंची है, बट उनको बता दूं कि हाँ आपका उत्तर हमें मिल गया है और हम कोशिश करेंगे कि और भी कोई कॉलर हमें कॉल करे और उसका उत्तर दे, उसके बाद हम आपको इसका सही जवाब दे। और तब तक बढ़ते हैं ये गाने की तरफ। ये जो गाना अभी हम सभी ने सुना फिल्म प्रेम रोग का, हाँ मैं हूँ प्रेम रोगी, और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, संतोष आनंद ने इसे लिखा था और इसे आवाज़ दी थी हमारे प्यारे सुरेश वाडकर जी ने। जी हाँ, और दोस्तों बढ़ते हैं अगले गाने के लिए। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा अगला नगमा, ए भोले भाला मन मेरा।

वेलकम बैक दोस्तों। गाना शुरू होते ही पता चल जाता है ये किसने गाना गाया है ना दोस्तों। जी हाँ, इस गाने की शुरुआत में ही जो यर्डलिंग हुई है तुरंत पता चल जाता है कि आवाज़ किसकी है। किशोर कुमार साहब की आवाज़ है और गाने के बोल इतने प्यारे हैं, ये भोला भाला मन मेरा कहीं रे सजन खो गया गया। जी दोस्तों, अभी कुछ समय पहले भी हमने ये गाना सुना था, आशा भोसले जी की आवाज़ और किशोर कुमार जी की आवाज़, फिल्म झुमरू से। जी दोस्तों, आपको याद है इस मूवी में और भी बहुत से ऐसे गाने हैं जो किशोर कुमार जी के और भी अपनी उनके समय की हिट सॉन्ग्स में से एक है और मजरूल सुल्तानपुरी जी ने इसे लिखा है और झुमरू फिल्म से ये गाना 1961 में आया हुआ। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों बात हो रही थी हमारे जो सवाल हमने पूछा था उसके बारे में, हमारे सुभाष जी ने और डी एक ने हमें मैसेज करके भी इसका जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, समय है आपको इसका सही जवाब देने का और हमारे सुभाष जी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी हाँ, ऑप्शन ए, देवानंद और शीला रमानी जी जी ने इस पे किरदार निभाया है, तो ये था इसका सही जवाब। और बहुत बहुत बधाई हो सुभाष जी, आपने इसका सही जवाब दिया है। और हमें एक चीज़ और भी बहुत अच्छी लगती है सुभाष जी की, सुभाष जी इतने मतलब समय से हमें सुन भी रहे और कभी भी उन्होंने मिस नहीं किया हमें सुनने से। आज भी इतने समय के बाद हम वापस आए हैं तो इन्होंने हमें बिल्कुल से याद किया, सभी को याद किया, एक एक को नाम से याद करके उन्होंने सभी को नमस्कार किया है। तो इसलिए सुभाष जी आपको भी बहुत बहुत हमारी तरफ से धन्यवाद। और चलिए दोस्तों, वक्त है आगे बढ़ने का, एक और गाना सुनने का। तो बहुत ही प्यारा गाना है, ये भी आप लोगों ने सुना है लेकिन एक बहुत ही प्यारा गाना है आप सभी के लिए। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: गौरी जरा बती यासु नौजी मोरी मोरी
1: धीरी टक टक टक
0: कोई तेरी गली आया चोरी चोरी चोरी
1: धीरी टक टक टक
0: काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी हे हे हे हे

0: तू जरा सा उठाना आंखों का पर्दा दादा टिम्बक टू चुम्बक तू
1: भला बच बच के रहू
0: गे गे गेली जरा।

जो कोई आके तू लट बिखरा के नजर को बचा के अंधेरा किए जा जा जा गे गे गे गे ली जरा टिपकटू काठमांडू काठमांडू गेले बू मैं

वेलकम बैक दोस्तों। ये भी गाना झुमरू मूवी से हमने सुना। जी हाँ दोस्तों, गाने के बोल, मैंने कहा था ना इसके इस मूवी में और भी दो तीन गाने हैं जो बहुत ही प्यारे हैं। एक दिन हम कोशिश करेंगे कि झुमरू मूवी से सारे गाने जितने भी हम प्ले करें, इन गानों को सुन के, इनके म्यूज़िक को सुन के बड़े दिल मज़ा में, मतलब मज़ा आ जाता है। किशोर कुमार जी की आवाज़ और इसमें वो जो चंचलता, वो मस्ती गाने के बीच में, और मतलब क्या ही कहने हो जाते शाम के समय पर। अगर ऐसे कुछ गाने आप सुन रहे हो, दिल बड़ा मज़ेदार हो जाता है। और इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं, कठमंडू कठमंडू बेले हू, मैं हूँ लोहा चुंबक तू, और भी ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसको सुनने के बाद बड़ा मज़ा आता है। गे गे गे गे गे गेली जरा टिम्बक टू। जी हाँ दोस्तों, ये गाना सुनने में बड़ा मज़ा आता है शाम के समय पे। इस तरह का मौसम हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, और ऐसा कोई फास्ट म्यूज़िक हो जो पुराने ज़माने के हो, किशोर साहब का हो, तो और भी मज़ा आ जाता है। जी हाँ, इसे म्यूज़िक भी किया था किशोर कुमार जी ने, इसे लिखा भी किशोर कुमार जी ने, इसे गाया भी किशोर कुमार जी ने। सोचिए कितने मल्टी टैलेंटेड थे हमारे किशोर कुमार साहब। फिल्म झुमरू 1961 में मधुबाला जी, किशोर कुमार जी, अनूप कुमार चंचल इनमें इसको किरदार निभाए थे। आप सोचिए किशोर कुमार जी एज अ किरदार, एज अ हीरो के रूप में भी कर रहे हैं काम, गायक भी है, गाने को लिख भी रहे हैं, म्यूजिक भी दे रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड किशोर जी। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। ये भी बहुत ही प्यारा, एक आज के समय का, मतलब अभी के समय के हिसाब से जैसे बारिश हो रही उसके लिए एक बहुत ही प्यारा गाना है। और वक्त है आप सभी से विदा लेने का, और फिर हम कल मिलेंगे ठीक इसी समय 8 बजे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। अगला जो कार्यक्रम है वो है सहज स्वास, और हम फिर से मिलेंगे इसी तरह से प्यारे प्यारे गीते, प्यारे प्यारे नगमे आपके दिल को बढ़ाएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक और अंक में। पिछली कई सारी मुलाकातें हमने की हैं इस कार्यक्रम में और हमने देखा है कि विभिन्न बीमारियों को, विभिन्न परिस्थितियों को जो हम सामना करते हैं उनमें प्राकृतिक चिकित्सा किस तरह से सहायक है और बहुत ही लाभप्रद भी है। इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन देने के लिए पिछले कई प्रकरणों से आदरणीय डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे साथ रहते हैं। एलोपैथिस्ट हैं, एस्ट्रोपैथ हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन में और गोरखपुर के बहुत ही जाने माने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र आरोग्य मंदिर में अपनी सेवाएं दीर्घ काल से दे रहे हैं। आज फिर वो हमारे साथ हैं। पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: निश्चित तौर से स्वस्थ होंगे और जैसा कि पिछले कई प्रकरणों में आपने प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हमें कई सारे मार्गदर्शन दिए विभिन्न बीमारियों पर, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन वर्तमान समय डॉक्टर राहुल हम देख रहे हैं कि गर्मी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है और टेम्परेचर का जो हाल है वो तो सिर के ऊपर नाच रहा है, तांडव मचा रहा है गर्मी। जो लोग घरों के अंदर रह रहे हैं, जिनके काम अंदर रह करके करने वाले वो एक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर जाना पड़ता है, सड़कों पर घूमना पड़ता है, काम करना पड़ता है और सीधा सूर्य की जो रोशनी है, प्रकाश है, वो उनके ऊपर पड़ रहा है। तो इसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, विभिन्न वर्ग हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसे हालात में जो गर्मी इतनी हाई लेवल पे जा रही है और आगे जाने वाली है, तो ऐसे में प्राकृतिक रूप से अपने आप को कैसे उसके साथ सामंजस्य बैठाएं ताकि हम बीमार ना हो, हमें बीमारियां तकलीफ ना हो, आपका क्या सुझाव है इसके लिए?
1: विशाल भाई, गर्मी से बचने के लिए हमें सबसे पहले पर्यावरण को ठीक करना है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो कृपा करके एक पेड़ लगाइए। ये मत सोचिए कि मैं लगाऊंगा दूसरे क्या करे, क्या कहेंगे मेरे बारे में और उससे एक पेड़ से क्या फायदा होगा। अगर आप एक भी पेड़ लगाएंगे तो इसे पर्यावरण का बहुत ज्यादा लाभ होगा और आप जैसी अच्छी सोच रखने वाले अगर मनुष्य जो है वो सब पेड़ लगाने लगेंगे तो हमारी जो धरा है उसका जो तापमान है वो कम हो जाएगा। अब हमें अभी क्या करना चाहिए?
0: मैं इसमें एक चीज और एडिशन करना चाहूंगा, जो पेड़ लगे हुए हैं कृपया करके उनको भी थोड़ा जल, थोड़ी उनकी सुरक्षा ध्यान रखें तो वो भी एक सहायक होगा।
1: जी विशाल भैया, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम में जब मैं छोटा था तब चला था कि स्कूल से लौटते समय किसी भी एक पेड़ को आप अपना बना लीजिए, उसको एडॉप्ट कर लीजिए और अपनी जो बोतल है उसमें जो पानी बच गया है वो उस पेड़ की जड़ में डालकर चले आइए। ये मैंने जब मैं स्कूल जाता था तब मैंने किया था ये, और तब ये लगा था कि यार ये क्या क्यों करवाया जा रहा है, इसमें कुछ क्यों पेड़ को क्यों पानी दिलवा रहे हैं, और अब लग रहा है कि वो कितना जरूरी और कितना अच्छा काम मेरे स्कूल वालों ने सोचा था। दूसरी चीज, अगर आपको निकलना है तो पहला उस चीज का ध्यान रखिए कि आप पानी पी के निकले, और ये कहा जाता है कि हल्का ठंडा पानी, ये भी नहीं कि बहुत ठंडा पानी, हल्का ठंडा पानी। पानी की ठंडक कितनी होनी चाहिए? जितनी ठंडा पानी जो आपकी सुराही या मटके से बाहर निकलता है उतना ठंडा पानी कम से कम एक से सवा गिलास पी के निकलना चाहिए। आपको अगर कमजोरी लगती है, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा निकलना है, तो कृपा करके उस ठंडे पानी में थोड़ा सा नींबू, एक चुटकी नमक और हल्का सा शहद डाल लें, और ये आपको ताकत भी देगा, अच्छा विटामिन सी भी देगा, और जब हमें पसीना होता है तो उससे हमारे शरीर में नमक निकल जाता है और नमक कम होने से बहुत सारे लोगों की मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव आता है, चक्कर आता है। तो कृपा करके पानी को पूरा आप एक से सवा ग्लास पानी पी के निकलिए, अपने शरीर को ढक के निकलिए। सब लोग ये बोलते हैं गर्मी का मौसम है, टी शर्ट या बनिया, मतलब आजकल तो वो बिना बाह की टी शर्टें आ गई हैं, वो भी पहन के लोग निकल रहे हैं। मेडिकली ये कहा जाता है अपने पूरे शरीर को ढक के निकलिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट सनलाइट या सूर्य का सीधा प्रकाश आपके शरीर पे पड़ेगा तो उससे ज्यादा पसीना निकलेगा, और डायरेक्ट सनलाइट या सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने से त्वचा के जलने का, त्वचा में जलन होने का, त्वचा में कालापन पड़ने का, ये सारी चीजें होने लगती है। तो कृपा करके पूरा शरीर ढक के निकलिए, चेहरे को भी ढक के निकलिए, टोपी पहनिए। महिला बहनों से मेरा यह कहना है कि अपने सर को चुन्नी ढक के निकले, चेहरे को कवर करके निकले। अगर आप ये करते हैं तो आपको गर्मी से कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ा इंडिकेटर कि आपके शरीर में पानी कितना है, ये आपका पेशाब या यूरिन बताता है। अपने यूरिन के कलर का ध्यान रखें। अगर आपका पेशाब सफेद रंग का हो रहा है या हल्का सा पीला हो रहा है तो आप ठीक हैं। अगर आपके पेशाब में पीलापन बढ़ रहा है, इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। आप गर्मी के समय बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के शरबत पीते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जूस हैं या रस हैं उसका सेवन करते हैं। इन सब चीजों में जो मेन कंपोनेंट है, सबसे जरूरी चीज है, वो पानी ही है। तो आप अगर ठीक से हाइड्रेट होंगे या आपके शरीर को प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा और आप अपने को ढक के निकलेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित निकलेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा, खासकर जो यंग या जवान श्रोता मेरी बात सुन रहे हैं उनके लिए, कि तुरंत एसी में घुस गए, तुरंत एसी से निकल गए, अभी जैसे कहते हैं टेम्परेचर चेंज बहुत वो करने लगते हैं, अरे बड़ी गर्मी है एसी चलाओ एसी चलाओ। मैं खुद देखता हूं जब मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो पहली चीज यही बोलते हैं कि एसी चलाओ बड़ी गर्मी लग रही है। तो मैं हमेशा उनको हिदायत देता हूं कि प्लीज अपना पसीना सुखा लीजिए, 5-10 मिनट इंतजार कर लीजिए, फिर आप जाइए। तो आपको सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से जो परेशानियां होती हैं वो आपको नहीं होंगी। थोड़ा सा एक चीज का ध्यान और रखना है कि हम बाजार में जो भी अगर हम भोजन कर रहे हैं, शरबत पी रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर खाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपको डायरिया या दस्त होना या उल्टी होना, इन सब की जो चीजें हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि डायरिया में मतलब जो पानी से होने वाले इन्फेक्शन हैं वो बहुत बुरी तरीके से फैलते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, हमारे सभी श्रोताओं के लिए लाभप्रद होंगी इस वक्त। एक तो ये बात कि वृक्ष लगाएं, एक सबसे बड़ा और चिरकालीन चलने वाला जो साधन है वो तो यही है, वातावरण को ही सबसे पहले ठीक कर लें, और उसके बाद पानी पर आपका ध्यान बहुत रखा है कि पानी पिया जाए जितना वो ठंडा, बहुत ज्यादा फ्रीज वाला पानी ना पिया जाए। आपने बताया कि पानी की जो शीतलता है वो मटके के पानी, सुराही के पानी के जितनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो, और उसमें नींबू शहद और नमक डाल लें तो बहुत बेहतर होगा। और याद रखें कि आपका पानी की कमी ये दिखाई देगी आपके पेशाब से, अगर आपका पेशाब का कलर बहुत ज्यादा पीला है तो आपको पानी ज्यादा पीने की आवश्यकता है, और सामान्य रूप से सफेद है या हल्का सा पीला है तो फिर आप तकरीबन सुरक्षित हैं। जहां पानी पीने का ध्यान रखते हैं, वहां पहनने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया कि बाहर निकलते वक्त अपने सारे शरीर को ढक करके निकले, बहुत कम हिस्सा आपका एक्सपोज हो सूर्य की किरणों में, और बहुत बेहतर होगा कि आप हल्के और सफेद रंग के कपड़े पहने। ईश्वरी विश्वविद्यालय की तो वेशभूषा ही श्वेत है, तो जहां तक हो सके अच्छा रहेगा कि आप सफेद वस्त्र पहने या हल्के कलर के कपड़े पहने, क्योंकि ये सूर्य की जो रोशनी है उसको ज्यादा खींचते नहीं है। ब्लैक और डार्क कलर के जो आप कपड़े पहनते हैं तो उसमें गर्मी और ज्यादा पड़ती है, तो ये एक संभाल रखने की आवश्यकता है। तो मेरे सभी जो श्रोता मित्र हैं वो पिछले प्रकरणों से जुड़ते हुए जानना चाहेंगे, जो आपने पहले बताया है श्री भाई के साथ वार्ता होते हुए, ये डायबिटीज एक क्या बीमारी है, किस तरह इसकी गंभीरता है और इसके लक्षण क्या हैं, कैसे आपको समझ में आए कि भाई आपको डायबिटीज हुई है। आमतौर पर आप यही समझते कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, जैसे कि बात की गई थी, कुछ महसूस तो नहीं होता, आप कैसे कहते हैं कि डायबिटीज हो गया। तो आपके माध्यम से बताया कि कुछ लक्षण हैं जिनसे आप जान पाते हैं कि आपको डायबिटीज हुआ है। अब एक मुख्य बिंदु आ जाता है कि बीमारी तो हो गई, हमको मान भी लिया हमने, अब हम क्या इलाज लें। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर राहुल जी, कि ये बीमारी हो गई है अब हमको, इसमें हम किन बातों का ध्यान रखें, क्या इलाज लें पहली बात तो, और दूसरा किन चीजों की सावधानियों पर हमारा ध्यान रहे अब होने के बाद।
1: सबसे जो जरूरी बात है प्राकृतिक चिकित्सा की और हमारी जितनी भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, उनका ये सोचना है कि हमें सिर्फ बीमारी नहीं वरना सारे बीमारी के कारणों पे भी काम करना है। हम उपचार के साथ साथ भोजन और साथ साथ मन तीनों को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि आदमी का जो दिमाग है, ध्यान है, वो भी ठीक रहे, उसका भोजन भी ठीक रहे और उसकी जो लक्षण है बीमारी के वो भी कम हो, उस बीमारी से होने वाले जितनी भी उसको परेशानियां हैं वो कम हो और जितनी भी उस बीमारी की वजह से मधुमेह के उसके शरीर पे पड़ रहे हैं वो कम हो।
0: जी
1: जो पूरी प्राकृतिक चिकित्सा हो या किसी भी पैथी का सबसे पहला लक्ष्य होता है कि शरीर में शर्करा के स्तर को सामान्य के करीब लाया जाए। जो एक
0: जी
1: हम लोग ने पढ़ा है कि हमारा HbA1c 5.7 के नीचे होना चाहिए, हमारा फास्टिंग 100 के नीचे होना चाहिए, बहुत सारे लोग जितने भी हमारा पीपी है कहीं 140 है कहीं 150 है, मतलब वो नीचे होना चाहिए उसके। तो जो भी उपचार है उसका लक्ष्य सबसे पहले ये होता है कि ब्लड शुगर को वो संतुलित और नियंत्रित करे। अच्छा, इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा सबसे पहले जो अगर आप किसी भी चिकित्सालय में जाएंगे तो वो आपको सुबेरे उठ के व्यायाम और योगाभ्यास कराएगा। हम
0: जी
1: इलाज में सबसे पहले कहते हैं कि आप 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक टहलिए, उसके बाद आप करीब 45 मिनट योगा करिए और अपने दिन की शुरुआत करिए। योगा करने के बाद आप ऋतु के अनुसार फल, थोड़ा अंकुरित मूंग हुआ, चना हुआ, मूंगफली हुआ, उसका सेवन करें और इसके बाद आप करीब 200 से लेकर 250 ग्राम फल है उसका सेवन करें। फल के लिए जो सबसे कॉमन चीज जो मैं पुराने एपिसोडों में बोल चुका हूं कि आप कृपा करके जो मौसम चल रहा है उसके अनुसार फल खाइए। फल रस से ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फल में आपको खुज्जा और आपको फाइबर मिल जाता है। इसके बाद हम प्राकृतिक चिकित्सा के इलाज पे आते हैं। प्राकृतिक
0: जी
1: चिकित्सा के दो सबसे अच्छे इलाज जो शरीर में डायबिटीज कम करते हैं वो है पेट की गर्म ठंडी सेक और दूसरा है गर्म ठंडा कटी स्नान।
0: जी
1: दोनों हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत आता है, दोनों में जो आपका पाचन तंत्र है उसको मजबूत करने की कोशिश की जाती है, दोनों उपचारों में आपकी जो पैंक्रियाज है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करी जाती है कि वो ठीक मात्रा में इंसुलिन निकाल पाए, दोनों जो उपचार हैं वो आपके पाचन तंत्र एंडोक्राइन मतलब पैंक्रियाज और उसको ठीक करते हैं, पेट की चर्बी को कम करते हैं और आपको डायबिटीज से लड़ने योग्य बनाते हैं और आपके शुगर लेवल को कम करते हैं। गर्म ठंडा कटी स्नान क्या है? कटी मतलब टब, स्नान मतलब उसमें स्नान करना। दो टब ले लिया जाए जिसमें आधा टब पानी भरा जाए और उस टब में आप बैठें, एक में गर्म पानी रखा जाए, गर्म इतना जितना आप सह पाए, ठंडा जो नॉर्मल नल से आपके पानी आ रहा हो वैसा पानी लें और आप उस टब में बैठ जाएं। ऐसे बैठें कि आपका जो कटी प्रदेश है जो आपके घुटने से थोड़ा नीचे और नाभि से थोड़ा ऊपर, इतना दूर आपका पानी में होना चाहिए। इसमें 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा और अंत में 3 मिनट गर्म और 3 मिनट ठंडा करके हम लोग इसमें जो मरीज है उसको बैठाते हैं। इस इलाज को लेने से डायबिटीज में बहुत अच्छा जो है वो लाभ मिलता है। इसी इलाज का एक छोटा स्वरूप है पेट की गर्म ठंडी सेक। छोटा स्वरूप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेट की गर्म ठंडी सेक करने के लिए आपको एक गीला तौलिया चाहिए और आपको एक गर्म पानी की थैली चाहिए और आप इससे अपने ऊपर चार उंगल नीचे इतने दूर के एरिया को सेकते हैं। इसमें भी वही काम करना है, 3 मिनट गर्म, पहले थैली रखनी है पेट के ऊपर और उसके बाद 1 मिनट ठंडे पानी का तौलिया रखना है। ये काम आपको 3 बार करना, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, और अंत में 3 मिनट गर्म थैली को रखना है और फिर 3 मिनट ठंडे तौलिए को अपने पेट पे रखना। इतना सब करने से आपके पैंक्रियास को बहुत बहुत बहुत लाभ मिलेगा, मगर वो सारे उपचार आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और आपके शरीर से टॉक्सिन निकालने के लिए है। गर्म ठंडा कटी स्नान के बाद जो दूसरा इलाज हम लोग यहाँ बहुत देते हैं वो है सारे बदन की गीली पट्टी। सारे बदन की गीली पट्टी हमारे जो नसें हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उसको मजबूत करता है, और उसको मजबूत जब वो करता है तो वो हमारे शरीर से ठीक से, जो एंडोक्राइन सिस्टम मेरा जो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसमें ताकत लाता है, और इसको लाने से हमारे जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में आने लगती है। हम लोग यहाँ पर हफ्ते में एक बार मालिश भी कराते हैं मरीज की, क्योंकि जब आपकी डायबिटीज जब ठीक होने लगती है तो आपको मांसपेशियों में ताकत आने लगती है, आपका भोजन ठीक होने लगता है, तो वो लोकल आपके रक्त संचार को बढ़ाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। यही 3-4 इलाज हैं जो खासकर डायबिटीज के मरीज को दिया जाता है। जितने भी आसन हैं जो जिसमें आगे झुका जाता है, जिसमें आपका पेट दबता है, शशांक आसन हुआ, मंडूक आसन हुआ, ये सारे आसन आपको कराए जाते हैं। जो थोड़ा एडवांस जो योगा कर लेते हैं उन्हें धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन भी कराया जाता है। जो श्रोतागण इतना सिंपल समझे कि जिन आसन से आपका पेट दब रहा है वो आसन आपके डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। भोजन में हम लोग, जैसा मैंने पहले एपिसोडों में बोला है कि हम आपको हाई फाइबर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट को खिलाते हैं, मतलब जिसमें आपके फाइबर ज्यादा हो तो आपको हम लोग वो भोजन हाई फाइबर डाइट कराते हैं और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भोजन कराते हैं और ये इलाज देते हैं, और हमने इससे इसमें इससे चमत्कारिक लाभ देखा है डायबिटीज में। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा अपने सभी श्रोतागणों को कि अगर आपकी डायबिटीज बहुत बढ़ी हुई है, गड़बड़ है,

0: रखने की आवश्यकता है, किन चीजों को अपनी दिनचर्या में से हटाएं, किन चीजों को शामिल करें जिससे कि आप इस महामारी, इस बीमारी से बचे रह सकते हैं।
1: डायबिटीज में जो चीज हटाने की चीज है वो है एक्सेसिव शुगर इंटेक, बहुत ज्यादा चीनी का प्रयोग करना। वो भोजन का पदार्थ जिसमें बहुत ज्यादा चीनी मिली हुई है, उन सभी चीजों को प्लीज छोड़ दीजिए। क्या चीज आपको जोड़नी चाहिए वो है व्यायाम। हम लोग व्यायाम कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग टहल रहे नहीं हैं, घूम नहीं रहे हैं, तो ये दो चीज अगर हम भोजन पे कंट्रोल कर लें, व्यायाम को हम जोड़ लें, तो हम दो काम करेंगे। ये दोनों करने से हमारा शरीर तो ठीक होगा ही, साथ साथ हमारा मन भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए जैसे भाई आपने बोला कि आपने पुराने एपिसोडों में कहा, अगर आप अपने जीवन से टहलना शुरू करेंगे, आसन करना, योगासन करना, घूमना, खेलना कूदना शुरू करेंगे, वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी अप्रिशिएट करेगा। जहां मानसिक स्वास्थ्य बढ़ेगा, वहां अपने आप स्ट्रेस जो शरीर में है, मन में है, दिमाग में है, वो कम होता चला जाएगा। जहां आपने एक्सेसिव शुगर लेना बंद किया, आपने एक्सेसिव तो आपकी पैंक्रियास को काम कम करना पड़ेगा, आपके शरीर से इंसुलिन को कम निकलना पड़ेगा। भैया आज का ही एक एग्जाम्पल, एक मरीज मुझे दिखाने आए कंधे के दर्द को लेकर। मैंने उनसे पूछा आपको डायबिटीज तो नहीं है, बोले नहीं एकदम नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा रिपोर्ट दिखाइए। रिपोर्ट में उनका फास्टिंग 100 था, जबकि बॉर्डर लाइन 100 होता है। उन्होंने कहा देखिए एकदम नॉर्मल है, वो अभी नंबर नहीं क्रॉस किया। मैंने कहा आपका HbA1c कितना है। उनका HbA1c 6.5 था, मतलब बढ़ा हुआ था। बोले हाँ कभी कभी पेशाब में जलन हो जाती है, कभी कभी खुजली होने लगती है, कभी कभी। तो हमने कहा ये, बोले इस दिन मुझे टेस्ट कराना था तो हम लोग 3 दिन से हम कुछ नहीं खाए थे। हमने कहा आपने एक टेस्ट को अपने चीट करना चाहा, हाँ, कि आपको नॉर्मल से रिपोर्ट मिले। तो और मैं सबको वही सुझाव देता हूँ, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज जोड़ लीजिए। भैया बंद घरों में लोग रह रहे हैं, छोटे आप निकल के 15-20 मिनट टहलिए, आप कुछ देखेंगे। हम और आप भैया सिर्फ एक स्क्रीन को देख रहे हैं आजकल, तो थोड़ा सा बाहर निकले, देखिए, घूमिए, टहलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप अपने भोजन में थोड़े से चेंजेस ले आए, मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड छोड़ दें, थोड़ा घूमने टहलना शुरू करें, तो आप इस बीमारी के प्रकोप से बच सकते हैं।
0: बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर राहुल जी आपने हमें मार्गदर्शन दिया है कि हमें इस बीमारी के होने के बाद किन-किन बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और किस तरीके का इलाज लिया जा सकता है प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, जिसमें खास तौर से आपने ठंडे और गर्म का इलाज बताया, जिसमें कटी स्नान मूल रूप से बताया और पेट की गर्म पट्टी, ठंडी पट्टी के बारे में बताया, जो एक सर्कल है 1 मिनट और 3 मिनट का, 3 मिनट गर्म को रखें, 1 मिनट ठंडे को रखें, ये आप घर में कर
1: जी
0: सकते
1: हाँ
0: हैं। तौलिए को ठंडा रखें और गर्म एक जो बॉटल आती है, थैलियां घर में होती है, उसको ले लें और उससे भी आप इस प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं और अपनी बीमारी को हटा सकते हैं। इसमें खास तौर से डॉक्टर साहब ने जो ये बात बताई कि अपनी चहलकदमी बढ़ाएं, थोड़ा बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें, सुबह शाम एटलीस्ट निकलें घूमने के लिए, टहलें, थोड़ा मालिश करें, थोड़ा योगासन करें और भोजन पे थोड़ा ध्यान दें। भोजन में आपके हाई फाइबर होना चाहिए और प्रोसेस्ड फूड से बचें। प्रोसेस्ड फूड जो पैक्ड फूड आ रहे हैं, कंपनियों से बंदे आ रहे हैं, उनको न खाएं तो बेहतर है और जैसा वो प्रकृति ने दिया है उनको ऐसे ही खाया जाए, सलाद के रूप में, फ्रूट्स के रूप में। जूस के लिए भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि जूस से बेहतर फल है, आप फल को खाइए और उसका लाभ लीजिए। थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, कुछ आसन कीजिए, वो आसन जो कि आपके पेट को थोड़ा सा प्रेस कर सके, दबा सके, ऐसे आसन किए जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्ट्रेस पे काम कीजिए और उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत कारगर साधन है, जो अलग अलग तरीका से लोग सिखाते हैं, परंतु तो ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी राजयोग के माध्यम से आप अपने मानसिक तनाव को बिल्कुल बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं, जिसके कारण आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये डायबिटीज जो है तो बड़ा चैलेंज, लेकिन अगर इन साधनों का आप इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हमें इस बीमारी से मुक्ति पानी है, तो ये असंभव नहीं है, संभव है। आज के इस प्रकरण में हमें डॉक्टर राहुल जी की तरफ से बहुत सुंदर समाधान प्राप्त हुए हैं। इसके लिए मैं अपने सभी श्रोताओं की ओर से आदरणीय डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: तो मेरे

सभी श्रोताओं को आज के इस सहज स्वास्थ्य के अंत में बहुत सारे सहज उपाय प्राप्त हुए हैं और उम्मीद है अगले कुछ और प्रकरण में जब हमारी मुलाकात होगी कुछ और ऐसी बीमारियां जो लोगों को अपने कैद में लिए बैठी हैं उनसे प्राकृतिक रूप से किस तरह से हम मुक्त हो सकते हैं या उन पर अंकुश रख सकते हैं, उनको अपने जीवन से हटा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और आनंद में बना सकते हैं, वो सारी बातें हमें अगले प्रकरण में मिलेगी। आज के लिए इतना ही, आप सभी से लेना चाहते हैं अनुमति। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ओम शांति।

0: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। रिमझिम रिमझिम फुहारों के साथ मनी दीदी और परी पहुंच गए हैं लेकर आपका फेवरेट शो
1: सपनों की सैर। तो बच्चों, याद है ना, पिछली कड़ी में हमने आपको मॉनसून का महत्व बताया था, कैसे कैसे किन किन बातों में ये बहुत जरूरी है।
0: हाँ, और आज हम जानेंगे कि इसके लाभ क्या है, बारिश जो होती है तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं।
1: बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले तो हमने बताया था ना, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है खेती के लिए पानी उपलब्ध जो होता है।
0: हाँ, और पीने के पानी की कमी भी कम होती है, क्योंकि गर्मी में तो नदी तालाब और भी जलाशय सूख जाते हैं, कुएं का पानी भी नीचे चला जाता है, तो फिर से पानी की पूर्ति होने लगती है,
1: पर्यावरण भी तो हरा भरा हो जाता है।
0: हाँ बच्चों, अभी तो आपने आबूराज की पहाड़ियों को देखा ही होगा, कितने सुंदर लगते हैं ना, हरे हरे।
1: हाँ, बादलों से भरे भरे।
0: हाँ परी।
1: और बच्चों, बिजली भी तो उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन में सहायता मिलती है।
0: हाँ बच्चों, आपको तो पता ही है पानी से भी बिजली बनाई जाती है, जब अच्छे से पानी होगा तो जल विद्युत में भी सहायता मिलती है।
1: बिल्कुल बच्चों, तो ये थी आज की जानकारी, लेकिन अभी तो मनी दीदी की कहानी, परी की कहानी, पहेलियाँ सब बाकी है।
0: हाँ, तो मिलेंगे और थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा, तो चलो इंतजार करते हैं इस प्यारे से गाने के साथ और लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बैठो रेडियो के पास जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि परी शुरू कर रही है आज की कहानी। आज एक गधे की कहानी सुनेंगे। एक कुम्हार था, उसने एक कुत्ता और एक गधा पाल के रखा था। कुम्हार के मकान में चारों ओर पत्थर की चहार दीवारी थी। कुत्ता रोज चहार दीवारी के अंदर उसके घर और मिट्टी के बर्तनों की रखवाली करता था। गधा अपने मालिक का वजनदार बोझ ढोने का काम करता था। गधा कुत्ते से ईर्ष्या करता था। वो मन ही मन सोचता, कुत्ते का जीवन कितना आराम का है, केवल घर के भीतर इधर उधर घूमना और किसी अजनबी को देखकर भौंकना, बस। ऊपर से मालिक उसे प्यार से थपथपाता भी है, उसे अच्छा खाना भी खिलाता है, और मैं दिन भर भारी बोझ ढोता फिरता हूँ। बदले में कुम्हार मुझे क्या देता है? वो मेरी पीठ पर डंडे लगाता है और खाने के लिए बचा कुचा घटिया खाना देता है। ये तो वास्तव में घोर अन्याय है। बच्चों, एक दिन पता है क्या हुआ? गधे को विचार आया, क्यों न मैं भी मालिक को कुत्ते की तरह खुश करने की कोशिश करूं? मालिक घर लौटता है तो कुत्ता उसे खुश करने के लिए कितना प्यार से भौंकता है, पूंछ हिलाते हुए उसके पास पहुंचता है, अपने अगले पैर उठाकर उसके शरीर पर रखता है। मुझे भी इस तरह से करना चाहिए, फिर मालिक मुझे भी तो प्यार करेगा। बच्चों, गधा मन ही मन सोचता रहा कि उसी समय उसने मालिक को आते हुए देखा। बच्चों, सोचो गधे ने क्या किया? उसके स्वागत में गधा ढीचू ढीचू करके रेंकने लगा, खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। आगे बढ़कर उसने अपने दोनों पैर कुम्हार की जांघों पर रख दिए। गधे की इस हरकत से तो बच्चों कुम्हार हक्का बक्का रह गया। उसे लगा गधा लगता है पागल हो गया है। उसने मोटा सा डंडा उठाया और गधे की खूब पिटाई की। बेचारा गधा, उसने अपने मालिक को खुश करने की कोशिश की थी, पर बदले में उसे डंडे खाने पड़े। बच्चों, कहानी समझाती है ना कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है, हमें हमारी विशेषता को पहचान कर उससे आगे बढ़ना चाहिए, है ना बच्चों? आप भी अपनी विशेषता को देखो और उसको बढ़ाओ, उससे और ज्यादा सीखो। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास, मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की अनोखी दुनिया। और पिछली कड़ी में हमने शुरू की है नई कहानी जिसका शीर्षक है 99 का चक्कर, जिसमें महाराज के सामने एक फरियादी अपनी एक समस्या लेकर आया है कि मेरा किरायेदार एक मोची है, बहुत भला आदमी है, वो पूजा ध्यान भी बहुत करता है, भजन भी गाता है, लेकिन मुझे और किसी बात से परेशानी नहीं है, बस शिकायत है उसकी ढोल से, और जिसकी धमक से मैं घंटों परेशान रहता हूँ और सो नहीं पाता, फरियादी ने कहा। तो फिर आगे क्या हुआ वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। महाराज को फरियादी की वास्तविक परेशानी का अनुमान लग गया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने तेनालीराम से पूछा, क्यों तेनालीराम, इस फरियादी का दुख दर्द दूर करने का तो एकमात्र उपाय यही है कि इसका कमरा खाली करा दिया जाए। तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, इस तरह के समाधान से तो मोची ही नहीं फरियादी भी परेशान हो उठेगा। वह कैसे, महाराज ने पूछा। महाराज फरियादी ने साफ साफ कहा है कि वह गरीब आदमी है, दो कमरों के मकान का एक कमरा किराए पर देने से ये बात साफ हो जाती है कि उसे पैसों की जरूरत है, तभी वह एक कमरा किराए पर देने के लिए विवश हुआ है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, फिर क्या समाधान है, महाराज ने पूछा। महाराज यदि यह फरियादी 99 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे समस्या से मुक्त करा दूंगा, तेनालीराम ने कहा। महाराज ने पूछा, फरियादी क्या तुम 99 रुपए खर्च करने की स्थिति में हो? तो फरियादी ने कहा, यदि समस्या से मुक्ति मिल जाए तो मैं 99 क्या 100 रुपए भी खर्च कर सकता हूँ। इस बार ये बात तेनालीराम ने कही, नहीं केवल 99 रुपए। तो फरियादी ने कहा, जी हाँ श्रीमान मैं 99 रुपए खर्च कर सकता हूँ। तो ठीक है जाओ और 99 रुपए गिन कर एक मखमल की थैली में डाल दो, और जिस समय मोची कमरे में नहीं हो उस समय उसके कमरे में वह थैली डाल दो। ऐसा करने के एक सप्ताह के बाद आकर महाराज को उसके भजन का हाल बताना। अब जाओ और जाकर वही करो जो मैंने तुम्हें बताया है, तेनालीराम ने कहा। तो बच्चों अभी तेनालीराम ने तो नई युक्ति बताई है, अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा वो तो हम जानेंगे अगली कड़ी में। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की सैर को।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से। अभी तो कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर हम आ पहुंचे हैं और आज हमने बहुत सारे कारनामे भी किए, मानसून की बातें भी की, कहानी भी सुनी, किताब भी पढ़ी और अब पिछली कड़ी में परी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी तो जानना है ना। पिछली कड़ी में परी ने पूछा था, छोटा सा रंग बिरंगा घर बरसात में देता सहारा, सिर पर रखो भीग न जाओ, बताओ उसका नाम प्यारा।
2: हाँ बच्चों, और मनी दीदी ने कितनी सुंदर हिंट दी थी जिससे ये पहेली और आसान हो गई थी। और आंसर है छाता।
1: हाँ छाता तो है ना, रंग बिरंगा घर और बारिश में देता है सहारा और सिर पर रखते हैं ताकि भीग न जाए हम।
2: बिल्कुल बच्चों, तो चलो नोट कर लो आज की पहेली। कागज की नाव बनाते हैं, पानी में उसे तैराते हैं, बचपन की सबसे प्यारी याद कौन सा मौसम देता साथ।
1: हाँ बच्चों, कौन सा मौसम जिसमें हम कागज की नाव बना करके उसे तैराते हैं पानी में। तो चलो चलो जल्दी से फोन उठाओ और 9714151415 पर हमें वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो जल्दी जल्दी।
2: हाँ बच्चों, और पता है ना करना क्या है, ऐसे ही मत सो जाना। पहले भगवान को गुड नाइट जरूर करना और सारे दिन की हालचाल की बातें भी उनको बताना।
1: हाँ, और फिर उनकी गोदी में सो जाना।
2: जैसे हम सो जाते हैं तो करते हैं हम गुड नाइट,
1: स्लीप टाइट,
3: गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। बढ़ाए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, अगर अपच की समस्या है तो क्या करेंगे, सोचिए जरा। हम तो उपाय देंगे ही, लेकिन आप भी जरा सोचिए। और जी हाँ, आज सिखाने वाली हूँ सलाद, परंतु कौन सा वाला वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और स्पोर्ट्स का जीवन में कितना महत्व है, और हमारी बहनों को बेटियों को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इस तरह के हम खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे। एक विशेष जो एक बिटिया आई है उसके साथ, और आप सभी भी जुड़ेंगे, ठीक है। और आज की पहेली तो बड़ी शानदार है, पहेली पूछने वाली हूँ, ठीक है, जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ। बढ़ाइए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ, कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार इस प्रकार करेंगे। इस सृष्टि रंगमंच पर सदियों से पुरुष अर्थात आत्मा प्रकृति का खेल चला आ रहा है। प्रकृति से हमारा तात्पर्य पांच तत्वों जल वायु आकाश अग्नि और धरती से है। अनंत काल से प्रकृति हमारी पालना करती आ रही है, परंतु हमने कभी रुककर मां प्रकृति को धन्यवाद भी नहीं किया है ना। यूं तो भक्ति में हम पांचों तत्व का पूजन वंदन करके मतलब प्रकृति का मान रखते हैं। सदियों से हम इस तरह पूजा और वंदन करते हुए उनका मान रखते आए हैं, परंतु निश्चित प्राकृतिक आपदाओं से आहत होते मनुष्य का मन अब प्रकृति का उतना मान नहीं रख पा रहा है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुरते होठ, कितनी ठंड है कह करके प्रकृति के प्रति असंतुष्टता जताते हैं। कभी तपती धूप में पिघलते हौसले प्रकृति को बदनाम कर जाते। कभी बारिश में हुए कीचड़ से प्रकृति कुरूप नजर आती। मतलब कि चाहे मौसम कोई भी हो, खुले दिल से प्रकृति के प्रति अपनी असंतुष्टता का प्रदर्शन प्रत्येक जन करता ही है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का कोई दोष नहीं है। जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके आसपास की प्रकृति होती है। प्रत्येक के घर का वातावरण आबोहवा एक दूसरे से भिन्न होती है। मंदिर के पवित्र वातावरण और किसी कत्लखाने के वातावरण में जमीन आसमान का फर्क होता है। है तो वही पांचों तत्व सभी जगह एक ही, फिर भी वहां रहने वाले मनुष्यों के मन का प्रभाव प्रकृति पर पड़ने से ये अंतर दिखाई देता है। जापान के वैज्ञानिक इमोटो ने पानी पर किए गए प्रयोग से ये बात सिद्ध की थी कि किस तरह मानव मन में उत्पन्न विचारों का प्रभाव पानी पर गहरा पड़ता है। ऐसे ही बहुत समय पहले लूथर बर्बेंक नामक वैज्ञानिक ने कैक्टस से बात कर करके एक बिना कांटों वाला कैक्टस उगाया था। इसके अलावा वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पौधों को यदि हल्का क्लासिकल संगीत सुनाया जाए तो पौधों पर सकारात्मक परिणाम देखने में आते हैं। इन सब बातों से हम ये तो समझ ही रहे हैं कि किस तरह ये प्रकृति मनुष्यों के संकल्पों और क्रियाकलापों से प्रभावित होती है। जिस तरह राजा के महल की वस्तुएं और एक गरीब की झोपड़ी में मौजूद वस्तुओं में फर्क दिखता है ना, ऐसे ही एक सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति और नकारात्मकता से भरे व्यक्ति के रहने के स्थान का वातावरण अलग अलग महसूस होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, व्यक्ति के निवास स्थान को देखकर उसकी मानसिकता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। हम जितना जितना स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरते जाते उतना उतना हमारे आसपास का वायुमंडल भी शक्तिशाली बनता जाता है। आदिकाल में जब मनुष्य आत्माएं सत्व प्रधान थी तब प्रकृति भी सत्व प्रधान अर्थात सुखदायी थी। तो आज तप प्रधान क्यों बनी है सोचिए। इसलिए प्रकृति की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें प्रकृति के प्रति सकारात्मक रहना है और सकारात्मक वाइब्रेशन हमें फैलाना है। ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे अपच पर. भाई देखिए, गर्मी के मौसम में अपच की समस्या बढ़ जाती है. अपच या खाना न पचने पर खाद्य प्रणाली के अंगों में दर्द होने लगता है, गैस भरती है, जिसमें भारीपन, बेचैनी, जी मिचलाना, बमन वगैरह वगैरह चलता रहता है. अग्निमांद, अपच, अजीर्ण, बदहजमी, सभी का अर्थ एक ही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कि खाने का नहीं पचना, जो भोजन हम कर रहे उसका नहीं पचना. तो बदहजमी में क्या होता है, दस्ते भी लग सकती है या फिर गैस, वमन ये होने की शक्यता रहती है. तो बदहजमी के दस्तों को संग्रहणी भी कहते हैं. तो अपच की समस्या है तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय दे रही हूँ, इसको आप आजमा करके अपने अपच की समस्या पर निजात पा सकते हैं. देखिए, हींग, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन सब आप समान मात्रा में लीजिए, ठीक है. और सबको समान मात्रा में लेकर के इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है. फिर एक चम्मच तीन बार पूरे दिन में गर्म पानी से फाकी लेना है, सुबह, दिन में और रात को. सुबह उठने के बाद एक बार ले लीजिए आप नन्हे कोटे, फिर दिन में ले लीजिए कि भोजन के डेढ़ दो घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, फिर आप रात को सोने से पहले ले लीजिए. तो ये जो अपच की समस्या है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी. क्या क्या लेनी है फिर से दोहरा रही हूँ. हींग लीजिएगा, छोटी हरड़, सेंधा नमक और अजवाइन समान मात्रा में लेनी है सभी, ठीक है. जैसे एक एक छोटा चम्मच ले रहे तो सभी एक एक छोटा चम्मच लीजिएगा. फिर इन सभी को पीसिएगा, पाउडर बना दीजिएगा, और इसके तीन बार फाकी लेनी है दिन में, पूरे दिन में. तो फाकी लेकर के नौ सेका पानी आपको पीना है, इससे अपच की समस्या ठीक हो जाएगी. और भी सुनेंगे आप अगला उपाय. एक चम्मच पीसी हुई अजवाइन और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक मिलाइए और भूख

ले लीजिए लौंग, 3 काली मिर्च, इन सब को पीसिए और इसमें थोड़ा सा शक्कर और पानी मिला करके गट गट गट गट गट पी जाइए, ठीक है। ऐसा आपको 3 दिन तक लगातार करना है, सुबह और शाम, तो अपच की समस्या में राहत मिलेगी। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ कि खाना नहीं पचता है, बदहजमी हो जाए, तो एक दिन केवल पानी पीकर ही रहे, अन्य कुछ भी नहीं खाना है। कब्ज रहे तो फिर आप भोजन के साथ घुट घुट पानी पीते रहिए, ठीक है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना जरूरी है। तो अगर संग्रहणी है, बदहजमी है, तो उस दिन आप कुछ मत लीजिए, खाना मत खाइए, पूरे दिन आप ऐसे ही उपवास करिएगा, बीच में घुट घुट पानी पी लीजिएगा, ठीक है। तो आपके वापस हाजमा सिस्टम, मतलब उसका लेवल आ जाएगा, बैलेंस बन जाएगा वापस, ये जो अपच की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और लास्ट उपाय यही है कि कब्ज रहता है तो भोजन के साथ घुट घुट पानी पीजिए, और सुबह उठते ही 1 गिलास पानी तो हमेशा पीना ही है। तो ये हुए उपाय आज के सुंदर से नुस्खे। और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली ध्यान से सुनिएगा और सोच समझ करके जवाब दीजिएगा, बहुत ही सरल पहेली है, आराम से आप जवाब दीजिएगा। 4

जाए। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू, हलचल में तो मिट जाए। क्या चीज है पहेली? बहुत ही सुंदर और सरल है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आइए अब एक गीत सुनने के बाद पुनः हम आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो हम व्यंजन तो जरूर सिखाएंगे, परंतु क्या बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत ही सरल आपको पहेली पूछी है, फिर भी सोचिए, कोई बात नहीं, सोचने का अवसर तो मिलना ही चाहिए, समय तो आपको मिलना ही चाहिए, और आप सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा। आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ, चारे

जाए, चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू, हलचल में मिट जाए। बहुत ही सरल है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यकता है। ये चीज नहीं है तो जीवन नहीं है। अब आप सोचे, मैंने बहुत ही अच्छा हिंट दे दिया आपको, ठीक है? अब तो आपके लिए सरल हो चुकी है पहेली, तो जवाब जरूर दीजिएगा। रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और अब पधारिए आशियाना के किचन में, आज बना देते हैं सलाद। परंतु कौन सा वाला? केरी और दाल का। वैसे तो सलाद हर मौसम में खाना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में तो ऐसी चीजें खाने की ज्यादा इच्छा होती है ना? रोटी के ऐसा लगता है रोटी बहुत कम खाए, कुछ फल फ्रूट, जैसे फल फ्रूट में भी पानी वाले फल फ्रूट, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, अंगूर है, आम, तो भाई वैसे ही गर्मी का सीजन का राजा ही है ये तो, सब फलों का। तो इस तरह की चीजें खाने की ज्यादा इच्छा रहती है। तो सामग्री आप लेंगे, पेन और डायरी तैयार है ना? बिल्कुल लिख लीजिएगा। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी आप लीजिएगा 1/2 कप, मतलब कद्दूकस किया हुआ, ठीक है? और तेल ले लीजिए 2 बड़े चम्मच, कड़ी पत्ता लीजिए 5-6, नमक और चीनी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा हल्दी पाउडर भी अपने टेस्ट के हिसाब से। हरी मिर्च का पेस्ट लेना है आपको 1 छोटा चम्मच, और राई, हींग, जीरा तड़का के लिए ले लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। हरा धनिया अपने स्वाद के अनुसार, मतलब आवश्यकता के अनुसार लीजिए, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। तो ये सलाद की सामग्री हो चुकी है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ। देखिए, सलाद भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। वैसे आप कच्चा भी मिक्स करके खा सकते हैं, लेकिन दाल के साथ आप कैसे खाएंगे? तो आपको एक अलग ही प्रकार का सलाद सिखा रही हूँ। चने की दाल 1 कप, कच्ची केरी कद्दूकस की हुई 1/2 कप ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच क्या लेना है? तेल, 5-6 लीजिएगा कड़ी पत्ते, नमक, हल्दी पाउडर, चीनी, ये सब अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। फिर हरी मिर्च की पेस्ट लेनी है 1 छोटा चम्मच, राई, हींग, जीरा तड़का लगाने के लिए लेना है थोड़ा थोड़ा सा आवश्यकता के अनुसार। हरा धनिया भी अपने आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा, और जीरा पाउडर लेना है 1 छोटा चम्मच। आइए अब केरी और दाल का सलाद कैसे बनाएंगे, विधि आपको बता रही हूँ। चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए आप पानी में भिगो दीजिए, ठीक है? फिर पानी निकाल करके बिना पानी दरदरा पीस लीजिए। तेल में राई, जीरा और थोड़ी सी हींग डाल करके तड़का लगाइए। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल में डाल दीजिए। अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्रियां डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और गैस तुरंत बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर सलाद सर्व करिए, पिरसिए। तो ये बन गए केरी दाल का सलाद। फिर से दोहरा रही हूँ विधि। देखिए, इसको भी आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। एक बार तो विधि यही दोहराऊंगी, फिर इसकी दूसरी विधि भी आपको बताऊंगी। आप क्या करेंगे, चने की दाल जो हमने ली है ना, इसको आप 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। फिर पानी निकाल दीजिए 4 घंटे के बाद, और इसको दरदरा ऐसे ही पीसिए, पानी नहीं रखना है, ठीक है? फिर आप तेल रखिए कढ़ाई में, और तेल गर्म हो जाए तो इसमें राई, जीरे का तड़का लगाइए, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिए, और तड़का लगाना है। अब इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर थोड़ा सा इसको फ्राई करिए। इस तड़के में हल्दी डाल करके तुरंत दाल डाल दीजिए, ठीक है? अब दाल में बाकी सभी सलाद की सामग्री डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और गैस बंद कर दीजिए। ठंडा होने पर आप सलाद पिरस सकते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा ये है कि आप चने की दाल को 4 घंटे के लिए पानी में तो आपको भिगोना ही है, ठीक है? तो फिर आप दाल की मात्रा थोड़ी सी कम कर लीजिए, और भिगो दिया 4-5 घंटे के बाद पानी निकाल दीजिए, और इसी दाल में आप कैरी कद्दूकस करके डालिएगा। फिर इसी में आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, जीरा पाउडर डालना है, और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ठीक है? तो ये सब डाल करके आप कच्चा ही खाइएगा तो भी स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है? अब आपको जिस तरह खाना हो खाइए, मैंने आपको विधि बता दी है। भले आप इस तरह छोक लगा कर खाइए, भले आप कच्चा खाइए। तो ये बन गया केरी दाल का सलाद। अब मैं आपको एक और सलाद सिखाऊंगी, परंतु कौन सा वाला, वो तो आप ब्रेक के बाद ही जान पाएंगे।
तो आज की पहेली फिर से दोहरा रही हूँ। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रेवे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ये पहेली का जवाब आपको देना है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। अब हम सुनेंगे यहीं पर एक प्यारा सा गीत, उसके बाद पुनः आपसे मिलेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे केरी और दाल का सलाद। ठीक है, अब मैं दूसरा भी आपको सलाद ही सिखा रही हूँ, क्योंकि भाई सलाद का नंबर लिया है तो मैं आपको पूरा ही सिखा देती हूँ। इच्छा हो ऐसा सलाद बना करके खाइएगा, लेकिन गर्मी का मौसम है, अपना ध्यान रखिएगा और इस तरह पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाइएगा। सलाद में जो हम चीज़ें डालते हैं उसमें भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे खीरा ककड़ी है, हरा धनिया है, पालक है, ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। तो मैं आपको मिक्स सब्जी का सलाद अब सिखाने जा रही हूँ, परंतु आप जानते हो परंतु मैंने क्यों बोला है, पहेली फिर से सुना रही हूँ इसलिए बोला है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि पहेली क्या है। चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद ने निहारू हलचल में मिट जाए। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हलचल होते ही फिर हम स्वयं के फोटो को नहीं देख सकते, स्वयं के चेहरे को, स्वयं को नहीं निहार सकते, बाकी आराम से हम निहार सकते हैं। अब मैंने इतना हिंट दे दिया हो, अब इससे ज्यादा नहीं दे सकती मैं। अब आप सोचिए कि इसका जवाब क्या होगा। और अब मिक्स सब्जी का आपको सलाद सिखा रही हूँ, इसके लिए आप सामग्री लीजिएगा। पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, ठीक है, एक कप ले लीजिए, भले आप कद्दूकस करके एक कप ले लीजिएगा। पालक ले लीजिए बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक छोटी लेनी है आपको, ठीक है, टमाटर एक लेना है, अंकुरित मूंग आधा कप ले लीजिए, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है, चीनी अगर पसंद है तो लीजिएगा, स्वाद के अनुसार नहीं हो तो कोई बात नहीं मत लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा नमक अपने स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पाउडर भी अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा और नारियल कसा हुआ लीजिएगा दो छोटा चम्मच। यही सामग्री है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पत्ता गोभी कद्दूकस की हुई लीजिएगा एक कप, फिर पालक ले लीजिएगा, मतलब ये सब धुलाई करके ही आपको लेना है, ठीक है, पालक लीजिएगा बारीक कटा हुआ आधा कप, ककड़ी एक लेनी है, उसके भी गोल स्लाइस कर लीजिएगा छोटी वाली ककड़ी, फिर टमाटर भी एक लेना है, इसको भी आप बारीक उतर लीजिएगा और ककड़ी को भी आप स्लाइस मत करिए, इसको भी कुतरिएगा, क्योंकि हम स्लाइस वाला सलाद नहीं बना रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा अंकुरित मूंग ले लीजिएगा, नमक काली मिर्च पाउडर अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा, नींबू का रस आधा छोटा चम्मच लेना है और नारियल कद्दूकस किया हुआ दो छोटे चम्मच लीजिएगा। अब मैं आपको मिक्स सब्जियों का सलाद कैसे बनाया जाता है सिखा रही हूँ। सामग्री सारी इकट्ठी कर ली, अब इन सभी सामग्री और अंकुरित मूंग को सभी को मिक्स कर देना है और एक जार में डाल करके अच्छी तरह इसको मिला लेना है। इसके बाद नींबू का रस, चीनी, काली मिर्च पाउडर और नमक मिला दीजिए, इसमें नारियल मिला करके सब मिक्स करके आप पिरसिए, ठीक है। तो ये बन गया, इसको हम एनर्जी सलाद भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी की है, तो एनर्जी से भरी हुई। तो क्या करेंगे, जो भी हमने सलाद किया, जो सब्जियां सवार के रख रखी है, जैसे कि पत्ता गोभी, ककड़ी, पालक, टमाटर, ये सब आप मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें ही आप मूंग भी, जो अंकुरित मूंग लिए है, इनको भी मिक्स कर दीजिएगा और स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च भी डाल दीजिएगा और नींबू का रस भी निचोड़ करके सबको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप जब प्लेट में रखते हैं ना सलाद, तब ये कद्दूकस किया हुआ नारियल ऊपर से डालिएगा तो एक डेकोरेट लगेगा और सलाद को देखते ही इच्छा होगी कि अरे भाई ये स्पेशल सलाद है, ये तो मैं ज़रूर खाऊंगी, ऐसी इच्छा हो जाएगी।
तो भोजन के पहले एक प्लेट सलाद खा करके फिर आप भोजन करें, ताकि क्या है कि रोटी कम खाएंगे और ये सब्जियां ज्यादा खाएंगे तो एनर्जी बनी रहेगी। आप सुबह भी खा सकते हैं, जैसे नाश्ता नहीं करके सलाद खा सकते हो। अब आपकी इच्छा पर छोड़ा कि आप कब खाते हो, ठीक है। तो आइए, दोनों ही प्रकार के सलाद बन चुके हैं, लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप दो प्लेट में दोनों ही सलाद रखिए, फिर जो भी सब्जी चपाती जो भी बनाई है वो भी रखिएगा। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित, मेहमानों सहित आनंद लीजिएगा। कौन कौन से सलाद का? केरी और दाल का और मिक्स सब्जी वाला, दोनों ही सलाद का आनंद लीजिए। और फिर आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चार

ऐसी क्या चीज है जो शांत रहने पर हम आराम से निहार सकते हैं स्वयं को उसमें, और जब हलचल होती है तो मिट जाता है सब कुछ। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज की पहेली का जवाब दे सकते हो। आप सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः हम आपसे रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, जो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशिया

0: में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और विशेष करके स्पोर्ट्स पर बहनों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है, खुल करके बहनें सामने नहीं आ पाती है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारे सामने बैठी है सेजल। सेजल गोस्वामी आबूरोड की रहने वाली है और 10th क्लास अभी एग्जाम दिया है 10th का और 11th में आई है। तो सेजल को स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, तो सेजल से तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन आप भी जरूर जुड़िएगा। आपको तो आप जानते ही हो कि भाई खुशनुमा जीवन में आपका खुलकर स्वागत है, और आज की पहली भी बहुत ही सुंदर है जिसको दोहरा रही हूँ। बीच में भी आप फोन कॉल्स करके पहली का जवाब दे सकते हो। चार खुणारी बावड़ी भरी ही लोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। ऐसी कौन सी चीज है जो शांत रहने पर स्वयं को देख सकते और हलचल में ये मिट जाती है? जवाब देने के लिए और खुशनुमा जीवन में जुड़ने के लिए नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और खुशनुमा जीवन में भी आप अपने बात रख सकते हो, प्रश्न का इस पहेली का जवाब भी दे सकते हो। आइए सेजल से मिलते हैं। सेजल आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में। सेजल आपको स्पोर्ट्स का बहुत ही शौक है, आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलती है?
1: जैसे कि रनिंग है, कबड्डी है, मतलब और भी कई खेल है।
0: जी जी, हमारे श्रोता बंधु भी जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते कमलेश बहन।
2: हाँ नमस्कार जी, थोड़ा कसरत की है
0: जी
2: खेलने के लिए,
0: जी
2: उसमें मेरे को समझ में आ रहा है थोड़ा कि भाई समुंदर ही होता है,
0: अच्छा।
2: बहुत ज्यादा आवाज आती है, शांति से देखे तो मजा आता है।
0: अच्छा
2: हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी, सुन रही हूँ मैं।
2: हाँ जी,
0: अच्छा
2: आज का मेले का उत्तर है मैडम जी समुंदर।
0: अच्छा ठीक है,
2: क्योंकि और... उनको देखने के लिए अपन शांति से देख सकते
0: हैं,
2: हलचल रहती है, आवाज होती है पानी की बहुत, तो शांति से देखे तो उसमें निहारने में मजा आता है।
0: अच्छा
2: ठीक है मैडम।
0: और कमलेश बहन आप जुड़ ही चुके हैं रेडियो मधुबन से, तो स्पोर्ट्स के बारे में बताएंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक है
2: इसका मैडम?
0: आपने कभी स्कूल में आपने जैसे कि अपने कंपटीशन होता है ना 100 मीटर की दौड़,
2: हाँ जी
0: 500 मीटर की दौड़, दो टांग रेस, फिर कभी कबड्डी, खो खो, इस तरह के गेम आपने खेले?
2: हाँ जी मैडम जी खेले थे।
0: तो आपको कैसा लगता है इस तरह के गेम खेलना? आपको कैसा लगता है खेलना? जी जी जी,
2: बहुत मजा आता है
0: जी। तो ये कम हमारी बहनें थोड़ा कम खेलती है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: ये तो मैडम सबको खेलना चाहिए, ये तो अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, ये भी एक योगा है।
0: बहुत सुंदर, परंतु है ना जो माता पिता ज्यादा परमिशन नहीं देते बच्चों को, वो माता पिता की नजर में क्या होता है, अरे उछल कूद नहीं करना है, शांति से रहना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, आप क्या कहेंगे?
2: नहीं मैडम जी, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़ाई जैसा ही है।
0: बहुत ही अच्छी बात है कि ये भी पढ़ाई अपनी जगह है और गेम्स अपनी जगह है।
2: हाँ सही बात है मैडम जी,
0: जी
2: ये
0: जी,
2: भी
0: जी।
2: जीवन में बहुत जरूरी है।
0: बहुत सुंदर, तो ठीक है कमलेश बहन, और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? कभी आप किस में भाग लेते थे, कौन से गेम आप खेलते थे?
2: मैं तो मैडम जी बास्केटबॉल में खेलती थी, खो खो में खेलती थी।
0: क्या बात है।
2: कबड्डी वबड्डी सब में भाग लेती थी, जीतती थी मैं तो और बार।
0: अरे वाह, तभी आप फिट एंड फाइन है।
2: घर वाले घर नहीं परमिशन नहीं देता, साथ तक ही पढ़ी, ज्यादा नहीं पढ़ी
0: जी,
2: पर जब तक पढ़ी तब तक मजे लिए हमने खूब।
0: बहुत अच्छी बात है, खुलकर जीवन जीना चाहिए।
2: हाँ,
0: और स्टूडेंट लाइफ तो बात ही क्या कहना है, गोल्डन लाइफ है।
2: तो वो तो किसी को मानती नहीं थी, खेलने के लिए भागती थी मैं तो।
0: बहुत
2: और शौक नहीं था मैडम जी, और कोई शौक नहीं था मुझे, एक तो खाना बनाना, नई नई चीजें सीखना
0: जी,
2: और ये खेलना कूदना, गाने गाना।
0: बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर,
2: ये था।
0: तो ये भी किसी से कम नहीं है, आप वैरायटी खाना बनाकर परिवार वालों को खिलाओ, वैसे ही वो खुश रहेंगे कि अरे वाह क्या भोजन मिला है। इंसान काम करता है 24 घंटे, लेकिन खाना अच्छा मिल जाता है तो सारा टेंशन खत्म हो जाता है,
2: सब खत्म हो जाता है, शांति हो जाती है, आत्मा को तृप्ति हो जाती है।
0: जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश मैन, बहुत सुंदर आपने बात की है।
2: थैंक यू
0: जी। तो सेजल आप क्या कहेंगे गेम्स के बारे में, जैसे आपको रुचि है, आप टूर्नामेंट में भी जाते हैं?
1: एक बार गए थे।
0: अच्छा, फिर क्या रिजल्ट रहा?
1: मतलब आगे जाने, मतलब फर्स्ट आए थे।
0: फर्स्ट आए? कौन सी क्लास में आप गए थे टूर्नामेंट में?
1: छोटे ही थे उस समय तो, मतलब होंगे 6th 7th में।
0: अच्छा, और कौन सा गेम खेला था आपने?
1: बैडमिंटन में।
0: अच्छा, अरे वाह, कौन से गांव आप गए थे टूर्नामेंट में?
1: अनादरा।
0: अनादरा, और वहाँ से जीत के आए। उसके बाद कभी जाना नहीं हुआ?
1: उसके बाद स्कूल की तरफ से कभी लेके तो गए नहीं।
0: हेलो।
3: हेलो, हाँ नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा।
0: हाँ जी नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
3: बस अच्छे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: जी जी जी सेजल, हम आपसे बात जरूर करेंगे, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं तो इनसे बात करेंगे। अच्छा सुरेश भाई, स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे?
3: बस जीवन में दीदी, इंसान के लिए, खास करके यंग इंसान के लिए स्पोर्ट का बहुत महत्व है, चाहे कुछ भी स्पोर्ट खेले। और अभी जो आपने बात भी बताई कि लड़कियां जो बहुत, अब तो ऐसा हो रहा है कि लड़कियां भी आगे आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत कम, जैसे ही बड़ी होती है तो शादी कर दी जाती है, और गांव की ऐसी जो रीति रिवाज है। और मैं पहले की बात बताऊं तो लड़कियां लगभग 5 साल से ऐसी खेल खेलते, जो 5 पत्थर के लेते, वो नाम भी पता नहीं, वो
0: सितोलिया,
3: किसी को भी
0: सितोलिया,
3: अरे हाँ वही, नहीं जीतने देती, या रस्सी कूद में, ऐसे बहुत सी ऐसे खेल है, वो बचपन में बहुत हमने भी खेले हैं।
0: जी क्या बात तो, है जी
3: जी, तो सभी को, माँ बाप को बस ये समझ लेना चाहिए कि किसी भी लड़की को अगर स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में रुचि है तो जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करे, वहीं पर रोक दिया ना जाए, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा।
0: जी जी, बहुत सुंदर बात आपने कही है।
3: और जी, और जो आपकी पहेली है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आईना होना चाहिए, आईना।
0: अच्छा,
3: तो कांच बोलते हैं हम।
0: हाँ ठीक है, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, आपके प्रश्न का जवाब जरूर हम देंगे, पहेली का जवाब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं, तो सेजल आपकी ओर बढ़ते हैं हम फिर से। आपने बताया कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, और किस किस में रुचि है, और क्या आप ही खेलते हो या आपके क्लास के लगभग सभी बच्चियां खेलती हैं?
1: सारी बच्चियां खेलती हैं।
0: अच्छा, तो जैसे आप एक बार टूर्नामेंट में गए, दूसरी बार नहीं गए फिर?
1: दूसरी बार स्कूल की तरफ से लेके नहीं गए कभी।
0: अच्छा, जीत करके आए फिर भी?
1: जीत करके आए, फिर स्कूल वालों ने नाम तो लिखवाए थे, पर कोरोना आ गया था बीच में, इसलिए वो मना हो गया।
0: अच्छा, तो अब कोरोना तो हट गया है, अब फिर से आप बच्चियां मिल करके सर से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं?
1: बीच में हुआ था तो, मतलब बॉयज का था आपके भाई, गर्ल्स का नहीं था।
0: अच्छा जी जी जी, तो बहुत सारे देखते हैं हम गांवों में क्या है, माता पिता, जैसे सुरेश भाई भी बता रहे थे कि गांवों में माता पिता थोड़ा अलाउ नहीं करते बच्चियों का, बच्चों को तो परमिशन दे देते लेकिन बेटियों को परमिशन नहीं देते, क्या कारण है?
1: उनके तरफ से रीति रिवाज होगा शायद कोई, कि मना करना, पर मना नहीं करना चाहिए इस पे, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए।
0: जी जी,
1: गांव की हो या शहर की हो, कोई ना कोई खेल खेलने देना चाहिए।
0: जी जी, तो सेजल आपको तो घर से मना नहीं करते हैं?
1: नहीं, मुझे पूरी छूट है।
0: चलिए अच्छी बात है, तो यहीं पर अब हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं। आप जो भी जुड़ना चाहते हैं, खुशनुमा जीवन में अपनी बात रखना चाहते हैं, जिसको भी स्पोर्ट्स का शौक है, जो खेलते हैं वो भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। हमारे श्रोता बंधु का जाते जाते फोन उठा देते हैं। हेलो।
4: हेलो, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते, ओम शांति मंजू जी, कैसे हो आप?
4: बस बढ़िया है।
0: बहुत अच्छी बात है, हमेशा खुश रहिए।
4: बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी जी, आप भी कुछ कहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में? आपको शौक रहा है, कभी आपने भी गेम्स खेले?
4: बिल्कुल, इतने मतलब खेलते थे, खेल बैठे घर पे, अंदर बाहर मैदान में, अब तो याद ही नहीं है, मतलब हर प्रकार के जो गेम होते थे सब खेले थे बच्चे थे तब।
0: जी जी जी,
4: और मेरे को कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता था, हम स्टूडेंट लाइफ में टीचर के साथ भी खेलते थे, फिर घर पे छुट्टियां होती थी तब भी खेलते थे। और भैया वगैरह ये क्रिकेट खेलते थे तो कभी कभी हमें भी बॉल फेंकने का मौका मिलता।
0: अच्छा, बॉलिंग करते थे आप?
4: दोनों ही,
0: बैटिंग और बॉलिंग।
4: हाँ, बहुत अच्छा लगता था उनको भी, अच्छा लगता था हमको भी। लेकिन आजकल है ना, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई है खेल, मतलब खेल के मैदान में हर जगह अव्वल रहती है लड़कियां, और खेलना भी चाहिए। हमारा मानसिक और शारीरिक विकास ये मतलब खेल से बहुत ज्यादा बढ़ता है, और खुद में आत्मविश्वास बढ़ता है, और दिमाग के घोड़े तो ये खेल में ही दौड़ते हैं
0: जी।
4: बिल्कुल, इतना मतलब हर खेल में दिमाग का ही उपयोग होता है सबसे ज्यादा तो
0: जी,
4: और दिमाग के साथ साथ अपनी बॉडी भी मजबूत रहती है।
0: बहुत सुंदर। तो मंजू जी, गांवों में अभी भी माता पिता थोड़े बेटियों को परमिशन नहीं देते हैं, आप क्या कहेंगे?
4: देते भी है, कम लोग हैं जो नहीं देते हैं। आजकल तो मतलब ऐसा कोई परिवार भी नहीं है हमारे आसपास देखें तो लड़की स्कूल पढ़ाई नहीं कर रही है या किसी खेल में भाग नहीं ले रही है, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या खेल कूद का हो, हर प्रकार के प्रोग्राम में उठ जाती भी है और अव्वल भी रहती है। कबड्डी तक ऐसे खेल, खो खो है
0: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गेम्स में आगे बढ़ना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परमिशन हाँ, सभी को
4: मतलब
0: मिलनी चाहिए।
4: दस साल में तो बहुत परिवर्तन हो गया
0: जी जी जी जी। और आज के पहेली का जवाब देंगे?
4: पहेली का जवाब पानी हो सकता है मैडम जी, और क्या।
0: अच्छा ठीक है, आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपके जवाब जरूर सुनाएंगे।
4: बावड़ी तो आपने बोल दिया, पानी है।
0: ठीक है, तो देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, वो आप सुनिएगा कार्यक्रम। ठीक है,
4: कोई बात नहीं, ये भी एक दिमाग की प्रैक्टिस है।
0: जी शुक्रिया,
4: धन्यवाद।
0: हाँ जी, तो आइए यहीं पर हम भी एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही। चलती हवा के कान में जलते हुए दीपक ने ये बात कही। मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं। मेरे हौसले के आगे तेरी कुछ भी औकात नहीं। हेलो
1: हेलो समीर जी।
0: हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस नमस्कार नमस्कार जी। दुकान पे एक काम करते हैं
0: जी, जी
1: लड़का खेती का काम पूरा हो गया, उसका लड़का काम करना पड़ेगा क्योंकि आसपास आदिवासी भाइयों का जो लग्न की चीजें कपड़े दे देने पड़ेंगे। तो सुबह शाम काम चलता है, दोपहर तो गर्मी बहुत पड़ती है
0: जी,
1: तो रेस्ट भी करना।
0: जी जी बिल्कुल, और सुबह सुबह हो जाता है वो, हो जाता है फिर गर्मी तो है ही है।
1: हाँ सुबह में उसके बैठ जाना पड़ता है ना, उसके पूजा पाठ करके आ जाते हैं दुकान पे।
0: जी जी जी, तो कंचन भाई स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कभी खेलकूद किया करते थे?
1: हाँ जी बहन जी, स्पोर्ट्स की बात चल रही है तो देखो हमारे यहाँ स्कूल थी तो व्यायाम का पीरियड रहता था। व्यायाम पहले तो क्या था, टीचर किए हुए व्यायाम टीचर होते थे
0: जी,
1: तो 4 से 5 बजे एक घंटे हमें मैदान में ले जाते थे और कबड्डी है, खो खो है, ऊंची कूद है, ये सब हमें करवाते थे
0: जी।
1: ठीक है, तो जी। हम भी भाग लेते थे और हमारे यहाँ आस पास आदिवासी एरिया है तो बहनों ज्यादा करके कई जिला पहुंची थी जब पढ़ते थे। बाला बैग, बच्ची बैग, ये सब बहने भी और धनुष सिर काम था
0: जी,
1: ऐसा ये भी मैंने भाग लेती थी। अब तो ये बंद हो गया है बहन जी, ये सब है ना व्यायाम का कोई ये ही बंद हो गया पीरियड, और कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई टीचर भी नहीं है।
0: तो समय के साथ विकास होना चाहिए, उसकी जगह बंद हो गया।
1: हाँ बंद हो गया, और जिसने देखो सीपीएड बीपीएड ये सब किया है ना जिसने
0: जी,
1: वो अभी घर पे बैठे हैं, वो भर्तियां होती ही नहीं।
0: अच्छा
1: क्या करे यार।
0: जी जी जी जी,
1: तो वहाँ से शुरू होता था हमारे हमारी बात करें तो, ये तो सब अब तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और ये सब कंप्यूटर ये सब आ गया है तो छूट गया है।
0: जी जी जी, और कंचन भाई आज की पहेली का जवाब देंगे?
1: पहेली क्या है
0: जी? पहेली है, 4 खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए, शांत रहे तो खुद को निहारू हलचल में मिट जाए। कोई बात नहीं,
1: तो
0: सोचिएगा जी, आप सोच के फिर से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है?
1: हाँ जी हाँ
0: जी, हाँ जी, शुक्रिया। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, सेजल हमारे साथ बैठे हुए हैं। सेजल आपके यहाँ पर जैसे आपने कहा कि बाहर ले जाना बंद कर दिया कोरोना के बाद, है ना, टूर्नामेंट्स में अभी तक नहीं हुआ है लड़कियों के। अच्छा तो आपके स्कूल में होते हैं?
2: हाँ।
0: अच्छा, और ग्रुप वाइज होते हैं या क्लासेस टूर्नामेंट होते हैं, किस तरह के होते हैं?
2: ग्रुप वाइज होते हैं।
0: ग्रुप वाइज होते हैं, तो उसमें आप भाग लेते हैं?
2: हाँ।
0: अच्छा कितने गेम्स आप खेल सकते हैं?
2: बैडमिंटन, बहुत तरह के गेम्स खेल सकते हैं।
0: नहीं, जैसे एक स्टूडेंट को कितने गेम्स खेलने की छूट है टूर्नामेंट में, कंपटीशन में?
2: 3 3 गेम्स।
0: तो आप कौन कौन सा खेलती हो?
2: बैडमिंटन, 2 पैर और रस्सी कूद।
0: अच्छा, तो सभी बच्चे 3 3 गेम्स खेलते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार?
2: अपनी इच्छा के अनुसार।
0: अच्छा, बाहर लेके जाते हैं टूर्नामेंट में तो वहाँ पर कितने गेम्स खेले जाते हैं?
2: उधर तो किस तरीके से तुम्हें कौन से गेम से लेके जा रहे हो उस तरीके गेम खेलाए जाते हैं।
0: अच्छा,
2: एक गेम के ऊपर
0: एक गेम ही होता है। तो गेम्स खेलने के फायदे क्या है, स्पोर्ट्स में जो हम भाग लेते हैं उससे क्या फायदा मिलता है?
2: गेम्स खेलने के बहुत फायदे हैं,
0: जैसे कि
2: उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारे अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। मोटे लोग भी गेम खेलते हैं
0: जी,
2: तो जिनकी वजह से उनके जो बॉडी है ना वो फिट रहती है
0: जी। बहुत सुंदर बात कही सेजल कि गेम्स के बहुत सारे फायदे हैं, एनर्जी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है। जो मोटे लोग हैं ना वो भी गेम्स अगर खेलते हैं तो उनका भी मोटापा कंट्रोल में आ जाता है, फिट एंड फाइन हो जाते हैं और एनर्जी और एक्टिवनेस बढ़ती है, तो बहुत ही अच्छा है। और आप पढ़ाई के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आप पढ़ाई में कैसे हैं?
2: पढ़ाई में मीडियम है।
0: अच्छा, तो आगे कोई लक्ष्य बनाया आपने?
2: हाँ, ब्यूटिशियन का है।
0: अच्छा, क्यों गेम्स में आपको रुचि है और ब्यूटिशियन बनना, दोनों ही अलग अलग हो गए फील्ड?
2: गेम्स में है, पर गेम्स में जाते हैं ना आगे, कभी कभार खेलते हैं, मतलब गेम्स के अंदर स्कूल से लेके जाते हैं।
0: जी जी जी,
2: आगे बड़े होके।
0: और ब्यूटिशियन तो अपना सेल्फ रहता है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्कूल से आगे नहीं ले जा सकेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ब्यूटिशियन पर अपना सेल्फ है, सेल्फ डिसीजन है, जब चाहे तब खोल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सीखना पड़ेगा,
2: मतलब एक साल का कोर्स होता है इसका।
0: अच्छा,
2: अहमदाबाद से, कोई भी बड़ी सिटी होती है नंद से।
0: अच्छा, फिर कहीं पर भी आप खोल सकते हो?
2: हाँ, आप कंपनी से भी जुड़ सकते हो, किसी कंपनी से जुड़ के भी आपको हो सकता है।
0: अच्छा, अपना अपना शौक है, अच्छी बात है, कोई ना कोई लक्ष्य बनाना बहुत अच्छी बात है। तो सेजल, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने बहुत ही सुंदर बातें बताई है कि स्पोर्ट्स में आपको किस तरह रुचि है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सभी के सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
3: अरे थारी कंचन सी का यारो भरोसो, कौन लोभी जीवड़ी ला, कौन पापी जीवड़ी।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा विचार भी दिया तो नुस्खे भी अपच पर दिए। जरूर ध्यान दीजिएगा, रेसिपी में आपको जो सलाद बनाना सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा। और आज की पहेली बहुत ही सुंदर थी, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जवाब भी आप जो आपने सुनाया है वो मैं अभी बताऊंगी। चार

मिट जाए। यह आज की पहेली थी जिसका जवाब दिया है कमलेश बहन माउंट आबू ढूंढई से। उन्होंने कहा है कि समुद्र पहले आत्मा कहा फिर बाद में समुद्र कहा है, लेकिन यह गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से, उन्होंने पर्यावरण कहा है, यह गलत है। कुपराम जी कोजरा से, सबसे पहले इनका जवाब सही है, परंतु क्या है वो मैं बाद में सुनाऊंगी। सुरेश भाई थानेराव से, आपने कहा आईना, ये गलत है। मंजू जी बाड़मेर से, आपका भी जवाब सही है जो मैं बहुत ही शीघ्र सुनाने वाली हूँ। सुरेश भाई झोटाना से, आपका भी जवाब गलत है, उन्होंने भी आईना ही कहा है। कंचन भाई मंडाली से, आपने जवाब नहीं दिया है, तो जवाब दिया है कुपाराम जी और मंजू जी बाड़मेर से, पानी। तो ये जवाब सही है, ढेर सारी ताली आप दोनों के लिए। और देखिए आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है सभी ने, इसके लिए आप सभी के लिए भी ढेर सारी ताली। देखिए आपने कांच वगैरह कहा, आईना कहा, वो ठीक है, लेकिन पहली बहुत ही सुंदर थी कि चार खुणारी बावड़ी भरी हिलोरा खाए। अब किससे हिलोरा खा रही है? पानी से खा रही है ना। और शांत रहे तो खुद को निहारू, हलचल में मिट जाए। शांत पानी में आप देखिएगा, आपका चेहरा साफ दिखाई देगा, आपका प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा, लेकिन एक कंकड़ भी अगर पानी में गिर गया तो फिर आप अपने आप को निहार नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना, हलचल हो जाती है ना, उसमें आपका फोटो फिर चारों तरफ फैल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए पानी जवाब सही है। आज का मीठा मोती है, सरलता में महान सौंदर्य होता है, जो सरल है वह सत्य के समीप है। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हंस हंस मारे छक्का। गेम्स के ऊपर ही है। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणित खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं तकरार, चुन्नू भैया रूट गए तो दिल में पड़ी दरार, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, बने मूर्ति ऐसे वह तो फूल के हो गए कुप्पा, करी गुदगुदी मुन्नी ने तब हंस हंस मारे छक्का। इधर उधर का दोनों दौड़े, इधर उधर को दोनों दौड़े हंस हंस देके कक्का, कोई किसी के हाथ न आए, हो रही धक्कम धक्का, हो रही धक्कम धक्का, खेल खेल में चुन्नू मुन्नी करते हैं।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: यहाँ से।
1: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: ले जब प्राण तन से।
1: नमस्कार सभी को। आपका अपना सामुदायिक रेडियो मधुबन 107.8 FM पर जो प्रस्तुत करता है कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा को रोकने में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। जहां लोग शिक्षित होंगे वहां समझदार होंगे, समझदार होंगे तो स्वाभाविक है वहां किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। शिक्षा से समझ मिलती है और जहां समझ है वहां फिर हिंसा की गुंजाइश नहीं रहती है। अक्सर हम देखते हैं कि घरों में किस तरह हिंसा होती है, महिलाओं के साथ तो कहीं कहीं पर पुरुषों के साथ भी होती है। लेकिन अक्सर हम महिलाओं के बारे में सुनते हैं कि महिलाओं के साथ हिंसा ज्यादा होती है, उसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि बेटों को तो फिर भी पढ़ाना चाहेंगे माता पिता, लेकिन बेटियों को पढ़ाने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि माता पिता की सोच होती है कि बेटी पराया धन है, पराए घर चली जाएगी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा क्यों करना है। वैसे समय बदला है, लोगों की सोच भी बदली है, लेकिन आज भी ऐसे गाँव है जहाँ बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। तो सुनेंगे आप ऐसा नाटक जिसका विषय है घरेलू हिंसा को रोकने में शिक्षा का प्रभाव।
2: आज आपको सिरोही जिले के एक गांव में ले चलते हैं, जहां एक परिवार रहता है। परिवार में माता पिता और दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा राघव को पढ़ने की छूट है, लेकिन बेटी राधा की इच्छा पढ़ाई करने की बहुत है, लेकिन उसे पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इस परिवार में क्या हो रहा है।
3: मन पढ़वा को है शौक, पर बाबोसा को नहीं जावा दे। मन लिखवा को है शौक, पर बाबोसा को नहीं जावा दे। बाबोसा को नहीं जावा दे, मन मायड़ को नहीं जावा दे। मन पढ़वा को है शौक, पर बाबोसा को नहीं जावा दे। मन लिखवा को है शौक, पर बाबूसा को नहीं जावा दे।
4: अरे राधा, काहे बोल रही है तू पढ़ाई पढ़ाई?
5: पापा, मैं भी पढ़वा जाऊं, मने भी स्कूल भेजो ना।
4: राधा की माँ, मारे काम पे जानो है, और ये राधा पढ़ाई पढ़ाई काही कह रही? तू बात कर, मैं जाऊं। राम राम।
6: हाँ राम राम, थे जाओ, मैं बात करूं। काहे कह रही छोरी तू? अबे बोल, मने बता।
5: मम्मी, मारे भी पढ़ाई करनी है, मैं भी स्कूल जाऊं। बस मैं जाऊं स्कूल।
6: तने कतरी बार क्यों कि तू छोरी है, थारे पढ़ाई कोनी करनी, घर को काम कर, फिर भी तू एक की बात कर रही है। रट लगावे कि मारे पढ़नो पढ़नो, चुपचाप बैठ घर में और घर को काम कर। स्कूल का नाम ली दो ना तो ठीक नहीं बेवेला।
5: मम्मी, भाई ने भी तो तू पढ़वा भेजे, तो मैं कहीं बिगाड़ियो? मारे भी पढ़वा जानो, मारे भी जानो।
6: भाई तो छोरो है, घर को दीपक है, वो वीने पढ़ानो तो बहुत जरूरी। थारे तो पराया घरे जानो है, चोको चुल्लो संभालनो है, समझी? अने वास्ते घर को काम सीख ले।
2: तो देखा दोस्तों, राधा के पढ़ने की इच्छा बहुत थी, लेकिन उसको पढ़ने नहीं दिया गया। और एक दिन शादी करके उसको ससुराल भेज दिया जाता है। पढ़ने की इच्छा बचपन से थी, तो यहाँ भी कोशिश करती है पढ़ने की। तो देखते हैं कि क्या ससुराल में उसको पढ़ने दिया जाता है।
5: चिंटू, कई पढ़ रहे थे?
7: भाभी, आपको पढ़ना है क्या?
5: हाँ चिंटू, मने बचपन से घणो शौक हो पढ़वा को, पर कोई मने पढ़ायो को नहीं, मने कोई पढ़वा नहीं दी दो।
7: मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या आप मुझसे पढ़ोगी?
5: हाँ चिंटू, मैं पढ़ू।
7: ठीक है, मैं रोज जो आपको पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस करते रहना। ओके
5: ओके।
8: वीननी, कटे है तू?
9: सासू माँ, राधा ने अबे पढ़वा को सोख चढ़ी हुए, काम दाम तो करनो को नहीं, महाराणी ने पढ़वा बैठगी।
8: हो जद मैं आवाज दे रही हूँ, पर सुने को नहीं रही, काई करे तू?
5: सासू माँ, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, चिंटू मने पढ़ाई रहा है।
8: यो कई पढ़ाई पढ़ाई को रट्टो लगा रखियो है तू? पढ़ाई करी तो घर को काम कौन करी?
9: अणी उम्र में भला पढ़ाई बेती हुई।
4: राधा, ओ राधा।
10: बीननी, दिलीप काम सो आ गयो और थने आवाज दे रही हो, जा कई काम के रही हो वो?
5: हाँ सासू माँ।
4: काई कर रही थू? मैं आवाज दे रही हूँ थने, सुने को नहीं देवे?
5: वो चिंटू मने पढ़ाई रहा।
11: राधा तू के पागल होगी, अनी उम्र में पढ़ाई कर रही है, अनंत पचे घर को काम कुण करी। तारी माँ दिमाग मु पढ़ाई रो भूत उतार दीजे, समझी?
5: मैं कई बाने जान थोड़ी पढ़ाई कर रही हूँ, अपना चिंटू पढ़ाई रहा तो मैं घर में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, कभी भी जरूरत पड़ सके।
11: माँ आदमी लोग के मर गया गई तो थारी पढ़ाई रही जरूरत पड़ी, जा काम कर घर को।
2: राधा को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, हर कोई कुछ भी सुना देता है, लेकिन राधा भी ठान लेती है कि मुझे पढ़ाई करनी ही है। तो आइए देखते हैं आगे का माहौल किस तरह का है।
3: पढ़ाई करूंगी, दुनिया से नहीं डरूंगी, शिक्षा से बनूंगी मजबूत, मैं पढ़ाई करूंगी, दुनिया से नहीं डरूंगी।
8: बीनी थोड़ी तो शर्म कर, तेरी जेठानी आका घर को काम करे और तू बेटी बेटी पढ़ाई करे।
5: सासू माँ मैं काम भी कर रही हूँ और पढ़ाई भी। चिंटू क्यों के प्रैक्टिस करता रहो, नहीं तो भूल जाओ।
10: मारे थारा सु बेस कोनी करनी, अगर थारी जेठानी भी एड़ी होती तो घर को सारो काम मारा ऊपर ही आ जातो हूँ।
6: तू कई छोटी बच्ची है जो पढ़ाई कर रही?
5: बच्ची ही जदी भी कटे पढ़वा दीदी मने।
8: अबर कोनी अब मने ये कसी नौकरी करवा की के?
5: मारे कोई नौकरी कोनी करनी, पर थोड़ो अक्सर ज्ञान को तो होनो ही चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सके।
9: घर का पुरुष लोग कई करी वे बता दे, और आज दिन तक जरूरत पड़ी
5: यो कई कर रहे है भाभी। मारी किताबा तो मत फेंको, मारे पढ़ाई करनी है।
10: ओफो बेसबाजी बंद करो। बीननी जा मारे चाय बना लेना।
5: हाँ सासू माँ लाऊं। सासू माँ अरे भाभी जल्दी आओ, भाभी एम्बुलेंस वाला ने फोन करो।
9: राधा मने तो एम्बुलेंस का फोन नंबर की कोनी था, देखा मैं चिंटू ने बुलाऊं।
5: जटा तक तो घनी देर वे जाई, लव फोन मने दो मैं करूं फोन।
12: हेलो 108 एमरजेंसीज, हाउ कैन आई हेल्प यू?

0: डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है?
1: अब ठीक है। अच्छा हुआ सही समय पर एम्बुलेंस बुलाकर आपकी माँ को यहाँ एडमिट करवा दिया, वरना कुछ भी हो सकता था।
0: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: मेरा नहीं, अपनी पत्नी का धन्यवाद करो। आज आपकी माँ की जान उसकी वजह से बची है।
2: मैंने माफ कर दे राधा, मैं थने पढ़वासु रोक तो हो, आज थारी पढ़ाई की वजह से मारी माँ की जान बची, माफ कर दे मने।
3: हाँ राधा, मने भी माफ कर दे। आज मने ठा पड़ी कि पढ़ाई करनो कतरो जरूरी है और पढ़ाई की कोई उम्र भी कोनी होवे है। आज सु मैं भी थारा साथ में पढ़ाई करूँ।
4: मीननी, मने भी माफ कर दे। मने ठा पड़ी तारी वजह से आज मारी जान बची है। आज मारा समझ में आयो कि पढ़ाई जीवन में कतरी जरूरी है। चाहे मने छूट दे हूँ के जतरी थारे पढ़ाई करनी वे वतरी कर, और चिंटू ने के मने भी अक्षर ज्ञान दे दे वे।
5: तो देखा दोस्तों कि किस तरह राधा को बात बात पर ताने सुनने पड़े, लेकिन राधा हिम्मत नहीं हारी और पढ़ाई करती रही, और यही पढ़ाई उसके सासू माँ की जान बचाने में काम आई। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में आप पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा से समझ मिलती है और समझ आने से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। अनेक प्रकार की हिंसा से स्वयं को बचा सकते हैं। अगर हिंसा से बचना है तो स्वयं को शिक्षित बनाइए।
6: तो देखा दोस्तों, राधा ने आखिरकार अपने मजबूत इरादे की वजह से पूरे परिवार के लोगों के विचार को बदल डाला और बताया कि जीवन में शिक्षा कितनी जरूरी है। जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो अनेक लोगों को हिंसा के प्रभाव से बचा सकते हैं। शिक्षा हर प्रकार की हिंसा को समाप्त कर सकती है, इसलिए जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। वह कहावत है ना कि जब जागे तब सवेरा। जब मन में ठान लिया कि हम किसी भी कारणवश पहले नहीं पढ़ पाए लेकिन अब पढ़ना चाहते हैं, तो बस उठे और जीवन की एक नई शुरुआत करें। आशा करती हूँ कि दोस्तों ये कार्यक्रम आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कार्यक्रम लेकर फिर से मिलेंगे एक नए नाटक के साथ। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर प्रस्तुत कार्यक्रम हिंसा को नो में सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी कहिए, सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि सरकार का जो मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो इतिहास है, जो रीति रिवाज है, सब तक पहुंचाने के लिए एक सामुदायिक रेडियो सरकार ने दिया। ऑल इंडिया रेडियो तो सभी जानते हैं, लेकिन कमर्शियल रेडियो जो भी एडवर्टाइज के लिए बड़ा बड़ा शहर में रहता है, लेकिन गांव के लिए सरकार ने एक कम्युनिटी रेडियो, आपका रेडियो दिया सामुदायिक रेडियो के नाम पे। तो आज रेडियो मधुबन सामुदायिक से पहुंचे और सामुदायिक आवाज को बुलंद करने के लिए, उनका प्रतिभा को, उनका स्वर लय और ताल को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच दे रही है। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय, ये दोनों विद्यालय की मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास कार्यक्रम में उनका भाव भावना दिल का उद्गार संगीत के रूप में, हृदय में जो संगीत आता है भाव और भावना को लेकर आज प्रस्तुत करेंगे। और हमें बहुत खुशी है क्योंकि इस विद्यालय में जब भी आते हैं, कोई भी भामाशाह तरफ से कुछ मिलता है तो बच्चों को बैग हो चाहे यूनिफॉर्म हो, जो भी आवश्यकता है मिलता है। तो आज हमें बहुत खुशी है और इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा मैम जी भी उपस्थित है। मैम को भी स्वागत करेंगे, मैम अपना परिचय देंगे बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। मैम, क्योंकि मैडम हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैम हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए और आप अपना परिचय दीजिए। आपका आवाज सुनकर बच्चे भी अपना गीत को प्रस्तुत करेंगे क्योंकि हमारा श्रोता भी सुन रहे, तो आपका वेलकम।
1: नमस्कार, ओम शांति। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलदर से विज्ञान की वरिष्ठ अध्यापिका सुनीता बोल रही हूँ।
0: जी मैम।
1: और शांति वन से हमारे आदरणीय भाई साहब यहाँ पर बच्चों का कुछ कार्यक्रम लेने आए हैं, जो कि बच्चों को उत्साहित करेगा, उनको प्रेरित करेगा, और आप सुनिएगा उनको। थैंक यू।
0: मैम, आप भी कभी बच्चे थे उस समय, क्या प्रिपरेशन किया, आज मैडम बन गए, क्योंकि बच्चे भी आज आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आपका जो मेहनत, आपका जो लगन बचपन में, जिसका चलता आज यहाँ तक वरिष्ठ अध्यापक साइंस टीचर बने हैं।
1: जी जी।
0: तो क्या मेहनत करते थे जिसका चलते आज बच्चे भी आपको सुन रहे हैं, और रेडियो के माध्यम से जो बच्चे सुन रहे हैं, माता पिता सुन रहे, तो उनके लिए क्या आपको शिक्षा देना चाहते?
1: मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूँ, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ।
0: जी मैम।
1: और मेरा भी एक किसान परिवार से मैं आई हूँ।
0: जी।
1: मेरे पापा आर्मी में थे पर माँ किसानी थी।
0: ओके।
1: माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको ये था कि मेरी बेटियाँ, मेरे बच्चे अनपढ़ नहीं रहने चाहिए।
0: क्या बात।
1: तो जैसे इन बच्चों को आज लगता है कि मैडम पता नहीं कहाँ से, कोई शहर से पढ़ के आए होंगे इसलिए मैडम बने होंगे, जिस जैसे परिवेश में ये बच्चे रह रहे हैं, हमारे ट्राइब के बच्चे, हम भी ऐसे गांव से ही उठ के आए हैं, लेकिन हमें ये लगन थी कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है। जो हमारे गुरुजियों ने हमें जो सिखाते थे उस पे हम पूरा ध्यान करते थे कि उसको पढ़ना है और घर जाके उसको बार बार रिवीजन करना है। हालांकि जैसे इनके माँ बाप भी काम में रहते हैं, खेत में रहते हैं, अपने परिवेश में रहते हैं, हमारे माँ बाप भी अपने काम में रहते थे, लेकिन हमें जो ऐसा था कि बाकी बच्चों से हमें आगे जाना है, उठना है। अगर मैं उस टाइम की बात करूं तो मेरे गांव में आज से 35 साल पहले 8वीं क्लास में 30 लड़कियां थी
0: उस समय।
1: और जो हायर सेकेंडरी हमारा स्कूल था 6 से 12 तक, उसमें कम से कम हजार बच्चे थे उस टाइम। और लड़कियों का अनुपात इतना कम था कि 10वीं में लड़के तो थे 250 और लड़कियां थी 10।
0: और आज
1: जो है वो पूरा परिदृश्य बदल गया है। मैं 9th क्लास में अभी हूँ, तो 9th क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से लगभग दुगनी है।
0: दुगनी है, वाह। लड़कियों के लिए तो ताली बजना चाहिए भाई, बहुत अच्छे से आ रहे हैं, क्योंकि हमारा बहन आगे बढ़ेंगे, बेटी आगे बढ़ेगी, जैसे मैम अपना बता रहे उस समय और आज का जमाना कितना अंतर है।
1: और मैं ये इन बच्चियों से हमेशा इनको प्रेरित करती हूँ और इनको ये कहती हूँ कि एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे आप इस परिवेश से ऊपर उठ के आप अपना कितना ही ऊंचा मकान बना सकते हो, कितना ही प्रोग्रेस कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो बहुत ऊंचे उठ जाते हैं उनके लिए कोई अलग से उनके दिमाग होता है या अलग से कुछ सुविधाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग में हमारे होता है कि वो अलग लोग होते होंगे, लेकिन वो अलग लोग नहीं होते, वो हम जैसे ही होते हैं। बस पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, समय चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए। तो पढ़ाने वाले स्कूल में है, किताबें आपको सरकार दे रही है, आपको सिर्फ अपने समय का सदुपयोग करना है, तो आप भी उसी ऊंचाई पे पहुंच जाओगे जहां आप चाहोगे। थैंक यू।
0: मैं इसमें ऐड करूंगा जी, विद्यार्थी जीवन में बड़ों का बात मानना अति आवश्यकता है। बड़ों में आपका माँ बाप, टीचर्स, बड़ा भाई बहन, क्योंकि वो आपका भलाई के लिए चाहते हैं। भले आपको खराब लगेगा, लेकिन उस समय आप थोड़ा ध्यान दे देंगे ना माँ बाप का, जो भी बोलेंगे माँ बाप, शिक्षक जो भी बोलेंगे, आपका भलाई के लिए करता, आपका हित के लिए। उस समय जब ले लिया माँ बाप को भगवान तुल्य मान लिया, टीचर को भगवान तुल्य माना, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा गारंटी, और उसके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन आशीर्वाद भी आवश्यकता है। तो इसे मैम ने बताया, अपना माँ बाप को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि इतना आगे आपने बढ़े।
1: हमारी माँ ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, और हमारे लिए 3 बजे सुबह उठ के, सर्दियों में भी 3 बजे उठ के हमारे लिए चाय बनाते थे, उसके बाद हमें बिठाते थे, हमारे साथ बैठे रहते थे 3 बजे उठ के
0: जी,
1: और उनकी बदौलत ही हम आज यहाँ हैं।
0: तो आज बच्चे इसको आत्मसात करेंगे, तब जाकर कुछ आज से हम संकल्प लेंगे जे हमारा बड़े जो है उनका बात मानना चाहिए, जो भी करेंगे, जो भी हमारे लिए करेंगे, हमारा फायदा के लिए। हाँ कि नहीं बच्चे? आज से क्या करेंगे, माँ बाप का, बड़ों का बात मानेंगे, संकल्प किया? हाँ, ऐसे तो मानते हैं, लेकिन आज सौदा मानेंगे, कभी कभी नहीं, सौदा के लिए। जब तक है तब तक सुनना है, सुनना है कि नहीं माँ बाप का? कौन कौन नहीं सुनना चाहते, हाथ उठाओ। नहीं, सभी सुनना चाहते, कोई हाथ नहीं उठाया, सभी सुनना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को, इतना उमंग उत्साह दिलाया, और बच्चे ऐसे सच्चे होते। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आगे बढ़त हुए, बच्चों का आवाज न हो और विद्यालय में आए तो बच्चों का आवाज न हो, ये हो ही नहीं सकता। बच्चों का आवाज को हम पहले प्रार्थना सत्र में प्रार्थना के रूप में एक माँ सरस्वती का वंदना सुनेंगे। और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय देलदर का आवाज अब सुनेंगे बारी बारी। और हमारा साथ चार छात्रा है, होबनहार छात्रा, बड़े होकर मैम को देखकर भी लोग तो बन जाएंगे मैम, बड़े होकर मैम तो बनेगी ही है, बनेगी मैम। क्या नाम है?
1: दीक्षा।
0: लेकिन मैम जैसे माँ बाप का बात सुनते थे और सुबह सुबह उठकर अपना पढ़ाई करते थे, उस तरह करेंगे तब होगा। चलिए सभी को धन्यवाद देते हैं, अपना नाम बताना सभी।
2: मेरा नाम संतोष गर्ग है।
3: मेरा नाम हिमांशी है।
0: हिमांशी।
4: मेरा नाम आसमा।
0: चलिए एक प्रस्तुति सुनेंगे।

0: हिंदुस्तानी।
1: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। जिसको मंच चाहिए था आज वो मंच बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि झिझक दूर करके कोई डरना नहीं और कोई डर नहीं लगा होगा। कोई डर लगा, कोई झिझक
1: नहीं,
2: कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई डर है
1: नहीं।
2: क्यों डर तो नहीं, रेडियो में माइक में बोलने के लिए अभी मैम बोले थे भाई आप पहले प्रिपरेशन करते हो, थोड़ा अच्छा बोल शब्द छूट गया ऐसे सोचते हैं, लेकिन बच्चे को जब अचानक में पहुंचते हैं कोई प्रिपरेशन नहीं करते, फिर भी बच्चे अपना भाव को देखते, क्योंकि संगठन का जो बल है एकता एकत्रित होके सिंगल गाने में उसको झिझक लगेगा, लेकिन समूह के रूप में जब गाते हैं तो एक बल मिलता है कि नहीं।
1: हाँ,
2: मिलता है। तो बड़े क्या बनेगी तुम?
1: IPS।
2: वाह क्या दिल, तो जीत IPS। इसे ऊंचा विचार रखना चाहिए, ऊंचा एम्बिशन। एम्बिशन अच्छा रखेंगे तो उससे नीचे भी हो सकता है, लेकिन अच्छा रख दीजिए। पहले चपरासी सोचेंगे तो क्या इसका नहीं होगा तो फिर नीचे आ जाएगा, इसलिए बड़ा पोस्ट रखेंगे तो छोटा पोस्ट तो मिलना ही है, इसलिए ऊंचा पोस्ट रखना है। उसको प्रिपरेशन करते तो मिल जाएगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा तो उसका नीचे वाला पोस्ट तो जरूर मिलना है। जैसे फर्स्ट क्लास नहीं होगा तो सेकंड क्लास तो जरूर होना ही है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में टच करते करते हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो सेकंड क्लास तो होना ही है। लेकिन बोले हाँ थर्ड क्लास, थर्ड क्लास नहीं मिलेगा तो फेल हो जाएंगे, इसलिए थर्ड क्लास तो नहीं रखना है। पर उच्चा विचार
3: 100% समझ के तैयारी करोगे कि मुझे 100% लेके आना है, तो आपके 90 तो हमें आएंगे आएंगे।
2: मैम इसलिए अपना भाषा में बताया भाई परसेंटेज, क्योंकि विद्यालय में पढ़ते ना बच्चे तो हमारा 100% सोचेंगे ना, 100% बोलेंगे तो 99 तक आएगा, तब भी टॉपर में आ जाएगा, इसलिए ऊंचा रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। और तुम क्या बनेगी रे?
1: IPS।
2: कॉपी कर दिया देखकर। हाँ, बोलते हमारा सभी दोस्त का यही सपना है, बस सभी ठान लिया। जिसे मैम बताया ना भाई 100% IPS, 100% IAS, 100% उसको नहीं होगा तो भाई सब कलेक्टर तो हो जाएंगे, कलेक्टर नहीं मिलेगा तो सब कलेक्टर होगा, नहीं होगा तो भाई वीडियो बन जाएंगे ना, तो इसलिए ऊंचा रखना। उसके मेहनत क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ेगी,
1: उसके लिए सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगानी होती है, कसरत करनी होती है।
2: आपका घर में बाप भी देखा IPS ऑफिसर को, IAS ऑफिसर को देखा क्या काम करते वो लोग? पूरा जिला का संभालते हैं, सब उनका हाथ में। IAS ऑफिसर का काम है पूरा प्रशासन, अनुशासन। अभी अनुशासन स्कूल में मिल रहा है ना, आत्म अनुशासन मिला कि नहीं? खुद को कंट्रोल करना आता है कि नहीं? क्या देखना है, क्या सोचना है आपको आ गया? हाँ, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो भी आपको आ गया? क्योंकि आप ही तो करते ना पढ़ाई, हम तो नहीं करते, पढ़ाई तो आप करते हैं। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपको आया? कौन पढ़ता है?
1: हम
2: वाह, हम कौन है? हम सब कौन है? विद्यार्थी ना आत्मा?
1: विद्यार्थी और आत्मा,
2: दोनों विद्यार्थी भी है और आत्मा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला कड़ी में गुड़िया आएगी, किंतु गुड़िया का पहले और एक प्रस्तुति भजन के रूप में सुनेंगे, और हमारा वही छात्राएं जो पहले प्रस्तुति किए थे ब्रेक का पहले, उनको पुनः स्वागत करते वंस मोर, और एक प्रस्तुति सुनेंगे, और उनका जो भावना है, भाव है आज हृदय में, जो संगीत है, जो ताल है, जो लय है, और मैम जब वार्म अप करा दिए तो बच्चे भी एक के बाद एक प्रस्तुति के लिए रेडी है। कौन बोलता है भाई, ग्रामांचल बच्चे कम है किंतु शहरांचल बच्चों को भी टक्कर देने वाले है, क्योंकि देलदर का स्कूल के बच्चे है। चलिए सुनते हैं और एक प्रस्तुति, हमें खुशी है इस तरह बच्चे बढ़ चढ़ कर जोड़ लेते, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, अचानक में आए हाँ जी, क्या बोले हाँ जी, प्रस्तुत है और प्रस्तुति देने के लिए हम सब प्रस्तुत है, रेडी है ना, रेडी। चलिए शुरू करते हैं।

0: हमें तार दे माँ।
1: चलिए वंस मोर कहते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है और सभी उमंग उत्साह से दिए प्रोग्राम और सभी तो मेहनत करते हैं। घर में कोई चीज आता है तो किसको पहले मिलता है? नया चीज, कोई भी नया चीज आता है भाई को मिलता है ना बहन को मिलता है? तुम बताओ।
0: मुझे।
1: आपको मिलता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भाई को नहीं मिलता है? भाई को बाद में। आप लाडली है, वो लाडला है और लाडली। भाई बोलता है बहन को दो, बहन बोलेगी भाई को, ऐसे होना चाहिए, है ना? भाई क्या बोलेगा? बहन को दे दो। और बहन क्या बोलेगी?
0: भाई को दे दो।
1: बोलेंगे ना। कोई भी चीज, नया चीज आएगा तो किसको देने के लिए पहले बोलेंगे? पहले आप, पहले आप, बाद में मैं। और मार खाने के लिए किसको पहले? पहले मैं, ना भाई को। मार खाने में पहले मैं और बाद में भाई को, ऐसे होना चाहिए ना। अच्छा चीज में भाई को, बुरा चीज में खुद को, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

बाबा याद है, आओ हम सब शिव बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें और उनका मंगल गान करें।

0: ओए रुक
1: रुक।
2: हाँ कहिए।
0: अजी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
2: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला कड़ी में ब्रेक का पहला प्रार्थना के रूप में सभी बच्चों को सुन रहे थे, तत्पश्चात और एक प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत है भावना। भाव और हृदय का साथ जो संगीत है, आदिवासी जो देसी गीत है, उस जिसमें शुद्धता है, पवित्रता है और ज्ञान वर्धक है। ऐसे हर गाँव में हर बच्चे बड़ों को देखकर सीख जाते हैं, उसका माँ बाप जब गाते हैं तो छोटे बच्चे भी ऐसे शादी में, विदाई में और गणगौर त्योहार में, होली में, हर त्योहार में जाकर सीख जाते। तो हमारा भावना आज इस कार्यक्रम को सजाएगी। तो भावना क्या प्रस्तुति करेगी, तो अपना परिचय पहले दे। भावना तुम अपना परिचय पहले दो, कौन हो, कहाँ से आए और कौन सा क्लास और स्कूल का नाम बताओ।
5: मेरा नाम है भावना कुमारी, हैदेलदर स्कूल में पढ़ती हूँ।
4: और कौन सा फल से, कौन सा ढानी से आती?
5: मैं टूका से आ रही हूँ।
4: ओ बाप रे, टूका बहुत दूर है, बारिश का टाइम है, नदी में पानी जो आता है, कैसे आते तुम लोग टूका से?
5: आते
4: हो जाता है पानी, बारिश का टाइम में बहुत पानी आता है ना, पुल बन गया। हाँ अभी तो कोई दिक्कत, अभी 5 साल पहले हम जब जाते थे वहाँ पर बहुत दिक्कत से बच्चे आते थे, इतना दूर। सरपंच उस गांव में था, टुका का गांव का, है ना? क्या नाम जानते सरपंच मैडम को, जानते हैं?
5: सरपंच मैडम।
4: हाँ पहले थे
5: नाम।
4: हाँ तो चलिए एक प्रस्तुत सुनाएगी हमारा भावना। ओके शुरू करो।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं

उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी, मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है, ये समझ में आएगा। ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है, उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

कार्यक्रम को एक के बाद एक चलिए चलिए और आगे बढ़ते जाइए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहे। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल और खासकर देलदर का आवाज, राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय बच्चों का जो भाव और भावना था और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, एक को देखकर दूसरे भी आए। जैसे भावना भी इसका पहले गीत गाई, अपना भाव को भावना को प्रकट किए, तत्पश्चात और एक सेम ग्रुप वंस मोर कर तीसरा बार हमको चांस मिल रहा है हमारा बच्चिया, तो इस कार्यक्रम को सजाएंगे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और भावना को कौन भूल पाएगा, भावना को और एक चांस मिल रहा है। भावना अपना देसी गीत में गाएगी।
1: नके जबाजाबू कलम गाड़ी से लाऊं रे मोई काला दियो आवे बूटे से लाऊं उदयपुर हाईवे रे मुंगाड़ी से लाऊं रे धीरे धीरे हके काला मुंगाड़ी से लाऊं न कीरते बनू केरे नके ने बेवरीये नहीं ते

0: ನನಗೆ ಜಾವು ಕಾಲ ಮುಂಗಡಿಸಲವು ಉದಯಪುರ ಹೈವೇರೆ ಮುಂಗಡಿಸಲವು ಅಬುವಳ ಹತ್ತಗುಮ ಮುಂಗಡಿಸಲವು ರೇ ದಿರೆ ದಿನೆ ಹಾಕೆ ಕಳ್ಳ ಮುಂಗಡಿಸಲವು ಮೈ ಕಳ್ಳದಿಯೋ ಅವೆ ಮುಂಗಡಿಸಲವು ರೇ.
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था खासकर राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय दलदर का आवाज, और सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा धन्यवाद, आवाज़।

0: संगीत, संगीत के बारे में क्या कहें, जैसे सब कुछ संगीत में समा जाता है। स से जैसे पूरी सृष्टि ही संगीत है, ग से जैसे हर ग्रह नक्षत्र तक वो म्यूजिक, वो संगीत, वो सुर पहुंच जाते हैं। त की बात करें तो शायद तीनों लोग ही एक साथ झूम उठते हैं जब ऐसा संगीत उत्पन्न होता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो दूर दूर से गोपियां दौड़ी चली आती थी। क्या जादू है इस संगीत में। कहते हैं तानसेन जब गाते थे तब बादल भी गरज उठते थे, तब दिए भी जगमगा जाते थे। इस संगीत के जादू को जीवित रखते हैं कई ऐसी हस्तियां हैं भारत में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपको मिलाएं उन सितारों से जो कुछ चमक रहे हैं और कुछ जल्द ही संगीत के आसमान में बहुत ऊंचा स्थान पाने वाले हैं। आज हम आपके सामने एक और गेस्ट, एक और मेहमान को लेकर आए हैं जो कि संगीत के ऐसे ही जगमगाते सितारे हैं, जिनका नाम है सोम जी, जो कि आए हैं नेपाल से। उनसे बातें भी करेंगे और उनके गीत भी सुनेंगे। बहुत मधुर आवाज है, बहुत कमाल का गिटार बजाते हैं। सोम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरसी, थैंक यू सो मच।
0: सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने आपका पूरा नाम, आपके घर में कौन कौन है एंड आप क्या करते हैं।
1: अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम सोम गुरुंग है, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल की बहुत सुंदर नगरी जिसे पोखरा बोलते हैं, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, उसी जगह से मैं हूँ। और मेडिटेशन करते हैं, अपने जीवन में कुछ नई जिंदगी, नए नए अनुभव करते हैं, तो पहले से ज़्यादा मेडिटेशन के बाद बहुत अच्छा अनुभव करते हैं।
0: ओके, ठीक है। और जैसा आपने बताया सोम जी, मेडिटेशन के आप एक्सपीरियंसेस के बारे में तो आपसे बात करेंगे ही, म्यूजिक के बारे में कुछ बात करेंगे आपसे, लेकिन क्योंकि म्यूजिक का कार्यक्रम है तो चलिए पहले आपका एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे और आपसे करेंगे संगीत के बारे में खूब सारी बातें। रेडियो मधुबन 90.4 FM पे दोस्तों, आइए अगला गाना आप सुनेंगे सोम जी की आवाज में। तो पहला गाना आप जो हमारे दोस्त जो आपको सुन रहे हैं उन्हें कौन सा सुनाना चाहेंगे?
1: So, any songs, आपकी चॉइस में?
0: मेरी चॉइस तो वैसे बहुत सारे गाने पसंद है, सोचना मुश्किल है। क्यों ना अच्युतम केशवम से शुरुआत करें।
1: हाँ, श्योर, बहुत प्यारी गीत है।
0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अच्युतम केशवम, ये सुंदर सा भजन सोम जी की आवाज में, लौट कर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर लौट कर आ गए हैं हम। संगीत की ये सभा लगी हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं सोम जी, जिनकी आवाज में आपने सुना बहुत सुंदर भजन अच्युतम केशवम। ये गीत सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि शायद एक अलग ही माहौल बन चुका है और अब बोलने का तो मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे गीत सुन के सच में ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें और कुछ ना कहें। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और सोम जी से और ढेर सारी बातें करनी है, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं। सोम जी, आप जैसा आपने अपने बारे में तो बताया, मैं चाहूंगी आप अपने संगीत की जर्नी के बारे में बताएं। कब से आपको संगीत पसंद था या कब से शुरुआत हुई आपके सफर की?
1: अच्छा, संगीत के बारे में, जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल में हम गिटार बजाते थे, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे स्कूल के एक फ्रेंड बहुत अच्छा गिटार वो प्ले करता था, तो उसके हिसाब से जब मैंने फर्स्ट टाइम गिटार का साउंड मैंने सुना, तो वो गिटार के जो साउंड है वो मेरे दिल को छू गई। तो स्कूल में एक वैकेशन, समर वैकेशन था, उस टाइम पर के एक गिटार खरीद करके तो थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में एक महीने के ट्रेनिंग के बाद थोड़ा थोड़ा गीत बजाने और दोस्तों के साथ थोड़ा हम करने, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन हो गई। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करके, कोई टीचर्स तो नहीं है हमारे, फिर भी दोस्तों के साथ टीचर्स के वीडियोस देख करके, तो ऐसे ऐसे ही हमने बहुत मेहनत की और गिटार से शुरू किया। तो थोड़ा बहुत ड्रम्स भी बजाते हैं, कीबोर्ड थोड़ा बहुत करते हैं, तो स्पेशलिटी मेरा गिटार ही है। तो मैं अभी लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए मेरे गिटार बजाए हुए, लेकिन ऑन एंड ऑफ बीच में छूट भी गए थे कुछ ऐसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अभी फिर मेडिटेशन के साथ साथ अभी म्यूजिक भी अभी जुड़ चुके हैं, तो अभी मैं ये भी करना शुरू किया हूँ।
0: क्या बात है। और जब आपने म्यूजिक शुरू किया, आप क्योंकि यूथ की बात करें तो उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है तो करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने भी अपना करियर बनाया म्यूजिक में?
1: जी, करियर जब स्कूल से आउट हुआ तो उसके बाद में छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम के लिए तैयारी करते थे, तो फ्रेंड्स के साथ जुड़ जाते थे। तो बाद में जब थोड़ा थोड़ा जब मैच्योरिटी लेवल आई, तो अच्छे अच्छे म्यूजिशियन से मिलना हुआ, तो उनके साथ अच्छे अच्छे गाने कंपोज करने लगे। तो कभी कभी ऐसे ही बार में, क्लब में, तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए ऑफर आते थे, तो उधर जा करके थोड़ा बहुत कर लेते थे। तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमारी जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो इंक्रीज होती चली गई। तो बाद में एक एज बैंड बोल करके हमने नेपाल में, क्वाइट पॉपुलर है ये यंगस्टर के बीच, तो उस बैंड में काम करने का मौका मिला। तो हमने जो काम किया तो उसके हिसाब से हम बहुत सेटिस्फाई भी है, लेकिन बीच के कुछ ऐसे ही पढ़ने के सिलसिले में, कुछ ऐसे ही स्टडीज़ के मामले से करके हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अभी बैंड तो कंटिन्यू है, फिर भी मैं अब्रॉड चला गया था, तो उसके हिसाब से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहा। फिर अभी ये मौका मिला है, तो अभी मैं अपने खुद के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कंपोज करता रहता हूँ अभी। तो अभी थोड़ा तीव्र रूप से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ अभी।
0: तो मतलब आपका जो बैंड आपने बताया, तो उस समय आप लोग परफॉर्मेंस करते थे स्टेज पे और सब जगह, तो मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर जानना चाहती हूँ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं वो कुछ ऐसा करें बने, तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम एक बैंड की बात करते हैं, क्या स्किल्स इम्पोर्टेंट होती हैं वहाँ पे?
1: तो क्या है, म्यूज़िक इसको एक कला बोलते हैं, एक आर्ट बोलते हैं। तो कला के लिए एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको हम शॉर्टकट में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। तो फाउंडेशन तो आप, जैसे कि आपके घर के माहौल, जिस जगह पे आप रहते हो, जो आपके अंग संग के लोग हैं, इसके रंग भी आपको अवश्य लगते हैं। तो इसीलिए म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे जो पुराने म्यूजिशियंस हैं उनके गाने सुनने पड़ेंगे, तो कैसे वो कंपोज करते थे, क्यों ये गाने उस जमाने में लिखे थे, बनाए थे 50 साल आगे, फिर भी अभी भी वो उतना ही प्रिय है, बहुत सुंदर है, लोग अभी भी उनको सुनना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या है कि उन लोगों की जो डिसिप्लिन थी, एक बात से बोलते आध्यात्मिक हिसाब से बोलते हैं, तो उसमें एक प्योरिटी थी वो कलाकार में, क्योंकि उन दिनों के कलाकार बहुत प्योर रहते थे। तो उन दिनों के कलाकार और आज के कलाकार अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत बहुत ये बीच में बहुत दूरी हो गई है, क्योंकि आज के आर्टिस्ट वो भूल गए हैं कि ये जो कला है इसमें अगर आगे बढ़ना है, लॉन्ग टाइम स्टेबल रहना है, तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है
0: जी।
1: सो आप हमारे टीचर्स, गुरु, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग लोग जो सिखाते हैं, उसको भी आत्मसात करते हुए अपने नेचर को सुधारते हुए अगर ऐसा करते हो तो जरूर किसी न किसी दिन ये जरूर रंग ले आएगी। ये छुपे नहीं रह सकते, भले देर हो लेकिन ये बहुत अच्छा कर सकती है
0: जी। मतलब कि जो संगीत है उसके प्रति हमारी जो सच्चाई है, जो हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे दिल भी उसी में है तो दिमाग भी उसी में है, तो वो सच्चाई शायद बहुत ज़रूरी है
1: जी।

0: सिर्फ अच्छा दिखना नहीं स्टेज पे, लेकिन उस फील में होना कि हम अपने लिए गा रहे हैं।
1: जी हाँ, दिल से,
0: दिल से,
1: दिल को छूना बहुत जरूरी है। जी,
0: और दिल को छूने के लिए दिल से गाना जरूरी है।
1: जरूरी है
0: जी। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने डेडिकेशन की भी कही समझी। आगे भी कुछ बातें करेंगे आपसे, लेकिन एक और गीत की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
1: अगला गीत मैं एक बार श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा एज अ मैंने आरुषि जी को भी बोला है कि थोड़ा टाइम की कमी थी तो मैं उतना प्रिपेयर कर नहीं पाया। फिर भी आज हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो थोड़ी समय में पूरा ट्राई किया हुआ है। अगर कोई मिस्टेक्स आपको सुनाई दे तो भी इसको आप स्वीकार कर ले। अगर फ्यूचर में कोई मौका मिलता है तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस करके, लोग अभ्यास करके आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो अभी आपके लिए मैं कृष्णानी वाला गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बहुत प्यारी सॉन्ग है।
0: चलिए दोस्तों, इस प्यारे से गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में। और मैं आपको बता दूँ कि वो गा भी रहे हैं और साथ साथ गिटार भी वो खुद ही बजा रहे हैं। तो आइए इस गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अपने मुस्कुराने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, और गाने का भी, गुनगुनाने का भी, क्योंकि ये कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड जो हम आपके लिए लेकर आते हैं संडे को रात 8 बजे। आप भी जुड़ सकते हैं, अगर आप भी एक कलाकार हैं, आपको लगता है कि आप आसपास रहते हैं, आप हिस्सा बनना चाहते हैं इस कार्यक्रम का, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। साथ ही मैसेज भेज के हमें ये भी बताइए ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। सोम जी, जैसा आपने बताया कि आपका एक बहुत फेमस बैंड जो रहा नेपाल में, जो है अभी भी, तो क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं जब हम म्यूजिक, हमें पसंद है, आपने कहा डेडिकेशन ज़रूरी है, बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन साथ में काम करने में या हम बहुत जगह परफॉर्म करने जाते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, और आप अगर आए तो आपने क्रॉस कैसे किए?
1: बहुत प्यारी क्वेश्चन है ये। जो मैटर है, हर एक को फेस करना पड़ता है इससे, तो नॉर्मली सबके लाइफ में तो ये तो स्ट्रगल तो करना पड़ता ही है। फिर भी अगर बैंड की बात करें तो, क्योंकि एक बैंड में नॉर्मली 5-6 से एक बैंड बनता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो 5 लोग होंगे तो 5 हेड होंगे उधर, उनके अपने विचार होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, संस्कार होते हैं, तो इसलिए तो जब ग्रुप में काम करते हैं तो थोड़ा संस्कार की बातें भी आती हैं, फिर भी
0: नेचर अलग अलग
1: होती है, उनके ग्रोन अप अलग होते हैं, तो फिर भी अगर आर्ट म्यूजिक की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत अगर हम स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, इस ज्ञान को, तो इजीली इस समस्या को हम कोप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पहले मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में जब मैं बैंड में था, तो फिर भी मेरी नेचर क्या थी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करता था, तो दोस्तों के साथ मैं उनके साथ एडजस्ट हो करके उनको भी मनाता था, तो एज अ न्यूट्रल में रहकर, बीच में रहकर मिलाने की ट्राई करता था, तो थोड़ा बहुत ये इस नेचर से उनको भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ। मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, फिर भी वो भी ट्राई करते थे, हम भी ट्राई करते थे, क्योंकि जो भी हम स्टार्स देखते हैं, ये रॉक स्टार देखते हैं, सेलिब्रिटी देखते हैं, ये लोग ऐसे ही ऊपर नहीं पहुँचते, इनके पीछे बहुत कड़ी मेहनत चाहिए, डेडिकेशन तो होता है, ज़रूरत होती है। इसीलिए क्या लगता है अभी जो बोला मैंने कि थोड़ा बहुत अनुशासन, क्योंकि ऐसा जो टीवी में देखते हैं, जो वीडियोस में हम देखते हैं, उनका लाइफ ऐसा नहीं रहता है। वो लोग 4 बजे से आगे उठते हैं, उनके डेली लाइफस्टाइल ऐसी रहती है। एक दो मूवीज़ में, एक दो बार पार्टीज में देखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हमें मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड करते हैं, ऐसे लोग ही सफल होते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अगर हम कला से जोड़ेंगे, संगीत से जोड़ेंगे, तो ये बहुत प्रोडक्टिव भी होगी, सेटिस्फाइड भी रहेगा।
0: क्या बात है, और मुझे लगता है आपने एक लंबी जर्नी के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से बताया
1: जी।
0: क्योंकि सक्सेस भी है तो उतार चढ़ाव भी है
1: जी।
0: तो अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में, जिसमें मेडिटेशन जो है बहुत मदद करता है,
1: बहुत मदद करता है,
0: जैसा आपने कहा
1: जी।
0: तो हम आगे भी आपसे कुछ गुफ्तगु ज़रूर करेंगे। सोम जी, अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे आज?
1: अगला कोई तो है जो
0: ओके, चलिए तो ये गीत सुनते हैं ओम जी की आवाज़ में। और आपको कैसा लगा ये गाना, आप हमें ज़रूर बताइए कि गाना एंड गिटार सोम जी, क्योंकि दोनों प्ले कर रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन के स्टूडियो में, तो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें मैसेज करके बताइए 9414151415 पर, यानी कि 9414151415 पर।

0: बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. हमारे साथ हैं सोम जी, जो कि बहुत एक फेमस बैंड के मेंबर भी हैं और साथ साथ वो संगीत में कई लोगों को अब सिखा भी रहे हैं, तो कई जगह परफॉर्म कर चुके हैं, गिटार भी बजाते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, साथ में बहुत सुंदर आवाज़ है उनकी, तो उनसे आज हम बातें कर रहे हैं. सोम जी, जैसा आपने अपने बैंड के बारे में तो बताया, यहाँ पे म्यूज़िक के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि म्यूज़िक जब आप शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आपको कोई एक माहौल की ज़रूरत होती है या क्या लगता है, क्या उस वक्त आपको ज़रूरत होती है?
1: जी, मेरे विचार से जब से मैंने गिटार पकड़ा है, ये गिटार एक मेरे कंपेनियन के जैसा है, एक फ्रेंड की तरह, क्योंकि लोग होते हैं, दोस्त भी ऑल द टाइम हम साथ नहीं रह सकते, लाइक परिवार भी हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन ये जो गिटार है, गिटार माना कला, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हर एक इंसान कुछ ऐसी चीज़ों से है तो निर्जीव है, लेकिन इसमें बहुत सारे ये ब्रह्मांड की चीज़ इसमें समाई हुई है, तो इसको फ्रेंड बनाएंगे तो आप कभी अकेले फील नहीं करोगे. तो बाद में जब मेडिटेशन जब हमने लर्न किया, तो लगने लगा कि हाँ, स्टाइल तो एक ही है, ये स्थूल रूप में है, और ये जो मेडिटेशन है ये अंदरूनी बात है. तो मुझे लगता है अगर कोई इसी हिसाब से कला में जुड़ जाता है, अगर एक फ्रेंड बना लेते हैं उस चीज़ को, तो वो भी उसी तरह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी. उसके लिए आपके डेडिकेशन और आपके उस प्रति जो रिस्पेक्ट है, भावनाएं हैं, वो बहुत मायने रखती है. तो
0: लेकिन सोम जी, अक्सर ऐसा समझते हैं कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी ये एक एज के बाद ज़रूरी है, यूथ को क्या ज़रूरत है?
1: अभी तो मेरे हिसाब से लगता है कि यूथ को ही ज़्यादा ज़रूरत है.
0: अच्छा.
1: क्योंकि अभी जो संसार में हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी बन रही है, ये साइंस वाले, अभी ये डिजिटल दुनिया है, जो कुछ भी बन रहे हैं, ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, मन को भड़काती है, डिस्टर्ब करती है, और हमारे जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, उसकी पावर को ये घटाता है, तो इसको कोई ना कोई हार्म पहुँचाते रहता है. तो जिस तरह से आज लोग डिपेंडेंट हो गए हैं इन चीज़ों से, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, अब ये सोशल मीडियाज है, ये बहुत हमारी आत्मा की शक्ति को, मन की शक्ति को ये डिप्लीट करती है. तो मुझे लगता है क्योंकि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ज़्यादा डिपेंड रहते हैं स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इसके छूटने पर अगर किसी दिन हमारे पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो ये दिन क्या होता है उनके लिए ख़राब रहती है.
0: Right.
1: तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर एक यंगस्टर्स अगर वो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपना ले, तो एक अंदरूनी शक्ति जो खुद से इंजॉय कर सकते, खुद से बातें कर सके, और अपने एग्जिस्टेंस का वो खुद पता कर सके कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करने हैं मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लक्ष्य उद्देश्य क्या है. तो अगर ज़िंदगी में ये बातें किसी को समझ में आ जाता है, तो वो संसार जीत सकता है, ऐसा मुझे लगता है.
0: बहुत अच्छी आपने बात कही समझी, और ये मुझे लगता है क्योंकि करियर हमारा जो हमें बनाना है या हम बना रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. तो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, अपने मन को और ताकतवर बनाने के लिए, आप मेडिटेशन साथ साथ कर सकते हैं, जैसा कि सोम जी भी प्रैक्टिस करते हैं. तो अगला गीत सोम जी, आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
1: अभी हमारे पास ओम जय जगदीश
0: जी
1: गाना है
0: जी.
1: तो मैं श्रोताओं को ये सुनाना चाहता हूँ
0: जी. चलिए तो हम ये गीत, ये आरती सुनते हैं, लौट कर आएंगे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: घड़ी की आवाज तो कह रही है कि इस वक्त आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है, लेकिन दोस्तों मधुबन अनप्लग्ड कार्यक्रम लेकर आते हैं तो इस वादे के साथ आते हैं कि अगले हफ्ते फिर से जरूर आएंगे। आज हमारे साथ सोम जी जुड़े हैं जो कि बहुत बहुत सुंदर मेलोडियस आवाज में हमें एक दूसरी दुनिया की ओर लेकर जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज और डेफिनेटली ऐसी आवाज ऐसे गीत हो तो ऐसा लगता है कि अच्छा दिन भर कुछ और सोच रहे थे लेकिन अब मन फिर से करता है कि एक नई सोच की ओर आगे बढ़ा जाए। तो मन पॉजिटिव, मन शक्तिशाली तो नया कुछ सोचने का दिल भी करता है ना दोस्तों। तो आइए सोम जी से जाते जाते मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। कई बार जब हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं कि हम, क्योंकि लेट नाइट भी है, पार्टीज भी हैं, दोस्त भी हैं और पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा सा पीछे हो जाता है, छूट जाता है कभी कभी। तो आप क्या कहना चाहेंगे
1: इसके लिए? मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। तो कोरोना से आगे लगभग 3.5 साल मैं नेपाल के जेल में, हमारे ब्रह्म कुमारी के एक मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ से गवर्नमेंट से हमने स्वीकृत ले करके, तो वहाँ पर जाते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, रोज़ रोज़ उनकी समस्याओं की बातें, उनको मोटिवेट करते हैं। तो मैंने क्या देखा यंगस्टर में, तो ज़्यादातर जितने भी ये गलत कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, ये सब गलत खान पान और गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ों से दिल बहलाना और गलत संगत के कारण बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी वहाँ भी जेल में अपने जीवन बिता रहे हैं। तो देखा तो उनको जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हर एक यंगस्टर के पीछे वो एक अंदर से उनकी चाह तो होती है, फिर भी वो मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, तो इसलिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, कोई शराब का, ऐसे जो गलत आदतें हैं इन चीज़ों का सहारा लेने से, क्योंकि उनकी जो खान पान है, खान पान गलत होने के कारण, एक घटना मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 3 दोस्त मिले थे, तो 3 दोस्त की मीटिंग हुई, तो मीटिंग होने के साथ क्योंकि वो गलत चीज़ खान पान करते थे तो होटल में गए, वो होटल में जा कर के गलत चीज़ खाए, शराब पी। वो खाने के बाद क्या हुआ, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल होते हैं तो मोबाइल में ज़्यादातर लोग गलत चीज़ ही देखते हैं और ये तो यंगस्टर लोगों की आदत जैसी बन गई है अभी। तो उसके बाद क्या हुआ, उनमें जो अंदर गलत चीज़ वो सेवन कर रहे थे और गलत चीज़ देखने से उनकी वो जो माइंड पे एक ट्रिगर हो गया, उनको वो चाह अंदर से निकल गया, वो जो वो क्या बोलते हैं, वो राक्षसीपन होते ना अंदर से, वो निकलने लगे, तो उनके गलत विचार आने लगे, तो उन्होंने जाके ऐसे गलत व्यवहार किए, तो उसके हिसाब से वो अभी जेल में है बोला। तो मैंने देखा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खान पान को सुधारते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, जैसा आहार वैसा विचार बोलते हैं, तो भगवान भी यही कहते हैं, ईश्वर भी यही कहते हैं, अगर आपके खान पान अच्छे हो तो आपके दोस्त, आपके संग अच्छे मिलेंगे। क्योंकि आपके खान पान अच्छे नहीं हैं, जहाँ भी जाओगे गलत चीज़ खाओगे तो गलत ही लोगों को आपको संगत मिलेगी, तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले आपको गलत खान पान से बचना होगा। गलत चीज़ जो सेवन करते हैं, जो इस शरीर के लिए गलत है, जो हानिकारक है, ऐसे चीज़ों से बचना है
0: जी।
1: और जो हम देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, जो अच्छे नहीं हैं, जो हम परिवार के साथ देख नहीं सकते, जो अश्लील है, तो ऐसे चीज़ें अगर ना देखें तो ये इसमें ही बहुत लाभ मिलेगा
0: जी।
1: और उसके बाद में संगत, आपके जितने दोस्त हैं उनको भी आपको विचार करना है, क्योंकि आपके पास चॉइस है करना ना करना, कैसे संघ के साथ आप रहना नहीं रहना, ये आपके साथ चॉइस है। इसलिए ये 3 चीज़ों को आप यंगस्टर विचार करेंगे, इसको समझ पाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी
0: जी। थैंक यू सो मच सोम जी. और जैसा आपने कहा, गलत हैबिट्स नहीं तो अगर नशे की ओर या गलत और आदतों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन में जो सपने हम जीना चाहते हैं वो शायद कहीं जाके ब्रेक लग जाता है वहाँ पे, जो नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते किसी के साथ भी हो. तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा. सोम जी, आपने जो बातें कही जीवन की, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी विजडम है
1: जी.
0: तो हम ज़रूर इसमें से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे. जाते जाते आप हमें आखिरी आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
1: तो आखिरी गाना ये मूवी का सॉन्ग है, शायद हर एक ने सुना हुआ होगा, ये आसियाना गीत. ये बहुत प्यारी गीत है, आप सभी श्रोताओं के लिए पेश करना चाहता हूँ.
0: चलिए ज़रूर सुनेंगे. बहुत खूबसूरत ये गीत सोम जी की आवाज़ में हम सुनेंगे. गिटार भी उन्होंने बजाया है, गाया भी उन्होंने है. और दोस्तों, जाते जाते आपको रेडियो मधुबन का नंबर फिर से बता देते हैं. अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने गाँव का नाम लिख कर हमें भेज दीजिए. नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415. संगीत को अपने जीवन में हमेशा शामिल रखिए. संगीत उम्र नहीं देखता, पर आप संगीत से जुड़े रहेंगे तो जीवन और खुशहाल होगा. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

ओम शांति। आज 28 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। और उसी पर बाबा की मुरली है कि नसीब बनता कैसे है। नसीब कहो, तकदीर कहो, तकदीर बनाने वाला बाप है। बाबा आते हैं हर एक की बिगड़ी तकदीर को बनाने के लिए, और तकदीर बनाते ही है नॉलेज के आधार पर। नॉलेज कहो, श्रीमत कहो, बाबा आकर के हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। उस श्रीमत पर चल करके हम अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हैं। परंतु अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो बनके नसीबा फूट न जाए। दूसरी बात, आज बाबा ने कहा कि तुम्हारी ये रूहानी भट्ठी है, और इस भट्ठी में जब बैठते हैं तो बुद्धि का योग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। जितना हो सके एकाग्रचित होकर के बाबा को याद करना है, प्रेम से बाबा को याद करना है। बाबा समझ जाते हैं क्लास में अगर कोई उबासी देता है, जुटका खाता है, तो वायुमंडल खराब कर रहा है, वह अपना ही नुकसान करता है, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देता है। इसलिए आज की मुरली में बाबा कहें, एक तो नॉलेज, श्रीमत और याद से ही हम अपनी बिगड़ी तकदीर को बनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है, जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर है, रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाप को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के दो अक्षर सुने, बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। दुनिया की आत्माओं की तकदीर बिगड़ी हुई है, हमारी भी बिगड़ी थी, लेकिन अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाबा कहा, अपनेपन की फीलिंग आई तो ये अक्षर बड़ा मीठा है। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्चे को नहीं। यहां बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार है, बेहद के बाप के वर्षे के हकदार सब है। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स है, बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना, एक भगवान के बच्चे हैं, फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं? अब तकदीर बिगड़ने का कारण बताते हैं बाबा। पहली बात, लड़ाई झगड़ा। सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म, अनेक मत है, और मुख्य बात तो रावण राज्य में लड़ाई ही चलती है। क्यों?
क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है, काम के लिए बहुत लड़ते हैं। कितने खुश होते हैं, कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। काम महाशत्रु है, इसीलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इसने ही अनेकों की तकदीर को बिगाड़ा है। क्रोध वाले को तो क्रोधी कहेंगे, लोभ वाले को लोभी कहेंगे, लेकिन जो कामी है उनके बहुत नाम रखे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। कितने नाम शास्त्र में कामी व्यक्ति के लिए दिया है। बाबा कहते हैं इसलिए कहा जाता है कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्र में अमृत नाम लिख दिया है, दिखाते हैं सागर मंथन किया तो अमृत निकला, कलश लक्ष्मी को दिया, लक्ष्मी ने मोहिनी रूप धारण किया और कलश धारण किया। कितनी कहानियां हैं, इसमें भी बड़े से बड़ी बात है सर्वव्यापी की। दूसरी, गीता का भगवान कौन? तीसरा, पतित पावन कौन? सर्वव्यापी की बात, गीता का भगवान और पतित पावन। प्रदर्शनी में मुख्य इन्हीं चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाबा आकर हम बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुमको किसने पावन बनाया, बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है, वो पतित पावन कब आते हैं, ये खेल कैसे बना हुआ है कोई भी नहीं जानते। किसने पावन बनाया, किसने बिगड़ी तकदीर को बनाया, पतित पावन कब आते हैं, ये खेल कैसे बना हुआ है, बाबा कहते ये सब बातें कोई नहीं जानते। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल। गाया भी जाता है बिगड़ी को बनाने वाला एक। यह तो समझने में आता है, यह तो समझने में आता है, बरोबर रावण हमारी बिगाड़ता है। यह खेल है हार और जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है, रावण भारत का दुश्मन है, भारत में ही हर वर्ष जलाते हैं। उनसे पूछो कब से जलाते आते हो, तो कहेंगे यह तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। शास्त्र में जो पढ़ा सत सत करते रहते हैं, शास्त्र में जो कुछ भी पढ़ा, समझ नहीं है, सत सत करते आते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है, ये ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद है, हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत, माया से कैसे हार खाते हैं वह भी समझाया जाता है। बाबा आकर बच्चों को हर एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। पूरा आधा कल्प रावण राज्य चलता है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश अपने समय पर एक्यूरेट चलते हैं। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश, बाबा कहे सब कुछ एक्यूरेट चलता है। सतयुग में तो लंका होती नहीं, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। लंका तो बुद्ध धर्म का खंड है, पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है। लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है, पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है,
इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके, बाबा कहे जो बुजुर्ग है बहुत सी बातें समझ न सके, इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो ही अंत में काम आती है। बूढ़े बुजुर्ग लोगों को एक मुख्य बात धारण करनी है जो ही अंत में काम आती है। कौन सी बात? मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में फिर एक अक्षर कह देते, राम राम कहो। ऐसे नहीं कहते शास्त्र सुनाओ वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहे राम को याद करो। तो इसी तरह बाबा भी कहते हैं कि बुजुर्गों को एक बात याद रखनी है, अंतिम समय की स्मृति बाबा की रहे इसका अभ्यास करना है। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं अंत में भी वह याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है, तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे? कोई श्री कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे। देह को याद किया खेल खलास, अंतिम समय अगर देह याद आई तो खेल खलास। इसलिए बाबा अभ्यास कराते हैं, आत्म समझ कर बाप को याद करो। यहां तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्म समझ बाप को याद करते रहो, चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे, ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। आत्मा की बात है ना, पावन किसको बनना है? शरीर को या आत्मा को? आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है ना। बाप ने समझाया है आत्मा एक स्टार बिंदी है, ब्रकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है, तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूं, उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे अक्षर लिख दिया है, तो मनुष्य ने उल्टा समझ लिया है। युगे युगे लिख दिया तो मनुष्य ने फिर उल्टा समझ लिया। मैंने कहा है, बाबा स्पष्ट करते, मैंने कहा है कि कल्प कल्प संगम युगे आता हूं। हर कल्प के संगम युगे, जिसको ही शास्त्र में कहा चतुर्युगे, माना चार युगों के बाद, तो चतुर्युगे आता घोर अंधियारा और घोर सोजरे के संगम पर। बाकी युगे युगे आने की तो दरकार ही नहीं है, सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, ब्रह्मा कुमारी के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। इसलिए ये चित्र बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। बाबा की बनाई हुई प्रदर्शनी बाबा कहे सब जगह जाएगी, क्योंकि यही तो अंधों के आगे आईना है। बाप कहते हैं बहुत भारतवासी बच्चे हैं, है तो सब बच्चे ना, बाबा को तो रहम आएगा, सब बच्चे हैं मेरे। अनेक धर्म का ये झाड़ है, बाप बैठ समझाते हैं ये सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए। अभी सबकी सदगति होनी है, तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होनी है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं, कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है, आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति
बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। बाबा आकर बहुत सहज युक्ति बताते हैं कैसे पावन बनना है। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय हाय मचा देते हैं। जब प्रदर्शनी में त्रिमूर्ति के चित्र पर आते हैं और वहां ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हैं तो हाय हाय मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहां कहां से आया? ये दादा तो नामी ग्रामी था, अखबारों में सब जगह पड़ा था। एक जौहरी कहता है मैं श्री कृष्ण हूं, हमको 16108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं, और न्यूज़पेपर में आ गया तो बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। अब एक एक से माथा कौन मारे? इतने ढेर मनुष्य है, आबू में भी कोई आते हैं तो उनको झट कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो? कोई आबू में आते तो कहते हैं अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो, वह तो जादू कर देती है, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बात बताकर माथा खराब कर देते हैं, आने वालों का भी माथा खराब कर देते हैं। बाप कहते तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो, तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्र आदि को जानने वाला, बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं क्योंकि वह सब वेदों शास्त्र आदि को पढ़ते हैं। फिर बनारस में जाकर टाइटल ले लेते हैं, क्या टाइटल ले आते हैं? महा महाउपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स वहां ही मिलते हैं। कहां? बनारस में। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है, महा महा उपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती। तो बाबा कहते जो बहुत होशियार होते उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्र में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सारी यहां की है, कहानी बड़ी बना दी है, शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है, कितनी कहानियां बैठ बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव, उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया है। भागवत आदि में यह सब इस समय की बातें हैं। भागवत आदि में बाबा कैसा भी समय की बातें हैं। फिर कहानी में बताते हैं उनको ख्याल आया राजा को यह ज्ञान जाकर दो। बाप भी समझाते हैं राजाओं को जाकर ज्ञान दो। शिव बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम भी जाकर राजाओं को ज्ञान दो, तुम ही सूर्यवंशी थे उनको समझाओ, तुम ही सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने, तुम्हारी राजधानी ही चट हो गई है, अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेनी हो तो पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। बाबा कहे उनको समझाओ कि फिर आकर बेहद का स्वराज्य लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती है, फिर उनको मिलती थोड़ी है। बहुत लोग चिट्ठियां लिखते हैं राजाओं को लेकिन सारी थोड़ी मिलती है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं, कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं, कोई में ऐसी जरूरी बात होती है तो उनको दिखा देते हैं। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। यह भी अब है, अब बाप कितनी अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं। जो समझने वाले नहीं है वह यहां वहां देखते रहेंगे, बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है।
बाबा चारों तरफ देखते भी है, सभी अच्छी तरह सुनते हैं, इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है। बाबा ये भी देखते हैं इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झूठ के खाते रहेंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी, वो झूठ का खाता था तो फिर झट बाहर निकाला जाता था। कराची में बाबा स्ट्रिक्ट था, वो झूठ का खाता था तो उनको कहते थे आप बाहर जाओ, अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता ही नहीं था। शुरू में उन्हों का बड़ा पाठ चला है, लंबी हिस्ट्री है, स्थापना होनी थी तो बड़ा पाठ चला। बाबा कहते लंबी हिस्ट्री है, शुरू में तो बच्चियां बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है। परमपिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना, अगर ये जादू लगा तो अच्छी बात है। शिव बाबा देखते हैं इनका बहुत प्रेम है तो देखने से ही झट ध्यान में चले जाते थे। वैकुंठ तो भारतवासियों को बहुत प्यारा है, कोई मरता है तो भी कहते वैकुंठवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ, अभी यह तो है ही नर्क, सब नर्कवासी है, तब तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं, अभी सिर्फ यह तुम जानते हो हम स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले नर्कवासी बन गए हैं, अब फिर बाबा स्वर्गवासी बना रहे हैं। स्वर्ग में है राजधानी, राजधानी में बहुत पद है, पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, अभी

रहो, इस सर्विस में ही लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। इस सर्विस में लगे रहेंगे तो और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सतयुग में उच्च पद पाने के लिए क्या करो, मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, सेवा में तत्पर रहना है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है, एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। दूसरी पॉइंट, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है, अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसीलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। आज का स्लोगन है, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसके अंतर्गत इस कलियुगी तमो प्रधान जड़ी भूत वृक्ष की दुर्दशा देखते हुए ब्रह्मा बाप को संकल्प आता है। क्या संकल्प आता है कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर दे, परंतु उसके लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित चाहिए। तो ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। अच्छा,